شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: बाज़ लोगों की आदत होती है कि जब दो आदमियों या दो जमातों में इख्तिलाफ और तनाज़ू हो तो वो हर फरीक के पास जाकर दूसरे फरीक के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, या किसी के साथ जब मिलते हैं या उसके मजलिस में होते हैं तो उसके साथ अपने हुस्न ताल्लुक का इजहार करते हैं और खुश आमदो चापलूसी की तमाम हदूद उबूर कर जाते हैं। लेकिन जब वो चला जाता है तो उसके पीछे उसकी तहकीर और तनकीस और बुराई और बदख्वाबी की बातें करते हैं। इसको अरबी में दुल वजहैन और उर्दू में दो रुखा कहते हैं, और जाहिर है ये तर्ज अमल एक तरह की मुनाफकत और एक किस्म की धोखाबाजी है। ये दो मुहां, दो रुखा जो भी कहें, एक इंतहाई खतरनाक और संगीन जुर्म है जिसको आजकल एक खूबी व कमाल समझा जाता है, और ये इंसान की जहानत व फतानत और दानिशमंदी की अलामत बन चुका है, बल्कि ये डिप्लोमेसी कहलाती है। लेकिन याद रखिए, ज़ुल्वज़हैन ऐसा दो रुखा इंसान आखिरकार रुस्वा और जलील होता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
1: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se, desi.

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नेहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। सुफियान के घर के करीब एक बड़ी इमारत बन रही थी जिसमें बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। स्कूल आते जाते वो इस इमारत में काम करने वाले मजदूरों को बहुत गौर से देखा करता था, खास तौर पर 14-15 साल के लड़के को जो सुबह सबसे पहले मजदूरी वाली जगह पर मौजूद होता था। स्कूल की वापसी पर सुफियान के बाबा की गाड़ी जैसे ही वहां से गुजरती तो कभी कभी बाबा मजदूरों को बुलाकर कुछ पैसे दे दिया करते थे, तो कभी जल्दी में होने की वजह से आगे बढ़ जाते थे। लेकिन वो लड़का तो बुलाने पर भी कभी नहीं आता था। पता नहीं क्यों सुफियान की तवज्जो बार बार इसकी तरफ खिंचती थी। सुफियान ने किसी से इसका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि उसका नाम फरकान है। एक दिन सुफियान के बाबा और उसके दादा ने अपने माल की सालाना जकात का हिसाब लगाया। रकम ज्यादा थी। दोनों का ख्याल था कि जेरे तामीर इमारत में काम करने वाले मजदूरों में जकात की रकम तकसीम कर दी जाए। ये सुनकर सुफियान बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बाबा को फरकान के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा, मेरे प्यारे बाबा, उस लड़के को थोड़ी ज्यादा रकम दीजिएगा क्योंकि वो तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। दूसरे दिन वो वहां पहुंचे तो सुफियान ने दूर से फरकान की तरफ इशारा करते हुए बताया, यही है वो लड़का बाबा। उस वक्त फरकान सीमेंट और बजरी से भरी परात सर पर रखकर दूसरे मजदूरों तक पहुंचा रहा था। बाबा के बुलाने पर वो फौरन आ गया। बाबा ने उसकी तरफ कुछ नोट बढ़ाए और कहा, ले लो, ये तुम्हारे लिए है बेटा। उसने नोटों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और हैरानी से पूछने लगा, मगर क्यों? बाबा ने कहा, ये जकात की रकम है। उसने बाबा के हाथ में पकड़े नोट नजरअंदाज करते हुए कहा, सर जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई अपाहिज हूँ, जो जकात के पैसों से अपने छोटे बहन भाइयों की जरूरियात पूरी करूँ। ये कहकर वो अपने सर पे रखी परात संभालता हुआ वहां से चला गया, मगर बाबा और सुफियान को हैरान कर गया। सुफियान ने जब अपने बाबा की तरफ देखा तो उन्होंने अपने कंधे झुका दिए। फिर बाबा इमारत बनाने वाले ठेकेदार के पास गए। उन्होंने ठेकेदार को पूरी बात बताकर जकात की रकम मजदूरों में तकसीम करने की दरख्वास्त कर दी और कहा कि फरकान को थोड़े ज्यादा रुपए दे दीजिएगा। ठेकेदार उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, वो लड़का भीख, जकात, खैरात और सदके के रुपए कभी नहीं लेता। वो अक्सर मुझसे कर्ज मांग लेता है ताकि बाजार में बिरयानी बेचकर कुछ ज्यादा पैसे कमा सके। मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ साहब, उसे इतना ज्यादा कर्ज नहीं दे सकता मैं। उस दिन तो सुफियान और उसके बाबा वापस घर आ गए, मगर उसी वक्त सुफियान के बाबा ने 20,000 रुपए निकाले और सुफियान को साथ लेकर वो दोबारा फरकान के पास आ गए। उनके हाथ में एक लिफाफा था जिसको उन्होंने फरकान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, ये कर्ज है, जब तुम्हारी बिरयानी वाला काम चल पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता कर मुझे रकम लौटा देना। फरकान हैरत, खुशी और आंसुओं से भरी आंखों से बाबा को देख रहा था। उस वक्त सुफियान को बेहद खुशी हो रही थी। जब फरकान ने बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए वो रकम ले ली और रकम गिनने के बाद 2,000 बाबा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, साहब, मुझे 18,000 की जरूरत है, आप ये 2,000 वापस ले लें। बाबा मुस्कुराए, बेटा, तुम कारोबार शुरू करने जा रहे हो और उसमें अंदाजे से कई ज्यादा रुपए लगते हैं, रख लो, वैसे भी तुम्हें ये रुपए वापस तो करने हैं ना, आज नहीं तो चंद माह बाद। बाबा ने वो 2,000 रुपए भी उसकी जेब में अपने हाथों से रख दिए। फिर क्या, फिर वो लोग अपने घर वापस आ गए।
इसके बाद फुरकान उस इमारत में दूसरे मजदूरों के साथ नजर नहीं आया। तकरीबन दो माह बाद सुफियान किसी काम से बाजार गया तो वहां फुरकान को एक जगह बिरयानी की दो देगों के साथ बैठा देखकर उसे बेहद अफसोस हुआ कि दो देगें रोजाना बेच कर भी वो कर्ज वापस नहीं कर रहा। घर आकर उसने अपने बाबा से भी ये बात कह दी। वो मुस्कुरा कर बोले, फुरकान यकीनन कोई दूसरी अहम जरूरत पूरी कर रहा होगा, जब ही उसने कर्ज वापस नहीं किया, वरना वो ऐसा लड़का नहीं है। ये सुनकर सुफियान खामोश हो गया। देखते देखते वक्त गुजर गया और चौथे महीने फुरकान 7,000 रुपए लेकर आया और बाबा का एक बार फिर शुक्र अदा करते हुए कहने लगा, साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हो सका, मगर अपने बहन भाइयों को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो बड़े आदमी और अच्छे इंसान बन सकें। स्कूल में दाखिले की तारीख आ गई थी, इसलिए मैं आपका कर्ज पहले अदा नहीं कर पाया। मैंने पहले जमा की हुई रकम से बहन भाइयों की स्कूल की फीस जमा करा दी, इसलिए आपका कर्ज लौटाने में थोड़ी देर हो गई। आपको बुरा तो नहीं लगा? बाबा ने फुरकान की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, बेटा बुरा तो मुझे जरूर लगता अगर तुम अपने बहन भाइयों का स्कूल में दाखला रोक कर मेरा कर्ज अदा करते। एक दिन सुफियान और उसके बाबा बाजार से गुजर रहे थे कि सुफियान ने बाबा को बताया, बाबा वो देखें, फुरकान के पास दो की बजाय एक ही देग है, दूसरी कहां गई? बाबा ने ये सुनकर गाड़ी फौरन सड़क के किनारे खड़ी कर दी और फुरकान के पास आए। वो उन्हें देखकर घबराकर खड़ा हो गया। बाबा को फौरन कुर्सी पर बिठाया और बिरयानी की प्लेट पेश की। बराबर वाली दुकान से बाबा के लिए कोल्ड ड्रिंक भी खरीद लाया और उन्हें अपनी दुकान पर देखकर बहुत खुश हुआ। बिरयानी खाने के बाद बाबा ने उससे पूछा, फुरकान बेटा आपके पास तो दो देगें थी ना, दूसरी नजर नहीं आ रही। ये सुनकर फुरकान गड़बड़ा गया, फिर झिझकते हुए बताने लगा, साहब मेरा एक दोस्त है, कुछ दिन पहले ही बेचारे के अब्बू का एक हादसे में अचानक इंतकाल हो गया, घर में कोई काम करने वाला नहीं, फाकों की नौबत आ गई थी, इसलिए मैंने एक देग उसे दे दी ताकि वो बाइज्जत तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा सके। साहब जिस तरह आपने मुझे भिखारी बनने से बचा लिया था, बिल्कुल इसी तरह मैंने अपने दोस्त को भिखारी बनने से बचा लिया। बाबा ने फुरकान की बात बहुत इत्मीनान से सुनी और उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआएं देकर वहां से चले गए। बाबा ने वापसी पर सुफियान से कहा, सुफियान बेटा तुम मुझसे अक्सर पूछते हो ना कि ये बड़ा आदमी कौन होता है, बड़ा आदमी कैसे बनते हैं, तो बेटा आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बेटा हकीकत ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में फुरकान से ज्यादा बड़ा आदमी आज तक नहीं देखा। बेटा हमेशा याद रखना कि दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस रखने वाले लोग बड़े नहीं होते, बल्कि खुददार, मेहनती, ईमानदार और इंसानों की खिदमत करने वाला बड़ा आदमी कहलाने का मुस्तहिक है। तो प्यारे बच्चों हमेशा ये याद रखें, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा कामयाबी की राह दिखाती है। जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, हमें झूठ और चालबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि आखिरकार तो सच ही जीतता है। ये याद रखें कि अपनी मेहनत और नेक नियति से काम करना अहम बात होती है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समात कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है बड़ी पिक्चर देखना, पूरी कंट्री या दुनिया की इकोनॉमी को समझना। जैसे एक मुल्क की टोटल इनकम कितनी है, मुल्क में महंगाई क्यों बढ़ती है, लोगों के पास नौकरियां हैं या नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ रहा है, एक मुल्क कितना पैसा खर्च कर रहा है, एक मुल्क कितना और कैसे उधार ले रहा है, इन सभी चीजों की स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी आसान लफ्जों में कहा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक मुल्क की इकोनॉमी का बर्ड्स आई व्यू है। ये मुल्क के बड़े मसाइल और सॉल्यूशंस के बारे में ऐसी स्टडी तैयार करता है जिससे कि उस मुल्क की ग्रोथ को बढ़ावा मिले। तो आज हमने बात की मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगली मुलाकात में एक और नए इकोनॉमिक टर्म्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायात की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन, इस्लाम हमें सिखाता है कि जिंदगी के हर मरहले पर अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक चलना ही कामयाबी है। सामईन, नौ मौलूद बच्चे के हवाले से आज की सुन्नत है तहनीक और दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ मौलूद बच्चों की तहनीक करते थे। तहनीक का मतलब है किसी चीज को चबाकर बच्चे के मुंह में डालना। ये लफ्ज हनक से लिया गया है। हनक अरबी में तालू को कहते हैं, तो तहनीक का मतलब हुआ खजूर वगैरह को चबाकर बच्चे के तालू पर मलना। तहनीक का तरीका यह है कि किसी नेक सालेह बुजुर्ग के मुंह में चबाई हुई खजूर बच्चे के मुंह में डालकर उसके तालू पर मल दी जाए ताकि लुआब उस बच्चे के पेट में चला जाए और इस तरह उस नेक बुजुर्ग की नेकी के असरात इस बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाए। मुतअद्दिद अहादीस में इस अमल की दलील और सबूत मिलती है। बुखारी में अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनकूल हैं, वो कहती हैं, मैं जब मदीना मुनव्वरा आई और कुबा में उतरी, वहाँ मैंने बच्चा जना तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर मंगवाई, उसे चबाया और बच्चे के मुँह में अपना लुआब मुबारक डाल दिया और फिर बरकत की दुआ दी। इसी तरह अबू मूसा ज़ुलानी से रिवायत है जिसे इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया है, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि

एक चमकता हुआ सितारा, नाम है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह मॉडर्न दौर का बेहतरीन डिफेंडर है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले हरमनप्रीत ने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और जबरदस्त परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल हॉकी में अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, इज अ कमाल का प्लेयर। वो ज्यादातर डिफेंडर होने के बावजूद गोल स्कोरिंग में भी मशहूर हैं। हो जाता है कभी कभार, कुछ कुछ डिफेंडर्स के पास ये एक स्पेशल टैलेंट मौजूद होता है, खासतौर पर उनकी पावरफुल ड्रैग फ्लिक्स के जरिए। हरमनप्रीत ने कम ओवर में ही भारतीय हॉकी टीम में जगह बनाई और धीरे धीरे टीम के एक अहम खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया की नुमाइंदगी की। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का वो अहम हिस्सा रहे। उनकी लीडरशिप सलाहियत के सबब उन्हें भारतीय टीम का कैप्टन भी बनाया गया, जहां उन्होंने टीम को हिम्मत और यकीन दिया। फील्ड के अंदर हरमनप्रीत बहुत पुरअतमाद और जिम्मेदार खिलाड़ी नजर आते हैं। डिफेंस में मजबूती के साथ साथ अटैक में भी वो बराबर का किरदार अदा करते हैं। आजकल के डेट में मॉडर्न हॉकी में देयर इज अ डिमांड कि अगर आपको डिफेंसिव स्ट्रेटजी आपके पास, अगर डिफेंसिव स्ट्रेटजी है तो इसके साथ साथ आपको अटैक में भी जाना पड़ता है। जैसे कि फुटबॉल में हो गया, इट्स बेसिकली अ पावर गेम नाउ, और इसमें हॉकी हैज़ बिकम मोर फास्ट जस्ट लाइक फुटबॉल में भी। डिफेंडर जो साइड डिफेंडर्स होते हैं, राइट बैक, लेफ्ट बैक, उनको अटैक में भी शामिल होना पड़ता है। फील्ड के बाहर उनकी शख्सियत सीधी, मेहनती और मुतासिर कुन है। आज हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी के लिए हिम्मत, जज्बा और कामयाबी की जिंदा मिसाल समझे जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आपके फेवरेट स्टेशन FM 107 पर मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। तो जनाब रेडी हो जाओ और भी ज्यादा लाइफ हैक्स को जानने के लिए, ताकि आपकी कतर की जो लाइफ है वो और भी स्मूथ और सॉर्टेड हो जाए। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट टू द नेक्स्ट वंस। तो नेक्स्ट हैक है शॉपिंग बैग मैन्यूवर, यानी कि जब भी हम सुख जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं बिकॉज हमें बहुत कुछ पसंद आ जाता है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं। फिर इतने सारे बैग्स को संभालना बिकम्स अ रियल टास्क। तो इसका जुगाड़ ये है कि एक बड़ा सा बाइंडर क्लिप, हाँ अब ये बाइंडर क्लिप वो होता है जो पेपर्स को होल्ड करने वाला होता है ना, मोटा सा, एग्जैक्टली उसी क्लिप का हमें इस्तेमाल करना है। अपने सारे शॉपिंग बैग्स के हैंडल्स को उस क्लिप में फंसा देना है बस, फिर कार से घर तक अपने सारे ट्रेजर्स को ले जाना आसान हो जाएगा। नो मोर 10 हाथों से बैग पकड़ने की टेंशन, लाइफ सिंप्लीफाइड है ना। आई पर्सनली लव दिस वन। और अब एक ऐसा हैक जो आपके किचन को महकाता रहेगा। हाँ जी, तो कॉफी ग्राउंड्स फॉर ओडर कंट्रोल। हम सबको कतरी कुजींस या डिफरेंट डिफरेंट तरह के रीजन्स की कुजींस बहुत पसंद है, चाहे वो अरोमेटिक मजबूज हो या फिर कमाल की बिरयानी। लेकिन कभी कभी फ्रिज में ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रह जाती है, तो इसका सलूशन क्या है आइए आपको बताते हैं। अपने यूज किए हुए कॉफी ग्राउंड्स को ना फेंकने की बजाय एक छोटी सी कटोरी में डालकर उसे फ्रिज में रख दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, कॉफी ग्राउंड्स ना सारी अनवांटेड स्मेल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब आपका फ्रिज फ्रेश और आप भी खुश हो जाएंगे। प्रैक्टिकल भी है और वेस्ट भी नहीं होगा।

0: तो ये थे आज के दो कमाल के लाइफ हैक्स फ्रॉम योर वेरी ओन ए फॉर अमृता एक्सक्लूसिवली. हाँ, सो इन्हें ट्राई जरूर करना एंड ट्रस्ट मी आपकी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी. फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar. दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एसी का इस्तेमाल ऐसे करें कि आप कंफर्टेबल भी रहें और एनर्जी भी बचाएं। एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री से 25 डिग्री तक रखना चाहिए। जब आप घर पे ना हो तो एसी को ऑफ या टाइमर पर सेट कर दें। घर में कर्टन्स को यूज करके डायरेक्ट सनलाइट को ब्लॉक करें ताकि घर ज्यादा गर्म ना हो। एसी की क्लीनिंग रेगुलर इंटरवल्स पर करते रहना जरूरी है। गंदा फिल्टर भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आपके विंडोज में गैप्स हैं तो कूल एयर बाहर जा सकती है। विंडोज को सील करके एसी की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। याद रखिए, छोटी सी मेंटेनेंस से एसी की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज़।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आपका खैर मकदम है। समीन इकराम, कुरान मजीद की दास्तानों में सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए गहरी रहनुमाई पोशीदा है। आज हम बाज़ ऐसी आयात या एक ऐसे वाक़े पर गौर करेंगे जो इंसानी तारीख का पहला वाक़या भी है और इंसानों शैतान के दरमियान जारी अज़ली कश्मकश की बुनियाद भी है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने हुक्म इलाही की तामील की मगर इबलीस ने इनकार कर दिया। ये इंसानी तारीख की पहली नाफरमानी थी। लेकिन चंद ही लम्हों बाद एक और वाकया पेश आता है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ उस दरख्त का फल खा लिया जिससे मना किया गया था। अब सवाल यह है कि दोनों ने नाफरमानी की मगर अंजाम मुख्तलिफ क्यों हुआ? आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिह कलिमात फताब अलैह इन्नहु हुवत्तवाबुर रहीम। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे, फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और इबलीस के बारे में फरमाया, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा तू मर्दूद है। सामने किराम, फ़र्क सिर्फ एक था, आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता हुई लेकिन उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली। इबलीस से भी ख़ता हुई मगर उसने अपने गलती को गलत मानने के बजाय उसका जवाब पेश किया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। यहीं से तकब्बुर का आगाज़ हुआ और यही वो बीमारी है जिसे कुरान और सुन्नत सबसे ख़तरनाक रूहानी बीमारी करार देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की लग्जिश इंसानी कमज़ोरी थी जबकि इबलीस की लग्जिश तकब्बुर थी। इंसानी कमज़ोरी इंसान को तौबा तक ले जाती है लेकिन तकब्बुर इंसान को तौबा से महरूम कर देता है। सामिने किराम, शैतान की असल ख्वाहिश सिर्फ ये नहीं कि इंसान गुनाह करे। अगर सिर्फ गुनाह ही उसका मकसद होता तो तौबा उसकी तमाम मेहनत ज़ाय कर देती। शैतान का असल हदफ उससे कहीं आगे है। वो चाहता है कि इंसान गुनाह करने के बाद उसे गुनाह मानना भी छोड़ दे

0: कभी भी नहीं भूल सके। आप हमेशा उनका जिक्र मोहब्बत से करती हैं, उनके एहसानात याद करती हैं, उनके लिए दुआ फरमाते, क्योंकि वो उनकी सिर्फ शरीक हयात नहीं थी बल्कि उनकी ताकत थी। तो ये आज का मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करते हैं, और डेफिनेटली मतलब इस पे भी अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई चीज़ आपके जहन में आए तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। और इस वक्त हम बढ़ रहे हैं आज के असकार की तरफ।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.

0: जी राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान. गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को एक दफा फिर, और जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन लोगों को अस्सलाम वालेकुम. और आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं हमें 6622107. और मैं देख लेती हूँ कि पहला मैसेज मेरे पास किसका है. तो मेरे पास अच्छा 4:30 पे भी किसी ने मैसेज किया था. ओके, 4:30 में किसको सुन रहे होते हैं. अस्सलाम वालेकुम, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू अंडरस्टैंड कदर. ओके, अच्छा कदर के हवाले से मेरा ख्याल है कुछ शो आ रहा होगा, उसके हवाले से इन्होंने मैसेज भेजा है 4:30 पे. गुड गुड, ज़बरदस्त. क्योंकि उठ जाते हैं ना लोग, बता रहे हैं कि 3 बजे भी उठे हुए होते हैं और फिर उसके बाद फिर वो लोग निकल भी जाते हैं, पहुँच भी जाते हैं. तो गुड, ज़बरदस्त. अच्छा जी, मेरे पास मैसेज है नूर मोहम्मद का, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे कल से नाज़िया जी का महसूस नहीं हो रहा. अब सब क्या, अब हाँ वो एक आध दिन में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, लेकिन खैर ये कि महसूस तो होगा क्योंकि हम लोगों ने किया है साथ में पहला, तो वो मतलब 4 दिन तो गुजरे हैं तो थोड़ा मतलब महसूस हो रहा है. लेकिन ये कि खैर मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर बंदा एडजस्ट कर जाता है, तो ये होता है. अच्छा जी, इसके साथ ही हैं आसिफ कमाल, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब, क्या हाल चाल है आपके, और पहुंच गए नहीं पहुंचे. अगर नहीं पहुंचे तो अगर ड्राइव ही कर रहे हैं, मौका लगे तो कॉल कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़रा आराम से बात हो जाती है. और इसके साथ ही जी मेरे पास है एक और मैसेज, और ये किसका है, ये हैं आरिफ अंसारी. और आरिफ अंसारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और इन्होंने बताया कि मैं अच्छा हूँ. अच्छा ठीक है, इन्होंने खुद बताया. गुड, ज़बरदस्त, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको अच्छा ही रखे. और एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है छैया छैया, और बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई आपने, चले बहुत बहुत शुक्रिया. ये वही वाला है शाहरुख खान वाले की रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, अगर मैं सही समझी हूँ. एक दफ़ा लिख के भेज दीजिएगा, तो दूसरा जब घंटा हमारा शुरू होगा 7 बजे के बाद, तो उसके लिए मैं लाइनअप कर दूँगी. लेकिन जल्दी लिख के भेजिएगा, ठीक है, कि कौन सा वाला गाना है. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम मावेश मैम, और ये कहते हैं कौन, ये मैं देखती हूँ, ये हैं कमालदीन शेख. वालेकुम सलाम कमालदीन भाई, क्या हाल चाल है आपके. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत. आप बताएं कैसे हैं. जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट जी. फिर से कहिएगा,
1: रोजी रोटी चल रहा है.
0: अच्छा, रोजी रोटी चल रहा है. अल्लाह ताला ऐसे ही चलता रहे रोजी रोटी, अच्छे से और बहुत बेहतर तरीके से चलता रहे इंशाल्लाह जी. नाम नहीं बताया भाई आपने, अभी थोड़ी सी आवाज में पहचान ही नहीं हूँ आपकी.
1: अच्छा,
0: मेरा नाम है डाउट हो रहा था, मुझे डाउट हो रहा था कि नूर मोहम्मद है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कंफर्म कर लूं, कोई और होगा तो फिर कहेगा कि नूर मोहम्मद बोल दिया.
1: नाम लेने से यहाँ पे थोड़ा ऐसी डाउट होगा, क्योंकि कल मुझे बात थोड़ी सी करी थी मैनेजर से, क्योंकि वो भी एफएम सुनते रहते हैं, तो बहुत कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं.
0: अच्छा अच्छा,
1: कभी कभी नाम भी ना बताऊं, बस ऐसे कॉल कर.
0: हाँ, नाम बदल ले आप, कुछ और रख ले. पता है हमारे एक कॉलर थे, वो मैसेज करते थे नाम बदल के करते थे, पहले किसी और नाम से करते थे, फिर उन्होंने बाद में बोला कि मैम देखिए आप से ना मैं ये नाम लूंगा क्योंकि मेरे ऑफिस वालों को पता चल गया है.
1: तो बस पहला जो आपका वर्ड जो था ना, ऐसे तो मैं खड़े नहीं कर पाया हूँ अभी तक दसों में तरीके से सही से, जो आपका शुरुआत था ना रोंगटे खड़े कर दिए थे शरीर का.
0: हाँ, वो बहुत ही मतलब ना ऐसा वाकया है.

0: जो पूरी कायनात उसके मतलब रास्ते पे चलने में लगे हैं, फिर हम लोग तो अभी क्या बताएं। मतलब ये इंसान ऐसे है ना, हम भी है और दुनिया में 90% है, जिसको फर्ज समझा है वो उसको छोड़ दिया, जो जिसमें गुनाह समझा उसको फर्ज समझ लिया, जैसे रील बनाना, जैसे एग्जाम्पल बहुत ऐसा कुछ है, गाने सुनना ये वो। कोई गाना तो सुनता है पर गाना का मतलब कोई कितना आदमी नहीं समझता। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान गाना सुनता है या कोई बजवाता है या फरमाइश करता है, इस गाने का पहले अर्थ समझे कि इस गाने में है क्या।
1: सही।
0: तो मेरा एक रिश्तेदार था, एक गाना पे रील बनाया था, उसमें क्या था, अपने बेटे का वीडियो बनाया था, उसमें शाहरुख खान का गाना था रब ने बना दीजिए जी का, उसमें रब दिखता है यार।
1: बिल्कुल।
0: जैसे मैं सुना उसको फौरन मैंने कॉल किया, अपना गाना देने को उसका मतलब समझो कि इसमें है क्या, वर्ड क्या है। इससे पहले रील बनाने से पहले सब भाई बहनों से गुजारिश है, गाने का मतलब समझे और फिर रील बनाए। ऐसे तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर है इंसान के पास इतना और दिल बहलाने के लिए कर सकते हैं, पर गाने को मतलब समझे। कहने का मतलब ये है, इतना तजुर्बा नहीं है बोलने का, पर मैं सीखता हूँ, एक साल से कंटिन्यू सुन रहा हूँ, और जितना मैं रमजान में मैं सीखा था आप लोग के प्रोग्राम से, और जितना मैं अपनी जिंदगी में नहीं सीखा हूँ इस्लाम के बारे में, जानकारी नहीं थी पर बहुत जानकारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसीलिए मैं सुनता हूँ।
1: चलें, बहुत शुक्रिया भाई, और मुझे बहुत खुशी होती है लिटरली कि हमारा माशाल्लाह से मतलब हमारी रेडियो की सबसे खास बात यह है, और मुझे लगता है कि लोगों को ना पसंद भी इसलिए है, और अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में मोहब्बत भी इसलिए पैदा की हुई है कि हमेशा से, मतलब ये आज की बात नहीं है, हमेशा से, अब ज़रा माशाल्लाह से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गया है, तो हमेशा ये ख्याल रखा जाता है कि दीन को प्रायोरिटी दी जाए।
0: ऐसा कोई सा भी प्रोग्राम नहीं है उसमें दीन के ताल्लुक से बात नहीं होता।
1: एग्जैक्टली,
0: मुझे ऐसा लग रहा है।
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर देखा जाए ना तो हम सब लोगों में लिटरली, मतलब अगर हम आरजेस की भी बात करें ना, तो हम यहाँ ज्वाइन करने से पहले कुछ और थे, और ज्वाइन करने के बाद हम कुछ और बने, तो ये मतलब बरकत भी है माशाल्लाह से, मैं सोचती हूँ। तो बाकी हम सबकी पर्सनालिटीज में फ़र्क आया, सिर्फ आप लोगों की नहीं, हमारी भी पर्सनालिटी में फ़र्क आया।
0: मैं 8 साल में सेटिंग में एक चीज में गेस्ट किया, तो मैं सुनता नहीं था रमजान में, इस रमजान में मैंने सुना 30 से 30 दिन प्रोग्राम आप लोगों का, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब म्यूजिक का नाम नहीं था।
1: हाँ, exactly, बिल्कुल ऐसे ही,
0: इसलिए मुझे बहुत बेहतरीन लगा। मतलब वक्त के मुताबिक इंसान को हर काम करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आता है तो हम लोग देखो, अभी के दौर में इंसान मतलब 2 घंटा भूखा प्यासा नहीं रह सकता है, लेकिन रमजान और रात में 16-16 घंटा रह जाता है। इसका मतलब है हम लोग चाहे तो हर चीज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही,
0: जान बुझ के नहीं करते।
1: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे।
0: कॉल लंबी हो रही है, आपको पता है कि मैं बहुत छोटा सा कॉलर हूँ, इतना लंबी बात नहीं।
1: आप छोटे कॉलर नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, बड़े कॉलर है, लेकिन आप बात लंबी नहीं करते, छोटी बात करते हैं।
0: एक बात बताइएगा, वो मुजीबा बहन आता है ना, कभी कभी कॉल करते हैं ना, वो एक बार कबीर भाई के प्रोग्राम के बहुत मतलब पूरे मर्द को अकेला ही झेल दिया था। मतलब झेलने का मकसद ये है कि पूरे मर्द को मतलब अकेला ही खड़ी खोटी सुनाया, मतलब कोई आदमी अपने बीवी का तारीफ नहीं करता, काम का तारीफ नहीं करता, उसको बहुत बद्दुआ दिया था।
1: बद्दुआ नहीं दिया होगा, उन्होंने इस्लाह की होगी
0: जी, मतलब एक हनी टाइप का, अल्लाह ताला उसको हिदायत, जो अपने बीवी का काम का तारीफ नहीं करता अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अपने बीवी को इस तरह का बोलिएगा थोड़ा दोहराने के लिए।
1: अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मुनीबा की कॉल आती है, मुनीबा सुन रही होंगी, नहीं भी सुन रही होंगी, कॉल आएगी उनकी तो मैं जरूर बोलूंगी, ठीक है। चलें नूर मोहम्मद साहब, थैंक यू जी, आप भी दुआ में याद रखे। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छी कॉल थी, थैंक्स अ लॉट, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रोहित जी तो हमारे साथ पहले कॉलर थे, और इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं वेदर अपडेट और ट्रैफिक अपडेट के साथ।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी। एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488880

0: 06 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
2: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खासतौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइक्लिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइक्लिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खासतौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिक

कल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग अगेन। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावेश खान और मैं अब आपको बताने वाली हूँ वेदर अपडेट। तो इस वक्त का टेम्परेचर अगर देखें ना तो इस वक्त हो रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और आज जो जाएगा ज्यादा से ज्यादा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ये कि आज का जो वेदर मतलब एक तरह से है ना काफी ज्यादा मुझे लगा कि धूप निकली हुई है। आज ठीक ठाक धूप है इस वक्त के हिसाब से जब मैं आ रही थी। तो कल मैं ये बात कर रही थी ना कल सुबह मतलब जब सुबह सुबह हम आ रहे होते हैं तो वेदर काफी अच्छा होता है, सुहाना सुहाना सा होता है। लेकिन आज धूप थी काफ़ी मतलब ठीक ठाक धूप थी, वो जो एक नरमी होती है ना सुबह के वक्त में धूप की वो वाली मुझे आज नहीं नज़र आई। तो आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि आज लग रहा है मुझे कि गर्मी ज़रा ज़्यादा होगी, मतलब ये मेरी प्रिडिक्शन है कि आज थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा गर्मी होगी, थोड़ा ज़रा ज़्यादा क्योंकि सनी लग रहा है आज का वेदर। तो खैर इसके साथ ये है कि ड्राइनेस भी है और आज ह्यूमिडिटी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त 21% है जो कि मतलब काफ़ी ड्राई वेदर है। तो इसमें आपने वैसे भी ख्याल रखना है, मैं आपको थोड़ी सी टिप्स वगैरह भी दे दूँगी आगे चल के। लेकिन ये कि इस आज ज़्यादा से ज़्यादा हाँ कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 तक भी जा सकता है। और ख़ास तौर पर जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का वक्त है ना ये ख़ास तौर पे गर्म होता ही है, लेकिन आज 10 बजे के बाद से ही आप महसूस करेंगे ज़रा गर्मी की शिद्दत। तो ख्याल रखिएगा अगर इन वक्तों में कहीं पे निकलना है तो ज़रा एहतियाती तदाबीर के साथ। कल भी मैंने आपसे कहा था कि सनग्लासेस का लाजमी इस्तेमाल करा करें, गाड़ी को शेड्स में खड़ा करें जहां तक भी मुमकिन हो सके, अगर कहीं पे शेड पार्किंग है तो वहां पे अपनी गाड़ी को खड़ा करें और साथ ही साथ अपना एसी वगैरह का भी चेकअप यकीनन करवा ही लिया होगा गर्म वेदर शुरू होने से पहले तो वो करवा लें। एसी ख़राब है तो फिर तो लाजमी फ़ौरन सबसे पहले यही वाला काम करें क्योंकि अब आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये जहन में रखें और डायरेक्ट धूप अवॉइड करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और अननेसेसरी आउटडोर एक्टिविटी से परहेज़ करना है। तो थी वेदर अपडेट और इसके साथ ही हाँ ड्राई वेदर के लिए अगर मेरे साथ क्या होता है जो सबसे ज़्यादा मुझे ड्राई वेदर में जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो वैसे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे तो आपको गर्मी का एहसास भी ज़्यादा होता है, चिपचिपी वाली गर्मी एक शुरू हो जाती है। लेकिन ये कि जब ड्राइनेस ज़्यादा होती है ना तो आप ओवरऑल मतलब ड्राइनेस अंदर से भी फील कर रहे होते हैं और मेरी मतलब जो ना यहाँ मैंने नोट किया है कि नाक आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बाकायदा मतलब इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि बाज़ों का तो एक तरह से ना वो एक तरह मतलब छिल जाती है नाक, तो वो भी मसला होता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपके भी नॉस्ट्रल्स वगैरह का बहुत ड्राइनेस की वजह से ऐसा हाल रहता है तो स्टीम ले लिया करें अगर मुमकिन हो। वैसे इतना टाइम कहाँ होता है, मतलब कह मैं नहीं हूँ लेकिन अपने आप भी अगर मुझे करना हो तो मैं नहीं कर सकती, ये मतलब पॉसिबिलिटी होती नहीं है हमारे लिए। इतनी बिजी लाइफ है ना, मतलब इतना सब कुछ करना है तो बंदा कहाँ स्टीम लेगा बतौर ख़ास। अगर आपके पास स्टीमर वगैरह है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन वो होता है ना गर्म पानी करो फिर कहीं पर बैठो मतलब कपड़ा रखो ये वो, कौन इतनी झंझट पड़ेगा। लेकिन खैर अगर कर सकते हैं स्टीमर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, स्टीम कभी कभी ले लिया करें वैसे भी अच्छा होता है, मतलब आपके लंग्स के लिए और ज़रा अच्छा फील करता है बंदा। साथ में जो है ना थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करके अगर स्टीम ले लें तो आपको फेशियल भी हो जाएगा साथ साथ, तो ये अच्छा है, मतलब स्किन भी साफ़ हो जाएगी नाक भी साफ़ हो जाएगी। खैर जी ये किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो आपका जो पेट्रोलियम जैली होती है ना वो पहले मुझे लगता था कि नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन मैंने कुछ अर्से पहले देखा है कि आप हल्की फुल्की सी वो अगर इवन मतलब नोज़ के अंदर भी आपने लगानी है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ज़्यादा अगर क्वांटिटी अगर आपने ली तो डेफिनेटली फिर लंग्स तक जाती है तो पता है आपको कि नुकसान होता है, वो नहीं जाना चाहिए। लेकिन हल्की फुल्की क्वांटिटी में अगर बहुत ही आपको लग रहा है ड्राइनेस एक्सट्रीम पे पहुंच गई है तो ये आप कर सकते हैं।

0: होंगे और वहाँ पे आपको ठहरना पड़ेगा. स्लो मूविंग ट्रैफिक इस वक्त चल रही है. और इसके साथ वेस्ट वे इसके जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वो उसमें वेस्ट वे आ जाता है, सीरिंग रोड आ जाता है, अल रियान एजुकेशन सिटी रूट्स जो हैं यहाँ पर, और साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया साइड, यहाँ पे इस वक्त हैवी व्हीकल मूवमेंट की वजह से काफ़ी मतलब स्लो फ्लो ऑब्जर्व किया जा रहा है. इसके साथ ही कुछ एरियाज में अभी भी टेम्पररी डाइवर्जन्स और मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से व्हीकल्स को अल्टरनेट रूट्स यूज़ करने का मशवरा दिया जा रहा है. तो आप जितने भी लोग हैं अगर ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी मेरा जो है ना वक्रा में जो एक रोड है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, काफ़ी नैरो किया हुआ था रोड को, लेकिन गुड ज़बरदस्त कि अब वो खुल गया है तो हम इतनी मुश्किल नहीं होती. वरना अगर बहुत ही नैरो हो ना तो उधर आपको वैसे ही मतलब गाड़ी चलाते हुए भी डर लग रहा होता है कि टकरा जाएगी. तो उधर खैर काफ़ी जगहों पर इस तरह से काम चल रहे होते हैं, लेकिन कोशिश यही की जा रही होती है कि जो बिल्कुल मेन रोड्स हों, हाईवे वगैरह हों, वहाँ पर जल्द अज जल्द काम कम्प्लीट कर लिया जाए. तो देखभाल कर बिल्कुल सोच समझ कर कहीं पर अगर आपको फॉरन से डाइवर्जन मिलता है तो एक तो ये कि डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और फिर दूर तक आपकी नज़र होनी चाहिए, आपको पता हो. क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ना कि कोई काम एकदम से शुरू हो गया, आपको पता नहीं, अपनी धुन में चल रहे हैं, तेज़ तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो टकरा भी सकते हैं. तो इसलिए देखभाल के संभल कर ड्राइव कीजिए, इधर उधर नज़र रखिए, और अगर कोई इस वक्त रोड पर है, गाड़ी चला रहा है, तो ज़रूर कॉल करके हमें बताए कि क्या हालात हैं ट्रैफिक के. और सिर्फ सब तो पहुंच चुके हैं, उनका मैसेज आ गया है जी जस्ट अभी पहुंचा हूं, मतलब 6:23 पे पहुंच गए थे, 20 मिनट हो चुके हैं आसिफ साहब को पहुंचे हुए, तो अब तो सुन भी नहीं रहे होंगे ये. और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम का मैसेज मुझे किया है किसने, ये है कमकम खान. ओके कमकम का मैसेज आ गया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहते हैं. गुड मॉर्निंग कमकम, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप. इसके साथ ही गुड गुड मॉर्निंग माही मैम, नाइस प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया. किसका मैसेज, अफरोज खान चकवा. ओके गुड ज़बरदस्त. और कॉलर आ गए हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातहू. गुड गुड मॉर्निंग.
0: गुड गुड मॉर्निंग शहजादा सलीम, लॉन्ग ड्राइव शुरू हो गई आपकी.
1: मैं वो तो सुबह ही वो 3 बजे चला जाता हूँ ना, एक मार लेता हूँ, गैप रहता है ना, फिर अब ब्रेकफास्ट करके बस अभी तैयारी है उधर शुमाल रोड पे जाने की, शिमा में उस तरफ जाने की. तो अभी बाहर निकलूंगा प्लांट से तो पता चलेगा कि क्या रोड के हालात है, पता नहीं क्या है, तो बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा. अभी तो मैं बोला अभी थोड़ा सा फारिक खड़ा हूँ, तो मैं बोला जल्दी से कॉल मिला लेता हूँ.
0: नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. और ट्रैफिक अपडेट भी जब भी रोड पे हुआ करे ना कॉल कर लिया करे, ताकि पता चल जाए कहीं पे लगता है ना आपको ट्रैफिक ज्यादा है तो इन्फॉर्म कर दे मैसेज करके या कॉल करके. अरे हाँ देखो मैं फिर भूल गई आज, मतलब ये होता है जब तक कोई पूछे नहीं, पहले वाले कॉलर आए बेचारे ऐसे ही चले गए, उनसे सवाल ही नहीं किया मैंने, भूल गई थी मैं, सॉरी. तो अच्छा आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि रिसेंटली अपनी लाइफ में आप कोई चेंज लेकर आए हो, कोई भी चेंज, मतलब बाय पर्पस आपने सोच के वो चेंज अपनी लाइफ में लेकर आए हैं कि ये करना चाहिए भाई, अब बहुत हो गया, अब कर लेना चाहिए.
1: जी जी जी जी. रिटायरमेंट. रिटायरमेंट बल्क कंट्री से. हाँ रिटायरमेंट और एक अपना सेटअप, मतलब जाके थोड़ा सा बॉम्बे शहर से हट के थोड़ा दूर, मेरी खाला रहती है लोनावले में, हिल स्टेशन वगैरह ऐसा है वहाँ पे, अच्छा एकदम सुकून एरिया में, एक अपना थोड़ा घर और थोड़े से बकरियाँ और मुर्गियाँ, कुछ कबूतर,
0: सारी जिंदगी है. मतलब एक बिल्कुल पुरसुकून जिंदगी गुजारने का सोचा है.
1: जी जी इस तरह से मेरी तो मतलब ऐसी इस बारे में मैं अक्सर मतलब है ना मेरे को ध्यान आते रहता है कि यार ये कितनी बेहतरीन कितनी सुकून वाली लाइफ है ना, आदमी रिटायरमेंट होने के बाद रिलैक्स रहता है, हर एक शेड्यूल बना रहता है मॉर्निंग का, उठने का, ब्रेकफास्ट और लंच और शाम का सोने का, उसके बाद के फिर क्या करना है, मुर्गियों ने ऐसे अंडा दिए कि नहीं पता नहीं, और
0: मतलब सोच कहाँ रहेगी कि आज मुर्गी ने अंडा दिया कि नहीं दिया. अच्छा जी शहर सलीम मजाक से हट करना, मैं ये कहूंगी कि वैसे ना मतलब सही है, रिटायरमेंट की एज भी होती है और आपका माशाल्लाह से आपने बेटा भी बुला लिया है, सब कुछ है, लेकिन सोचा ना करें रिटायरमेंट के बारे में. जितना बंदा ना एक काम में मसरूफ रहता है ना, तो वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो माशाल्लाह से हेल्दी रहता है, वो सही रहता है, हो जाए रिटायरमेंट एक अलग बात है, लेकिन खुद से नहीं अभी इतना प्लान करें. और वैसे भी भाई अगर आप यहाँ से चले गए तो हम तो आपको बहुत मिस करेंगे।

0: लेकिन फिल्मों के ना अभी तक मतलब ऐसा मतलब है ना, एक मतलब थिंकिंग है अबाउट दिस, अभी जो बताया ना मैंने इस तरह की, बट वही थिंकिंग है लेकिन
1: प्लान बी बना के रखे।
0: आई डोंट नो, नो प्लानिंग, नो एवरीथिंग, नो नो कुछ भी नहीं, दूर दूर तक मतलब कुछ मैंने मतलब यही नहीं किया कि ऐसा कर लूंगा उसके बाद ये स्टेप होगा उसके बाद, पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक अपना मूड जैसा हो गया है तो कहाँ जाए फिर वहाँ का, फिर सोचते हैं इतनी अच्छी फैमिली है, रेडियो है, सारे कुछ अपना ही, सब कुछ अपना ही लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है, वरना घर वाले तो बुकिंग भी नहीं होता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, मैचेस होते हैं और मैं खुद उसमें एक अपना एक मतलब एक मेरा अपना एक वो रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके अंदर भी कि एक जैसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मेरा एक नाम होता है कि आपको ये करना है, वो करना है, ये सब करना है, ये सारी चीजें हैं, वो सब वहाँ जाने के बाद सब खत्म हो जाएगी जहाँ तक।
1: हाँ, मैं तो ये चाहूंगी आप ऐसे हमेशा एक्टिव रहें जिस तरह से हैं, स्पोर्ट्स में भी, रेडियो पे भी, अपनी लाइफ में भी, बिल्कुल माशाल्लाह से जिस तरह से आप जिंदगी गुजार रहे हैं वैसे एक्टिवली लाइफ गुजारते रहें।
0: जी जी, और जो आपका जो कल का जो टॉपिक था ना, जो मतलब फाइनली गोल, वो अभी तक तो नहीं देखा मुझे अभी तक तो मैं
1: अच्छा नहीं, मैं आज का जो सवाल है ना वो ये है कि आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत कोई चेंज, मतलब कोई किसी आदत में आप चेंज लेकर आ गए हो, कोई आदत ऐसी है जो बदली?
0: हाँ हाँ, अभी वो मेरा कैसा है मालूम है, मतलब मेरे को एक एक चेंज लेकर आना है, कैसा भी चेंज बोलेगा तो मतलब अपनी खुद की एक पर्सनालिटी जिस तरह से मैं हूँ ना, तो मेरा एक मतलब ऐसे ही है ना, मतलब लड़कों के साथ ही मेरा ज्यादा मतलब पूरी टीम है ना, तो उनके साथ ही मेरा ऐसे ही रहता है ना, तो एकदम फ्रेंड कर लेता है, लेकिन मैं जबकि उनसे बड़ा हूँ तो मैं थोड़ा यहाँ से जमात से भी जुड़ा हुआ हूँ ना, हमारे कंपनी में ये पब्लिक का दावतों के काम चलता है, तो लोग मुझे पूछते हैं अभी आप सलीम भाई इतने बड़े हो गए अभी ना, आप इन्हें देखो ना दाढ़ी वगैरह छोड़ दिया करो, मैं बोलता हूँ हाँ बस मेरा है मतलब करना है मुझे, लेकिन थोड़ा सा मैं जरा एक फाइनल मतलब ये कर लूँ ना, कहते अभी करना ही नहीं है, तो वो तो एक है कि मैं ना एक अपना है ना एक मतलब एक जो चेहरा होता है ना इस तरह का एकदम मतलब उस तरह उस अभी तो मैं जीन्स और टी शर्ट में रहता हूँ, कैप रहती है।
1: नहीं देखिए पता है शायद सलीम ये यहाँ पे डेफिनेटली सुन्नत है और सुन्नत को हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज है ना वो है अपनी आदतों में, अपनी और चीजों में जो तब्दीली है, जाहिरी हुलिया ना आप पेंट शर्ट पहनते हैं इसमें कोई ममानत नहीं है, आप बिल्कुल मतलब एक तरह से ऐसा ड्रेस पहन रहे हैं में आप ढके छुपे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो वो ये सेकेंडरी चीजें होती हैं। हम लोगों में पता है क्या है कि अगर मैं वाकई मतलब अपना माशरा देखूं ना तो अफसोस इस बात पे होता है कि हम लोग जाहिरी हुलिये के ऊपर तो बहुत फोकस करते हैं, मतलब एक बहुत ही लंबी दाढ़ी हो और लिबास ऐसा हो, और हम लोगों ने खास तौर पे मतलब हमारे साउथ एशिया में हम लोगों ने सोच लिया कि शलवार कमीज ही जो ना दीनी लिबास है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए, हमारे मतलब ना जबान ऐसी होनी चाहिए किसी को तकलीफ ना पहुंचे,
0: दिल का जो इखलास और खुशी और जो है ना जिसमें आप उतरते हो, एग्जांपल आप इबादत में उतरते हो खुशी और इखलास और मोहब्बत से, उस तरह से क्या आपकी नियत देखी जाती है। अगर मैं ऐसा करूँ तो अपना गेटअप पूरा चेंज कर दूं यार, मेरे लोग वाह वाह करेंगे तो वो तो बेवकूफी है।
1: अब देखिए जैसे कहते हैं ना स्किन के हवाले से अगर कोई बात कर रहा होता है कि आप अपनी स्किन अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसमें ना आप जब तक अच्छी डाइट नहीं लोगे जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, अंदरूनी तौर पर जब डाइट आपकी अच्छी नहीं होगी, आप कितनी क्रीमें थोप लो मुंह पे कुछ भी कर लो, लेकिन आप अंदरूनी तौर पर अगर सेहतमंद नहीं हो ना तो आपकी वो चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा, तो आप जब तक अंदरूनी तौर पे अपने आप को ना वैसे नहीं करेंगे, एक डिटॉक्स नहीं करेंगे, अपनी बुराइयां नहीं खत्म करेंगे और चेहरे पे आप दाढ़ी भी रख लें, हुलिया भी चेंज कर लें, फर्क नहीं पड़ेगा।
0: और वैसे तो मेरी ऐसी कोई ये नहीं कि मुझे अभी मतलब ये नहीं करना चाहिए, अभी ये चेंज लेकर आना पड़ेगा।
1: आप अच्छे लगते हैं भाई ऐसे, आप अच्छे लगते हैं, मैं तो कहूंगी ऐसे रहे अभी कुछ अरसे, अच्छे लगते हैं माशाल्लाह।
0: तो हम लोग तो आप मिल चुके हैं जब देखा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह बहुत फिट हैं आप, मैं आपकी फिटनेस से बहुत इंस्पायर हूँ।
0: मतलब है ना बस ये कि एक मेरी मतलब जो दिली मतलब ये है ना तो मेरा अपना एक कैरेक्टर जैसा वगैरह ना हमेशा यही है कि पीसफुल और कूल माइंड और डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब हर तरह से जो अपने से बन सकता है कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जो फायदे में मिलता है ले लो, और जहाँ पर कुछ देख लो कि थोड़ा सा उथल पुथल है और कुछ अलग है तो उसमें किनारे कशी कर लो, और बस इस तरह से रहा है मेरा बस।

0: इसी तरह से
1: जबरदस्त जबरदस्त सलीम जबरदस्त और ऐसे ही रहें अच्छे रहें पॉजिटिव चेंजेस अपनी जिंदगी में लेकर आते रहें इंशाल्लाह ताला ख्याल रखिएगा ठीक है चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू जी जी तो हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर शहजादा सलीम और जब भी बात करते हैं बहुत ही मतलब ना एक वो होता है ना क्या कहना चाहिए दिल से बात करते हैं साफ दिल के साथ बात करते हैं तो ग्रेट जबरदस्त अच्छा ये था यहाँ पे भी जो शहजादा सलीम ने जो बात की मैं उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि वाकई अगर हम अपना हुलिया रखना चाहें सुन्नत के हवाले से तो ये बहुत अच्छी बात है मतलब हमें रखना चाहिए लेकिन वो तमाम लोग जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं उनसे कहूँगी यार आप लोग मतलब इसके साथ दिल का मामला और अंदरूनी तौर पे और ख़ास तौर पे लोगों के साथ मेल जोल में ये वाले मामला भी ना हमें बहुत जब हम ख़ास तौर पे हुलिया हमारा वो वाला होना तो फिर हमें और ज़्यादा मोहताद होना चाहिए क्योंकि लोग फिर हमें इस चीज़ से वो भी करते हैं ना जज भी करते हैं कि अगर हम इस तरह घूम रहे हैं तो हम एक बाकायदा एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मोहताद होना चाहिए कि फिर वहाँ पर ना हम कोशिश करें पहले कि हमारी इतनी एक शख्सियत साजी हमने किरदार साजी अपनी कर ली हो कि अब हम कभी झूठ ना बोलें अब हम कभी मतलब जो ना गीबत ना करें और कुछ भी इस तरह की क्योंकि एक लाइबिलिटी होती है जैसे अगर अब मैंने एक अबाया पहनना शुरू कर दिया है और मैं इस चीज़ को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि कुछ आपकी एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है हम क्या मतलब हमारे दिमाग में क्या बात होती है कि नहीं मतलब ना हुलिया अगर ऐसा हो गया तो लोग अब हमें नेक समझना शुरू करते हैं नहीं आप एक तो ये नेक वेक का मतलब नहीं बन सकता मामला असल जो चीज़ है वो ये है कि रोज़ की बुनियाद पर अपने ऊपर नज़र डालते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं और मैं अगर अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने का सोचूं ना तो मेरे जहन में जो बात आ रही होती है जैसे छोटा चेंज मैं पहले ही डिस्क कर देती हूँ कि मैं ये सोच रही होती हूँ कि होता है आपका कि आप कभी ज़्यादा किसी से बात बात करते हो ना तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट है कि हम कहीं ना कहीं पे गीबत करते हैं मतलब कोई ना कोई बात दूसरे के हवाले से हो जाती है कुछ ना आप सुन रहे हैं कर रहे हैं इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ हो जाती है अभी जब मैं ये हदीस टू हैबिट प्रोग्राम कर रही हूँ ना तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हुए और मैं उसके ऊपर ख़ुद से रिफ्लेक्ट ये कर रही थी कि ये तो मेरे साथ भी होता है ये वाला मसला तो मेरे साथ भी है तो मुझे भी इसको मतलब दूर करना चाहिए कभी टाइम मैनेजमेंट की बात आ जाती है जैसे कल मैं कह रही थी कि मैं कोशिश आजकल कर रही होती हूँ शौरी तौर पे कि आप टाइम ज़ाया ना करो इसी तरीके से और जो चीज़ें हैं जब हम मैं शो कर रही होती हूँ या कोई सुन रहा होता है तो हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अच्छी बात को सिर्फ सुन के इग्नोर ना करो बल्कि या फिर मैं अगर कर रही हूँ अपने तौर पर तो मेरे ऊपर तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे भी अपने आप को जो बात मैं बोल रही हूँ मुझे अपने आप को लेकर भी आनी है वो वाली चीज़ अपने अंदर तो ये एक छोटे छोटे से चेंजेस गीबत मुझे लगता है सबसे बड़ा ऐसा मसला है जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है झूठ मैं नहीं बोलती लेकिन ये कि गीबत वाला मामला कहीं ना कहीं मतलब आपकी इंटेंशन नहीं होती लेकिन हो जाता है ये एक मामला है इस तरह का तो मुझे ये वाला चेंज लेकर आना है कि किसी तरीके से ऐसा हो सके कि मैं बिल्कुल ही किसी के बारे में बात ना करूं और कोई मेरे सामने बात करे तो उस वक्त भी मैं उस चीज़ को अवॉइड कर सकूं लेकिन ये एक ऐसी बुरी आदत है जो हम लोगों के अंदर ऐसे पड़ चुकी है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम वो किसी की हिब्बत कर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की ये बेहतरी जो है ना मेरे अंदर आ जाए ये मैं चेंज लेकर आना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में आया नहीं है लेकिन ये कि अगर हो सके वैसे मुश्किल काम लगता है बहुत ये लिटरली मतलब अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो काफ़ी मुश्किल काम है ये तो आप लोग बताएं अपनी ज़िंदगी में आप कौन सा चेंज लेकर आए हैं या लेकर आना चाहते हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं ठीक है और इस वक्त हम चलते हैं ब्रेक की तरफ
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107 लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर दोस्तों गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है

0: जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: FM 107. Time check. Right. Good morning. Welcome back. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश और मेरे पास मौजूद है अब क्या अब खास ये कि आज 9 जून है ये तो आपको पता ही है ट्यूसडे का दिन है और आज क्या हो रहा है पूरी दुनिया भर में ये हम देखते हैं कि आज कौन से दिन मनाए जाते हैं क्या खास सेलिब्रेशंस होती हैं किन दिनों को ऑब्जर्व किया जाता है तो सबसे पहले तो बात करते हैं कोरल ट्राइंगल डे की ये दिन एशिया पैसिफिक के उस मरीन रीजन की अहमियत को उजागर करता है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा कोरल रीफ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इस दिन का मकसद ओशंस की हिफाजत और सस्टेनेबल फिशरीज के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है तो ये दिन मनाया जाता है इसके साथ ही एक और जो दिन है वो है इंटरनेशनल आर्काइव डे ये मनाया जाता है और ये दिन उन इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल्स को रिकग्नाइज करता है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स और हेरिटेज को महफूज रखते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस अपनी हिस्ट्री से वाकिफ रह सकें और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है मतलब हमारी हिस्ट्री ये जो आर्काइव्स हैं इनको प्रॉपरली चाहे किसी जगह के भी हों उनको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए इसके साथ ही जी 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे भी मतलब इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल ट्रस्ट को प्रमोट किया जाता है ये दिन इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सेलेंस और एक्सेलेंस की अहमियत को हाईलाइट करता है इसके साथ ही डोनाल्ड डक डे यानी आज जो डिज्नी फैंस हैं उनके लिए भी ख़ास दिन है क्योंकि 9 जून को डोनाल्ड डक डे मनाया जाता है इसी दिन 1934 में जो मशहूर डिज्नी करेक्टर डोनाल्ड डक है उसने अपनी पहली अपेयरेंस दी थी और आज भी ये दुनिया के सबसे पॉपुलर कार्टून करेक्टर्स में शुमार होता है डेफिनेटली मतलब सभी को पसंद है इसके साथ एक और जो दिन है वो ये कि जो जून का जो सेकेंड ट्यूजडे होता है ना 9 जून नहीं जो सेकेंड ट्यूजडे है यानी आज इसको वर्ल्ड पैट मेमोरियल डे के तौर पर भी ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन लोग अपने उन पैट्स को याद करते हैं जिनकी ज़िंदगी में अहम हिस्सा रहे हैं और उनके साथ अब नहीं है तो ये वाला सीन है इसके साथ भाई एक और जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी ज़बरदस्त वो ये कि हेल्थ अवेयरनेस के लिए कॉल योर डॉक्टर डे भी मनाया जाता है और इसका मकसद होता है लोगों को रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ तवज्जो दिलाना ये बड़ा ज़बरदस्त दिन है और होना चाहिए ये कि हम जो है ना अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें डॉक्टर के पास जाएँ हमें बोल कौन रहा है मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खौफ आता है मैं बीमार होना नहीं चाहती क्योंकि मुझे डॉक्टर से खौफ आता है खैर जी इसके साथ ही युगांडा में आज नेशनल हीरोज़ डे मनाया जाता है और ये दिन उन अफराद को ट्रिब्यूट देने के लिए होता है जिन्होंने मुल्क की तरक्की और आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं तो ये हैं दिन और कुछ और है आज हाँ आज रात को एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए भी ख़ास मौका है क्योंकि विनस और जुपिटर आसमान में आपको नज़र आएंगे और करीब करीब नज़र आएंगे और जो एक नेकेड आई से भी देखा जा सकता है तो ये कुछ 9 जून के हवाले से ख़ास इंटरनेशनल जो ऑब्जर्व किया जाता है हिस्टोरिकल मोमेंट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे तो डेफिनेटली मतलब आप लोग अगर कोई ख़ास तौर पर ये आसमान को देख के फैसिनेट होता है तो आप डेफिनेटली आज ज़रूर देखिएगा और बाकी डोनाल्ड डक डे पे आज है तो आज जो भी लोग जिनके अंदर अभी भी एक बच्चा रहता है मुझे भी पर्सनली मैं टॉम एंड जेरी अक्सर देखती हूँ लगा के या डोनाल्ड डक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कार्टून तो आज आप सब लोगों के लिए कार्टून लवर्स के लिए ये है कि आज आप डोनाल्ड डक एक दफ़ा लगाएं और थोड़ा बहुत देखें इन्जॉय कीजिए अच्छा जी आ जाते हैं हम कॉलर की तरफ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात करें कौन है हमारे साथ
1: कल जो इंतजार करवाया था वही आदमी खालिद शानिया वाला लेकिन अभी बॉर्डर नजदीक आ गया ओके खुदा हाफिज
0: हैं क्या करीब आ गया
1: जा रहा हूँ ना आपको बताया था
0: बॉर्डर करीब आ गया अच्छा सही से चले जी हिफाजत से जाएं खैर खैरियत से जाएं खैर खैरियत से वापस आएं और फिर आके आप कबीर को दावत दें ठीक है
1: कल कबीर भाई से कल शाम को मेरे का गलती से आ गया था 4 बजे
0: गलती से नहीं आया
1: उसकी जगह मैं आ गया तो मैंने उसका कान खींच लिया था कल ही
0: खींच लिया था चलें ठीक है गुड जबरदस्त ये तो अच्छा हो गया आप जाएं हिफाजत से और फिर आके दावत शावत दीजिएगा उसको ठीक है
1: वो एक ही चीज में अभी पकड़ा गया मेरे से फालसे ढूंढ रहा फालसे मेरे पास है मेरा 20 एकड़ आगे फालसे का
0: बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा आप जा रहे हैं हमारे लिए बहुत दुआ कीजिएगा दुआ में याद रखिएगा ठीक है
1: दो हफ्ता रहेंगे वहाँ पर इंशाल्लाह

0: इंशाल्लाह दुआ जरूर करनी है, ठीक है, भूलिएगा नहीं।
1: ऊँट भी हमारे उधर पहुंच गए हैं जद्दा के नजदीक है, हमारा
0: फार्म है
1: ऊँटों का, जबरदस्त उधर ही जाते हैं गर्मी में,
0: जबरदस्त जबरदस्त, चलें आप जाइए
1: महीने में वापस,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इंशाल्लाह,
0: ठीक है,
1: सब टीम सलाम देना मेरे तरफ से,
0: मैं बिल्कुल सलाम दूंगी, बिल्कुल सलाम दूंगी, और अब हम पूरी टीम को याद रखिएगा दुआ में, बिल्कुल, और आप आएंगे वापस तो पूछेंगे भी, तो इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से जाएं, खैर खैरियत से आएं, ठीक है, ख्याल रखिएगा,
1: ओके, खुदा हाफिज़।
0: रही जी, तो हमारे साथ खालिद फ्रॉम शाहानिया थे, और इसके साथ देखते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी,
2: कन्हैया
0: कौन, सॉरी
2: अब आवाज से पहचान जाएंगे, मैं दो चार दिन दूर था थोड़ा गाड़ी का।
0: रईस भाई है, कैसे हैं रईस भाई?
2: जी, असल में मैं गाड़ी के पासिंग में था, तो जिस दिन रास्ते में था तो एक दो दिन कॉल लगाया मैं कि बता दूं कि मैं थोड़ा एक दो चार दिन नहीं रहूंगा, तो फिर आप लोगों ने शायद कॉल अटेंड नहीं किया, वो टाइम में थोड़ा सा दूसरे तरफ शायद ये था, तो हमारे नसीब नहीं था कि
0: ये पिछले हफ्ते की बात है जब कर रहे थे कॉल।
2: जी,
0: तो बस पिछले हफ्ते तो नाजी और मैं इतनी बातों में खुद मशगूल रहते थे कि नहीं मौका मिल रहा था।
2: बिल्कुल
0: जी। सही
2: गुड,
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताए।
2: हमारे तरफ से बस आज अभी मैंने गाड़ी समझ लो कि ये किया है, थोड़ा सा बातचीत।
0: हाँ हाँ, सही किया, सही किया, चले गुड। हाँ
2: जी,
0: तो आज का हमारा सवाल यह है रईस साहब कि आपने अपनी जिंदगी में कोई रिसेंटली कोई चेंज लेकर आए हैं, कोई तब्दीली आई है या लाना चाहते हैं?
2: इसमें इस मौजू पे बात करें तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, हर बंदे के अंदर हर दिन हर सुबह एक नया सीख मिलता है सामने वाले को, आजकल का जो हालात है तो आदमी के अंदर हर दिन बस अपनी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों के ऊपर आदमी अगर ये ख्याल करे कि हमने क्या खोया क्या पाया, हर दिन अपने उसका मुहासबा करे, खास कर जब शाम को अपने बिस्तर पे जाता है तो हमने कितनों का के साथ में मतलब एहसान किया, कितनों के साथ में हमसे कुछ मतलब ये हुई जाती हुई, ये सब पे भी मुहासबा करना चाहिए, और खास कर जो कहीं पे धोखे खाता है बंदा किसी के ऊपर, बहुत आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं हम, और फिर वो सामने वाला हमें मतलब ये कर जाता है, तो इसके ऊपर भी आदमी को अपना थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि मतलब हर चीज को हर एक के साथ में ना शेयर करके थोड़ा सा उसको क्लोजली रखें अपने अंदर, उसके बाद में जब कामयाब हो जाए तो फिर उस वक्त बताएं अपनी सारी कहानियां। ये सब खासकर मैंने इस चीज पे बहुत धोखा खाया कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट करके, और मैं बहुत धोखे खाया इस मामले में,
0: मतलब सारी कहानियां बता देते थे पहले ही और फिर वो होती नहीं है ना।
2: बिल्कुल, मैं जिसे मैं दिल का सच्चा हूँ, सामने वाला भी अगर उसने बेहतरीन अंदाज में बात किया तो फिर मैंने बोला यार चलो यार ये बंदा भी मतलब हमारे साथ नहीं, लेकिन वो थोड़ी दिन के बाद में फिर वो बहुत, और खास कर जो अपने जानने वालों में से बस अल्लाह खैर करे, हालांकि वो लोग मतलब कोई इतने मतलब मेरे ख्याल से वो खुश नहीं रहते हैं, वो लोगों को धोखा दे के। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि लोगों को जो धोखा देने वाला वो मुझसे नहीं है, लेकिन अब इसके ऊपर लोग कहाँ ख्याल करते हैं, तो ये चीजें हमें ख्याल करना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए कि कोई भी चीज करना रहे कामयाबी को पाने के बाद में फिर उसको मतलब बयान करो।
0: हाँ, बयान करो। और फिर दूसरा इसमें एक और बात भी है यहाँ पे कि हम लोग ये कह तो रहे होते हैं कि मतलब हम अपनी किसी को चीज बताते हैं तो कुछ हो जाते हैं, लेकिन मैंने ये देखी है बात कि बहुत सारी चीजें ना बताना जरूरी भी नहीं होती, मतलब समझे अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल की या कुछ आपके साथ अच्छा हुआ तो वो आपके लिए अच्छा हुआ, अगर वो आप उसमें से कुछ जैसे समझे आपकी इनकेस सैलरी बढ़ गई है, ठीक है, अब आप सोचते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया है तो मुझे
2: मतलब आपने उठाया बिल्कुल, तो मतलब सामने वाले के अगर हर बात को शेयर करें तो उसके अंदर हसद भी पैदा हो जाता है।
0: एग्जैक्टली यही बात मैं कहना चाह रही थी, तो हमें हर बात शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको अल्लाह ने कुछ ज्यादा दे दिया है ना तो अब आपको पता है, और ये जो चीज है आप चुपचाप मतलब वो कहते हैं ना, देखिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि सदका दो तो दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को पता ना चले, तो उसका रीजन यही है ना, तो हमें शेयर करना ही नहीं चाहिए।
2: जी बिल्कुल, हसद का मतलब जो जो प्यार अखलाक मोहब्बत से हमसे मिलता है वो फिर उसके अंदर तब्दीली आ जाती है, अगर हमारी कामयाबी को देख के,
0: और उसमें गलती कहीं हमारी भी होती है, उसकी नहीं होती, हमारी भी होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल, मैं 100% एग्री।

0: इस बात से कि हम अपना मतलब जज्बात में आके और बहुत से मतलब ये करके, जैसे कोई आदमी जज्बात में आके वादे कर जाता है और फिर उसको नहीं निभा पाता तो फिर उसे मतलब ये होता है, अफसोस होता है। फिर ऐसे ही है कि कोई भी चीज को, जज्बात को अपने अगर कंट्रोल करना हम सीखें, हम थोड़ा सा जज्बात में आके हर फैसला ना लिया करें, बड़े मतलब है उससे
1: म्याना रवि अख्तियार करें। और बिल्कुल तो अपने करीब के लोगों को कोई भी चीज़ है ना, तो वो आपस में खुद सेलिब्रेट करो, हर किसी को दूसरे को ना बताओ, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। ज्यादातर लोग ना मतलब वो अपनी महरूमियां देखने लगते हैं, बेसिकली होता ये है।
0: बिल्कुल मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ जो आप बात कह रही हैं।
1: जी जी जी जी,
0: मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ और मुझे आपके बातों पे 100% इत्तेफाक है कि ऐसा होता है। बिल्कुल सच है ये बात, क्योंकि मैंने खुद ऐसा इन बातों से मतलब कई बार मैंने, लेकिन बस थोड़ी देर के बाद बंदा आता है,
1: हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो आप अपनी जिंदगी में रईस भाई तब्दीली ये लेकर आना चाहते हैं कि आप अपनी बातों को कम से कम लोगों से शेयर करें, है ना?
0: जी जी,
1: सही हो गया, सही हो गया।
0: तो मैं तकरीबन मेरे जिंदगी में बहुत, क्योंकि मैंने इसमें धोखे भी बहुत खाए, मैं बहुत धोखे खाए, वो बयान नहीं कर सकते, वो बड़ी लंबी वो सब है और अच्छा भी नहीं है। सामने वाला अगर रहेगा अकलमंद तो इशारे से समझ जाएगा कि कोई भी बात हो, चाहे अपनी पर्सनली हो या कोई मतलब अपने कोई तकलीफ भी पहुंची है, तो अपनी तकलीफ को भी हर एक शेयर नहीं करना
1: चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
0: हमें हमारे हमारे उसको कमजोरी को समझ के फिर हमारा मजाक, फिर फायदा क्या होता है, हमारी हमारे हम ही नुकसान उठाते हैं।
1: एग्जैक्टली सही कह रहे हैं,
0: कमजोरी को भी नहीं शेयर करना चाहिए। बस मैं ये इसी बात पे मतलब मैं इकट्ठा करूंगा।
1: चले भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने जो ना शेयर किया, और वाकई मतलब शेयर कम से कम करना चाहिए, मैं आपको ही बोलूंगी, आदत बनाने की कोशिश करें, ठीक है? चलिए, ख्याल रखिएगा रईस भाई अपना, बहुत बहुत थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। रई जी, और हमारे एक दो लोगों का आया मैसेज कि उन्होंने गाना सुनना है, तो अभी तक हमने कोई गाना नहीं चलाया, तो हम पहला चला देते हैं। परदेसी परदेसी एक भाई सुनना चाहते हैं, दूसरे छैया छैया सुनना चाहते हैं, तो पहले मैं कोशिश करती हूँ परदेसी वाला चला दूँ, क्योंकि छैया वालों ने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है, तो हम पहले ये चलाते हैं, फिर उसके बाद अगले ब्रेक में वाला चलाएंगे। अरे ये गाना तो बिल्कुल ही गलत चल गया, ये वाला गाना नहीं चलाना था हमें, मैंने परदेसी परदेसी लिखा, मुझे लगा कि वही वाला चल गया होगा। चलिए खैर, फिर तो बन गया है सिलसिला कुछ यूं कि इस वक्त नसीब उनका है जिन्होंने छैया छैया की रिक्वेस्ट की है, ये तो उम्मीद है कि वही वाला होगा। परदेसी परदेसी में लगाती हूँ थोड़ी देर के बाद।

हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर

डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए. हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है. फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर सवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है. आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें. तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से दे.

90 right, welcome back. Good morning to all of you. आप सुन रहे हैं summer morning with RJ Mavish Khan और आ जाते हैं अब एक अच्छी सी good news की तरफ. अब कतर के लिए बहुत ही जबरदस्त खबर है, खासतौर पर कतर के students के लिए जो कि humanities और literacy track में पढ़ने वाले हैं, कि यहाँ पर एक बड़ी ही जबरदस्त खुशखबरी good news सामने आ गई है. Ministry of Education and Higher Education के academic bridge program के साथ मिलकर एक नई जो है इनिशिएटिव लॉन्च की गई है जो कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक फ्यूचर को मजीद रोशन बना सकती है. इनिशिएटिव के तहत अब हाई स्कूल के लिटरेसी और ह्यूमैनिटीज ट्रैक के ग्रेजुएट्स भी मेडिसिन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और दूसरे जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है उसमें एडमिशन हासिल कर सकेंगे. और इसके लिए स्टूडेंट्स को एकेडमिक ब्रिज प्रोग्राम का स्टैम्प पाथवे कंप्लीट करना होगा और एडमिशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी. अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि एकेडमिक ब्रिज प्रोग्राम स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर स्किल्स, एकेडमिक इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो यूनिवर्सिटी लेवल की जो साइंस स्टडीज़ हैं उसके लिए तैयार हो सकें. और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर हारिब मोहम्मद अली जावरी ने कहा है कि ये इनिशिएटिव स्टूडेंट्स के लिए नए एकेडमिक दरवाजे खोलने की तरफ एक स्ट्रैटेजिक कदम है और कतर के नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के विजन को सपोर्ट करता है. और एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी ध्यान से सुन लें सारे के सारे स्टूडेंट्स, कि उनको मिनिमम 70% मार्क्स के साथ हाई स्कूल कंप्लीट करना होगा, आइल्स या इक्विवेलेंट इंग्लिश क्वालिफिकेशन में कम अज़ कम 4.5 स्कोर हासिल करना होगा और इंग्लिश और मैथमेटिक्स प्लेसमेंट टेस्ट पास करने होंगे. और यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये कदम उन स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जो पहले ह्यूमैनिटीज ट्रैक की वजह से साइंस करियर से बिल्कुल मतलब जो ख्वाब है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे. होता क्या है कि अगर आपके टेंथ में जो परसेंटेज है वो 70 तक भी आती है ना, इवन मतलब कुछ स्कूल्स में 80 इवन 85 तक भी आती है, तो आपको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं दिया जा रहा होता, क्योंकि कुछ मतलब वो होता है ना कि उन्होंने बनाए हुए होते हैं कि 30 सीट्स इसके लिए, 30 सीट्स उसके लिए, तो वो सीट साइंस की सबसे ज़्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव होती हैं और यहाँ पे आपको एडमिशन मतलब सीट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ज़्यादातर स्कूल्स में, क्योंकि उन्होंने मखसूस रखी होती है, लिमिटेड ऑप्शन होते हैं वहाँ पर. तो फिर वहाँ से ये होता है कि अब स्टूडेंट बाद में मेहनत भी कर रहा है, बेचारा चाहता भी है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा होता था कि अब वो साइंस में नहीं जा सकता. लेकिन अगर आप अपने आप को प्रूव करते हैं, परसेंटेज को आप अपनी मेंटेन रखते हैं, 70 से कम अज़ कम अबव हो आपकी परसेंटेज, इसके साथ ही आप दीगर चीज़ों में अपने आप को बेहतर करते हो और आपको लगता है कि आपको साइंस लेनी चाहिए या मतलब आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आपको जहन बदल गया है, 2-3 साल बहुत होते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये वाला जो कदम है ये बहुत ही बड़ी बात है भाई. मैंने और जगहों पर नहीं देखी है कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जाए, ये अपॉर्चुनिटी फराहम की जाए कि आप अभी आर्ट्स पढ़ रहे थे, कॉमर्स पढ़ रहे थे और उसके बाद फिर आप जो है ना आप आ सकते हैं साइंस स्ट्रीम की तरफ. तो बहुत ही कमाल इनिशिएटिव है और स्टूडेंट्स को बहुत मतलब मैं इस पर कहूँगी कि आप ज़रा ज़्यादा मेहनत करें. अगर कोई बात नहीं, पिछली दफ़ा मार्क्स कम आए थे, नहीं मिल सका था साइंस, तो अभी ज़्यादा मेहनत करके हो सकता है इंशाल्लाह ताला आप अपने और अपने वालदेन के ख्वाब पूरे कर सकें. तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें. ज़िंदगी का जो मैदान है यहाँ पर आपको भागना भी होता है और अपने आप को मतलब दूसरों के साथ जो है ना थोड़ा सा इस तरह से एक रखना होता है भाई, मतलब ये ज़िंदगी है, क्या किया जा सकता है. मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन ना पालो, लेकिन ये कि अपने आप को

0: बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो और जो भी चीज़ अगर कुछ चाहते हो अचीव करना तो ज़िंदगी में आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर। खैर जी आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि किसका है मेरे पास है भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और ये कहते हैं कौन, ये कहते हैं हमें हिशाम। हिशाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, क्या हाल चाल हैं। और इसके साथ ही जी एक और मैसेज है और ये है क्रिस्टल डॉल का। अच्छा और ये कहते हैं कि द चेंज आई हैव ब्राउड इन माई सेल्फ इज़ हाउ आई ट्रीट माई सेल्फ। बिफोर माई नेचर वॉज टू बी एक्सट्रीमली काइंड टू एवरी वन एंड पीपल took advantage of it. I couldn't say no to any request because I feared hurting someone. Now I have learned to speak up. I was always confident and bold, but now I choose myself first. I guide people on my terms, not theirs. Great. And the change I want to bring is learning to love myself the way I love others. And I have been so busy being kind to the world that I forgot to be kind to myself. So I want to rest without guilt, say yes to things that heal me and protect my peace the way I protect everyone else. Very nice bhai. Crystal Doll, aapka asli naam kya hai? Ye to nahi hoga na, asli wala naam bataye. Aur iske saath hi thi confirm kar dein, kya confirm kar dun, ek song request. Acha confirm kar dein. ओके ओके, इन्होंने कंफर्म कर दिया, लॉक कर दिया इन्होंने गाना कि मैं चला दूंगा। अच्छा ठीक है, वही वाला है ना जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, और अयाज बलोच कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अयाज बलोच। हनाया मलाला नहीं, हनाया और मलाल को स्कूल ड्रॉप कर दिया है। मलाल, हनाया मलाल, मलाल मलाल तो वो वाला होता है ना जो गिल्ट होता है आपको, यही नाम है कुछ और है। और बच्चों को ड्रॉप कर रहा हूँ स्कूल और वाइफ भी आपका प्रोग्राम सुन रही है आज। ओए होए, ताज नाम है उनका, ग्रेट। तो ताज अस्सलाम वालेकुम आपको। और अब तो बहुत देर हो गई इस मैसेज को, पता नहीं सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन ये कि बलोची सॉन्ग की रिक्वेस्ट किया अयाज बलोच, चल जाएगा थोड़ी देर में आपका गाना भी हम चलाते हैं। और साथ ही अस्सलाम वालेकुम का मैसेज है मेरे पास और ये किसका है, ये है जी मोहम्मद मुशीर आलम। मुशीर आलम वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से। चलिए जी, तो ये हमारे पास कुछ मैसेजेस थे, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे। और अगर आप चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना तो उसके लिए नंबर है 6662107। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी कॉल का, जल्दी से कॉल कर दीजिए वरना फिर मैं सॉन्ग ब्रेक की तरफ जाऊँगी। आ गई आ गई कॉल, आ गई। चलिए जी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम है या अंशु है, दोनों में से कोई एक है क्योंकि आप दोनों स्लो स्लो बोलते हैं थोड़ा।
1: अच्छा।
0: कौन है अब तो बता दें, दोनों में से कौन है? दो ऑप्शन दे दिए।
1: ऑप्शन
0: बी। जी अरे भाई बोल भी दो। चलो नाम नहीं बताएं, आप नहीं बताएं नाम, ये बताएं भाई जिंदगी में कौन सा चेंज लेकर आना चाहते हैं। हाँ कोई चेंज है जो लाना चाहते हैं या ला चुके हैं?
1: जिंदगी में तो चेंज आप बदलना चाहे तो दूसरे बिगाड़ देते हैं।
0: क्या कर देते हैं?
1: कितना भी तब्दीली लेके आए,
0: हाँ हाँ,
1: कोई ना कोई ऐसे रुकावट पैदा हो जाता है कि आपको वही रुकना पड़ता है।
0: रुकना पड़ता है? अच्छा मतलब चेंज नहीं हो पाता। हाय हाय, अच्छा ये वाला सीन है, ठीक है। तो चेंज नहीं ला पा रहे यानी आप, आपका हम ये चल रहा है राइट? हाय हाय, अच्छा। और बताएं और भाई क्या कहेंगे
1: जी?
0: और क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? और अच्छा अच्छा यही था बस। चलें बहुत बहुत शुक्रिया भाई, नाम भी नहीं बताया आपने अपना इतनी देर से। अच्छा नसीम भाई हैं। हाँ सही सही, चलें जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपकी कॉल करने का, थैंक्स अ लॉट। और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। वो कब आ रही हैं, अखरोट वाली कह रहे हैं ना आप, है ना ऐसी कुछ है ना? हाँ अखरोट कहाँ से आ गया, ये अखरोट की तो बात ही नहीं हुई। अखरोट ज्यादा खाती हैं नाजिया? अच्छा ये आपको कैसे पता चला? ये आपको पता कैसे चला कि नाजिया अखरोट ज्यादा खाती हैं?
1: दिमाग खाना।

0: 是ओ ओके सही है सही है, गुड, जबरदस्त। वैसे पता है लिटरली मतलब नाजिया वाकई अखरोट बहुत खाती है ये बात सही है, मतलब वॉलनट वो वाला दिमाग नहीं, लेकिन नाजिया का मैंने देखा है उसके पास मतलब जो हमेशा जो है ना ये नट्स वगैरह होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा वॉलनट ही होता है जो कि वो दूसरों को भी ऑफर कर रही होती है। तो ये आपकी बात सही निकली, मैं समझी शायद उन्होंने बोला था ऑन ईयर ये। चलिए जी, थैंक यू थैंक यू नसीम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। राइट, तो जी अखरोट ज़्यादा खाती हैं, अखरोट इसलिए खाती हैं उनके सरवर भाई का दिमाग नहीं खा रही, लेकिन वो वाकई अखरोट बहुत खाती हैं और शायद यही उनके तेज़ दिमाग की जो है ना वजह भी है। अच्छा जी, एक कॉल और ले लेते हैं फिर मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, क्योंकि कॉल आ रही है अभी तो मैं ले लेती हूँ। भाई क्यों नहीं रिसीव, क्यों नहीं हो रही है, अब हो गई जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी क्या हाल चाल है आपके?
1: जावेद बाजवा
0: जी। जी जी, जावेद बाजवा जी कैसे हैं? ठीक ठाक है, मैं पहचान गई थी।
1: अच्छा, बड़ी मेहरबानी। और अपने ये सब खैरियत से?
0: जी जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी सुबह का आगाज हुआ आज?
1: सुबह का आगाज माशाल्लाह एज यूजुअल, नो चेंज इन, सेम, हर चीज सेम।
0: सेम सेम
1: माशाल्लाह,
0: गुड, जबरदस्त माशाल्लाह।
1: कॉफी और मतलब फ्रेश, नमाज, चाय, ऑफिस,
0: आपको वहीं पे मिल रहा है ना, और वो भी बुफे मिल रहा है आपको माशाल्लाह।
1: लंच में भी, लंच में भी है,
0: क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला भाई, बहुत आला। अच्छा मुझे याद पड़ता है, एक दिन मैं कबीर का कुछ इस तरह से सुन रही थी और उसके शो में आके लोगों ने अपने जो ना वो बताए थे बुफे, ब्रेकफास्ट, लंच, और वो कह रहा था भाई आप लोग कहाँ जॉब करते हो हमें भी बता दो। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी सुन के मेरा ख्याल है आप भी थे शायद उसमें, आपने भी कॉल किया था।
1: बेसिकली सबसे ज्यादा जो तंग कबीर भाई को मैंने किया है, मुझसे वो बड़े तंग थे।
0: अच्छा
1: उससे वो बहुत तंग के, यार आपके जो बूफे हैं ना जावेद भाई, आप जो बूफे कर रहे हैं।
0: सुना था शाम के वक्त में सुना था, इवनिंग शो जबरदस्त, ग्रेट। तो ये अच्छी चीज है, मुझे उससे याद आ गया आपने जब बूफे कहा ना, तो मैंने कहा ये कबीर मतलब बहुत वो हो रहा था कि भाई बता दो कहाँ जॉब करते हो हमें भी बता दो
1: ये नहीं बता सकता ना बाकी।
0: नहीं मुझे याद है आपने उस वक्त भी यही बात बोली थी, मैंने सुनी थी, मैं एंजॉय कर रही थी। अच्छा जी, तो अच्छा फिर ये बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी में, वैसे तो माशाल्लाह से आपकी रूटीन सेम है, लेकिन फिर भी ये होता है कि हम सबको एक ना चीज़ होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को बाय द टाइम कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ पॉजिटिव लेकर आएँ। तो कोई ऐसी अभी रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रही है कि मुझे ये चेंज करना चाहिए अपने अंदर, या लेकर आ गए ऑलरेडी?
1: मैं वैसे देखिए दो चीजें हैं जिंदगी में, एक है आदत और एक है फितरत। अगर आप आदत को फितरत को देखिए, दोनों में फर्क है। आदत वो है जो अपनाई जाती हैं या छोड़ी जा सकती हैं। फितरत वो है, फितरत इंसानी जो इंसान लेके पैदा होता है, वो सारी जिंदगी कांट भी चेंज, नेचर कांट भी चेंज।
0: हाँ ये तो है, ये है।
1: और जिंदगी के कई तजर्बात ऐसे हैं कि वो जिंदगी को ही चेंज कर देते हैं। मतलब ये एक लाइन के अंदर आप देखिए मैंने क्या कहा कि जिंदगी को ही चेंज कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं।
1: तो उसमें एक भाई ने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी, मतलब आप अपनी बात को शेयर ना किया, क्योंकि मतलब जॉब तो मेरी एक है लेकिन एक मैं आर्टिस्ट भी हूँ। वो तो उस हिसाब से जो जितने तजर्बात मैंने मोस्टली यानी 95% वो बड़े वर्स्ट तजर्बात मिलते हैं इंसान को, जहाँ से इंसान अच्छी उम्मीदों को जोड़ता है, उम्मीदों को लेता है कि यहाँ से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, वहां से इसको डंग मारा जाता है।
0: ऐसा है।
1: और रिसेंटली मतलब मेरा बहुत रिसेंटली ये मतलब आप कह सकते हैं कि 2-2.5 महीने के अंदर कुछ चेंज मैंने ये किया कि वो एक तो हम अपना अच्छा देने की कोशिश, हम अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करते हैं अपना अच्छा दे दूसरे को। जब हम अच्छा देने की कोशिश करते हैं तो दूसरा हमें शायद एक तो वो यूज करने की कोशिश करता है, फिर वो समझता है कि ये मेरी मलकियत भी है, प्रॉपर्टी है मेरी, मेरे मुताबिक इसको चलना भी चाहिए और ये मेरा ताबे भी है। और 3 साल मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ भी जुड़ के रहा जिनके ये लफ्ज थे कि जावेद भाई हम आपके साथ हैं, कदम ब कदम आपके साथ हैं, लेकिन जो हालात और वाकियात हुए आप यकीन करें कि किसी ने मतलब हार्डली एक दफा फोन किया है कि यार सब ठीक ठाक हो, बिल्कुल। और ये मेरे लिए एक मतलब शॉकिंग न्यूज थी कि यार आप जिनको रोज पूछते हैं उनके पास इतना वक्त भी नहीं।

0: देखे वो आपको पूछ सके जिस दौर से आप गुजर रहे हैं।
1: ऐसा है
0: उसके ऊपर इंसान, हाँ उसके ऊपर आके फिर इंसान कहता है कि नहीं यार मुझे यहाँ पर थोड़ा रिजर्व रहना चाहिए, थोड़ा बीच में गैप रखना चाहिए, बल्कि पीछे हो जाना चाहिए क्योंकि आपने एक रियलिटी का फेस देखा है।
1: तो
0: इस हिसाब से जिंदगी फिर मैंने कहा ना जिंदगी चेंज हो जाती है।
1: ऐसा है मतलब जहां से एक तो हम ना हमारे साथ होता क्या है जावेद साहब कि हम हमेशा धोखा वहीं से खाते हैं जहां से हम हल्की सी भी एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं और हमें लग रहा होता है कि यहाँ तो ये तो हमारा मतलब केयर करेगा, ये तो हमारे साथ है ही, लेकिन वक्त पे फिर हमें पता चलता है कि नहीं है वो साथ। अच्छा यहाँ ना मुझे एक चीज़ समझ में आई है थोड़ी बहुत, वो ये कि ये भी ना एक हो सकता है कि बाज़ औक़ात उस बंदे की भी शायद इतनी गलती ना हो, लेकिन अल्लाह ताला हमें कुछ लोगों को वो चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात के ऊपर डिपेंड करें, किसी के ऊपर करें ही ना, तो फिर अल्लाह ताला उस मौके पे अवेलेबल नहीं रखता किसी को अपने अलावा।
0: बिल्कुल सही फर्क नहीं, बिल्कुल बजा फरमाया आपने,
1: है ना। तो ये
0: लेकिन हर बंदे को पता है, हर इंसान को पता है कि मेरी जिंदगी का तर्ज क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या अच्छाई कर रहा हूँ, क्या। हर इंसान को इतनी अकल शोर, इतना अवेयरनेस भी है उसको।
1: फैक्ट है।
0: तो बाकी ये एक और चीज ये कि अगर मतलब जो भी आप काम, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप काम, ये भी मैंने सीखा है कि जब आप किसी काम को ठान लेते हैं करने के लिए, जब तक वो काम सर अंजाम ना हो जाए और लोग और जमाना आपको खुद पुकारे, खुद कहे कि आपने ये काम किया है, मत बताइए किसी को।
1: हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये मैंने भी सीखा है। ये पहले मुझे लगता था कुछ थोड़ा सा अजीब है, मतलब क्या है आपको करना चाहिए, लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आई है कि वाकई मतलब जैसे कहते हैं ना बद नजर वो होती है और चीजों में रुकावटें आती हैं, ये हमें समझना चाहिए। नहीं शेयर करें, कभी भी किसी से कुछ शेयर ना करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि नजर एक मोहब्बत की भी है, नजर एक बद नजर भी है।
1: हाँ, और इवन अपनी भी है, अपनी भी नजर है। हम किसी चीज को अगर बहुत से खुद से सोचने लगते हैं तो वो चीज भी हमारी कहीं ना थोड़ा सा, क्यों, क्या होता है, क्या है जो मुझे लगता है कि शायद हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर कहीं भरोसा करने लगते हैं या हमें उस चीज के ऊपर भरोसा करने लगते हैं कि ये चीज हो जाएगी, तो वहां पे भी रुकावट आती है। इसलिए किसी भी चीज को ओवर थिंक नहीं करना चाहिए आपको।
0: ऐसे बिल्कुल, ओवर थिंकिंग करने के बाद इंसान खाली ये नहीं मतलब कि वो परेशान होता है, बल्कि वो डिप्रेशन में होता है सोचों के अंदर। तो जो होना है वो तो होके रहता है, लेकिन ये है कि हमेशा सोच अच्छी रखनी चाहिए। और इसके साथ एक और बात कहूंगा कि अभी कभी मेरा फोन देर सवेर जरा हो जाती है, कोशिश मेरी रहती है, तो इसके लिए एडवांस में मैं माजरा चाहता हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत ही अच्छी बेहतरीन कॉल होती है और इंतजार भी मैं करती हूँ कि आपकी कॉल आए, तो जब भी मौका मिला करें इजीली आप ज़रूर कॉल किया करें। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कभी गाड़ी चला रहा है बंदा, कभी कोई और मसरूफियत है, तो डेफिनेटली पहले अपनी सेफ्टी को आप ख्याल रखें, उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर कॉल करें।
0: बहुत शुक्रिया भाई।
1: थैंक यू। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर थे और इसी के साथ हम मूव करते हैं, दो लोगों की फरमाइशें इस दफा में पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए आप ये ट्रैक्स और सुनते रहें FM 107 धुल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग और हमारे साथ कॉलर आ गए हैं, तो चलें पहले उनकी तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ अपडेट्स वगैरह होंगी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह.
0: जी, क्या हाल चाल है भाई?
1: बढ़िया बढ़िया बहन, बढ़िया. कैसे हो आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. क्या चल रहा है, क्या हो रहा है?
1: बस कुछ नहीं मैम, अब गाड़ी में बैठे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं.
0: इंतजार कर रहे
1: हैं, एफएम सुन रहे, बस चल रही है.
0: चल रही है, चल रही है. गुड है, जबरदस्त है. तो भाई, कोई चेंज लाना चाहते हैं लाइफ में या फिर ले आ चुके हैं?
1: चेंज में लेके आ चुका हूँ, बहुत सारी चेंज
0: है. क्या क्या है वो?
1: जैसे कि रहन सहन.
0: रहन सहन, ओके.
1: रहन सहन के मुताबिक जैसे, मतलब पहले जैसा मैं रहता था, अभी वैसा नहीं रहता हूँ.
0: अभी वैसे नहीं रहते हैं, अब कैसे रहते?
1: बिल्कुल चेंज, अभी बिल्कुल चेंज हो गया. मतलब अभी जैसे के, कैसे बताऊं आपको मैं? पहले एकदम मैं फंकी फंकी बॉय के साथ था. मतलब फंकी बॉय, यू नो फंकी बॉय.
0: ओके, अब सोबर सोबर हो गए. सोबर सोबर.
1: पहले मतलब एकदम फंकी बॉय, एकदम कैप वैप, कान में बाली, हाथ में वॉच, ब्रेसलेट, गले में चैन.
0: यू यू हनी सिंह, राइट?
1: यू यू हनी सिंह. फुल टपोरी, हम लोग की लैंग्वेज है उसको बोलते हैं फुल टपोरी लैंग्वेज.
0: राइट.
1: फिर बाद में मैं इधर आया कतर में, तो देखो रहने का एक मतलब एक शहूर आया. शहूर मतलब,
0: हाँ हाँ, शहूर बोलते
1: वो आया. मैं फिर मैं उसके उस तरीके से जीने लगा. फिर अब मुझे वो चेंजेस किया, उसके बाद में फिर मैंने बहुत सारी और भी चेंजेस किया अपनी लाइफ में. मैंने कम बोलना, ज्यादा मुलाकात नहीं करना किसी से, अपने दिल के राज किसी को ना बताना. सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने ये सीखा. और उसके बाद जो मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी ना, जो मतलब दिल की राज किसी को नहीं बताना, कुछ ऐसी चीजें जो अपनी किसी को शेयर ना करना, वो बहुत मेरे को फायदेमंद हुई.
0: ओए होए, सही है सही है, गुड है.
1: नहीं तो पहले क्या होता था ना मैम, मैं मतलब मेरा दिल ऐसा है ना, मतलब मेरे घर वाले बोलते कि इसका दिल ना बहुत अंदर से कमजोर है. यानी कुछ भी चीज होती ना, ये अचानक से मतलब कुछ भी चीज अगर इसको सामने से बवाल कर देता था. मतलब ऐसा हुआ मम्मी, ऐसा हुआ पापा, ऐसा हुआ दोस्त को बता दिया, कभी किसी को बता दिया, तो वो लोग बाद में ना क्या है, प्रेशर करते होते इसके ऊपर.

0: सही
1: सही
0: जाके मैं वो चीज में चेंजेस किया हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को।
1: जबरदस्त, ग्रेट भाई, मतलब ये तो बड़ी आज आपने सीरियस सीरियस बातें कर दी।
0: सीरियस बातें नहीं, आपने वो टॉपिक निकाले ना बेन, तो कभी आप जो टॉपिक निकालते हो ना कसम से ऐसा लगता है कि कोई अपना ही है, लगता है इस रेडियो सीजन पे कोई अपना ही है भाई, बंदा ही चल रहा है, सही अच्छा है।
1: चले बहुत शुक्रिया,
0: तुम भी निकलवाते हो, दिल की बात तुम भी निकलवाते हो, बाकी बहुत से लोग है जो निकाल देते हैं, बहुत से लोग है नहीं निकालते, आधी आधी झूठ बोलते आधी सच बोलते।
1: कोशिश में पूरी करती होगी, दिल की निकल ही जाए। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, अच्छी बात है ना, मतलब सब लोगों का दिल हल्का हो जाता है।
0: दिल हल्का हो जाता है कुछ कुछ लोग को, मतलब मेरे मेरे थॉट से मैं ऐसा सोचता हुआ कि मतलब भाई दिल हल्का हो रहा है, कोने में बैठ के रो रहा है, आज तो मैं भी जी ने क्या पूछ लिया।
1: ये बोलना नहीं था, बोलिया। बिल्कुल ऐसे
0: मैं आज तक जो आज तक बोले मैं छुपाते आया दुनिया से, मैं भी जिना जो मेरे से निकलवा दिया।
1: हाँ ये होता है, होता है। अच्छा पता है मेरे अपने साथ भी हो जाता है ये कि जब कंबाइन शो कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी आप ना पता नहीं किसी उसमें निकल जाते हो, किसी मतलब लय के साथ बह जाते हो, तो मेरे साथ भी होता है, मैं कहती हूँ ये तो नहीं बोलना था, ये क्यों बोल दिया।
0: ये क्यों बोल दिया। और ये बोलने के बाद ना मतलब बंदा सोचता है चल भाई मैंने आज से बोल दिया, और सडनली ऐसा होता है ना भाई, मतलब कोई अगर जो चीज तुमको मतलब दिल की बात बोल दिया, और सडनली मतलब FM पे तो ऑल ऑफ मतलब रहते ये दोस्त रहते हैं, कोई कोई रहता है, तो कभी ऐसा मतलब कोई दोस्त से सुन लिया, हाँ भाई ये बात तो तुमने हमको बताया ही नहीं था कभी दिल की बात। मैं भी जी को बता दिया, बोलता है यार ये बवाल हो गया। बोले
1: और अब लोग बोलेंगे बहुत सोबर हो गए हो भाई, कब हुए।
0: मेरे साथ में ऐसा हुआ, मतलब मैं पहले मतलब आपके शो पे मतलब इवनिंग शो पे ऐसी कुछ भी बात करता था ना, तो मेरे दोस्त वहाँ से रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजते थे, बोलते भाई क्या बात है, क्या बात है, दिल की बातें बता रहा है। अरे मैं मेरा दिल की बातें नहीं बता रहा, आधी सच आधी झूठ बता रहा।
1: अल्लाह, मतलब ये चल रहा है जिंदगी में। चलो भाई
0: चल मैं आज की स्टोरी लगाया, मैं आज की स्टोरी लगाया मेरे इंस्टाग्राम पे, मतलब सबको मतलब एक ये जो स्टोरी लगाते ना हम, ये भी अपनी मतलब कुछ शेयर करते हैं हम दुनिया के लोगों से, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि लोग सोचते कि क्यों लगाया इसने, वो हम अपना शेयर कर रहे हैं। तो मैंने आज लगाया ड्यूटी पे, ड्यूटी से होम से ड्यूटी, यही चल रही है अपनी जिंदगी, तो इसने मतलब बहुत से लोग देख के बोले हम तो सोच रहे थे कि तुम तो भाई मौज काट रहे हो उधर।
1: ये कौन से काम शुरू हो गए।
0: मैं बोला अभी लगता हटाना पड़ेगा इसको।
1: सही है, सही है, गुड गुड आसिफ। चलिए रही आसिफ, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, और अपनी जिंदगी में अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते रहे, लेकिन अपने आप को बदलेगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है,
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू आसिफ।
0: आपको सुनने के बाद ना मेरे को एक मूवी याद आती है।
1: कौन सी?
0: तड़का।
1: हाँ कौन सी, सॉरी,
0: तड़का तड़का
1: तड़का तड़का, ये कौन सी मूवी?
0: आरजे मधुरा, उसके ऊपर मूवी है, गोवा की आरजे मधुरा रहती है।
1: अच्छा,
0: एक बहुत अच्छी मूवी, आप उसको देखेगा?
1: देखूंगी देखूंगी, चले मैं देखूंगी, जरूर देखूंगी।
0: नाना पाटेकर है, और उसके अंदर दो हीरोइन है। अच्छा, और दो हीरो है।
1: अच्छा,
0: मगर वो सीन बहुत, मूवी बहुत प्यारी है, मतलब आप
1: मैं जरूर पक्का देखूंगी इस वीकेंड पे। सही है, अच्छा क्या बोल दिया, तड़का। हाँ तड़का, ठीक है, याद रखूंगी।
0: वो देखता तो मेरे को आपकी याद आती है, उसमें भी वही ऐसी रहती है, उसमें एक चीज आपको बताता हूँ, छोटा नॉर्मल से बता देता हूँ, कि मतलब वो कोई एक आदमी फोन करता है अपनी दिल की बात बताने के लिए उसको, वो पूछती है क्या बात है, क्या हालचाल है, तो बोलती है ठीक है मैंने आज एक गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया, ऐसा वैसा ही है। आज मटूरा उसके ऊपर रेस हो जाती है, बोलती है तुम्हारा प्यार है तो तुम अपने प्यार को दुनिया को क्यों बता रहे हो।
1: अच्छा सही है, चले मैं देखूंगी, अब सस्पेंस रखने दे, हो सकता है बहुत सारे लोग देखें। ठीक है, चले आसिफ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू जी। राइट, और हमारे साथ एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, रेडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज जल्दी से। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल चाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे?
1: बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप बताएं, आज का अच्छा सा आगाज हो गया आपका।
2: मुझे लगता है कि कभी जब आपको बहुत ज्यादा आप खुश रहते हैं, बहुत ही ज्यादा हसास महसास होते हैं, तो इसी तरह का टॉपिक का इंतखाब करके आते
1: नहीं, मतलब ये ना लोग ये लेते हैं कि आज की बात है, नहीं आज की बात नहीं, पिछले हफ्ते की।

0: बात है, पिछले हफ्ते दिए थे सारे टॉपिक.
1: हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर शायर है महशर आफरीदी.
0: अच्छा,
1: आपने कहीं सुना हो तो?
0: नहीं मैंने नहीं सुना.
1: एक शेर याद आता है महशर आफरीदी का, कि मैं जो अपनी जवानी के सुना दूं किससे, मैं जो अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौटे हैं मेरा पांव दबाने लग गया.
0: अच्छा, ये आफरीदी कहाँ के शायर हैं? ये पाकिस्तान के ही होंगे है ना?
1: नहीं, महशर आफरीदी है इंडिया बिहार से ताल्लुक
0: है. ओके राइट, क्योंकि आफरीदी जो है ना वो ज्यादातर पाकिस्तान में ही है.
1: हाँ नहीं, वो भी मतलब क्या कहते हैं, उनका तर्ज जिंदगी जो जीने का है या जो लब लहजा है वो आपके पाकिस्तान के पिशावर वगैरह के इलाके से मिलता है
0: ना. हाँ, वो क्योंकि आफरीदी सारे या तो अफगानिस्तान के होंगे, वहाँ पे आके बस गए होंगे, क्योंकि मोस्टली आपको आफरीदी हमारे मिलेंगे. हाँ अच्छा अच्छा, मैं सुनूंगी देखूंगी. महशर आफरीदी
1: एक बार कभी सुनिएगा, शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी मियारी शायरी होती है उनकी.
0: अच्छा अच्छा, मैं जरूर सुनूंगी.
1: क्या कहते हैं, बड़ा मोटिवेट करते हैं नौजवानों को भी, और घरेलू शायरी भी बड़ी अच्छी होती है.
0: क्या बात है,
1: वो शेर याद आया मुझे. अच्छा एक चीज मैं आपके मतलब आज के मौजू के ताल्लुक से बात कहूंगा कि आप देखें, जैसे अभी ये भाई ने ना जो चीज मैं सोच रहा था या जो मौजू सुनते ही जो एक बार जहन में जो चीज आई उसका मुकम्मल खुलासा वो भाई करके चले गए कि एकदम बिल्कुल छावागिरी वाली जिंदगी थी और लबो लहजे से एक अजीब मतलब भाईगिरी वाला लहजा था. लेकिन वक्त और हालात धीरे धीरे ऐसे कुछ तब्दील हुए या कुछ इस तरह का सोहबत मिला या जहाँ पर आए वहाँ के आसपास के माहौल ने मुझे क्या कहते हैं शरीफ बना दिया या शराफत खुद बखुद धीरे धीरे आ गई.
0: होता है,
1: तो मुझे लगता है कि ये जो मतलब तब्दीली जो है, बदलाव जो है, वो कहीं ना कहीं जिंदगी के मियार में शामिल है. क्योंकि देखिए, एक वक्त पर एक बाप अपने बेटे से ये कह रहा होता है कि बेटा शाम के वक्त आप 6 बजे के बाद या मगरिब के बाद मत निकला कीजिए, और तब उस बेटे को गुस्सा बड़ा लगता है, तिलमिला सा जाता है वो. और थोड़ा टीन एज में जब रहता है तो शायद वो कुछ अंदर ही अंदर ये भी कहता है कि लगता है अब्बू सटिया गए.
0: अच्छा जमाल, यहीं पे रुकना है ठीक है, मतलब यहाँ से हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: राइट, 8:02 क्योंकि 15 सेकंड के बाद हो जाएंगे दो ही बोलते हैं। जी जमाल भाई, तो अब्बा को कहते हैं सटी आ गए अब्बा उसके बाद क्या
3: एक बेटा है ना, एक बेटा आज ये कह रहा होता है कि लगता है अब्बा सटी आ गए हैं क्या, हर बात में डांटते रहते हैं।
2: हाँ,
3: सारी आजादियाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल,
2: इनको क्या पता आज के जमाने का।
3: चाहते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वही बाप बनकर अब

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देश।

राइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM समर मॉर्निंग विद आरजे महवेश खान, और आप सब लोगों को एक दफा फिर से गुड मॉर्निंग. और अब मेरा आपका साथ मतलब तकरीबन कुछ 40 मिनट का रह गया, इसमें काफी कुछ हमने करना है अभी कवर. तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ, और आपको बताती चलूँ. सबसे पहले कतर फुटबॉल के बारे में बात करते हैं. तो कतर की नेशनल फुटबॉल टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ है. टीम ट्रेनिंग कैंप्स और इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के जरिए अपनी प्रिपरेशन को फाइनल शेप दे रही है, और फैंस को उम्मीद है डेफिनेटली कि वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा कतर. इसके साथ ही क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से भी एक अहम अपडेट है कतर के हवाले से, और ये कि कतर ने एशियन गेम्स क्रिकेट क्वालिफिकेशन प्रोसेस से विड्रॉल का फैसला कर लिया है. और इस फैसले के बाद नेपाल, ओमान, मलेशिया के लिए और हांगकॉन्ग के लिए भी क्वालिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज हासिल हुई हैं. इंडिया से एक जो बड़ी खबर है वो आई है हॉकी से, और वो ये कि इंडिया अंडर 18 मेंस हॉकी टीम ने ट्रेडिशनल राइवल्स पाकिस्तान को एक थ्रिलिंग सेमीफाइनल में 5-3 से शिकस्त देकर एशिया कप फाइनल में जगह बना ली. मैच बहुत ही हाई इंटेंसिटी था, मतलब इंटेंसिटी आप कह सकते हैं इंटेंस था, और दोनों टीम्स ने शानदार हॉकी का मुजाहरा किया. इंडिया की कमबैक विक्ट्री को टूर्नामेंट की सबसे यादगार परफॉर्मेंसेस में शुमार किया गया है. और इसके साथ ही विमेंस फुटबॉल में भी इंडिया ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, वो ये कि इंडियन जो विमेंस टीम है उसने SAFF विमेंस चैम्पियनशिप जीत कर 7 साल का टाइटल जो है वो कर दिया है ख़त्म. और इस विक्ट्री के साथ साउथ एशिया में विमेंस फुटबॉल के लिए एक बहुत ही मेजर बूस्ट इसको समझा जा रहा है. इसके साथ पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो अपकमिंग इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए तैयारियां इसकी जारी हैं. नेशनल कैंप्स और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर फोकस किया जा रहा है ताकि फ्यूचर कॉम्पिटिशन के लिए स्ट्रॉन्ग स्क्वाड तैयार किया जा सके. और कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी ने भी हाल में खास अचीवमेंट हासिल की जब उन्होंने ODI मैच की पहली ही बॉल पर विकेट हासिल कर ली. पाकिस्तानी कैप्टन्स के ग्रुप में ये अपनी जगह बना ली है, जो इलीट कैप्टन्स हैं उनके ग्रुप में अपनी जगह बना ली है. तो ये कुछ खबरें थीं, और इसके साथ ही अभी हॉकी में पाकिस्तान अंडर 18 टीम फाइनल तक नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि इंडिया को वो कामयाबी मिल गई है. लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम की परफॉर्मेंस ने हॉकी एक्सपर्ट्स को मुतासर किया है, और यूथ लेवल पर पाकिस्तान के टैलेंट को उजागर भी किया. तो ये कुछ थी मेरे पास न्यूज़ हेडलाइंस कुछ जगहों की जो मैंने आपसे शेयर की. और इसके साथ ही कुछ मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं आपके. नसीम ने किसी सॉन्ग को कहा जो 7:45 पे चला था, वेरी गुड सॉन्ग. और अस्सलाम वालेकुम, ये बुलाने वाले बंदे ज़रूर मुंबई वाले हैं. कौन से वाले, कौन से 7:52 पे जिन्होंने कॉल की थी, अब किसने की थी? आसिफ थे ना? हाँ आसिफ थे. मुंबई से हैं आसिफ, आप ये नहीं है, मैसेज करके बताएं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मावश खान बहन ढेर सारी दुआओं के साथ आता और बहुत इंतज़ार किया कॉल करने के लिए, लेकिन भाई की कॉल थोड़ी लंबी हो गई इसलिए अभी क्लास टाइम में कॉल नहीं कर सकता. अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे, आमीन. सईद खादिम भाई का मैसेज है. अच्छा क्लास टाइम हो गया आपका, वरना मैं आपसे कहती है कि आप ज़रूर ट्राई कर लें. अच्छा शहजादा सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम खैरियत से, और सिमसमा पहुँच गए हूँ, कोई ट्रैफिक नहीं मिली, क्या बात है, ट्रैफिक अपडेट. ओके. और अयाज बलोच ने भेज दी है मुझे एक वीडियो. अच्छा थैंक यू, और इन्होंने थैंक यू भी कहा था बलोची सॉन्ग के लिए, थैंक यू जी. मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आ गया, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, गुड मॉर्निंग मावश जी, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी, हैप्पी ट्यूजडे मॉर्निंग. और मावश जी मेरे में ना सब्र बहुत आ गया, पहले इंडिया था ना तो बहुत ही बेसब्रा हुआ करता था और गुस्सा भी बहुत आता था. मैं समझता हूँ कि यही बड़ा चेंज हुआ है मेरे में, राइट. अच्छा मेरे में, मुझे भी लगता है कि सब्र ना मुझ में भी आ गया. ये बात है कि मतलब पहले मैं भी काफ़ी हद तक मतलब जल्दी में रहती थी, जल्दी में वैसे

आप भी रहती हूँ लेकिन फिर भी मैंने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है खुद को. और सलाम भाई मैम, हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग एंड वेरी नाइस योर शो, नाइस टॉपिक. और ये है सुरजीत. सुरजीत बहुत बहुत शुक्रिया. अलसत एरिया में नो ट्रैफिक. और ये बताता है कौन, ये बताते हैं कौन, देख लेते हैं इनका नाम. ये है आरिफ अंसारी. ज़बरदस्त. अलसत में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है. मुझे भी वैसे अलसत से गुजर के जाना है. गुड, ज़बरदस्त, अच्छी बात है. और बहुत ही अच्छा आपको कोई सॉन्ग लगा था. नो लाउड म्यूजिक, नथिंग, ट्राई टू डू एक्स्ट्रा, बट सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. कौन सही वाला? आजा माहिया. वही चल रहा था थोड़ी देर पहले. और इसके साथ रिक्वेस्ट आपने की है, हम नहीं रहे तेरे आशिकों में. अच्छा, ये वाला गाना ना कल रिक्वेस्ट करें ना, कल कीजिएगा, क्योंकि आज काफ़ी 90s के सॉन्ग चल गए और अभी भी, बल्कि आगे भी 90s के हैं. मुझे लगा कि शायद मतलब प्लेलिस्ट में उन्होंने ये सोचा कि 90s के सॉन्ग्स ही पसंद किए जाते हैं तो 90s के ही रखें. थैंक यू मैम, मुमताज़ अहमद ने कहा. मुमताज़, थैंक यू आपके भी मैसेज करने का.

0: 107 पर दिल से देसी।
1: समर मॉर्निंग में एक दफा फिर से आप लोगों को हम कहेंगे वेलकम बैक, और आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, और इसके साथ ही आप 6662107 पे हमें भेज सकते हैं अपना मैसेज। तो मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी कॉल का कि आप कॉल करें और हम शामिल करते हैं। अच्छा, तो आ जाते हैं कुछ थोड़ी सी अपडेट्स वगैरह मैं आपको और दे दूँ। इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो आपको मैंने कल बताया था कि वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया है और दुनिया भर में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया, और इस मौके पर मैरीन कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की हैं जो कि ओशंस के मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही एक उम्मीद की किरण समझे जा रही हैं। तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में 3 फिशरीज़ को सस्टेनेबल फिशिंग की बेहतरीन एग्जांपल्स के तौर पर हाईलाइट किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो नाम है वो है यूनाइटेड किंगडम्स के कॉर्निश हैक फिशरी का, और ये कॉर्नवॉल के न्यूलैंड पोर्ट से ऑपरेट करने वाली ये फिशरी जो है रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस के लिए दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। स्ट्रिक्ट कैच लिमिट्स और साइंटिफिक मॉनिटरिंग की वजह से हैक फिश पॉपुलेशन में नुमाया बेहतरी दिखाई गई है। दूसरी जो स्टोरी है वो जो सक्सेस स्टोरी शेयर की गई कल वो थी ईस्ट अटलांटिक ब्लूफिन टोना की, और ये कुछ साल पहले तक ब्लूफिन टोना ओवर फिशिंग की वजह से ख़त्म होने के खतरे से दूर चार थी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था एक पैरट के बारे में, तो बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन साइंस बेस्ड कोटास, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के नतीजे में आज इस स्पीशीज की पॉपुलेशन में रिमार्केबल रिकवरी देखी जा रही है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और तीसरी मिसाल जो है वो पोर्टुगल और स्पेन की अटलांटिक सरडीन फिशरीज की है, और दोनों ममालिक ने मिलकर सस्टेनेबल मैनेजमेंट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जिनकी वजह से सरडीन स्टॉक्स स्टेबल रहे और हज़ारों लोगों के जो रोज़गार हैं वो भी महफूज रहे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कुछ चीज़ें जो कि कल के हवाले से थी, और वाकई मतलब कोई दिन भी सेलिब्रेट करते हैं ना तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि उसमें कुछ अचीवमेंट्स भी हो, मतलब यही नहीं कि बस दिन सेलिब्रेट कर लिया और उसमें कुछ आपको दिखने को नहीं मिला। तो ये अच्छी चीज़ है कि सक्सेस स्टोरीज़ कल हमें नज़र आई हैं कि इस तरह से जो फिशरीज़ हैं वो मतलब सब ख्याल रख रहे हैं, मैरीन लाइफ के हवाले से डेवलप भी कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है।

0: वही तो मैंने उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थोड़ी देर में कॉल करें ताकि हम लोग जो है गेम शुरू कर सकें, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं और फिर एक ब्रेक भी ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग रविंदर सिंह सिद्धू ने कहा यूएई में है अभी। ओके रविंदर सिंह सिद्धू, गुड मॉर्निंग, आपको कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और हम तो पैदल ट्रैक वाले हैं इसलिए स्लो ट्रैक ही पसंद करते हैं, मतलब 90s के गाने। ओके पैदल ट्रैक, ओके हाँ बिल्कुल ऐसे ही 90s के गाने और वो चल भी रहे थे ना, तो इसीलिए फिर आज प्लेलिस्ट ही इस तरह की बनी हुई है, मैंने मुझे तब्दीली नहीं करना पड़ी है, खुद ही बनी हुई है। गुड मॉर्निंग माई जी, यू हैव अ वंडरफुल डे, ब्लेस्ड डे। ओके राज का मैसेज है, राज थैंक यू। अच्छा कॉलर आ गए हैं, एक कॉल ले लेते हैं और फिर उसके बाद फिर मैसेज शामिल करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? बस नूर मोहम्मद बात कर रहे हैं। बस ओके
1: दो बार कॉल कॉल बोले थे हमसे से कोई करेगा, चलो भाई मैं ही कर देता।
0: चले आप ही कर देते जी, तो कुछ कहना चाहेंगे नूर? अभी आज मुझे याद नहीं पड़ा आपसे बात हुई कि नहीं हुई आज से पहले, यही मैं सोच रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आज आपसे बात हो चुकी है। तो गेम खेलना चाहते हैं क्या? कुछ हिंट दूं मैं आपको? अच्छा चलें चलें करती हूँ मैं। बहुत मुश्किल से ना मैंने आज बेसिकली, एक पहले मैं आपको बता दूं कि गैस ही करना है आपने कि कौन है, पर्सनालिटी है आज, ठीक है, एक पर्सनालिटी है, काफ़ी बड़ा नाम है और मैंने बहुत मुश्किल से इसके डिफ़िकल्ट तरीन, कहना चाहिए मुश्किल तरीन क्लूज़ बनाने की कोशिश की है। तो मैं आपको एक क्लू देती हूँ, मतलब एक एक करके देखते हैं कि कोई पहचानता है कि नहीं पहचानता, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि फ़न है ना, जीतना हारना तो है नहीं, बस ये देखना है कि कितना किसी को पता है, ठीक है, मसला नहीं है ना। अच्छा जो मुझे बड़े कल इंटरेस्टिंग बात पता चली वो ये थी कि ये जो पर्सनालिटी है इसके पास जितनी भी गाड़ियाँ ना, उसकी जो प्लेट नंबर होता है ना, लाइसेंस प्लेट नंबर होता है, वो उस पर 555 ज़रूर आता है सारी व्हीकल्स के ऊपर। नहीं नहीं पता चले आज आपको पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है, ठीक है, तो सुनिएगा, मैंने बहुत मुश्किल वाले निकाले हैं। हाँ सॉरी, हाँ आपसे तो पूछा ही नहीं था ना, आप बताएं। हाँ
1: तो मैंने चेंज ले किया है, जैसे मैं खाना कभी कभी मैं घूम के खा लेता था, खड़े खड़े पानी खड़े खड़े चलते फिरते, उसमें मैं तब्दीली ये किया है कि बस बैठ के पानी पीना सुन्नत के लिए भी अच्छा है। कल से मैं तब्दीली ला चुका हूँ,
0: जबरदस्त
1: कहाँ जाता है मुझे नहीं पता।
0: चलें गुड, मतलब आपने सुकून से खाना पीना जो है ना, मतलब जरा सुकून वाला अख्तियार कर लिया, राइट
1: जी।
0: चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कभी रूम में कभी बैठ के कभी घूम के खाता था।
0: हाँ नहीं, वो खाना बिल्कुल आपको ना मतलब बैठ के कोशिश करनी चाहिए, वो भी जमीन पे बैठ के कोशिश करनी चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते। और कहते हैं ना कि दायां जो पैर है ना वो ऐसे आपके स्टमक के ऊपर हो ताकि पेट थोड़ा सा दबा रहेगा तो आप कम से कम खाओगे,
1: ठीक है, आपके पास टाइम भी कम थी है। चलिए
0: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। रोहित तो हमारे साथ एक और कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे मायूस जी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे
2: हैं? मैं निमरान खान।
0: निमरान खान बात कर रहे हैं, कैसे हैं निमरान?
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा निमरान ये बताएं कि आज मैंने एक पर्सनालिटी के बारे में पूछा है और मैंने कोशिश की है कि इनके जितने मुश्किल तरीन क्लूज हो सकते हैं वो मैं आपको दूं ताकि एकदम से कोई ना समझे, वरना फौरन से समझ सकता है, ठीक है। तो इनकी मैंने पहली तो बता दी कि इनकी जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना उसकी जो लाइसेंस नंबर प्लेट है वो 555 ज़रूर आता है इसमें।
2: ओके
0: कुछ अंदाज़ा है कौन हो सकता है?
2: ये शाहरुख खान।
0: आए अच्छा चले ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ।
2: चलो ठीक
0: चले जी, नोट कर लेती हूँ, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, और देखते हैं कि हमारे साथ दूसरे कॉलर हैं कौन। जी हेलो,
3: मॉर्निंग भाई जी, राज
0: है। राज, ओके राज, अब आपसे तो नहीं बच पाएगा ये तो मुझे पता है।
3: जी राइट आंसर है
0: सर जी, सॉरी
3: राइट आंसर SRK,
0: शाहरुख। SRK, अच्छा सारी गाड़ियों के नंबर 555 हैं।
3: उसका नाम भी तीन डिजिट है ना, SR।

0: ओके, मतलब मैंने ना ये इतनी मुश्किल वाली निकाली थी, इतनी मुश्किल वाली निकाली थी, मैंने कहा भाई मतलब क्या बोलूं मैं. पहले जो हिंट थे मेरे, वो मैंने हिंट पता है क्या रखे थे, मैं आपको बताती हूँ. पहले वाले जो हिंट थे वो हिंट थे मेरे कि मैं पूछूंगी ये कि किंग ऑफ रोमांस, मैंने कहा यार ये तो फौरन पता चल जाएगा लोगों को कि किसको कहते हैं. हाँ, फिर उसके बाद था कि बिगेस्ट स्टार, मैंने कहा ये भी पता चल जाएगा लोगों को. फिर वो जो फेमस जो पोज है, जो हाथ लहराने वाला, वो बिल्कुल जो इस तरह से, मैंने कहा ये भी पता चल जाएगा. तो मैंने सोचा यार ये पूछती हूँ, वो भी पकड़ लिया आप लोगों ने. ये कैसे पता था वैसे आपको?
1: Most of them knows everything about him, so
0: अच्छा वैसे मुझे नहीं पता था ये. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे ये कल ही पता चला जब मैं क्लूज बैठ के बना रही थी. अच्छा चलिए, एसआरकी की बात हो रही है तो कुछ और जो आपको पता है वो बता दें, क्योंकि अब हमारा एक तरह से गेम शुरू होते ही ख़त्म हो गया है, जबकि मुझे लग रहा था मैं अच्छा खासा चला लूँगी. मैंने मुश्किल मुश्किल से क्लूज बनाए. कुछ बात करें फिर हम एसआरके का कोई अच्छा सा गाना भी लगाते हैं.
1: एसआरके का I have watched this movie DDLJ maybe I think maybe 40 or 50 times.
0: ओ अच्छा सही. अच्छा सैनमार में दिखा था, सैनमार में दिखी तीन दफा. सिनेमा में जाके देखी आपने या फिर घर पे?
1: यू कैन से एटलीस्ट 10 टाइम्स इन द थिएटर एंड बैलेंस ऑल ऑन द टीवी.
0: गुड, जबरदस्त. मतलब आप बहुत ही डाई हार्ट फैन है. वो जो फैन मूवी आई थी शाहरुख खान की, तो आप खुद को कह सकते हैं वो वाला फैन. हाँ चलिए गुड, जबरदस्त. राज बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. और मैं लगा देती हूँ, कौन सा वाला गाना लगाऊं, कोई जहन में है आपके? अच्छा अच्छा सही हो गया. चले ठीक है, ये वाला लगाती हूँ. चले ठीक है, ये वाला लगाती हूँ. ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल. थैंक यू, थैंक यू. आपको भी हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड मॉर्निंग. रही जी, तो हमारे साथ राज थे और राज से पहले भी जो हमारे कॉलर थे, नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने भी गेस कर दिया था. जबकि मुझे लगा था ये तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, ये मैंने इतनी मुश्किल वाली क्लू रखी थी और मुझे लग रहा था यार मैं कोई 15-20 मिनट तो गेम चला ही लूँगी. अच्छा, मैं एक एक पर्सनैलिटी और इस तरह से ही लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए ये वाला थोड़ा सा गेम खिलाना आसान है, वो वाला मुझसे नहीं हो पाएगा. कोशिश करेंगे उसके लिए भी, लेकिन ये कि अब कल भी एक पर्सनैलिटी है लेकिन वो कुछ डिफरेंट होगा. सही है, तो अब हम देखते हैं कि लोग कितना मतलब लोगों को पहचानने में माहिर हैं. खैर जी, अभी हम जा रहे हैं म्यूजिकल ट्रैक की तरफ. शाहरुख खान की बात हुई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि शाहरुख खान का एक अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक ना प्ले हो. इंजॉय करते हैं मिलके तुझे देखा तो ये जाना सनम.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
5: Hawa ke jhonke aaj mausamon se root gaye.
6: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
7: द रिक्वेस्ट शो
6: हर शाम 4 to 5 फजील के साथ,
7: फजील के साथ
6: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
7: दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
8: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महविश खान, और तकरीबन अब जाने का वक्त हल्का फुल्का मतलब हो ही गया है, थोड़ी ही कुछ मिनट्स बचे हैं मेरे पास, तो आपके मैसेजेस की तरफ आ जाती हूँ। और ये है मेरे पास मैसेज अफरोज खान चकवा का, कहते हैं माही मैम आप में सब्र बहुत ज्यादा आ गया है और इस बात के हम गवाह हैं। मैम आपने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर लिया? अच्छा वाकई मतलब ना मैंने इसके ऊपर काम बेसिकली जो शुरू किया था ना अफरोज खान चकवा, वो किया था शादी से पहले, और मैं बहुत दफा ये बात कर चुकी हूँ कि मुझे इतना गुस्सा आता था और ये मुझे आदत आई थी अपने पप्पा से, उनको भी बहुत गुस्सा आता था मतलब शदीद किस्म का, तो मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था भाई वो तो आदमी है, उनका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी तरह की रही ना तो मैं मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा डेफिनेटली। तो मैंने उसी वक्त से अपने ऊपर काम करना शुरू किया था और मैंने

अपने आप बहुत बहुत बहुत काम किया, लेकिन फिर भी ये था कि गुस्सा आता था, मतलब ये फैक्ट है, आप लोग भी इस बात के गवाह हैं कि गुस्सा आता था। इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत तामुल है उनका कि उन्होंने मतलब बर्दाश्त कर लिया। अक्सर ये होता था कि एक आदत ना, आपको एक आदत होती है थोड़ा सा लाउड बोलने की, थोड़ा सा उसका, क्योंकि एक घर पे इस तरह का मामला था, पप्पा को देखा देखी मैं भी इसी तरह की थी काफ़ी हद तक, मतलब नेचर वाइज अगर देखा जाए ना अपने पप्पा के ऊपर बहुत ज़्यादा गई। मेरी अम्मी बहुत सब्र तहमुल वाली थी और पप्पा थोड़ा सा लाउड गुस्से वाले और इस तरह के थे। तो उसमें फिर आप रियलाइज कर लेते हो कि कोई चीज है, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप रियलाइज कर लो कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो बाय द टाइम बहुत बहुत मेहनत करते हुए मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, और फिर जब रियलाइज किया ना कि आप कहीं पे लाउड हो जाते हो और अगला बंदा आपको मतलब बर्दाश्त करता है, तो फिर आप और गिल्टी फील करते हो, तो फिर और ज्यादा करने की कोशिश की। फिर काफी हद तक तो मैं रेडियो पे भी गुस्से में ही रहती थी ये वाला मामला था, मेरी पसंद से कोई हटके बात हो गई, किसी ने कुछ इस तरह से कह दिया तो मैं एकदम से फौरन से ट्रिगर हो जाती थी, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई इसका नुकसान हो रहा है, मुझे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, मैं अपने आप को गलत एक इमेज बनाती जा रही हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता मतलब ऑन ईयर भी ऑफ ईयर भी मैंने अपने आप को चेंज करने की वाकई बाय पर्पस कोशिश की, और मैं अब तक कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि वही जो भाई कह रहे थे हमारे जावेद बाजवा कि आपकी फितरत जो होती है ना वो बदलना बड़ा मुश्किल काम है, और ये एक तरह का ये वाला जो है गर्म मिजाज नरम मिजाज ये वाली जो है ना किसी हद तक आपकी फितरत की चीज़ होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल लिया, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि आपको कोशिश करना पड़ती है। अभी भी मुझे बड़ी आसानी से गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ नहीं कूल डाउन इसका नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वैसे भी मतलब आप किसी को अगर कुछ हार्श बोल देते हो तो फिर बाद में आपको अफसोस होता है, तो इसलिए बेहतर है कि गुस्से पर कंट्रोल करो। और शहजादा सलीम ने कहा आंसर इज शाहरुख खान। यार मतलब कैसे आप लोग पहुँच गए, मुझे बहुत हैरत हो रही है, मैंने सबसे मुश्किल वाला रखा था ये, मुझे लगा था ये नहीं कोई पहचान सकेगा, गाड़ी का नंबर किसी को कैसे पता होगा, और भी बहुत सारे क्लूज थे जो मुश्किल ही लेकर आई थी मैं जानबूझ के, लेकिन पहुंच गए भाई, मतलब क्या बात है। और कहते हैं कि एक्चुअली जब वे था ना तो ट्यूसडे के दिन पूरे 90s के ही सॉन्ग्स प्ले होते थे। अच्छा ट्यूसडे का दिन फिक्स किया हुआ था 90s के लिए, मे बी कि यही रीज़न हो कि 90s के सॉन्ग्स हैं आज। और मावस जी SR के फैंस के लिए ये भी आसानी है शायद आपको पता नहीं था, मुझे नहीं पता था लिटरली, मुझे कल पहली दफ़ा पता चली बात, मैंने कहा ये किसी को क्या पता होगा कि 555 उनकी गाड़ियों में आता है, ये क्या बात हुई, लेकिन पता है भाई, मतलब सभी कुछ पता है वाकई, मुझे ना वो पता है घर का नाम पता है, अब वो मुझे एकदम से जहन में अभी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे घर का नाम पता है, घर का नाम मुझे बिल्कुल पता है कि क्या घर का नाम है, लिख रहे हैं जन्नत, राइट जन्नत नाम है, ओके। और कल से 4-5 पर्सनालिटीज को लेकर आइए ताकि एक बार में कोई पहचान ले तो दूसरी यूज कर सकते हैं। हाँ मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये पर्सनालिटीज बनाना और गेम बनाना अब मेरे लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। आपको पता होगा मोहम्मद यूसुफ खान की, जब मैं पहले किया करती थी हर दिन नया दिन करती थी, तो उस वक्त रोज ही कोई ना कोई गेम होता था, डिफरेंट होता था, लेकिन वही होता है ना बंदा वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गेम्स मेरे दिमाग में आ नहीं रहे, अगर आप लोगों को कोई अच्छा आइडिया है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि क्या किया जा सकता है। अच्छा जी ये है थैंक यू कहने वाले भाई हमारे राज, ओके राज थैंक यू आपका भी। नसीम तो कह रहे हैं प्यार हो जाएगा वीर ज़ारा का गाना, अभी तो नहीं चल सकता भाई, बिल्कुल अब आखिर हो गया, जन्नत नहीं मन्नत है, ओके। ये अफरोज़ान चकवा कह रहे हैं यूसुफ खान, मेरा ख्याल टाइपिंग मिस्टेक हुई है इनकी। और मैम क्या बचपन का वक्त याद दिला दिया आपने, मुमताज़ अहमद कह रहे हैं गाने से, और मन्नत है जन्नत नहीं, राइट मन्नत है जन्नत नहीं, और ये कौन है, ये है कमालदीन शेख, ओके। यूसुफ खान जो है ना मेरा ख्याल टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, उन्होंने लिखा मन्नत ही होगा वो हाँ टाइपो एरर, बिल्कुल मैं समझ गई थी, तो मन्नत हाँ राइट, मुझे भी यही जहन में आ रहा था, लेकिन मुझे पहले एकदम से मेरे जहन में भी आया जन्नत, मैंने कहा नहीं जन्नत नहीं कुछ है, फिर आपने कहा तो मैंने कहा हाँ यही होगा। चले जी जबरदस्त, मतलब जो है आज का तो बहुत ही आसान रहा, कल मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ जरा ज्यादा पर्सनालिटीज लेकर आऊं, ताकि फिर अगली वाकई सही बात है कि कुछ तो हो, वरना एकदम से तो बन भी नहीं सकते ना, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि कुछ जरा ज्यादा मतलब पर्सनालिटीज वगैरह या जो भी गेम है हमारा जरा ज्यादा रखती हुई लेकर आऊं। चले जी इसी के साथ हो गया है मेरा वक्त जाने का, आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि अपना पूरे दिन ख्याल रखिएगा, गर्मी आज जैसे मैंने आपको बताया कि जरा कुछ मामूल से ज़्यादा पड़ने वाली है, तो बाहर निकलते हुए ख़ास तौर पे एहतियात कीजिएगा, गैर ज़रूरी तौर पे निकलिएगा नहीं, और अगर ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा हो तो उसमें प्रिकॉशंस लेते हुए पानी वगैरह पी के निकलें, सही है अच्छा खासा, और फिर साथ में पानी अपने रखें भी। तो चलिए जी इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल अच्छे से कुछ चीज़ों के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से फाइनली, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैमवे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में
3: न्यूज एट 9 AM, न्यूज एट 9 AM फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का पहला मुफसल नशरिया, इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर ने कल लुसेल पैलेस के अपने दफ्तर में कतर के दौरे पर आए हुए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के सदर और उनके हमरा वफ्द से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने मुमलिकत सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ारत औक़ाफ़ इस्लामी अमूर ने महकमा मसाजिद के ज़रिए जदीद डिजिटल एप्लीकेशन मिनबर का अजराह कर दिया है। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सफारती सालसी की कोशिशें अपने हतमी हदफ के करीब पहुंच रही हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब समात कीजिए मुफस्सल नशरिया।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे कतर के मशहूर फुटबॉलर अकरम आफीफ के बारे में। अकरम आफीफ कतर के सबसे कामयाब फुटबॉलर्स में से एक हैं जिन्होंने एशियन फुटबॉल में अपना नाम रोशन किया। दोहा में पैदा होने वाले आफीफ ने अपने करियर का आगाज एस्पर अकेडमी से किया और बाद में यूरोप के क्लब के साथ भी खेलने का मौका मिला। वो इस वक्त असद और कतर नेशनल टीम के अहम खिलाड़ी हैं। अकरम आफीफ ने 2019 एशियन गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस दी जहां कतर ने पहली मर्तबा एशियन कप जीता। टूर्नामेंट में उन्होंने रिकॉर्ड एसिस दिए और एएफसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया। 2023 एएफसी एशियन कप में भी अकरम आफीफ ने जबरदस्त खेल दिखाया और फाइनल में हैट्रिक करके कतर को दूसरी मर्तबा चैंपियन बनाया। आफीफ को एशिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से शुमार किया जाता है। उन्होंने कई मर्तबा कतर स्टार्स लीग का टाइटल जीता और लीग के टॉप स्कोरर और बेस्ट प्लेयर अवार्ड्स भी अपने नाम किए। उनकी स्पीड, ड्रिबलिंग और क्रिएटिविटी ने उन्हें कतर फुटबॉल का आइकन बना दिया है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ फौजी शफीक। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है कुव्वत मुदाफ़त या इम्यून सिस्टम। ये हमारे जिस्म का कुदरती दिफाई निज़ाम है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों, वायरसेस और इन्फेक्शन से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। बहुत से अफराद ये सवाल करते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बना सकते हैं। लकीली इसके लिए चंद बहुत ही सादा मगर मौसर आदात अपनाना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। सेहतमंद इम्यून सिस्टम की बुनियाद मुतवाजन ग़िज़ा है। रोज़ाना अपनी खुराक में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और अनाज और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल कीजिए। खसूसन माल्टे, कीटू, लीमू, अमरूद और बेरीज जैसे फल विटामिन सी फ्राहम करते हैं जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम की कारकर्दगी में बेहतर किरदार अदा करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसके अलावा कैरेट्स, शिमला मिर्च और ब्रोकली भी जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा मुहैया करते हैं। पानी जिस्म के हर निज़ाम के लिए ज़रूरी है। मुनासिब मकदार में पानी पीने से जिस्म से फाजिल मादे खारिज होते हैं और खल जो हमारे सेल्स हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। याद रखिए कि बाज़ का थकन और कमज़ोरी की वजह सिर्फ पानी की कमी भी हो सकती है। रोज़ाना की वॉक, हल्की एक्सरसाइज या किसी भी किस्म की जिस्मानी सरगर्मी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और इस तरह हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी कारकर्दगी को सहारा देती है। ज़रूरी नहीं कि मुश्किल एक्सरसाइज करें, रोज़ाना 30 मिनट की तेज़ जो वॉक है वो भी मुफीद साबित होती है। इम्यूनिटी के लिए चंद ग़िज़ाई अज्ज़ा ख़ास अहमियत रखते हैं जिनमें वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, जिंक, आयरन और प्रोटीन शामिल हैं। ताहम याद रखिए कि सप्लीमेंट या विटामिन्स की जो टैबलेट हैं सिर्फ ज़रूरत और फिर डॉक्टर के मशवरे के तहत इस्तेमाल करनी चाहिए। बैलेंस डाइट अमूमन इन ग़िज़ाई अज़ा का बेहतरीन ज़रिया है। मुसलसल जहनी दबाव ना सिर्फ जहनी सेहत बल्कि जिस्मानी दिफाही निज़ाम पर भी मनफी असर डाल सकता है। दुआ, जिक्र, एक्सरसाइज, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना और जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लेना जहनी सुकून और बेहतर सेहत में मददगार साबित होता है। मजबूत कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी किसी एक ग़िज़ा या जादुई नुस्खे से हासिल नहीं होती बल्कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, मुतवाजन ग़िज़ा, मुनासिब नींद, बाकायदा एक्सरसाइज और जहनी सुकून का मजमुआ है। आज ही अपनी रोज़मर्रा आदात का जायज़ा लीजिए और सेहतमंद इंतखाब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

We are so back. Assalamu alaikum. मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे. ये वो शो है जिसका इंतजार मुझे बहुत बहुत बेसब्री से था. बड़ा ही इंतजार किया मैंने इसका. Because I absolutely love this show. मुझे भी सीखने को मिल जाता है और आपको भी. So welcome to Tech Innovation after a very very long time. तो शुरू करेंगे. अपना format वही simple है. पहले आएंगे एप्स, फिर आएंगे गैजेट्स और फिर बहुत ही जरूरी खबरें. उन खबरों में ऑफ कोर्स मेरी दुनिया, गेमिंग की दुनिया भी है और साथ में इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको अपडेटेड रखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया भाग रही है भाई. अभी कुछ है, अगले सेकंड कुछ है और अगले मिनट कुछ और है. तो शुरू करेंगे सबसे पहले एप्स दिस वीक से. ट्रेंडिंग एप्स. तो आज की ऐप नंबर वन, बिकॉज ये कोई रैंकिंग नहीं है, ऐप नंबर वन एज इन की पहली ऐप ऑन द लिस्ट इज स्विफ्ट स्लेट. मैं स्पेल आउट कर देता हूं, SWIFT स्पेस देखिए SLATE, स्विफ्ट स्लेट. अब वक्त आ गया कि आपका जो कीबोर्ड है उसे थोड़ा AI का अमली जामा पहना दिया जाए. देखिए AI की कोई कमी नहीं है. आप अगर टाइप करने कुछ बैठते हैं तो आपको मेटा दे देता है, ये टाइप करना है वो टाइप करना है तो मुझे यूज करो, जेमिनाई मिल जाता है आपको, बहुत तरह

0: के AI ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है आपके आपके कीबोर्ड से, आपकी टाइपिंग से, मगर ये थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा हटके एंड इट्स क्वाइट यूजफुल इन अ वे. तो जब स्विफ्ट स्लेट आप डाउनलोड करेंगे, एक तो ये टंग ट्विस्टर है मेरे लिए. तो ये AI को यूज करता है बिकॉज इट इज एम्बेडेड इन योर कीबोर्ड्स के साथ अटैच्ड है. तो आपके लिए एक दोस्त की तरह है कि आप कुछ भी टाइप करें, आप फौरन विद अ क्लिक विद फॉलोइंग फ्यू ऑप्शंस आप उसे बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ टाइप करना है, यू वॉन्ट टू मेक इट फ्रेंडली, यू वॉन्ट टू मेक इट फॉर्मल, या आपको लगता है कि कैजुअली रिप्लाई कर दो यार, तो वो रिप्लाई भी कर देगा, आपको बता भी देगा कैसे रिप्लाई करना है. एंड इट इज यूज इट यूजेज AI इन अ वेरी ह्यूमन वे. यू नो मैं कैसे समझाऊँ, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. जब आप यूज करते हैं AI तो होता ये कि अक्सर जवाब जो होते हैं उससे आप मुतमईन नहीं हो पाते बिकॉज वो जवाब थोड़े से मैकेनिकल साउंड करते हैं. इसके जो जवाब हैं जब वो कैजुअल होते हैं तो बहुत बढ़िया साउंड करते हैं. यू फील लाइक हाँ यार ऐसा मैं लिखता हूँ. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप यूज करते रहेंगे तो ये आपके लिखने के तौर तरीकों को, आपकी स्पेलिंग्स को अच्छे से समझ पाता है. Which is, yeah, it sounds dangerous in head, लेकिन बहुत बहुत काम की चीज है. तो Android users, this is for you. iOS वालों थोड़ा सा क्या करूं, ज्यादा apps इनके लिए निकलती हैं. तो यही बता दी मैंने. Now moving on to another amazing app. App number 2, ये बहुत लोगों के काम आ सकती है. App का नाम है Deep Denoiser. Denoiser, इस पे फोकस कीजिएगा. Deep, DEEP space देखिए, Denoiser, DENOISER. अब बहुत सारी AIs आ चुके हैं जो आपके ऑडियो को साफ कर देते हैं, है ना. देसी भाषा में ये कहते हैं ना, ऑडियो जी साफ कर दिया, जितनी बैकग्राउंड नॉइज है वो गई और आपको एक ऑडियो, क्लियर ऑडियो मिल जाता है, राइट. समटाइम्स उसमें थोड़े से आपको मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज कुछ ज्यादा ही वो नॉइज कैंसिलेशन हो जाए तो आपकी आवाज थोड़ी सी हॉलो साउंड करने लगती है, बट इट वर्क्स. यू कैन फिगर योर वे आउट. अब आप फोन्स का भी देख लीजिए तो फोन्स में भी ये अडेप्टेबिलिटी आ चुकी है जहां पर आप कैमरा ऑन करते हैं, आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, यू यूज योर नॉइज कैंसिलेशन एंड एवरीथिंग जस्ट गोज अवे और आपकी आवाज रह जाती है, पर उसमें भी थोड़ा सा हॉलोनेस रह जाता है. ये जो है ना डीप डीनोइजर, ये सारे बैकग्राउंड के आवाज को हटा देता है. वो ऑडियो चाहे वो वीडियो का हिस्सा हो, चाहे वो एक सिंगुलर ऑडियो क्यों ना हो. एंड द बेस्ट पार्ट, ये वाली ऐप इट्स कंप्लीटली ओपन सोर्स, फ्री टू यूज. मैं बता रहा हूँ एंड्रॉइड यूजर्स, अगर आप, आई नो यू हैव सैमसंग और प्रॉब्ली सम अदर फोन जो आप एंड्रॉइड रन कर रहे हैं तो आपको लगता होगा अरे मुझे इसकी क्या जरूरत है, बट ट्राई दिस वन. आवाज को क्लियर करना, साफ कर देने का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी आवाज रट जाए, क्योंकि वो नेचुरल जो टेक्सचर होता है आवाज का वो कहीं ना कहीं कट जाता है, लोज चले जाते हैं आवाज के. मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, बट आई एम, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड इफ आई एम रॉन्ग. क्योंकि जब आप आवाज को नॉइज कैंसिलेशन की तरफ ले जाते हैं, व्हेन यू पुट अ ट्रैक और कहते हैं आप क्लीन कर दो ये ऑडियो मेरे लिए, तो समटाइम्स आपकी आवाज थोड़ी सी चेंज हो जाती है. बट दिस वन, इफ यू स्टार्ट यूजिंग दिस, ना सिर्फ ऑडियो बल्कि वीडियो के लिए भी एक नंबर ऐप है. ऊपर से फ्री है, सो क्या जा रहा है, यूज कर सकते हैं आप आराम से. सो ट्राई दिस वन, Deep Denoiser, and I'm pretty sure आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है. And now moving on to another app. तीसरे नंबर पे जो ऐप है जिसके बारे में बात करूंगा वो है Photo. PHOTO. उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं करी है नाम सोचने में. So PHOTO. अब ये एक बहुत सिंपल येट इफेक्टिव ऐप है. मैं आपको एक सिचुएशन की तरफ ले जाता हूँ बिकॉज यू नो द सिचुएशन और मुझे कहानी की बताने में बड़ा मजा आता है. सो आपके फोन में आपने हजारों स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे जो आपने शायद देखे भी नहीं होंगे या देख के इस्तेमाल कर लिया होगा, बट यू फॉरगॉट टू डिलीट देम. बहुत सारे फोटोज ऐसे होंगे जिनके आपने डुप्लीकेट बना के रखे हुए, या आप किसी की फोटो खींच रहे थे और आपको सुनने को मिला आते में तो फोटो खींचना भी नहीं आता, यू रिमेम्बर, आपको याद हो. तो होता क्या है, यू क्लिक मल्टीपल फोटोग्राफ्स बट आप डिलीट नहीं करते हैं, आपका फोन भर जाता है एंड देन यू आर लाइक आई एम टू लेजी टू डिलीट. आप डिलीट नहीं करते हैं और फिर बिल्कुल आखिरी में जब तक फोन के बिल्कुल हलक तक नहीं आ जाती है स्टोरेज, तब तक आप कोई मेजर नहीं लेते. बट इफ आई मेक दैट इजियर तो आपको सच में मजा आएगा ये ऐप यूज करते हुए. ऐप का नाम है PHOTO. ये ऐप करती क्या है, डिलीट करती है आपके फोन को, क्लीन करती है और एक UI बना देती है आपकी नजरों के सामने जहां पर आपको लेफ्ट और राइट करना है. सो लेफ्ट का मतलब हुआ कि आपको जो है डिलीट करनी है फोटो नहीं चाहिए राइट का मतलब हुआ कि आपको सेव करनी है इट इज दैट सिंपल तो एक एक फोटो पे जाके आपको अलग से प्रोग्रामिंग करनी ही करनी पड़ेगी दिमाग की डिलीट करना मैन्युअली इज अ लिटिल डिफिकल्ट आई नो आप सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल फोटोज एट अ टाइम बट देन ये वाला मेथड मुझे काफी काफी इजी लगा एंड एंड्रॉइड यूजर्स आई थिंक यू शुड यूज इट PHOTOO फोटो एंड ये डिलीट करेगा आपके फोन में जो आपने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हो या गलती से स्क्रीनशॉट ले लिया हो और हाँ वो सबूत जो आपने इकट्ठा किया वो भी डिलीट कर देना किसी काम का नहीं है तो ये आपके फोन को साफ रखेगा स्टोरेज आप मेंटेन कर पाएंगे इजीली एंड लेफ्ट राइट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है इट बिकम्स इजियर क्योंकि आपको उसमें वापस जा जा के सेलेक्ट ऑल करके डीसेलेक्ट नहीं करना पड़ता है तो इट मेक्स योर वर्क क्वाइट इजियर और टीडियस काम नहीं लगता स्टोरेज को क्लीन करना ओके तो ये थे कुछ ऐप्स ऑन द लिस्ट आप मूव करेंगे कुछ गैजेट्स की तरफ बिकॉज आई हैव अमेजिंग अमेजिंग गैजेट्स इन गैजेट्स दिस वीक
1: कूल गैजेट्स
0: तो सबसे पहला जो गैजेट है वेरी सिंपल वेरी इफेक्टिव काम का भी है ज्यादा ओवर द टॉप टेक्नोलॉजी के बिना ये आपके बहुत काम आएगा क्योंकि मैंने पर्सनली इसे यूज किया है इसका नाम है लाइसेंस सेल फोन स्टैंड LISEN स्पेस देखिए सेल फोन स्पेस देखिए स्टैंड सिंपल है बेटर है रोटेट होता है और रिवॉल्व होता है और आपके फोन को बिल्कुल चिपका के रखता है अपने सीने से तो आपका फोन भी नहीं गिरता एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एडजस्टेबल एंगल्स इसमें मिल जाते हैं एल्यूमिनियम बिल्ट है तो टूटने की भी दिक्कत नहीं है एंटी स्लिप है तो फोन सवाल ही पता नहीं होता कि स्लिप होके कहीं गिर जाए बहुत टाइटली होल्ड करता है एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं इट इज पोर्टेबल इनफ कि आप इसको पूरा फोल्ड करके जेब में रख के ले जा सकते हैं भाई साहब इतनी इफेक्टिव चीज है मैं कहता हूँ ना गैजेट्स का मतलब ये नहीं कि भारी भरकम ही हो उसमें बहुत सारे बटन हो तभी वो एक बहुत बड़ा गैजेट है मगर दिस वन वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि एक नॉर्मल सा स्टैंड जो सब कुछ कर सकता है और क्या चाहिए आपको क्योंकि ये काफी अंडररेटेड गैजेट्स में आता है बट आई वांटेड टू टेल यू ये कंपनी स्पेशली इसमें बहुत काम कर रही है और आने वाले वक्त में दे आर अबाउट टू मेक अ चार्जर एज वेल तो आपका फोन लगा रहे हो चार्ज हो जाए दैट इज अनदर टॉपिक फॉर द डे मगर ये लाइसेंस सेल फोन स्टैंड कहीं पर मिले स्पेशली इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़न इफ यू वांट टू लुक अप आप जाके देख सकते हैं ले सकते हैं ओके मूविंग ऑन टू अनदर वन अगला गैजेट ऑन द लिस्ट इसके बारे में मैंने बात करी थी आई रिमेम्बर बिकॉज ये जो गैजेट है इसका पहला वाला वर्जन मैंने आई थिंक एक साल हो गया उसको उस बात को किए हुए और अब इसका एक दूसरा वर्जन आया है मुझे लगा था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अक्सर जब पार्ट टू आता है तो हमें आदत हो चुकी है अरे पहला ही अच्छा था मगर ये बहुत अच्छा है इसका नाम है डिवूम डिटो रेट्रो पिक्सल आर्ट गेम रिपीट कर देता हूं आई नो बहुत ज्यादा हो गया ये पर DIVOOM डिवूम डिटो DITOO रेट्रो पिक्सल आर्ट गेम ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है 16x16 का LED ऐप इसके साथ आपको मिल जाएगा और इसको कंट्रोल करने के लिए जो ऐप है वो बहुत बहुत फन है ये बेस्ट गिफ्ट है फॉर यू नो गिविंग आउट टू समबडी ऑन अ बर्थडे एक फन गैजेट जो आपके डेस्क में आपके घर में आपकी कार में आप रख सकते हैं एंड डेफिनेटली वर्थ द प्राइस आई थिंक ये एक ऐसा गैजेट है जो काफी फन है और लोग आपसे बार बार पूछेंगे ये कहाँ से लिया है तो ऐसा गैजेट अगर आपको चाहिए दिस वन इज फॉर यू डिवूम डिटो रेट्रो पिक्सल DIVOOM DITOO डिटो रेट्रो पिक्सल आप देखिए इतना भी टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा ओके नाउ अनदर वन अगला जो गैजेट अगेन ऑन द लिस्ट वेरी सिंपल एंड अमेजिंगली यूजफुल इसका नाम है एंड्रे कार फोन होल्डर गाड़ी में अक्सर क्या होता है होल्डर की जरूरत पड़ जाती है कि फोन को रखना आसान काम नहीं है आसान काम बिल्कुल नहीं है ऑफ कोर्स अगर आपके पास वो वायरलेस चार्जिंग वाला जो पोर्ट है गाड़ियों में आप आने लगाए तो उस पर रख देते तो ठीक है बट देन अगेन जब फोन को चलाते चलाते उस पर लगाना पड़ जाए तो एक टास्क हो जाता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सो ये जो कार होल्डर है काफी स्ट्रांग है मेगा सेफ चार्जर के साथ है और ये कहीं पर भी गाड़ी पर लगा सकते हैं लिटरली Anywhere you can imagine, आप गाड़ी में से रख सकते हैं So, Android car phone holder definitely हाईली हाईली रिकमेंडेड और ये कतर में भी अवेलेबल है. वैसे तो आप अमेजोन पे जाके देख सकते हैं इफ यू वांट टू बाय इट. मेरा सजेशन ये कि स्पेशली अगर आप कोई इंडियन दोस्त से बोलिएगा इंडिया में जाके ये और भी सस्ता मिल सकता है एंड इट इज डेफिनेटली वर्थ द प्राइस. काफी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं ये एंड आपके बड़े काम आने वाले. ओके नाउ खबर की तरफ बढ़ेंगे इन टेक न्यूज दिस वीक. सबसे पहली खबर है गेमिंग की दुनिया से. क्योंकि इस दुनिया से मेरा हर रोज सामना होता है तो क्यों ना इसके बारे में बात करूं. जेम्स बॉन्ड के जो जो फैंस हैं गेम की दुनिया में हलचल हो चुकी है बिकॉज 007 फर्स्ट लाइट ये बॉन्ड गेम रिलीज हुआ. मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी कसम से बता रहा हूं मैं. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मगर व्हाट अ बैंगर ऑफ अ गेम दिस इज. इट्स अमेजिंग. ये गेम है कि किस तरीके से जेम्स बॉन्ड बना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग राइट फ्रॉम जब वो टीनेजर था कैसे कैसे वो आगे बढ़ के जेम्स बॉन्ड बना उस पे पूरी जर्नी पे गेम बनाया. अमेजिंग लुकिंग गेम. मैकेनिक्स आर एब्सोल्युटली क्रेजी. मुझे सिर्फ गेम से एक शिकायत है जो कार वाले सीक्वेंसेस हैं वो और थोड़े बेहतर हो सकते थे मगर मैकेनिक्स आर फन टू यूज एंड आई थिंक 18 घंटे के आसपास का गेम है. इफ यू प्ले इट तो आपको वही 15 से 18 के बीच में लगेगा टाइम फिनिश करने में एंड ईजी टू प्लेटिनम. आप प्लेटिनम ट्रॉफी के लिए भी जा सकते हैं बिकॉज हार्ड डिफिकल्टी में आपको ज्यादा मजा आएगा. उसमें आपको एनिमीज थोड़े से चार्ज अप लगेंगे. इजी मोड पे मत खेलना अगर खेलने में जाओ तो वरना एनिमीज आपको लगेंगे ये क्या है और आपका मजा आधा हो सकता है. सो ईदर प्ले ऑन द नॉर्मल मोड और द हार्ड मोड ऑफ द गेम. एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर दिस वीक बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी एनवीडिया की तरफ से भी आपने देखा होगा लगातार बातें हो रही थी कि कब जाके पीसी में और ज्यादा चेंज आएंगे. आजकल लोग पीसी बिल्ड कराने जब मार्केट में निकलते हैं बहुत सारी चॉइसेस होती हैं. अलग अलग आपको प्राइस रेंजेस नजर आते हैं. लोग आपको पिच करते रहते हैं इतना दे दो ये वाली रैम लगा लो वो वाला ये लगा लो. पर एनवीडिया के साथ जो कोलैबोरेशन हो रहा है आने वाले वक्त में आपको पीसी बहुत पावरफुल मिलने वाले हैं. लोगों के अलग अलग डिमांड्स हैं नॉट जस्ट द गेमिंग पार्ट बट ऑफकोर्स जो एडिटिंग करते हैं आजकल सबको इन्फ्लुएंसर बनना ही है तो एडिटिंग टूल से लेकर चाहे वो वीडियो ऑडियो हो या gaming ho Nvidia is collaborating and really really soon aapko chips mein processor mein difference pata lagne wala hai because they will be running on a different power altogether. So I am really really hopeful on this and I'm pretty sure it will be really helpful for everybody else but main dua karta hu ki price range bas zyada na ho. Baaki social media handles FM107 Qatar FM107 Qatar is naam se har jagah maujood hain. Doha wala kabira mujhe bhi dhoond sakte hain. Agar aapke dimag mein koi suggestion ho koi app ho jo aap use kar rahe hain koi gadget ho jo aapke paas hai and you want to suggest why not bataiyega zarur because aap jab batate hain to mere liye bhi aasani rehti hai and aane wale waqt mein hum AI se jude hue jitne bhi subjects hain apps hain un sabko cover karenge because I know AI ke bina abhi baat hona namumkin hai. So we will try ki hum AI ki apps agle hafte laye. If you are using something jo bahut bahut zyada crazy hai so do let me know because AI ki duniya se bahut sari khabrein aa rahi hain jinme ek last khabar aapko deta chalunga ye hai ki Claude AI jo hai it is working on a different module similarly to Grok. So all the best. Na jaane kab kya niklega wo aane wale waqt mein pata lag jayega. But for now this is Doha Wala Kabir signing off from Tech Innovation. Apna khayal rakhiyega kyunki aap behad behad zaruri hain. Ma salaama.
2: Aap sun rahe hain FM 107.
3: FM 107. Dil se desi.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोस्तों हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें. आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं. इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है. शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें. छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं. छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों. गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है. मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो. ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं. सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है. FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। क्या हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी जिंदगी को सिंपल बनाती हैं और एनवायरनमेंट को ज्यादा सस्टेनेबल बनाती हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं पेपरलेस लाइफस्टाइल की। कागज नहीं होना चाहिए। देखिए चलिए शुरू करते हैं बात को एक बड़ी रिलेटेबल एग्जांपल से। सोचिए आप बैंक या ऑफिस गए किसी काम के लिए, आपने वहां पे फॉर्म फिल करना है। आपको एक फाइल दी जाती है या एक पेपर दिया जाता है जिसमें 5 से 6 पेजेस होते हैं। आप साइन करते हैं, सबमिट करते हैं और काम हो जाता है। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो जो पेपर आपने साइन किए ना, वो पेपर्स या तो फाइल में बंद हो जाते हैं या किसी ड्रॉअर में चले जाते हैं या कभी कभी सीधा वेस्ट बिन में फुफ। और फिर सेम चीज हर ऑफिस, हर डॉक्यूमेंट और हर ट्रांजैक्शन के साथ रिपीट होती चली जाती है। आप थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं भाई। देखो पेपर हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मैं मानती हूँ। रिसिप्ट हो गई, बिल्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, नोट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब पेपर का अननेसेसरी यूज होता है। हर पेपर बनाने के लिए दरख्त काटे जाते हैं, पानी इस्तेमाल होता है और एनर्जी कंज्यूम होती ही होती है। यानी एक सिंपल प्रिंट या फोटोकॉपी के पीछे काफी नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं भाई। देखिए अब इको स्विच यहाँ क्या है, इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। आइडिया बड़ा सिंपल है, आइडिया बहुत सिंपल है, सिंपल सा। जहाँ पॉसिबल हो पेपर की जगह डिजिटल ऑप्शंस यूज करें। इसे कहते हैं पेपरलेस लाइफस्टाइल। यानी जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स, नोट्स और कम्युनिकेशन को डिजिटल फॉर्म में मैनेज कर सके। अब बात करते हैं कि पेपरलेस लाइफस्टाइल कैसे हेल्प करता है। देखिए सबसे पहला फायदा वही वाली बात है, दरख्त लगाओ, दरख्त बचाओ। जितना कम पेपर यूज होता है उतने कम ट्रीज काटे जाते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा फायदा है वेस्ट रिडक्शन। देखिए पेपर वेस्ट लैंडफिल्स में जाता है और जगह ऑक्यूपाई करता है। पेपरलेस अप्रोच इस वेस्ट को रिड्यूस करती है। तीसरा फायदा है हमारा कन्वीनियंस ना। देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इजीली स्टोर, सर्च और शेयर किए जा सकते हैं, आपको फाइल्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। चौथा फायदा क्या है, एफिशिएंसी है भाई, काम फास्टर हो जाता है। इजीली ऑफिस और स्कूल्स में जहां डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है वहां पे काम बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से होता है। अच्छा अगर इसकी एक और रिलेटेबल एग्जांपल ली जाए ना, तो जरा सोचें आप स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस वर्कर हैं। आपके पास 10 डिफरेंट नोटबुक्स हैं और हर जगह नोट्स स्कैटर्ड हुए हैं। अब अगर वही नोट्स आप मोबाइल या लैपटॉप में ऑर्गेनाइज करें तो आपको सब कुछ एक क्लिक पर मिल जाता है। या फिर वो जो रिसिप्ट्स और बिल्स होते हैं ना, है ना, हाँ, यानी कि हर चीज फिजिकल फोल्डिंग में स्टोर करने के बजाय ईमेल्स या एप्स में सेव्ड हो। देखिए दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में जहाँ डिजिटल सिस्टम्स ऑलरेडी काफी एडवांस हैं, बैंक्स, स्कूल्स और ऑफिसेज ग्रेजुअली डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी ये लाइफस्टाइल सिर्फ फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट रियलिटी भी बन चुका है। अच्छा अगर कुछ टिप्स के बारे में बात करूं, प्रैक्टिकल टिप्स, तो भाई बिल्स को ईमेल्स पर रिसीव करें। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ये जो आपके मोबाइल बिल्स को आप पेपर की बजाय डिजिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि नोट्स ऐप यूज करें। शॉपिंग लिस्ट हो गई, आइडियाज या रिमाइंडर्स जो हो गए वो अपने मोबाइल में लिख लें कहीं, उसे आदत बनाएं। डॉक्यूमेंट स्कैन करें, इंपॉर्टेंट पेपर्स को स्कैन करके क्लाउड स्टोरेज में सेव करें। चौथी चीज है ऑनलाइन फॉर्म्स प्रेफर करें। जहां भी ऑप्शन हो फिजिकल फॉर्म्स के बजाय आप ऑनलाइन सबमिशंस यूज करें। प्रिंटिंग अवॉइड करें, सिर्फ जरूरत हो तब प्रिंट करें। और डबल साइडेड प्रिंटिंग यूज करें भाई, अगर प्रिंट करना ही है तो डबल साइडेड करो ना। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक सिंपल पेपर शीट बनाने के लिए वाटर और एनर्जी दोनों यूज होते हैं। अगर हम अननेसेसरी प्रिंटिंग कम कर देते हैं तो हम इनडायरेक्टली मल्टीपल रिसोर्सेज सेव कर रहे होते हैं। और ये सेविंग्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि लार्ज स्केल पर भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो साथियों जब आप पेपरलेस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आपके पास क्लटर कम होता है, स्पेस बेटर यूटिलाइज होती है और मेंटल लोड भी रिड्यूस होता है। डिजिटल सिस्टम्स आपको कंट्रोल

0: और क्लैरिटी दोनों देते हैं। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, जहां पॉसिबल हो पेपर की जगह डिजिटल ऑप्शंस यूज करें। और भाई आज का चैलेंज भी है हमारे पास, आज से कम अज कम एक चीज चूज करें जो आप डिजिटल, जिसे कह सकें डिजिटल है, पेपर से शिफ्ट कर जाए, जैसे नोट्स हो गए, बिल्स हो गए, रिमाइंडर्स हो गए। और अगर आप ऑलरेडी पेपरलेस हैं तो किसी और को इनकरेज करें कि वो भी आपके वाली हैबिट अपनाए। तो भाई साथियों, पेपरलेस लाइफस्टाइल सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन है। जब हम कम पेपर यूज करते हैं तो हम सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बढ़ाते बल्कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हर डिजिटल चॉइस एक दरख्त को बचाने के बराबर है साथियों। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है सबर। सबर एक ऐसी खूबी है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। जिंदगी में हर इंसान को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो शख्स सबर करता है अल्लाह उसे

पसंद करता है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना और हिम्मत से वक्त गुजारना है। कभी कभी हम फौरन रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। हर तकलीफ के बाद आसानियां छुपी होती हैं। आज का अमल ये है कि जब भी कोई छोटी या बड़ी परेशानी आए, फौरन रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुककर सोचें और दिल से दुआ करें। सब्र करने वाला कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। भाई वैसे तो गर्मियां आते ही दादी और नानी के घर आना जाना, वो गर्मियों की छुट्टियां, वो सब याद आने लगती हैं। सबका मिलना मिलाना, दोस्तों का आना जाना, बचपन की वो साइकिल, वो खेत खलियान, वो बाग जिसमें घुस के हम आम तोड़ा करते थे, तो ये सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। साथ ही साथ जब हम शहर भी आए तो भाई शहर पर आने के बाद भी जब रात में बिजली की कटौती होती थी, शटडाउन होता था, इलेक्ट्रिक शटडाउन जिसको कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन जिसको कहते हैं नॉर्मल अलवाजों में, तो हमारे यहाँ यही कहा जाता है, तो भैया वो घर पे ऊपर जाके छत पे सोना, लाइट की चमक से भागना, फिर वापस आ जाला, और फिर कभी बारिश का होना, यार क्या क्या यादें जुड़ी हैं गर्मी के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हाँ जी, तो कैसे हैं सभी लोग, सभी को ट्यूसडे आफ्टरनून और मॉर्निंग के दरमियान का ये जो वक्त है ये सबको मुबारक हो। भाई ये वो वक्त, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त तक आते आते दिन जो है वो पूरे तरीके से तो सेट नहीं हुआ होता है, पूरे तरीके के तो सेट जब ही होगा जब आप सरवर मिर्जा के साथ जुड़ जाएंगे FM 107 पे सन एंड साउंड प्रोग्राम के अंदर। बाकी ये है कि मॉर्निंग तो आपकी अच्छी हुई होगी इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर नहीं भी हुई है, कोई ऐसी शक्ल देख ली आपने सुबह सुबह माजरत के साथ, या कोई ऐसा वाकया हो गया आपके साथ, या ऐसा कोई मसला हो गया, तो कोई गल नहीं है जी, सरवर मिर्जा आ गया है मेरे साथ, आगे शेयर कर सकते हैं आप अपना मसला भी, मुझे बता सकते हैं, हर चीज का इलाज लेके आता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ बता भी सकता हूं, सीखता तो आप लोगों से रहता ही हूं वे। तो भैया ज्वाइन करिए हमारे साथ, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, 666-22-107 इज द नंबर, 666-22-107 पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मैसेजेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ खास है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, हैप्पी वाली बर्थडे है तो भी शेयर कीजिए, और अगर कोई एनिवर्सरी है या कुछ खास दिन है, और कुछ भी नहीं है तो यार हर दिन खास ही खास है, अगर मैं और आप साथ हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पे। और वहीं अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने के लिए हमारी लाइन

पता ही है, और वो है 4434377। मैं आप और FM 107, हम आप साथ साथ, तो भाई सभी लोग साथ साथ है यहाँ पे, तो 4434377 443 443 77 पे आप कॉल कर सकते हैं। अब जैसे इस वक्त मेरे सामने एक मसला आ रहा है, तो वो भी इस वक्त कह देना बेहतर है। मुझे भैया कॉल आ रही है व्हाट्सएप के नंबर पे, तो जनाब, ख्वातीनो हजरात, दोस्तों, बुजुर्गों, क्या नंबर है ये आखिर में 2056 जिन्होंने अभी मुझे छेड़ा है मिस कॉल मार के व्हाट्सएप के नंबर पे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कॉल करने के लिए नंबर मैं बता रहा हूँ, कॉल करना है तो नंबर है 4434377। इस पे कॉल कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल साहब, बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारी अपडेट भी है, एंटरटेनमेंट भी आपके लिए लेकर आया हूं मैं, और साथ साथ आज का जो मुद्दा है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, और हल्का फुल्का अपने गर्मियों के हिसाब से, अपने हिस्से के हिसाब से, जो हमारे साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें हुई हैं, होती आई हैं या हो चुकी हैं, तो मैं तो टॉपिक वैसे ही रखता हूं ताकि हम लोगों को डिस्कस करने में भी मज़ा मिले और कुछ ना कुछ सीख मिलती रहे, एक दूसरे से समझते रहें, साथ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही भाई ज़िंदगी का एक आसान सा तरीका भी है और एक उसूल भी बना लीजिए। जहाँ जितनी परेशानी होगी खुदा ना खास्ता, उतना ही मसला जो है वो बढ़ता जाता है। जितनी जिस चीज को अपने सर पे लेंगे, जितनी टेंशन मानेंगे, जितनी टेंशन मनाएंगे, तो वो भाई कोई भी चीज हम मनाते तो वो फिर बढ़ती चली जाती ना, तो इसलिए मनाना ही नहीं भाई, खाली खुशी को मनाना है, वो भी आखिर तक। ऑलराइट देन, तो चलिए साहब करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, बढ़ते हैं पहले गाने की जानिब। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक सोनू निगम की आवाज में, ये दिल दीवाना दिल। याद है कौन सी मूवी थी? आई वाह, बड़े परेशान हो जाते हैं शाहरुख खान फिल्म में इस मौके पे आते आते, और फिर वही होता है जो होता आया है। फिलहाल एंजॉय कीजिए ये ट्रैक FM 107 पे, सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप, सरवर मिर्जा आपके साथ, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

0: बता के भी जाती है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर हम वार्तालाप भी इसी के ऊपर करने वाले हैं कि भाई आपने कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंजॉय की है मेहमानों के हवाले से, वो पुराने दिन, वो पुरानी यादें, मेहमान नवाजी का कल्चर आपके यहाँ कैसा था, या फिर अम्मा अब्बा के कैसा था। हम तो लाइन लगा के खड़े रहते थे जिस वक्त भैया चाय वगैरह पूरी निपट जाएगी, हैं समोसे अगर एक आध बच गया तो उसके ऊपर लड़ाई होती थी और समोसे के तीन चार टुकड़े हो जाते थे। तो आइए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं आज के पहले कॉलर से और देखते हैं उनका क्या है कहना। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: आइए आइए आइए शहजादा सलीम साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला।
1: बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो यही मामला चल रहा है, बिल्कुल खैरियत और फिश फाश एकदम रिलैक्स।
0: क्या बात है। तो आपके कुछ गर्मी के हवाले से बात करें तो ड्यूरेशन टाइमिंग्स वगैरह चेंज हुए हैं क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कुछ प्रोग्राम मिस हो रहे हैं और अभी सभी लोग सुबह 3 बजे का हो गया है मेरा ड्यूटी का है ना।
0: अच्छा,
1: तो 3 से फिर वो जो ऑपरेटर होते हैं वो उनकी 4 बजे की शिफ्टिंग शुरू होती है तो 10 बजे ब्रेक लेते हैं, फिर अभी वो 3 बजे फिर स्टार्ट करेंगे, फिर वो शाम को 6 बजे रिलीज होके, तो इसी दौरान उनके साथ मेरा रहता है ये पिक एंड ड्रॉप का मामला।
0: क्या
1: तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ना, इसी इसमें तो 1 तारीख से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर ही दिया है
0: जी, जी,
1: तो हमारा ये कंपनी वही है और उसी तरह से हमारा मामला चलता रहता है।
0: टाइमिंग के हवाले से जाहिर बात है
1: चेंज हुआ है
0: कतर में,
1: तो मैं तो सुबह 3 बजे वो तो मेरे को निकलना होता है प्लांट से और पिकअप होता है 3:15 तक और 4 बजे की ड्यूटी से पहले बंदे को उधर ड्रॉप करना होता है साइड पे।
0: ओके ओके ओके,
1: हाँ इसी तरह का मामला होता
0: इसी दरमियान। तो फिर इसका मतलब यह है कि जब फजर शुरू होती है उसके बाद से बस आपका दिन शुरू हो जाता है और उसी के साथ साथ कह सकता हूँ मैं, और फिर आराम फिर दोपहर में जाके मिलता है लंच के टाइम पे, मतलब करीब होंगे अब तो आप?
1: हाँ बस अभी लंच 12 बजे मैच खुलेगा तो 12 बजे से लंच होगा 1 बजे तक 1 घंटा, तो
0: 12 से 1 तो बस ठीक है, 1 बजे से 1:15 बजे तक 15 मिनट एक्स्ट्रा रखवा लीजिएगा जरा, समझ रहे हैं ना?
1: जी
0: समझ गए, क्या बात है शेखो। अच्छा भाई ये बताइए कि आज जाहिर बात है गर्मियां चल रही है तो उसके हवाले से हमारी बातचीत भी चलती रहती है, तो कुछ मेहमान नवाजी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, जो पहले मेहमान आया करते थे आगे उनके लिए नाश्ता वगैरह लगता था और तहजीब तमीज़ हमें सिखाई जाती थी पहले से कि भाई देखो ऐसा करना ऐसा मत करना, अगर ऐसा करा तो उसके अम्मा कहती है उसका मुँह तोड़ दूंगी। तो इतने खतरनाक मसले से गुजरना पड़ता था क्योंकि होता यह था कि जैसे ही उबले हुए अंडे लगे, समोसे लगे, जलेबी चली, ओए अब हमारे तो आप तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी कि ये क्या हो रहा हमें खाने को नहीं मिल रहा। तो खाने पीने के हवाले से उन रिवायत के हवाले से क्या शेयर करना चाहते हैं शहजादा भाई?
1: उस रिवायत में क्या होता था, हम किसी के यहाँ मेहमान जाते थे ना तो मेहमान नवाजी हमारी जब होती थी तो हम तो छोटे बच्चे होते थे ना तो हम हमारा तो यही रहता कि कहाँ पहले टूट पड़े, यानी 1 से 4 आइटम 5 आइटम तो रहते थे, तो वो अम्मा जो हमारी रहती थी ना वो आँख फाड़ फाड़ के ना धीरे फाड़ के देखती थी।
0: यार ये तो सभी के साथ होता है मुझे ऐसा लगता है, और ये चीज तो
1: उससे पहले गाइडलाइन दी जाती थी कि ज्यादा नहीं हाथ लगाना या खाना नहीं,
0: गाइडलाइन डू एंड डोंट्स, पूरी गाइडलाइन निकल के आती थी कि ऐसे रहना है ऐसे रहना है इस तरह बैठना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और ये वो नहीं करना तो वो क्या, वो एक काम से सुने एक काम से निकाल दिए और फिर दस्तरखान सस्ता था तो उसके टाइम पे, और फिर जो मेहमान नवाजी करते भी थे ना रिश्तेदार हो खाला हो ये भी हो तो वो है ना अम्मा की हमारी है ना डांटते थे, अरे बच्चे अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे।
0: सही, सही, सही। अच्छा ये एक मिनट मैं आपको रोकूंगा, ये बात आज तक समझ में नहीं आई, मतलब जब हम किसी के जाते थे और ये हरकतें करते थे तो वो मेहमान जो है वो हमें मतलब हमारे घर वालों को अरे भाई बच्चे हैं कब करेंगे अभी नहीं करेंगे या वैसे। अच्छा अब जब उन्हीं के बच्चे दूसरे के जाते हैं तो उनको वही गाइडलाइन दी जाती है निकाल के, तो जब बच्चे हैं तो छोड़ दो यार।
1: हाँ जी जी, उनको रिप्लेसमेंट है ना पूरा मिलता है ना वहाँ पे, वो जब हमारे घर में आते हैं तो हम चुपचाप हाथ मतलब
0: फिर तो
1: बचा सकते वो है।

0: तो हमारे हिस्से में है, तो एक तरह से मतलब वो रहता था, तो वो उनके भी बच्चे मतलब खालाजाद भाई वगैरह जो भी रहे ना, तो उस तरह से वो भी मतलब यही रहते कि उनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता था कि बस जल्दी से जल्दी है ना आइटम है ना जल्दी जल्दी मैं ले लूं, कोई मतलब मिस ना होता है, तो फिर उनको भी पनिशमेंट मिलती थी। और हम जब घर पे आ जाते थे मेहमान नवाजी करके, तो कुछ हमारे बहन भाइयों में कोई एक बहन है ना एकदम से खुददार टाइप की होती थी, हाँ। तो वो तो एक लिमिटेड एक फॉर्मेलिटी पूरा करती थी, बेचारी भूखी भी रह जाती थी।
1: यार बहनों में बड़ी बहनों में ये तो होता है वाकई,
0: लेकिन हाँ लेकिन वो जब घर पे आने के बाद है ना फिर वो अम्मा को फिर बोलती थी देखो इसने देखो ये किया वो किया, वो तो पूरा खत्म कर दिया कुछ भी छोड़ा। फिर वो झगड़े होते थे घर में, पिटाई भी हो जाती थी।
1: हम सादा लोगों के बड़े अजीब से मसले होते हैं और बड़े अजीब से ही मतलब अजीब से सुकून होता है उसमें, वो तरबियत वो ख्याल वो तहजीब वो तमद्दुम वो सारी चीजें क्या ही कहने।
0: बहुत बहुत बहुत रहता था एहतराम हर चीज का है ना, डिसिप्लिन रहती थी। हाँ लेकिन अब ये 2026 में तो मतलब एक तो मतलब आपको एक उनको बूफे लगा दिया जाए, मेरे ख्याल से तो एक अच्छा खासा बूफे लगा दिया जाए मुआवजी में, तो फिर भी यार ये क्या वो आइटम उसके नहीं रहा, यानी सीमा तान के बच्चे भी बोलते हैं ना उनके यहाँ वो नहीं रहा, उनके यहाँ ये था इनके यहाँ ये था इनके यहाँ वो नहीं।
1: अब जाके तो ये चीजें हो गई हैं, पहले तो अगर चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह भी होते थे तो वो भी बड़ी बात समझी जाती थी, मगर भाई हाँ वाकई जितने दिन आगे बढ़ रहे हैं जितनी दुनिया आगे बढ़ रही है जितना जमाना बदल रहा है लोग भी और जहनीत भी शायद बदलती जा रही है, और शायद हम भी बदल चुके हैं शहजादा भाई, अल्लाह ताला खैर करे सभी के साथ।
0: इस दौर में ना तकल्लुफ नाम की कोई चीज नहीं रह गई, जहाँ तक दूर दूर कहीं भी नजर नहीं आती है तकल्लुफ,
1: कहीं बराबर में से भी नहीं गुजर रही है किसी के होती हुई तकल्लुफ जो है बिल्कुल छुप गई है जाके, कहीं किसी के बराबर से भी नहीं गुजर रही है।
0: गुंजाइश ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई, बोले आए इतने दूर से तो पहले तो बोले ना अभी तो खुल के बोलते हैं ना, और इतनी मोहब्बत थी आज के टाइम में भी ना, तो एक अच्छा मतलब एक अच्छा सर्विस भी होती है और एक अच्छा मतलब मेहमान नवाजी होती है, हर तरह से मतलब एक खुशहाली दिल भी होता है, ऐसी मतलब नहीं उसमें, लेकिन जो और एक जो चीजें होती है ना कि अगला क्या सोचेगा, तो हम वो फिक्र में ज्यादा रहते थे कि बच्चों की वजह से कहीं इनको घर में तो इस तरह से नहीं मिला होगा, यहाँ कुछ ज्यादा ही है, तो घर वालों की इस तरह की फीलिंग हो जाती थी कि वो कहीं हमारे इस तरह से ना सोचे कुछ,
1: सही,
0: तो
1: सही।
0: अपने जब राइट होते थे पुराने जमाने के पुराने ख्याल ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेजली ऐसी रहता था,
1: ऐसी रहता था। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा साहब अपनी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए और वो दिन याद दिलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह तीन के दम में भी तशरीफ लाइएगा लंच के बाद जब आप खा पी के सेट हो जाएं, ठीक है?
0: बिल्कुल
1: ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे शहजादा सलीम साहब जो अपनी पुरानी कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आज का टॉपिक हमारा इसी पे है कि भाई मेहमान नवाजी का कल्चर आपके यहाँ कैसा था या अम्मा अब्बा के यहाँ कैसा था और उससे क्या सीख मिली और किस तरीके की चीजें याद रह गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंशु भाई
2: जी
1: अहलन व सहलन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंशु भाई आप कैसे हैं, खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: अल्लाह का शुक्र है भाई। कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
2: अच्छा
1: अच्छा
2: अल्हम्दुलिल्लाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आज सन एंड साउंड में हम जो मुद्दा छेड़े हुए हैं वो मेहमान नवाजी का है, वो दिन वो यादें सुना ही होगा आपने, तो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ?
2: जो हमसे पहले कॉल किए थे वो तो सारी बातें शेयर कर ही दी हैं।
1: हाँ हाँ।
2: अब उसमें बस हम थोड़ा सा कहना चाह रहे हैं कि पहले के जमाने के जो बच्चे थे ना,
1: हाँ हाँ।
2: ये सब चीज मिलती नहीं थी उनको जल्दी, जब मिलती थी तो वो टूट पड़ते थे।
1: सही, अब ओ सही,
2: आज के जमाने के बच्चों को सब मिल रहा है,
1: हर चीज मुहैया है आसानी से, बिल्कुल। तो वो ललक वो ख्वाहिश ही नहीं रही,
2: वो ललक खत्म हो गई है,
1: इसीलिए तो इससे एक बड़ी सीख ये मिलती है कि हर चीज के लिए बच्चों को हर चीज फराहम करनी भी नहीं चाहिए एक्चुअली, और इस तरीके से ये तरबियत, और
2: पहले के बच्चे जो थे कभी

0: पैदल पाते थे इसलिए टूट पड़ते थे, खाओ फिर मिले ना मिले क्या हो क्या ना हो।
1: नहीं तुम देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि फिर मिले ना मिले, बात सही है, उनकी ज़हनियत यही कह रही होती है उनसे, तो वो जो मासूमियत है वो बच्चों को कहना चाहिए कि कम से कम
0: जी अम्मी डांटती रहे कोई देखता रहे कुछ नहीं, बस पहले अपनी मुट्ठी अपना बिल्कुल मुंह भरना चाहिए।
1: तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर फराहम करी जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ मसले पैदा होते रहते हैं, ख्वाहिश मर जाती है और उनको इन चीजों का दर्द नहीं रहता। सही, आपका कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो जिसमें एक समोसा रह गया हो प्लेट पे रखा हुआ और अम्मा घूर रही है और आपने फिर भी उठा लिया हो?
0: वो तो अक्सर होता था,
1: पिटे हैं इसके लिए, क्या बात है यार।
0: बचपन में हमें हमारे घर वाले छछुंदर बोलते थे।
1: अरे
0: मेरी मम्मी हमें छछुंदर बोलती थी, अब सोच लीजिए किस कदर शरारती हो गया।
1: हर जगह से कोई चीज अपनी जगह नहीं छोड़ी, कब गायब हो गई पता ही नहीं चला, पता चला अंशु भाई उठा के लेके भाग गए।
0: कोई भी घर में कोई भी सामान गायब हुआ या कुछ हुआ तो हमारे मेरा ही
1: क्या कहने कहने, जबकि खैर मैं भी आपके करीब करीब ही हूँ और मेरे साथ तो मसला ये था कि अगर पड़ोसियों के भी अगर कोई मसला हुआ है तो नाम मेरा ही आता था।
0: यार मोहल्ले में कोई शिकायत किया तो पहले अपने हमारी पूछती
1: थी, शराफत का जवाब ही नहीं ना, हमारी तो शराफत अपनी जगह है और चीजें अपनी जगह। बहरहाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया अंशु भाई, और
0: ईद में जब कपड़े मिलते थे तो साल में एक मरतब मिलते थे इसीलिए ज्यादा खुशी थी ईद की।
1: सही सही, एक एक हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं हम लोगों के लिए खुद और हम जो अपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ छोटों के साथ कर रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि भाई खुद एक जहन में ये भी आता है यार कि मैंने नहीं किया चलो इसको करवा देता हूँ और हमारे टाइम पे नहीं था या हम नहीं कर पाए अब मैं इसको करवाऊंगा, मगर कहीं ना कहीं हम उनको दूसरी तरफ फेर रहे हैं हर एक चीज फराहम करके, ये हमें जहन में रखना चाहिए थोड़ा मतलब एक दोस्ताना तरीके से ही सही। अगर आपके हाथ में वो चीज, लेट से यू हैव अ टॉफी और आपको उसको देनी है, वो मांग रहा है, तो थोड़ा मजे लीजिए, थोड़ी तफरी लीजिए, एक 5 मिनट बात करने के बाद उसको वो टॉफी दीजिए भाई, ताकि उसको पता रहे कि ये चीज कैसे आती है और किस तरह आगे उसने भी कमानी है इंशाल्लाह ताला।
0: साइकोलॉजी भी बोलती है ना कि बच्चे जब भी मांगे तो उसको उसी वक्त ना दें।
1: सही,
0: नहीं तो वो बच्चे जिद्दी और बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगे।
1: सही,
0: हम लोग जब भी कोई भी, हम लोग छोटे थे तो कोई भी सामान जिद करते थे तो कहाँ मिलता था, पहले मार मिलती थी।
1: सही,
0: फिर मिलती थी।
1: सही,
0: वो भी दूसरे तीसरे दिन या कभी कभार तो बहाना हो जाता था कि पैसे नहीं है कहाँ से दें, अब्बा कमा के ना ही दीन है।
1: सही सही सही, ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये
0: आज,
1: जी
0: आजकल के बच्चे मुंह खोले ही नहीं मिल गया,
1: मुंह खोले
0: तो
1: ही नहीं
0: करते
1: मिल गया। सही,
0: जीत करते हैं, मारपीट करते हैं, अपने मम्मी को मारते हैं आजकल के लड़के बच्चे।
1: ये चीजें बिल्कुल साइकोलॉजिकली उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट डाल रही हैं, मजाक का पार्ट, तो इसलिए भाई सब इस बात का ख्याल रखें और जिस तरीके की प्यारी प्यारी और अच्छी और खूबसूरत जिंदगी हम लोगों ने जी है, थोड़ा हिस्सा उनको भी उस चीज का जीने दें और एंजॉय करने दें। जी
0: थोड़ा सा तो कमी रहना रखना चाहिए,
1: थोड़ी सी कमी हर चीज में रखनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, अपार्ट फ्रॉम दीन हर चीज में कमी रखें, दीन में ज्यादा से ज्यादा फराहमी करें हर चीज की, कोई
0: हर्ज नहीं होगी, जब अल्लाह ने हर चीज में कमी रख दी तो हम इंसानों को क्यों पूरा करें।
1: सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: सही सही अंशु भाई, और कुछ कहना चाहते हैं अंशु भाई?
0: ओके
1: सर, थैंक यू।
0: टॉपिक सुने तो उसी वजह से याद पड़ गया। अहलन
1: वसहलन,
0: अहलन वसहलन, मिलता नहीं था ना इसी वजह से।
1: चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, अब तीन का दम में मुलाकात होगी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई बातें तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला, मेरा आपका साथ अभी लंबा है, मुझे कॉल आ रही हैं और इंशाल्लाह ताला हम अब एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं क्योंकि अजान भी सुननी है और वापस आने के बाद चर्चा जो है सन एंड साउंड में जारी रहेगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इस वक्त 7200 और 0837 दोनों नंबर से मुझे कॉल आ रही है, बस अजान के बाद इंशाल्लाह आप लोगों से बात करते हैं, फिलहाल एंजॉय कीजिए ट्रैक तू मोहब्बत।

है आतिफ असलम मोनाली ठाकुर। तो ये बातचीत हो रही है आज मेहमान नवाजी के हवाले से, वो कल्चर के हवाले से, वो यादों के हवाले से कि कैसा था आपके यहाँ का माहौल और अम्मा अब्बा के घर में किस तरीके से चीजें आपके साथ हुआ करती थी जब मेहमान आते थे या फिर आप कहीं जाते भी थे। तो इसी के ऊपर आज चर्चा चल रही है। कॉल कर सकते हैं आप 4434377 पे, मैसेज अपने भेज सकते हैं 666221107 पे। इस वक्त FM 107 पे सन एंड साउंड प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, सरवर मिर्जा आपके साथ, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
5: روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
6: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کی معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام
7: ہر جمعہ شام 4 بجے اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
0: दोस्तों घर की हिफाजत आपके हाथों में है, एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें।
8: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सर्वर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
0: हाँ जी, वेलकम बैक, हेलन व सहलन, खुशांदी स्वागतम, और बिल्कुल सन एंड साउंड पे सर्वर मिर्जा आपके साथ। और यहाँ बातचीत हो रही है आज मेहमान नवाजी के हवाले से कि भाई आपके यहाँ क्या कल्चर था, क्या रीति रिवायत थे और क्या रिवाज थे जो आप फॉलो करते थे, और अम्बा अब्बा के घर कैसा होता था। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम सलाम जनाब।
0: क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं?
9: बढ़िया सर।
0: बढ़िया या बहुत बढ़िया?
9: उम्मीद करता हूँ कि कड़कती धूप के जैसे आप भी बिल्कुल
0: भाई। कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
9: ऑल गुड सर। ओके रिपोर्ट,
0: ओके की रिपोर्ट है। चलिए जी, तो फिर आज बातचीत हो रही है मेहमान नवाजी के हवाले से। गावा भाई, वो टाइम, वो दौर जब मेहमान नवाजी का कल्चर आपके घर में आप बनाने में लगे हुए थे, और जब मेहमान आते थे तो अम्मा आके एक प्लेट रखती थी समोसे की, एक बिस्किट की, एक नमकीन की, और सबसे ज्यादा नजर आपके ऊपर रखी जाती थी कि ऐसा ना हो कि सावधानी हटे और दुर्घटना घटे।
9: सर्वर भाई यार, आप ना यार मेरे को 20 साल पीछे ले गए सर्वर भाई।
0: तो क्या कुछ हुआ ऐसा, और कोई वारदात याद है आपको ऐसी तो शेयर करना चाहते हैं?
9: वारदात नहीं, कोई अच्छी

0: इसकी कोई एक झलक आपको सूख वाकिफ में या पुरानी सूख में मिल जाएगी जो गाबा भाई बता रहे हैं जिस तरीके का। जी गाबा भाई
1: जी, तो सर्वर भाई क्या होता था, बारिश आती थी ना तो 100% छत चौथी ही चौथी थी, उसमें कोई डाउट नहीं है।
0: सही सही।
1: तो हमारे ना सर वहाँ पे कोई प्रोग्राम था रिश्तेदारों के, मेरी मासी का घर भी पास में ही है।
0: ठीक है।
1: तो जो नानके की तरफ से रिश्तेदार हैं वो तो सेम है मासी के और मदर के। तो कोई प्रोग्राम था, मेरे को ये नहीं याद आ रहा शादी थी या कुछ था सर। तो रिलेटिव आए हुए थे सर हमारे घर पे। तो आप उनका सर प्यार देखिए जो हमारी
0: पहले से ही हंसी आ रही है, सुनने से पहले ही हंसी आ रही है। ओके
1: सर, जो हमारी किचन थी ना वो भी ओपन में ही थी बाहर, क्योंकि उस टाइम चूल्हा या स्टोव होता था सर।
0: जाहिर बात,
1: गैस लेने की उस टाइम हिम्मत तो है नहीं थी सर।
0: जाहिर बात है।
1: और एसी भी उस टाइम एक सपना ही होता था सर, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, रिश्तेदार आए हुए थे घर पे हमारे, तो तकरीबन थे 15 से 20 के अराउंड बच्चे।
0: ओह अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी पलटन आई थी भाई।
1: बड़ी पलटन थी नानके की तरफ से जी।
0: ओके।
1: मामे के बच्चे समझ गया। सारे
0: नानके मतलब तो ननिहाल की तरफ से कहना चाहते हैं गाबा भाई, मैं सबको बताता चलूं ताकि सबको क्लियर होता रहे। ओके
1: तो सर्वर भाई आप काउंटर क्वेश्चन भी करना अगर आप क्लियर कर रहे हो तो मजा आएगा।
0: हाँ ठीक है ठीक है।
1: तो प्यार, तो सर उनका इतना प्यार था ना मेरी मदर के साथ हमारे साथ, आप यकीन मानिए सर वही 15 से लेके 20 के आसपास जो बच्चे थे सारे एक ही कमरे में रुके थे सर रात को।
0: ओके।
1: तो उस टाइम सर क्या होता था, खाने के लिए स्पेशल जो चीज होती थी सबसे स्पेशल वो तो समोसा होता था सर।
0: जाहिर है।
1: इवनिंग एज अ इवनिंग स्नैक।
0: हाँ मतलब उससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं था समोसे का, मतलब तो ये हुआ कि भाई नाश्ता एकदम पीक पे है, और अगर उसके साथ नाम तो नहीं लूंगा मैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह रख दी तो भैया फिर तो बस चार घर में चर्चा है।
1: हाँ सर्वर भाई, वो सॉफ्ट ड्रिंक भी दूसरी होती थी जो घर पे मशीन से बनाई जाती थी
0: या फिर कंचे वाली बोतल भी तो होती थी यार गावा भाई।
1: कंचे वाली बोतल तो पक्का सहारा दिया है सर।
0: सही।
1: तो सर्वर भाई देखिए उस टाइम में कितना प्यार होता था, रिश्तेदारों के पास भी टाइम होता था सर। आज हर किसी के पास पैसे हैं, सहूलत है, सारा कुछ है,
0: टाइम नहीं।
1: तो हम लोग सर वो चीजों को तरसते हैं, अभी वो लोग हमारे घर पे आए जब हम उनके घर पे जाएं और रुकें।
0: सही।
1: तो एक वो जो गैप है ना सर वो मेरे को नहीं लगता भी आगे आगे भरेगा,
0: आगे भरेगा और आगे वाली जनरेशन, इस जनरेशन को, हमारे साथ वालों को भी मैं कहता हूँ कि उस बात का एहसास नहीं है। भाई मैं अपनी बात करूँ, अगर बॉर्न ब्रॉट अप कतर होने के हिसाब से या मिडिल ईस्ट या कहीं और बाहर, तो वो चीजें भी नहीं मालूम होती हैं हम लोगों को यूजुअली। ये तो हमारे अब्बा का मैं तो कहता हूँ मेरे ऊपर एहसान है कि उन्होंने मुझे इंसान बनाने के लिए वापस भेजा कि मैं इंडिया जाऊँ, अपनी पढ़ाई करूँ, दादा दादी की खिदमत करूँ। तो वो सारी चीजें पता ही नहीं है एक्चुअली इस जनरेशन को, इसके बाद वाली जनरेशन को, कि हम बात क्या कर रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। अच्छा, और अगर ये कहा जाए बच्चों को आज के एक समोसे के पीछे चार लोगों की लड़ाई होती थी तो
1: कहेंगे
0: हाउ क्रिंज, क्या बात कर रहे हैं आप लोग।
1: तो भाई ये सर्वर भाई आपने उधर इंडिया में कितना टाइम गुजारा आपने?
0: मैंने बहुत टाइम गुजारा, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी भाई, मैंने पूरी पढ़ाई वहीं से करी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसके बाद वापस आया।
1: 10 साल के आसपास?
0: ज्यादा, तकरीबन 15-16 साल मैंने, 15-16 साल मैंने वहां गुजारे। मैं छोटी क्लास से चला गया था दादा दादी के पास और काफी वक्त गुजारा। खैर 2-3 दिन कम है बात करने के लिए।
1: आपको मिट्टी के मूल्यों का अच्छी तरह से
0: बहुत अच्छे से पता है यार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पता है।
1: सरवर भाई हमारे साथ क्या होता था, जब हम लोग नानी के घर पे जाते थे ना तो उनका जो घर था वो तो सर पूरा ही गारे का होता था।
0: सही।
1: पूरा ही कच्चा, टोटली उसकी दीवारें भी गारे की चिनाई से होती थी। तो वहाँ पे सर लाइट भी इतनी ज्यादा नहीं थी उस टाइम। तो यकीन मानिए सर्वर भाई वो अंदर से इतना ठंडा रहता था ना, उसके अंदर टेम्परेचर इतना मेंटेन होता था, तो उसी के अंदर हम लोग खेलते थे, इतना मजा आता था ना सर्वर भाई। और नानी के घर के पास से ट्रेन गुजरती थी। जो मेरी नानी का घर है ना वो कुरुक्षेत्र में, आपने सुना होगा।
0: जी जी जी जी जी। ओके ओके।
1: हाँ, उसके पास एक गांव है छोटा सा पलवल, तो वहाँ से जब ट्रेन गुजरती थी ना सर,
0: पलवल हमारे तो हमारी तरफ भी पलवल होता है गांव,
1: वो सर उधर है वो गाजियाबाद के पास।
0: जी जी, यूपी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो तो बहुत बड़ा एरिया है सर।
0: जी जी जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब
1: तो ये गांव था सर छोटा सा
0: जी,
1: तो वहाँ पे जब सभी हम लोग रात को छत पे सोए होते थे बच्चे, तो इतना सर इंजॉय होता था ना जब ट्रेन गुजरती उसको बाय करना।
0: हाँ, और वो अगर रात के औकात में आ जाए तो और तफरी आती थी। अब आप देख लीजिए जरा सी भी साउंड

0: जाए आपके बराबर बराबर कोई मोटरसाइकिल लेके निकल जाए रात में, तो हम अपनी बात कर रहे हैं, तो अब आप देखिए किस कदर का डिस्टर्बेंस होता है कि यार वो हो नींद खुल गई या कुछ और हो गया। असल में मसला ये होता है कि जिस माहौल में आप रहते हैं तो उसमें आप ढल जाते हैं, और वो माहौल ऐसा था कि जिसमें ढलने में मजा भी आता था और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता था।
1: जी एक सर होता है ना ट्रेन का, जब उसने फाटक के पास से गुजरना है हॉर्न देना ही देना है।
0: सही,
1: तो आपको पता है लाजमी जहाँ पे गांव होगा वहाँ पे फाटक जरूर होता ही होता है।
0: सही सही,
1: तो जब रात को ट्रेन गुजरती थी ना सर उसका हॉर्न बजता था, इतना मजा आता था।
0: आवाजें पूरी जकड़ बकड़ जकड़ बकड़ जकड़
1: चक चक चक चक चक चक चक चक,
0: तो टाइम ही अलग था। खैर साहब बहुत ही अच्छी बात एज यूजुअल, और बड़ा मजा आया आपसे बात करके काबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ भी शेयर करना चाहते हैं?
1: बस सर्वर भाई आप जब क्वेश्चन पुट करोगे ना मेरे को तभी मजा आता है, जब मैं बात करता हूँ ना आप आगे से काउंटर क्वेश्चन करोगे तब मजा आता है सर्वर भाई।
0: चलिए साहब आज की तो आपने बात वैसे तो सारी शेयर करी ही दी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप तीन के दम में भी तशरीफ लाई है, मैं तो कहूंगा आप आते नहीं गेम खेलने, बिल्कुल डरते हैं
1: भाई। जिस दिन मैं नहीं जिस दिन मेरा मूड हुआ ना मैं फुली प्रिपेयर हुआ, मैंने खुद ही आ जाना है जी, आपको कहने की जरूरत।
0: ओके फाइन ओके फाइन, थैंक यू गावा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
1: टेक केयर सर, थैंक यू सो मच।
0: तो भैया ये थे गाबा भाई हमारे साथ जिन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें शेयर करी, और यहाँ पर एक और कॉलर, हेलो सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व
0: बरकातुह। कौन आ गया भैया? हेलो
2: सरवर भाई।
0: कौन है?
2: सॉरी निजान भाई।
0: अपनी खैर मना लो आसिफ भाई, तुम्हें अकेले जाना है इस्माइल भाई को यहाँ पे छोड़ के, अब गाड़ी अकेले कैसे चलेगी मेरे समझ में नहीं आ रहा।
2: नहीं वो मिजान भाई की दुआओं के साथ में जाएगी।
0: क्या बात है भाई, अहलन वसहलन, कैसे हैं, खैरियत से हैं आसिफ भाई?
2: बहुत बहुत।
0: छुट्टी की पूरी तैयारी?
2: हाँ फुल तैयारी भाई, एकदम फुल तैयारी, एकदम पैकिंग वैकिंग हो गई है।
0: क्या बात है
2: भाई, मैं मालूम है तुम्हारे को, मैं दो दिन से मतलब ये सोच रहा था कि आसिफ तो जा तो रहा है, बाकी कौन सी फ्लाइट है मालूम भाई मेरी, मैं तुमको शो करता
0: हूँ। हाँ नहीं वाम, वाम, खाली लिख के भेज दी।
2: ये भी अलाउड नहीं है भाई।
0: किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर सकते हम लोग बात करते हुए ना।
2: अच्छा अच्छा हाँ सॉरी, माफी चाहता हूँ भाई।
0: नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज सही वक्त पे रोक दिया मैंने आपको। तो आज बात हो रही है आसिफ भाई मेहमान नवाजी के हवाले से, पुराने कल्चर रीति रिवाज के हवाले से, जब मेहमान आते थे आपके यहाँ तो किस तरीके की सूरत हाल होती थी, या आप किसी के यहाँ जाते थे तो किस तरीके की सूरत हाल होती थी, स्पेशली जब वो नाश्ता वो खाना लगता था तो क्या होता था?
2: सरवर भाई ये तो मतलब मेरे रडार के बाहर गई है बात, क्योंकि मैं मेहमान नवाजी में हम लोग का तो कल्चर है बहुत, हम लोग जाते आते, बाकी मैं उस चीज के लिए नहीं हूँ, मतलब आज मेरा लगता ये मेरे से बाहर है रडार से।
0: अच्छा क्यों, मगर ऐसा क्यों यार, आपके यहाँ मेहमान तो आते ही होंगे घर पे, अब समोसे वगैरह की प्लेट लगती होगी, फिर अम्मा आपको घूरती होंगी कि खबरदार जो तूने उठा लिया, आंखों से ही सारी बातें कह देती थी अम्मा, ये सारी चीजें तो हुई होंगी यार, ऐसी बात नहीं है।
2: ये तो होती है, ये तो नॉर्मल है, मतलब जैसा हम लोग बचपन की बात है, जब छोटे छोटे बात छोटे छोटे हम लोग जब छोटे छोटे भाई बहन थे हम लोग, तो हम लोग घर में मेहमान वगैरह आते थे,
0: छुट्टियों में आते होंगे, गर्मियों की छुट्टियों में आप जाते होंगे कहीं ना कहीं, या लोग आते थे?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बात एकदम सही है भाई। बाकी
0: वैसे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जाहिर बात है बॉम्बे में चीजें बहुत फास्ट हैं, लाइफ बहुत फास्ट है, जगहें भी लोगों के पास उतनी कहीं नहीं होती, जाहिर बात है जब गांव वगैरह का जैसे होता है हिसाब किताब तो कहना चाहिए कि थोड़े से चीजें फर्क तो होती ही है।
2: हम लोग के बम्बई में मतलब घर बहुत है, दिल भी मतलब घर छोटे छोटे, बाकी
0: दिल बड़े बड़े है, दिल बड़े बड़े
2: हैं भाई।
0: नहीं ये तो बात
2: हम लोग है कि दिल बहुत बड़े बड़े
0: हमारे पास, हमारे साथ मैं खैर कम ही घूमा हूँ इंडिया, मगर हमारे नदीम भाई, शकीब भाई, शहबाज भाई हमारे हिस्सा हैं बॉम्बे के, पुणे से हमारे यहाँ लोग होते हैं, सना होती हैं, तो ये हमारे अपने दोस्तों के, अपने स्टाफ के, अपने कलीग से नाम बता रहा हूँ, तो जितना मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है वो बड़ा सुनहरा गुजारा है बॉम्बे वालों के साथ, पुणे वालों के साथ स्पेशली, तो ये तो मैं तारीफ करता ही करता हूँ आप सब लोगों की। खैर
2: बिल्कुल, आपको पता है मेरा घर किधर पड़ता है, किस साइड में पड़ता है?
0: अच्छा नहीं मैं
2: रेलवे स्टेशन के एकदम करीब।
0: अच्छा
2: और एयरपोर्ट के एकदम करीब
0: आए, ये कौन सी जगह, रेलवे स्टेशन भी करीब? अच्छा दी, तो मेट्रो मेट्रो करीब होगी।
2: मैं हर चीज बता रहा आपको, हर चीज यानी देखो हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे हमारे घर से यानी 5 मिनट का रास्ता है पैदल चल के।
0: अच्छा ओके वेरी गुड,
2: और पीछे भी हाईवे और आगे भी हाईवे
0: ओके,
2: और लेफ्ट साइड में जो हो गया हमारे

0: ये हो गया स्टेशन वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, पूरा रेलवे स्टेशन हो गया, और राइट साइड में हम लोग का हो गया ये हवाई अड्डा पूरा।
1: क्या बात है भाई, तो एकदम बीचो बीच है, जहाँ मर्जी आए, जिस तरफ चाहे उस तरफ से निकल जाओ, जो सा सफर करना है वैसा कर लो।
0: आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग अपने घर के पास में एक पहाड़ है हम लोग उधर, जिसका नाम है जरी मरी।
1: अच्छा जरी मरी,
0: तुम जी आप सर्च करना जरी मरी, और आप देखना जरी मरी से बैठ के आपको क्या दिखता है, एकदम प्लेन एकदम ऐसा लगता है अपने सर के ऊपर से जा रहा है एकदम।
1: वाह वाह वाह, तो ये तो मशहूर जगह होगी बॉम्बे की यार, जरी मरी।
0: बहुत बहुत बहुत फेमस जगह है जरी मरी, मतलब वहाँ पर पूरा मतलब छोटे छोटे घर है, घर पूरा एकदम मतलब आप देखेंगे बोलेंगे क्या जगह है यार ये जरी मरी
1: यार, क्या बात है। चलिए इंशाल्लाह ताला जब कभी मौका मिला तो जरूर इंशाल्लाह, जब भी बॉम्बे घूमने जाऊंगा तो इसको मैं याद रखूंगा। आसिफ भाई तो क्या बोलते हैं, आसिफ भाई अब हो जाए 3 का दम, जाते जाते
0: हो जाए भाई, हो जाए
1: जाते
0: हो
1: जाते। चलिए साहब तो रेडी हैं?
0: बिल्कुल
1: ओके, मैं अपने आप को रेडी कर लेता हूं। कहां से करूं शुरुआत ये देख रहा हूं।
0: आज बता दो भाई दो हफ्ता हो गया भाई, दो हफ्ते से ये चल रहा है सेशन, नहीं जीत पा रहा है मैं, नहीं जीत पा रहा हूँ, बाकी दुनिया जीत जा रही है।
1: नहीं नहीं बहुत आसान,
0: मैं आपको शाहरुख खान भी नहीं बोल सकता जीत के बाजीगर को शाहरुख।
1: चलिए भाई, मच्छर छोटा होता है या हाथी?
0: बिल्कुल मच्छर छोटा होता है।
1: ओके, शर्ट पहनते हैं या खाते हैं?
0: अजी शर्ट तो ये तो कल भी था सवाल ही, पहनते भाई, आखिर में बताओगे तुम।
1: आसिफ भाई वो कौन सी चीज है जो पानी पीने से मर जाती है?
0: वो कौन सी चीज है जो पानी पीने से मर जाती है? पानी पीने से कौन मरता है? वो कौन सी चीज है?
1: या पानी डालने से बुझ जाती है?
0: आग आग आग आग आग
1: आग, ये तो आग तो नॉर्मल हुआ ना, दो चीजों के जवाब होते हैं मेरे पास, जवाब दो, ये तो मैंने आसानी के लिए कर दिया आपके लिए। दूसरी कौन सी चीज है?
0: पानी पीते ही मर जाती है।
1: हाँ।
0: मोमबत्ती।
1: ये तो आग हो गई ना, ये तो आग की कैटेगरी में ही आ गई।
0: तो दूसरी कौन सी चीज है भाई? मैं मतलब आखिर में भाई मतलब तुमने सोचा है कि नहीं जितवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, कल कल की मॉर्निंग है मेरे पास।
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार, अरे बहुत आसान जवाब है इसका यार, बहुत ही आसान।
0: पानी पीते ही मर जाती है, पानी पीते ही
1: बुझ जाती है या मर जाती है?
0: बुझ जाती है, मर जाती है।
1: अरे बहुत आसान है यार आसिफ भाई, कम ऑन, आप हमेशा यही कहते हैं, इसका नाम लेते हैं, आप बोलते हैं इस बारे में।
0: प्याज
1: है? यस, क्या बात है, आज जीत गया मेरा आदमी। यार ये तो बहुत आसान सा है यार, पानी पीते ही प्याज बुझ जाती है या मर जाती है?
0: मेरे हाथ में पानी की बोतल है, मैं वो ही देगा यार, पानी पीते ही।
1: वेरी गुड, इसका मतलब मैंने
0: भाई हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
1: क्या कहने भाई, चलिए आज आपने सही जवाब दे ही दिया आखिर, क्या कहने भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, इसी
0: भाई,
1: तरह हंसते
0: रहिए। तुम्हारा, तुमने इतना आसान सवाल पूछा, दूसरे लिस्टर लोग तुमको बोलेंगे चलो भाई ये ना इंसाफी अनफेयर है हमारे साथ में।
1: नहीं नहीं नहीं यार, ये मुश्किल था, खैर सारे ही सवाल आसान है और मुश्किल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा पेचीदा कर दिया जाता है उनको, और कोई बात नहीं बल्कि बहुत
0: बिल्कुल,
1: आसान
0: बिल्कुल।
1: है।
0: हमारा सौरभ भाई कैसा, पैसा ही पैसा, दे दो पैसा।
1: सारे के सारे सवाल आसान
0: है।
1: अरे इंशाल्लाह खैर से जाइए, खैर से आइए, और मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा, और इंशाल्लाह भूलिएगा मत, आप हमारी हमारे वेब एड्रेस के जरिए हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, हमें सुन सकते हैं, अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम मिले, www.urduradio.qa बहुत आसान है, या फिर उर्दू रेडियो कतर अगर आप लिखेंगे इंटरनेट के ऊपर तो वो सीधा आपको हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रह जाएगा, तो आप इंशाल्लाह ताला हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
0: जरूर
1: अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में जरूर याद रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई,
0: आपका भी
1: बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्यारे प्यारे आसिफ भाई जो छुट्टी की तैयारी में हैं, जाहिर बात है गर्मी आ गई है, ज्यादातर लोग छुट्टी भी जा रहे हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है जो मेरे साथ आज होना था, आपके और मेरे दरमियान होनी थी आरजे सफा, वो भी छुट्टियों पे निकलनी वादा करके के साथ प्रोग्राम करेंगी, बहरहाल उनके तो आने के बाद उनसे बात करी जाएगी, फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ कोई है बात करने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: अहलेन अहलेन, इतने

0: तुम कहां रहे?
1: मैं अभी कहूं तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। भाईजान कैसे हैं?
0: क्या बात है जावेद भाई, जेबी साहब हमारे साथ हैं। कैसे हैं जावेद भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूं। लॉन्ग टाइम जावेद भाई, काफी दिनों बाद तशरीफ लाए। जाहिर है मशगूल होंगे, ये तो नहीं कह सकता मैं।
1: मेरे भाई मशगूल तो वो जो मैं हूं अपनी जगह पे, लेकिन जिस उस मशगूलियत को मत पूछिए जो मोबाइल पे दबा दबा के कॉल कर करके वो मिलती नहीं, इतनी बिजी जाती है, उसमें मशगूल रहता हूँ मैं।
0: बहुत माफ़रत चाहता हूँ, अपनी बात वापस लेता हूँ। जावेद भाई की शिरकत थी, इसका मतलब बिल्कुल सही, और किसी तरह फोन कनेक्ट नहीं हो पाया, तो ये तो मोहब्बत है कि फिर भी देखिए कोशिश करते करते जावेद भाई से आज बात भी हो रही है। कैसे हैं जावेद भाई, खैरियत से हैं? कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो है ना, वो जो आपने पहला वो जो ये तीन का दम जो लास्ट क्वेश्चन था ना कि हरी और लाल, आप यकीन करें कि मेरे जहन में आगे की पान है, ठीक है? उसके बाद मैं कसम से फोन कर करके मैं मतलब थक गया।
0: चलिए
1: यार आज तो मेरे
0: आज चलिए तो फिर अभी शुरू करते हैं जावेद भाई के साथ, खेलते हैं तीन का दम। ओके रेडी जावेद भाई?
1: जी यार रेडी। क्या आपके सामने कौन बोलती बंद है हमारी?
0: ओके बन्नी, बहुत बहुत आसान, बहुत आसान होते हैं सारे के सारे सवाल, आपको तो पता ही है। बच्चे स्कूल जाते हैं या ऑफिस?
1: बच्चे स्कूल जाते हैं। और
0: राइट नहीं नहीं राइट, इट्स फाइन। आइसक्रीम ठंडी होती है या गर्म होती है?
1: देखिए आइसक्रीम जो है ये खाने में ठंडी है, लेकिन तासीन गर्म है इसकी।
0: ओके फाइन। वो जवाब जो आजकल कम लोग दे रहे हैं, चलिए वही सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। एक टेबल पे पांच मक्खियां बैठी हैं, आपने एक को मार दिया, कितनी बची?
1: एक टेबल पे पांच मक्खियां हैं,
0: आपने एक को मार दिया,
1: एक
0: कितनी
1: को मार
0: बची?
1: दिया, बाकी चार ही बचेंगे ना।
0: एक को मार दिया
1: भाई।
0: हाँ, एक को मार दिया, कितनी बची?
1: पांच से, पांच में से एक निकाल दी तो बाकी चार ही बचेंगे।
0: और सोचिए
1: एक टेबल पे पांच, नहीं नहीं एक टेबल पे पांच मक्खियां थी।
0: हाँ,
1: एक को मारो तो बात यह है कि पर एक ही कैसी मरी, पांच को मरना चाहिए था वैसे।
0: नहीं, एक ही मरी है। आप बताइए कि क्या हुआ, बाकी बची कितनी?
1: मेरी मत मार दी अभी आपने और क्या।
0: जावेद भाई आपने एक को मार दिया तो वो एक ही बची, क्योंकि चार उड़ गई मेरे भाई।
1: तो उड़, तो वो तो मैंने पहले कहा कि मतलब एक ही मारी, चल ठीक है वो, ठीक है
0: तो बची तो एक ही, बची तो एक ही जो मरी पड़ी है टेबल पे, बाकी तो टेबल से उड़ गई। मैंने आज आपकी मोहब्बत में इसका जवाब खुद दे दिया है, ताकि आप ऐसा ना हो मुझसे नाराज हो जाते कि जवाब नहीं दिया सही।
1: मैं सोच भी नहीं सकता कि मतलब मेरे कुछ यकीन करे। कल मुझे अभी भी जिस भाई से आप मतलब बात कर रहे थे, तो वो जो आपने कहा ना कि पानी से क्या मर जाता, तो प्यास मेरे जहन में आ गया।
0: वाह। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, काफी सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब जहन में आ जाते हैं, और काफी ऐसे होते हैं कि नहीं आते, तो कोशिश ये रहती है कि जितना ज्यादा सता सकूं उतना ज्यादा सताऊं आप लोगों को।
1: नहीं आपने मतलब मुझे, अच्छा आपने मुझसे सवाल भी क्या किया। अच्छा ये मजे की बात ये देखिए कि एक दिन जब मैंने फोन किया तो सबसे पहली जो पहली आपने मुझसे पूछी वो थी शहद की मक्खियां।
0: अच्छा
1: आज आपने फिर मक्खी, इसके बाद इसका मतलब है आपके पास मेरे लिए टॉपिक सिर्फ मच्छर मक्खी ही है बस।
0: नहीं चार्ज भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बस सोची, इत्तेफाक है। बहरहाल सर मोहब्बत है आपकी, आप तशरीफ लाए और प्रोग्राम में चार चांद लगाए, बहुत बहुत शुक्रिया
1: अपना,
0: बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें ज्वाइन करते रहिए, हमसे मिलते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
0: थैंक यू सो मच। तो ख्वातीनों हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये थे हमारे साथ जावेद बजवा साहब, जिन्होंने मक्की उड़ाई तो है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला फिर तीन का दम जो है वो जारी रहेगा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हला हला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 12:06।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
2: तो खादिनो हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, बिल्कुल आज सन तो हमारे साथ है और साउंड में यहाँ आपकी आवाज गूंज रही है एफएम 107 पे, जहां पर आज के प्रोग्राम में हमने बात करी मेहमानान के हवाले से, वो मेहमान नवाजी का कल्चर, वो रीति रिवाज, वो रिवायतें जो हमने सीखी, देखी, उसमें वक्त गुजारा और बड़ी ही प्यारी अब वो यादें बन चुकी हैं, हमारी जिंदगी का एक सबक भी बनी जिससे हमने बहुत कुछ सीखा भी, और वो यादें जो घर वालों को, रिश्तेदारों को एक दूसरे से जोड़ती भी आई हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ, आइए उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
4: वालेकुम सलाम सरवर जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कौन है हमारे साथ?
4: अहमद।
2: अहमद, कैसे हैं अहमद?
4: ठीक
2: ठाक
4: अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जिंदगी चल रही थी, अब तो एग्जाम्स चल रहे मेरे।
2: एग्जाम्स चल रहे हैं आपके? ओके, किस क्लास में है आप?
4: सिक्स।
2: Yes. ओके, माशाल्लाह। तो कितने पेपर हो गए और कितने पेपर बाकी हैं?
4: अभी दो हो गए और सात बाकी हैं।
2: दो हो गए और सात बाकी हैं। चलिए यार, मैं तो कहूंगा ऑल द बेस्ट आपको, और पेपर के साथ साथ माशाल्लाह से आप वक्त निकालते हैं कि हमारे साथ जुड़े भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
4: क्योंकि वो क्या है कि छुट्टी भी जल्दी होती है, 10:30-11 बजे आ जाता हूँ जब आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये बात है कि मेरे पास टाइम तो हो जाता है। हाँ,
2: ये बहुत अच्छी बात है भाई अहमद भाई। तो चलिए तीन का दम खेल लेते हैं आपके साथ।
4: खेल लेते हैं।
2: ओके देन, ट्रेन पटरी पर चलती है या हवा में?
4: क्या
2: ट्रेन जो है वो पटरी पर, ट्रैक पर चलती है या हवा में?
4: ट्रैक पे।
2: ओके, हाथ से ताली बजाते हैं या पैर से?
4: हाथ।
2: ओके, आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आपके पास कैंडल है, लैंटन है और बल्ब है, आप सबसे पहले क्या जलाएंगे?
4: कैंडल, वो क्योंकि पहले ही वो जला हुआ है, वो कैंडल ही जला।
2: नहीं, कुछ भी नहीं जल रहा, अंधेरा कमरा है बिल्कुल। ये तीन चीजें आपके पास हैं, आप माचिस से सबसे पहले क्या जलाएंगे?
4: माचिस से कैंडल ही जलाएंगे या फिर लैंटर्न?
2: कैंडल जलाएंगे या लैंटर्न? पक्का?
4: हाँ, क्योंकि वही उससे ही तो होगा, फिर वो बल्ब से कैसे होगा? बल्ब से तो लाइट, वो तो
2: सोचिए, थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए।
4: वो मैचेस से कैंडल ही होगा।
2: कैंडल ही होगा, पक्का? श्योर?
4: हाँ, आखिरी
2: पक्का, एकदम लॉक कर दूं?
4: हाँ लॉक कर दे, क्योंकि लैंटर्न से तो होता नहीं है।
2: और ये है अहमद का गलत जवाब। पूछो कैसे अहमद भाई, पूछिए।

0: लैंडन
1: नहीं, लैंडन भी लगी है, लैंडन जलाने के लिए कैंडल जलाने के लिए आपको पहले माचिस की तीली जलानी पड़ेगी ना।
0: क्या करना
1: हो भाई? माचिस की तीली जो होती है वो जलाएंगे ना पहले। माचिस पहले तो आप माचिस जला के फिर कैंडल जलाएंगे ना, मैच बॉक्स जो होता है, नहीं समझे? जो है इस वक्त कॉल काट के और भाग गए, बोले कि नहीं यार ये जवाब तो इनको समझ में नहीं आया। भाई सबसे पहले तो माचिस की तीली ही जलानी पड़ेगी, उसी के बाद आगे जाके कैंडल हो या लैंटन हो या दूसरी चीज हो वो जलेगी मेरे भाई। हेलो सलाम वालेकुम।
2: सलाम वालेकुम।
1: सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है?
2: कैसे हैं सर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कहाँ हैं, किधर से आ रहे हैं?
2: बिल्कुल सर एकदम रास्ते में हैं।
1: किधर रास्ते में, किधर हैं?
2: बस एकदम होटल में इंतजार कर रहे हैं आपका, आ जाइए।
1: अरे तो इसका मतलब खाने के लिए पहुंच चुके हैं, लंच के लिए?
2: एकदम मीट स्मिथ में आ जाइए।
1: अरे नाम मत बताइए वरना मैं वाकई आ जाऊंगा।
2: आपके पड़ोस में ही तो है।
1: ओ, रमेश भाई कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन, आज का दिन आपका?
3: बढ़िया है जी, एकदम बढ़िया।
1: अच्छा गुजरा, क्या कहने भाई, आपका इंतजार भी हो रहा था। तो आज असल में मुद्दा था मेहमान नवाजी से मुतालिक, मेहमान नवाजी के वो कल्चर, वो रीति रिवाज जो बचपने में हमने देखे घर के अंदर, तो उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। पहले तो ये बताइए इसके इससे कुछ बात करना चाहते हैं?
3: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सर। तो
1: पुरानी यादें कौन सी हैं वो हम मैंने तो अपनी और काफी लोगों ने वही शेयर करी कि भैया नाश्ता एक बहुत बड़ा मसला होता था, जब मेहमान आ जाते थे वो लगाया जाता था और उसके बाद सारी निगाहें यही होती थी कि किसी तरह ये अंकल ये वाला समोसा छोड़ दे आखिरी, ये मेरे हिस्से आ जाए अल्लाह करे। तो अंकल की अल्लाह लगे तबीयत खराब हो जाती थी और वो समोसा
3: भागे।
1: तो ये तो चलता ही था। तो ऐसा कुछ याद है, कोई ऐसा वाकया किस्सा कुछ याद है आपको जो शेयर करना चाहते हैं, या क्या सबक मिला आपको?
3: ये तो सर जैसे ना पहले हम लोग तो मान लीजिए हम तो कलकत्ता में ही थे शुरू से, हम पैदा ही कलकत्ता हुए।
1: अच्छा, ओ
3: वहीं पे पिताजी थे, वहीं पे उधर गांव में आते थे ज्यादा ज्यादा, दो महीने के लिए तीन महीने के लिए छुट्टी मिलती थी पिताजी को, तो आते थे फिर चले जाते, पढ़ाई वढ़ाई हमारी वहीं से हुई वहीं से। तो वहाँ पे बल्कि हमारे रिश्तेदार जब आते थे ना तो छोटे चार पाँच पढ़ते थे, तब ये चीज कोई चीज मीठा वगैरह या फिर कुछ रखे मम्मी ला के रखती थी, तो हम लोग मैं बैठते हमारी भांजी थी साथ में, तो हम लोग खाली बाहर खड़ा होकर इंतजार करते थे कि कब ये जाए, तब हम लोग दौड़ के देखे कुछ बचा है तो लिया जाए।
1: हाँ नहीं भाई, काफी यादें हैं और काफी बातें भी हैं। तो चलिए साहब टाइम वेस्ट करे बगैर बढ़ते हैं आगे और खेलते हैं तीन का दम रमेश बाबू के साथ। तो रेडी है?
3: बिल्कुल सर, एकदम सर।
1: चलिए साहब तो आ जाइए फिर मैदान में। हाँ, आम का रंग जो है वो आमतौर पर कैसा होता है?
3: पीला।
1: पीला। जूते जो है वो पैर में पहनते हैं या हाथ में?
3: पैर में।
1: ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है?
3: ऐसी कौन सी चीज है पैदा होते ही उड़ने लगती है?
1: हाँ। निकाल दिए बिल्कुल, खुदा ना खास्ता पेट खराब हो जाएगा, बिल्कुल निकाल दीजिए, बता दीजिए क्या चीज है वो। पेट में बात नहीं रखनी चाहिए, दर्द होने लगता है
3: ये पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा लेकिन, बट
1: फिर भी तुक्का तुक्का
3: तुक्का है मेरे ख्याल से, ये मक्खी होती है, मक्खी
1: और सोचिए नहीं, कुछ तो सेकंड मिनट लगते ही हैं
3: जी, लेकिन मैं मक्खियों का देखा हूँ सर जी,
1: मक्खी से बहुत कनेक्टेड लग रहे हैं क्या?
3: मक्खियों से वो बच्चे बिल्कुल जैसे
1: आपको मालूम है, तीर का दम जो है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल तो होगा नहीं मामला।
3: नहीं, नहीं, नहीं, तो
1: अच्छा एक और पूछता हूँ लाइटर नोट पे, एक और सवाल है मेरे पास, ठीक है, बहुत आसान है वो भी
3: जी,

0: ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने की आवाज नहीं होती?
1: ऐसी कौन सी चीज है जो फटने से आवाज नहीं होती
0: है? अरे वाह यार, क्या कहने यार, एक नंबर यार, एक नंबर। ये सवाल पहले पूछ चुका है कोई आपसे?
1: नहीं,
0: यार क्या कहने भाई, ये तो मुझे लग रहा था रमेश भाई को थोड़ा सताया जाएगा, मगर साहब जहर गहन की बात है, किसी के लिए कुछ आसान, किसी के लिए कुछ मुश्किल। सवाल कैसा है ये बताइए, मगर आप दिमाग दिमाग आपका कहीं और गया था?
1: नहीं, दिमाग कहीं नहीं गया, हमारे तो नहीं बैठे हुए थे, तो जब आप बोले थे फटने से आवाज नहीं आता, तब मेरे दिमाग में हमने कहा यार दूध तो इसी दूध फटेगा तो आवाज कहाँ आएगा।
0: भाई वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, और मुझे आपने आज तीन के दम में जो वसूली थी वो दे दी, ये इस बात का जवाब दे के, सवाल का जवाब दे के, बहुत बहुत शुक्रिया यार रमेश भाई, हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी जी,
1: ये जो अंडर 17 वाला था वो चेक के द्वारा जो पैसा मिल रहा है,
0: अभी आपका पेंडिंग है, आपका पेंडिंग है, मिल गया है?
1: जी नहीं नहीं मिला, पेंडिंग में है।
0: ओके, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी ही आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कुछ आपने मिस किया हो मेल या फोन कभी कहीं से? अच्छा, आपको कोई भी रिप्लाई आया? कोई रिप्लाई तो जरूर आया होगा,
1: अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ एक बार मैसेज आया था, मैं आपको अभी मैसेज भेजता हूँ।
0: अच्छा, उस मैसेज में जो नंबर है उस पे आपने कॉल किया कभी?
1: नहीं, वो नंबर हमारे पास नहीं आया अभी कॉल करने के लिए, वो नंबर अगर है आपके पास।
0: नहीं, आपके पास मैसेज कैसे आया था, मेल के थ्रू आया था या?
1: नहीं, व्हाट्सएप पे आया था।
0: व्हाट्सएप पे तो जरूर
1: लिखा हुआ है,
0: है?
1: जो उसका लोगो है ना, यू है।
0: अरे तो उसमें नंबर जरूर होगा ना?
1: नंबर मैं चेक कर रहा हूँ, नंबर नहीं है उसमें सरोजी।
0: अच्छा, तो चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला और इसके हवाले से आप लोगों को अपडेट करता हूँ जल्दी, क्योंकि काफी लोगों के मिल गए हैं ऑलरेडी और काफी लोगों को अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं, कल भी 3-4 भाई मेरे साथ थे, तो इंशाल्लाह ताला आपको जवाब जल्दी आ जाएगा इसका। ठीक है रमेश भाई,
1: ठीक है, मैं अभी सर व्हाट्सएप करता हूँ आपको मैसेज जो है।
0: ओके ओके, सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये थे रमेश बाबू हमारे साथ, और जबरदस्त दिया इन्होंने जवाब भी, और यहाँ पर और भी चैंपियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है?
2: मोहम्मद आरिफ अंसारी।
0: मोहम्मद आरिफ अंसारी भाई कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए।
0: आप बताएं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र।
2: बस मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कोई नई ताजे, कैसा रहा आज का दिन?
2: अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा गुजरा अच्छा गुजरा है।
0: चलिए भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो गेम खेलेंगे हमारे साथ?
2: गेम भी खेलूंगा, मुश्किल नहीं है, पर वो वही प्राइज मनी के लिए भी मैंने फोन दिया था।
0: अच्छा, प्राइज मनी के लिए कॉल? नहीं, आ जाएगा आरिफ भाई, जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, और काफी लोगों को पहुंच भी गया है, मैं बता दूं सभी की मालूमात के लिए।
2: नहीं, मिला है मेरे,
0: क्या कहने के। चलिए तो इंशाल्लाह ताला, इसका मतलब अब देखिए भाई, सभी के सामने है बात, तो आरिफ भाई के एक भाई को मिल चुका है, तो इंशाल्लाह ताला ये बाकी के इनाम भी आप लोग तक जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है आरिफ भाई, तो आइए अब खेल लेते हैं तीन का दम।
2: ओके,
0: सूरज जो है पीला होता है या नीला? सूरज का जो रंग है पीला होता है या नीला? अच्छा, अभी क्लियर है? सूरज जो है, सन, सूरज, सूर्य, उसका जो रंग है वो नीला होता है या पीला?
2: नीला पीला तो वो एक ही है।
0: एक ही है यार, पहले ही सवाल से आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको पीला दिखता है या नीला?
2: अच्छा,
0: पीला। पीला यार, बहुत देर लग गई, नीला तो चांद होता है मेरी जान, आप सूरज सूरज को नीला क्यों कर दे रहे हो? अच्छा बताइए, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी ग्राउंड में खेलते हैं?
2: 11।
0: ठीक है साहब, अगर 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा है तो ज्यादा वजन किसका होगा?
2: दोनों एक बराबर होंगे।
0: दोनों एक बराबर होंगे, पक्का?
2: 1 किलो है तो वेट बराबर होंगे।
0: वेरी गुड, हो गया ये, क्या बात है भाई, सही जवाब भाई, सही जवाब आपका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही जवाब दिया आरिफ भाई ने। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई हमारे साथ खेलने के लिए, तीन का दम और वक्त निकालने के लिए, और इंशाल्लाह आपका जो प्राइज मनी है वो भी पहुंच जाएगा जल्दी इंशाल्लाह, ठीक है।

0: ओके ओके
1: ओके ओके भाई शुक्रिया। तो भैया ये थे हमारे प्यारे प्यारे आरिफ भाई हमारे साथ, तो क्या कहते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक तो ले लूं यार, मैं पानी शानी पी लूं जरा सा। फिलहाल आपको छोड़े जा रहा हूं सोनू निगम और बेनी दयाल के साथ, ए आर रहमान का बेहतरीन म्यूजिक और साथिया फिल्म का ये टाइटल ट्रैक और बड़ा ही खूबसूरत गाना जिसमें विवेक ओबराय जो है सबके दिल पे छा गए थे अपनी जुल्फों को और वो बाइक को लेकर। बड़ी प्यारी फिल्म थी, बड़ी याद भी आती है और अब सोच रहा हूँ देखूंगा आज इस गाने से। मुझे थोड़ी फील ऐसी हुई कि मुझे ये मूवी देखनी चाहिए यार दोबारा से। एंजॉय कीजिए ट्रैक FM 107 पे सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप सर्वर मेरे साथ आपके साथ दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: ये मैं आपको कह रहा हूँ, यकीन जानिए। इशारा करिए, आपका भाई वहीं मिलेगा। क्या गाना है भाई, आतिफ असलम तुलसी कुमारी। भाई हर चीज बनने के लिए तैयार है, बताइए इश्क में आदमी क्या क्या कर रहा है।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: तो जनाब, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस का मशहूर एफिल टावर गर्मियों में हल्का सा और लंबा हो जाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मेटल जो है हीट से एक्सपेंड होता है और इसलिए उसकी जितनी हाइट है उसमें फर्क आ जाता है। इसी तरह दुनिया के कुछ इलाकों में हीट इतनी इंटेंस होती है कि जमीन पर इतनी गर्मी हो जाती है कि चीज पक भी जाती है। और ये तो एक्सपेरिमेंट हम और आप करते ही रहते हैं, नहीं किया है तो थोड़ा सा और रुकिए, उसके बाद आप फर्श पर अंडा जो है आसानी से तल पाएंगे, या फिर अपनी गाड़ी की छत के ऊपर भी आप अच्छी तरीके से एग को फ्राई कर सकते हैं। खैर करना नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो इससे क्या हासिल और वसूल होता है कि भाई इतनी गर्मी कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर का एक एग्जांपल है। समर का असल रीजन क्या होता है, वो ये कि अर्थ जो है, जो दुनिया का जो हमारा प्लेनेट है, वो हल्का सा टिल्ट होता है और जब जमीन का एक हिस्सा सन की तरफ ज्यादा झुक जाता है तो उसे ज्यादा रोशनी और हीट मिलती है। तो दोस्तों, समर सिर्फ एक मौसम ही नहीं, ये नेचर का एक खूबसूरत सिस्टम भी है जो हर साल रिपीट होता रहता है। तो गर्मा गर्म गर्मी और गर्मा गर्म आज का दिन और गर्मा गर्म प्रोग्राम भी आपके साथ, इस वक्त सरवर मिर्जा और यहां पर हमारे साथ ठंडे ठंडे हमारे कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वेलकम अंशु भाई, नसीम भाई।
2: जी हाँ,
0: अच्छा हाँ, अभी नाराज हो जाते
2: पहले।
0: अच्छा, मैसेज आज तो मैंने मैसेज पढ़ा ही नहीं। ओहो, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, आई एम वेरी सॉरी। तो भैया मैसेजेस भी हैं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मैं इनको शामिल करता हूँ। और अब तो चलिए, आप हमारे साथ जी जुड़ ही गए हैं। मैं अपना गम तुमको कैसे समझाऊं, सबसे हारा हुआ समझते हो, मेरी दुनिया उजड़ गई उसमें तुम इसे हादसा समझते हो। वो जब मोहब्बत का बड़ा दम भरा करते थे हम, कॉल करते रहे और जाम पीने चले गए। ये तो मेरे ऊपर लगा दिया आपने। कैसे हैं नसीम भाई, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अच्छा गुजरा होगा अभी तक का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, तीन कदम के लिए रेडी?
2: तीन कदम देखते,
0: चलिए साहब देख लेते हैं। ओके देन, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। यहाँ पर हाथी के चार पैर होते हैं या छह?
2: तो चार होते हैं, आपका छह होता है।
0: चीनी मीठी होती है या कड़वी?
2: खा के देखना पड़ेगा, मीठी होती है।
0: मीठी होती है। वो कौन सा फल है जिसमें ना छिलका होता है ना बीज?
2: छिलका है ना बीज, वो तो फल मीठा है, सबर का
0: वक्त। नहीं, हकीकतन ऐसा फल मौजूद है।
2: छिलका नहीं, बीज ऐसा तो
0: जी, ना छिलका है ना बीज।
2: अगर छिलका ना हो तो सपोर्ट नहीं होगा, तो खराब हो जाएगा। बीज ना हो तो जर्मिनेट नहीं होगा।
0: हकीकत में है ऐसा फल मौजूद, वरना सब्र का फल तो मुझे मालूम है कि आप जवाब दे देते। चलिए साहब, तो सोचिएगा और अगर याद आ जाए तो मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है?
2: ठीक है,
0: ओके नसीम भाई।
2: दोबारा नीचे वाला फिर से पढ़ लीजिएगा।
0: हैं, क्या कह रहे हैं?
2: बोलो दोबारा, अशार फिर से पढ़ लीजिए शेर।
0: हाँ, शेर सुनाना चाहते हैं? बिल्कुल, इरशाद इरशाद सुनाइए सुनाइए।
2: आप पढ़ लीजिए।
0: मैं पढूं? अच्छा, आपने मुझे व्हाट्सएप जो किया है, मैं पढ़ देता हूँ। वो जो मोहब्बत का बड़ा दम भरते थे, हैं यही कह रहे हैं?
2: हाँ जी सर,
0: वो हम कॉल करते रहे और वो जाम पीने चले गए, क्या बात है भाई। नहीं मैं तो यहीं मौजूद था सर, आपकी खिदमत में हाजिर था, बस ये है कि जरा कॉल आपकी अटेंड करने में देर हो गई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, और सवाल का जवाब याद आ जाए तो जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है? ओके, नहीं ढूंढना नहीं है, जहन में ढूंढना है, खाली इंटरनेट वगैरह पे नहीं ढूंढना है। ओके बाय, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे नसीम भाई हमारे साथ, और यहाँ पर चल रहा है 3 का दम, जहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ मैसेजेस वो शामिल कर लेता हूँ, वरना अच्छी बात नहीं होगी और नाराजगी भी हो जाएगी। कहाँ से करूँ शुरू, कहाँ से छेड़ूं दास्तां, कहाँ तमाम करूँ। शहजादा सलीम साहब हमारे साथ, ओके वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। फरहत भाई हैं, मूर फरहत, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, खैरियत से? कबीर भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और कबीर भाई भी माशाल्लाह खैरियत से हैं। आजकल मुझसे उनको कम मुलाकात हो रही है, तो फिर खैरियत से ही होंगे। वैसे आप मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा कि खैरियत से हैं या नहीं हैं, और उनसे ये सवाल भी कर लीजिएगा कि सर्वर ने आपसे ये सवाल किया है, ठीक है? भाई हमारे घर ही रेलवे स्टेशन के पास है एकदम, ओके इनका भी घर रेलवे स्टेशन के पास है, ओके आगे बढ़ते हैं। सलाम मिर्ज़ा भाई, हाउ आर यू एंड वेरी नाइस योर शो। मिर्ज़ा भाई मैं ड्यूटी पर हूँ और आपका शो सुन रहा हूँ, और भाई गाबा भाई की बहुत ज़बरदस्त बातें। ये सुरजीत भाई हमारे साथ फ्रॉम दोहा, बिल्कुल भाई सुरजीत भाई, गाबा भाई और आप सभी की बातें बड़ी प्यारी होती हैं। यहाँ पर किसी ने जवाब देना चाहा है जो मैंने सवाल पूछा था, मोहम्मद है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। आम नहीं करूँगा क्योंकि वो अभी और पूछूंगा ना। सलाम कहते हैं और कॉल करने के लिए हुक्म करते हैं सर, बिल्कुल इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलता है। यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। सरोर भाई कैसे हैं आप? होप वेल। सन एंड साउंड में सबका इस्तकबाल करते हैं, ट्यूसडे मॉर्निंग सबको विश करते हैं, और शायरी हाय हाय हाय हिज्जे करूं क्या? कहते हैं दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। अपनी तलाश, अपनी नजर, अपना तजुर्बा, रास्ता हो चाहे साफ भटक जाना चाहिए। ओए ओए ओए, बिजली का कहकमा नहीं कुमकमा, हाँ ओके। ना हो काला धुआं तो हो, ये भी अगर ना हो तो बुझ जाना चाहिए। यूसुफ भाई ओके, यूसुफ भाई मैंने आपकी बात आगे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है, मेरे पास जवाब नहीं आया अभी तक। जैसे ही आ जाएगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपडेट करता हूं इस हवाले से। रमेश भाई ओके, यहां पर उन्होंने भेजा, हाँ

0: एग्जैक्टली यही होगा ना, तो फिर आप इस पे एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर ये नंबर है, क्या यही नंबर है? बिल्कुल, अगर आपको इससे आया है मैसेज तो आप इस पे जरूर ट्राई करें और जरूर आप जानने की कोशिश करें। अंगूर जवाब देते हैं जासिम रैन, हाउ कम पॉसिबल जासिम, अंगूर में बीज होता है? हाँ कुछ होते हैं वैसे, ऐसे ऐसी बात नहीं है, करीब है। ओ सही जवाब आ गया, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम वो है जिससे ट्रेन चलती है और कटती है, बताओ मेरा नाम क्या है? जवाब अच्छा है यार, ये है कौन हमारे साथ? ओ मदर भाई, मदर भाई हमारे साथ, और मदर भाई ने सही जवाब भी दिया, वो जो फल का नाम मैंने पूछा था। तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एक और चैंपियन हमारे साथ, देखते हैं इनका क्या है कहना। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: सरवर भाई फोन कर कर के थक गए हैं, फोन नहीं उठाते हैं। जब फोन
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय
1: तब ब्रेक ले लेते हैं।
0: हाय हाय हाय हाय कैसे हैं उवैस भाई, इतना नाराज मत हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और आपको इतना इंतजार कराने का और परेशान करने की माजरत चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम, और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए क्या हाल?
0: अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके इंतजार में सूखता जा रहा हूँ मैं, अब क्या बताऊँ।
1: अरे हम आपके इंतजार में सूख रहे हैं, धूप में
0: खड़े। अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे और खुश रखे इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ अच्छा दिन गुजरा होगा अभी तक का, और आगे का दिन भी अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। और क्या कुछ नई ताजे सुनाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, या तीन के दम पे आ जाएं सीधे?
1: शेर क्या करे, जो आप अभी कह रहे थे वो बचपन की यादें, उसी पे बस हम सुन रहे थे, मगर उसे फोन मिलाया
0: आप शेयर कर दिए। बिल्कुल आप इस वक्त अपनी बात रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
1: सब सबने तो वही बातें कही जो हम कहने वाले थे, वही बचपन की यादें सेम होती हैं।
0: सही सही सही,
1: जाइए तो फिर वही घर वाले पहले तो समझा के ले जाते थे, देखो वहां जाते रहो, ये ना करना वो ना करना।
0: चीजें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, हम बदल जाते हैं, हमारी शख्सियत बदल जाती है, मगर घर वाले वही रहते हैं, वालदेन वही रहते हैं। अल्लाह ताला सबको खैर करे सबके साथ ही, और जो जो गुजर गए हैं भाई अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, जो साथ में हैं अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन खिदमत कर सकें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए, यही दुआएं हैं। तो आइए उवैस भाई अब बढ़ते हैं आगे और तीन के दम में शामिल हो जाते हैं, क्या कहते हैं, रेडी हैं?
1: इंशाल्लाह चलिए ठीक।
0: ओके देन, घर में दरवाजा होता है या पहिए?
1: लाजिम में दरवाजा ही होता है।
0: ओके, टेबल पर चीजें रखी जाती हैं या फेंकी जाती हैं?
1: टेबल पे,
0: हाँ
1: टेबल पे चीजें रखी जाती हैं,
0: रखी जाती हैं, चलिए खैर फेंकी भी जाती हैं, मगर ठीक है ये भी मैं मान लेता हूँ। अगले
1: तो सवाल, फेंकने वाला सिस्टम जब हम तो
0: अरे भैया हम उनमें से नहीं है, फेंकने वालों में से हम शरीफ आदमी है भाई, आप हमें ऐसे नहीं कहिए।
1: बिल्कुल
0: मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो पैर है और ना कान है, मैं कौन हूँ?
1: घड़ी।
0: क्या बात है यार, वैसे वक्त कहते तो ज्यादा मजा आता। सही जवाब दे दिए हैं, सही जवाब दे दिया उवैस भाई आज तो, क्या कहने आपका। देख लिए ऐसे ही कर देते हैं, एक बार आपसे एक हफ्ते से मुश्किल पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे, 10 दिन हो गए बल्कि।
1: वो वाला सवाल जो था वो उन्होंने बताया नहीं बताया, जो देखने में हरी है और निकलती लाल है, वो वाला बताइए, वो वाला बताइए आप।
0: बहुत आसान,
1: हम बहुत सोच रहे हैं, हम डेली सोचते हैं क्या चीज़
0: यार, क्या बात है। नहीं तो फिर मैं बताऊं, देखिए आप किसी से पूछिए भी मत, और इंशाल्लाह इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ जाएगा, आप बस नेट पे मत चेक करिएगा।
1: उन्होंने गूगल पे ढूंढा, मैंने सब कुछ ढूंढा, मिला नहीं।
0: अच्छा ढूंढ लिया ऑलरेडी? अरे भैया हम तो कह रहे हैं कि नहीं ढूंढेंगे भाई, शरीफ आदमी हो वैसे भाई, मगर धोखा दे रहे, ऐसा क्यों किया?
1: आप नसीम भाई से बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे मैंने गूगल पे ढूंढा और सब कुछ देखा।
0: इसका मतलब कोई सच्चा वादा नहीं कर रहा है मेरे साथ, अब मैं भी कुछ चला के करूंगा फिर ऐसी।

0: बहुत अच्छी बात है, आप सोचिए इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा जरूर उसका जवाब, बहुत आसान।
1: अरे कुछ तो हिंट दीजिए ना।
0: नहीं यार, हिंट दूंगा तो फिर आप बता देंगे, आप जहीन आदमी है माशाल्लाह से, हिंट दूंगा तो आप फौरन बता

0: इस हफ्ते आपको जवाब दे दूंगा इसका मैं, अगर ऐसे ही है तो इस हफ्ते जवाब दे दूंगा। अभी दो दिन बाकी है और सोचिए इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए तो अब कल मुलाकात होगी बस भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए।
1: थैंक यू।
0: अरे सर अहलन बस अहलन, जरूर इंशाल्लाह ताला। बस वो क्योंकि लाइन बिजी होती है तो पहले जिसका नंबर लग जाता है।
1: तो ये बताइए बिजी होती है तो बिल क्यों होती है फिर?
0: क्योंकि हमारी दो लाइन है, अगर मैं दूसरी लाइन बंद कर दूंगा तो आपका फोन बिजी जाएगा। इससे कम से कम हमें ये पता चल जाता है कि कोई और लाइन भी हमारे साथ चल रही है, और मैं अगर चाहता हूं तो मैं नंबर लिख भी लेता हूं, मगर जब इतना वक्त मिलता है कि मैं कॉल बैक कर सकूं तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि कॉल भी कर लूं। ये है मसला।
1: इंशाल्लाह।
0: ओके सर, थैंक यू सो मच।
1: एक इंग्लिश का मेरा भी सवाल है, अगर उसका आप जवाब दे सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं।
0: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, छोड़िए
1: छोड़े।
0: हाँ छोड़ी।
1: वन टेबल सिक्स टी ऑन द टेबल,
0: वन टेबल
1: सिक्स टी कप ऑन द टेबल, वन क्रैश, हाउ मेनी, कितना बचा उसमें?
0: वन टेबल सिक्स टी कप ऑन द टेबल,
1: सिक्स टी कप ऑन द टेबल,
0: वन गॉट क्रैश्ड,
1: एक टूट गया तो कितने बचे?
0: एक टूट गया तो कितने बचे? तो ये तो हमारा मक्खी वाला ही सवाल पूछ लिया आपने हमसे वापस।
1: आप बताइए बताइए बताइए।
0: वन टेबल
1: सिक्स टी कप ऑन द टेबल,
0: सिक्स टी कप ऑन द टेबल, वन टेबल
1: एक टूट गया, वन क्रैश तो कितने बचे? एक टूट गया नहीं तो कितने बचे?
0: एक बार और पूछिए।
1: मैंने पूछा तो सिक्स टी कप ऑन द टेबल,
0: ठीक है,
1: वन क्रैश यानी कि एक टूट गया तो कितने बचे?
0: पांच बचे यार, सीधे सीधे। मक्खी उड़ा रहे थे और हमें यह जवाब दे रहे हैं, बताइए ये कौन सा हुआ भैया? एक टेबल, हाँ तो इसके अंदर एक टेबल पे है, एक टेबल पे है, छह बचे,
1: 59 बचे,
0: 59 59
1: यस,
0: क्या
1: 60 कप,
0: 60 अब समझा। अरे यार अच्छा है यार, ये तो आप मुझे खामोशी से भेजते यार, मैं दूसरों को सताता पूछ पूछ के यार। ओएस भाई ये तो आपने ओपन कर दिया यार। अच्छा है, अच्छा इसीलिए अंग्रेजी में पूछ रहे थे ताकि वो 60 हो जाता है। क्या बात है, चाय में फसाया। अच्छा था, नहीं एक्चुअली अच्छा था, और ये इस गेम में ही पूछा गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा था यार, अच्छा था, अच्छा था। अगर आप खामोशी से पूछते तो मैं वाकई दूसरों को, मैं सताता भी दूसरों को, मगर अभी सताऊंगा जो नहीं सुन रहे मेरे अपने जो दोस्त हैं ना, उनको आज ये सवाल घुमाऊंगा, देखिए। ओके वैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एज यूजुअल, अपना ख्याल रखिए, बहुत मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। लीजिए साहब, ओएस भाई ने मुझे भी फंसाया अपने सवाल के अंदर, और 60 मैंने कहा कि शायद ये चाय की बात कर रहे हैं, मगर वो ले गए 60। ओह कह रहे 59 बच्चे, अच्छे लाए भाई, अच्छी लाए। यहाँ पे देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व
0: बरकातहू। इतने दिन आप कहाँ रहे? वालेकुम अस्सलाम।
2: कोई नहीं, सिर्फ कल की छुट्टी की है सर भाई, कल की छुट्टी की बस।
0: रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहलन व सहलन, कैसे हैं जमील भाई हमारे साथ?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए।
0: उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा गुजरा होगा आज का और सब खैर भी होगी इंशाल्लाह ताला।
2: अभी तक बहुत बेहतरीन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, वाकरा रोड पर
0: है। अच्छा वाकरा रोड पे क्या हाल है वैसे इस वक्त, जाम ट्रैफिक वगैरह?
2: कुछ नहीं सब कुछ बेहतरीन है, सब खैर है अल्लाह का शुक्र
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो तीन के दम के लिए रेडी?
2: बिल्कुल ट्राई कुछ
0: ट्राई नहीं यार, जबरदस्त आप तो वैसे ही चैंपियन है।
2: अरे यार चैंपियन बुला के किसी को हरवाना ना बड़ी वो होती है।
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ओके देन, आज अगर ट्यूसडे है तो कल क्या है?
2: वेडनेसडे।
0: ओके, टेबल पर चीजें रखी जाती हैं या फेंकी जाती हैं?
2: अगर बैचलर्स के रूम है तो टेबल पे वो आके फेंकी गई, और घर गृहस्थी के अंदर रखी जाती है।
0: अच्छा वेरी गुड।

0: वेरी गुड वेरी गुड। एक बिल्ली है, जनवरी फरवरी मार्च उसके बच्चे हैं, उनका नाम ये है। बिल्ली का नाम क्या है तो बताइए, बिल्ली का नाम क्या है?
1: जनवरी फरवरी मार्च उसके बच्चे हैं बिल्ली के, तो बिल्ली का नाम क्या है
0: बताइए, बिल्ली का नाम क्या है? नहीं नहीं, मैंने आपको अभी जवाब बताया भी यार, सवाल में ही जब बताया, अब तो आने लगेंगे।
1: बिल्ली है उसके बच्चे हैं, एक बिल्ली है उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों का नाम है जनवरी फरवरी मार्च। ये आपने ना मुझसे यही क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट किया।
0: अजी आप वाकई मैं तो हाँ। मैंने तो इसलिए पुराना दिया कि शायद आप बता दे यार। चलिए चलिए बदल देते हैं। वो ऐसा कौन सा फल है जिसका ना छिलका है ना बीज?
1: समर का फल है।
0: उसके अलावा दूसरा?
1: अच्छा उसके अलावा समर का फल ही होता है मीठा, बिना छिलके बिना।
0: अच्छा नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये मीठा भी है।
1: अच्छा मीठा भी है, ना छिलका है ना बीज है।
0: ना छिलका है ना बीज है, मीठा भी है।
1: ना छिलका है ना बीज है,
0: और वाकई हकीकतन है, पेड़ पे होता है। तो अब चेक करके अब सबके जवाब आने लगेंगे, नेट कोई ना चेक करे भैया।
1: हमें हमें कतर में अवेलेबल है ये?
0: हाँ है है है है, चेक मत कर लिएगा, अब जल्दी से बात करते करते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये आपसे बात करते हुए दूसरा मोबाइल हाथ में लेने की फुर्सत कहाँ रहती है।
0: ओके
1: स्किप स्किप स्किप, सॉरी भाई, दूसरा दूसरा।
0: अरे यार ये तो तीसरा हो जाएगा, अब दूसरा कहाँ है?
1: हाँ तीसरा तीसरा प्लीज।
0: हमारी ऐसी कौन सी सिस्टर हैं जिनके पति को हम जीजा नहीं कहते?
1: हमारी ऐसी कौन सी सिस्टर हैं जिनके पति को जीजा, वो मेडिकल मेडिकल वाली सिस्टर।
0: ओह यस सही सही। अच्छा है, सही जवाब दे दिए हैं भैया जहील भाई।
1: यार
0: सवाल कैसा
1: आप लाइव होते ना, मतलब और भी आता है, इसको डिटेल पे डिस्कस कर लेते।
0: ओह माय गॉड, सवाल अच्छा है ना?
1: बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त जवाब।
0: ओह माय गॉड,
1: क्या पता लगा इंजेक्शन लगाते वक्त पूछे और जीजा जी क्या करो।
0: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एज यूजुअल आप आए और बाहर आई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: फिर बात होगी इंशाअल्लाह।
0: अल्लाह हाफिज़। खैरन भाई, ये थे जमील भाई हमारे साथ। तो यहाँ पर तीन का दम जो है वो जारी सारी है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 443-443-77 और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है या हमें मैसेज भेजने के लिए जो नंबर है वो है 666-22-107। ओके एंड यहाँ पर कुछ मैसेजेस और उसके बाद मैं ले लेता हूँ इजाज़त भी आपसे, क्योंकि अब से थोड़ी सी देर में आप दूसरे प्रोग्राम से भी जुड़ेंगे। तो कॉल आपकी आ रही है, बहुत ही शुक्रिया नवाजिश, मगर माजर चाहता हूँ कि आज नहीं रिसीव कर पाऊँगा। अब थोड़े से मैसेज लेता हूँ और फिर इजाज़त। यूसुफ भाई हमारे साथ, थैंक यू सरो भाई, अ वेटिंग। ओके बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। ओके ये बिल्कुल सही जवाब है। ये कौन है हमारे साथ? खान साहब हैं आखिर में, 335। खान साहब सही बताया आपने, जो फल मैंने पूछा था सब्र वाला वो आपने मुझे दिखा भी दिया कैसा होता है। उस्ताद जी इनाम के पैसे कब मिल रहे हैं? कहते हैं इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलेंगे। वजस हैं हमारे साथ, ये हैं कौन अगर मैं, जसविंदर सिंह हैं। ओ ओ, ओ, ओ जसविंदर भाजी नाइस फोटो यार, स्मार्ट लग रहे हैं एकदम हैंडसम। ओके मुमताज़ भाई हैं हमारे साथ, मोहम्मद जहीर हैं, एक वॉइस नोट भी है, आपका नाम ले लेता हूं मैं, नाम यहां पे है भी नहीं, बहुत शुक्रिया। बहरहाल खादिल अब्दुल हादी हमारे साथ हैं, और कौन है हमारे साथ, आफ्ताब हमारे साथ हैं। ओके इनका नाम क्या है, मैसेजेस हैं। अरबाज़ खान हमारे साथ हैं, सलमान खान के छोटे भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद जहीर हमारे साथ हैं, ये भी कहते हैं तरबूज। यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ, कोई वेबसाइट शेयर करिए। फुरकान फहद हमारे साथ हैं। बहरहाल भाई आप सब लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए ले लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त इसी नोट पर, कि इंशाल्लाह ताला कल खैरियत से आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, बखैर आफियत बइज्जत इंशाल्लाह। मेरे साथ जरूर जुड़िएगा कल 11 बजे, जरूर तशरीफ लाइएगा, और इसी तरीके से साथ निभाते भी रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है। एंड काफ़ी आप लोगों का जो मैसेजेस हैं, अभी सर्वर शो ख़त्म करके गया है और मैं देख रहा हूँ काफ़ी मैसेजेस हैं और सर्वर के शो में, लेकिन एक साहब ने क्रिकेट के जर्सी पहन के कुछ पोस्ट किए हैं अपने आप को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिकेट और स्पोर्ट्स एक वो चीज़ है जिसे हम सब जुड़े रहते हैं। तो इस्तकबाल है हमारे इस स्पोर्ट्स शो में और जिसका नाम है समर स्पोर्ट्स। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन और मैं सीरियसली स्पोर्ट्स की ही बातें करता हूँ और स्पोर्ट्स से बातें करना, स्पोर्ट्स के बारे में बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये नया प्रोग्राम है और इस जून से शुरू हुआ है और इतवार और मंगल को मैं यहाँ पे रहता हूँ और थर्सडे यानी जुमेरात को स्पोर्ट्स राउंड अप का प्रोग्राम पेश करता हूँ। सो हमारे साथ रहिए क्योंकि हम आप तक पहुँचाएंगे खेलों की दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प वाकयात और अहम अपडेट्स। तो लेकिन शुरू करने से पहले एक एंगेजमेंट की बात हो जाए, यानी आप लोगों को जुड़े रहने का एक जो यू नो आई वुड से कि एक सवाल है जिससे आप जुड़े रह सकते हैं इस प्रोग्राम में, उसके बारे में उस सवाल को मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछ लेता हूं। ये सवाल ये है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में, वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है परसों से, तो वर्ल्ड कप फुटबॉल से ही थोड़ा सा ज़्यादा हम बात कर लेंगे इस पूरे समर स्पोर्ट्स में। तो वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में सबसे ज़्यादा टाइटल किस टीम के नाम है, ये है आज का सवाल और आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 666-22107 पर। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में यानी वर्ल्ड कप फुटबॉल की हिस्ट्री में किस टीम ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप टाइटल जीता है, सो ये आपको बताना है 666-22107 FM 107 की जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे आप अपना जवाब शेयर कर सकते हैं। लेकिन अपना नाम ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि वर्ल्ड कप को लेके आप क्या सोच रहे हैं, कतर को कब, कतर के मैचेस हैं, कतर के मैचेस देखने के लिए आप क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, ये भी आप लोग थोड़ा सा टेक्स्ट में ऐड ऑन कर दीजिएगा सो दैट इसके बारे में थोड़ा मैं शेयर कर दूं। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज के मेजर हाइलाइट्स के साथ और फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर चारों तरफ फुटबॉल वर्ल्ड कप का ही न्यूज़ है, चारों तरफ अपडेट्स हैं, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ें आ रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स वर्ल्ड कप के हवाले से वो बता दूँ कि जो प्राइज मनी है, फीफा जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, फीफा ने कह दिया कि इस साल जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है यानी शुरू होने जा रहा है, इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है ऑन द विनर। आप समझ लीजिए कि क्या मैं कह रहा हूँ, जो विनर, जो विनिंग टीम है, और विनिंग टीम को इस साल मिलेगा, इमेजिन करिए कितना पैसा, $50 million, जो कि कतर वर्ल्ड कप में $42 million दिया गया था टू द विनिंग टीम अर्जेंटीना को, तो इस बार थोड़ा सा जंप मार दिया गया है एंड जंप में $8 million टू द विनिंग टीम। और बाकी के बारे में, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं, उनको तो मिलेगा, साथ साथ 48 टीमों को भी मिलेगा। इतना इस साल जो है 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो 48 टीमों को भी एक पार्टिसिपेशन फ़ी दिया जाएगा। सो बिग प्रोजेक्ट, बिग वर्ल्ड कप, बिग मेगा मेगा इवेंट है फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है दुनिया का। अगर ओलंपिक स्पोर्ट्स के बारे में, ओलंपिक गेम्स के बारे में अगर थोड़ा सा पीछे रख दूं, तो वर्ल्ड कप फुटबॉल को देखने के लिए हर कोई रात जाग कर सुबह तक बैठ के देखना चाहेगा क्योंकि

अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की जो टाइमिंग है, कतर टाइमिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, बिकॉज वी आर क्वाइट क्वाइट अहेड ऑफ अमेरिका टाइमिंग और यूएस टाइमिंग और कनाडा टाइमिंग या मैक्सिको टाइमिंग. सो यहाँ के मैचेस के जो मैचेस अमेरिका में होने जा रहे हैं, वो मैचेस अमेरिका के टाइम के अगर हिसाब से मैं बताऊँ तो लगभग कतर में वो मैच है अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के वक्त होने जाएगा. तो थोड़ा सा आई वुड से कि दिक्कत तो है, परेशानी है, लेकिन जो पैशनेट फुटबॉल फैंस हैं वो ज़रूर टीवी सेट्स ऑन करके वो बैठे रहेंगे या अपने लैपटॉप खोल के बैठ जाएंगे कि रिजल्ट्स देखने के लिए या कुछ कतर के मैच, स्पेशली कतर के मैच जिस दिन होना है 13 जून को, उस दिन में तो सब लोग ही बैठेंगे. अभी तक ऐसा कोई हमारे पास न्यूज़ नहीं है कि वेदर देयर विल बी अ फैन जोन, और फैन जोन जो मुख्तलिफ कतर के दोहा में जितने भी एरियाज़ में होते हैं जैसे कि कटारा या सुकवा की व्यासपायर जोन में, अभी तक इस तरह का कोई हमारे पास अपडेट्स नहीं है. जैसे भी आएंगे हम आप लोगों से शेयर कर दूंगा. तो मूविंग ऑन टू बास्केटबॉल, कतर बास्केटबॉल फेडरेशन अगले हफ्ते इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स सिक्योरिटी के ताउन से एक स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी वर्कशॉप का एहतमाम करेगी, और इस वर्कशॉप का मकसद है गवर्नेंस को मजबूत बनाना और मुल्क में बास्केटबॉल की इंटीग्रिटी और शफाफियत को बरकरार रखना है. दोस्तों मूविंग ऑन टू क्रिकेट, अब क्रिकेट में एक अपडेट मैं देना चाहूंगा कि क्रिकेट अभी एक मैच जारी है इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की ओडीआई सीरीज जो है वो जारी है, और इस मैच में बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का जो इन्होंने होता है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिया था, एंड ऑस्ट्रेलियन टीम ने उनको पहले बल्लेबाजी करके भेज तो दिया, लेकिन बांग्लादेश के स्कोर देख के ये लग रहा है कि बांग्लादेश रियली फॉट हार्ड. इनिशियली उनकी जो शुरुआत थी वो सही नहीं थी, एंड फाइनली दे कुड मैनेज 284 रन 8 विकेट के नुकसान पर इन 50 ओवर. सो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 280 रन जीत के लिए. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड से जो मुझे पता लग रहा है कि थोड़ा सा नाजुक स्थिति है, 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन. सो ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर 2 विकेट्स मैच शॉट बोल्ड बाय तस्कीन अहमद और मानस लवशांगे LBW मुस्तफिजुर रहमान. ये तस्कीन अहमद बहुत ही खतरनाक लेफ्ट आर्म स्पिनर है. इनके बॉलिंग एक्शन मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में हुआ था उस सीरीज में मैंने देखा कि ये बंदा बड़ा ही कमाल का एक तो लेफ्ट आर्म ऊपर से जिस तरह से वो अपने आर्म को ट्विस्ट करता है, देख के ये लग रहा है कि जो पुराने दिनों में मुश्ताक अहमद को मुझे याद दिला देता. मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान के मारूफ लेग स्पिनर थे, वही मुश्ताक अहमद. अच्छा, कोइंसिडेंटली अगर बात करूँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुश्ताक अहमद इज़ द बांग्लादेश स्पिनिंग बॉलिंग कोच हैं, तो थोड़ा बहुत स्टाइल जो है तस्कीन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, मुश्ताक का ही कुछ थोड़ा बहुत कॉपी है, लेकिन बड़ा ही ख़तरनाक है. पाकिस्तान बल्लेबाज इसके फिरकी चाल में काफ़ी फंसे हुए थे, और आपको पता है कि पाकिस्तान लॉस दैट सीरीज़ अभी 2 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है 2-0. सो एनीवे बेस्ट ऑफ लक टू बांग्लादेश क्रिकेट टीम. अभी जो प्रोबेबिलिटी है, विन प्रोबेबिलिटी बांग्लादेश के ही सपोर्ट में है, 81% प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया 19%. अभी जो ओवर जारी है, थर्ड ओवर जारी है, और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगलिंग 5 for the loss of 2 विकेट्स. अगर बांग्लादेश की बैटिंग की बात करूं तो सबसे टॉप स्कोर रहा है मुसद्दिक हुसैन का, जो नॉट आउट रहे हैं 86 रन बनाकर, और नजमुल हुसैन शांतो 67, और तंजीद हसन ओपनिंग बैट्समैन 54 रन बनाकर आउट हुए थे. और अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में से सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं नथैन एलिस, 38 रन देकर 3 विकेट, फॉलोड बाई लियाम स्कॉट 57 रन देकर 2 विकेट, और मैट रेनशॉ 35 रन देकर 2 विकेट. सो ओवरऑल बांग्लादेश टीम लुक्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. अगर उन 2-4 विकेट और निकाल दे तो दिस विल बी अ विन फॉर बांग्लादेश टीम, एंड दिस इज़ द फर्स्ट मैच ऑफ द 3 मैच सीरीज, और जो नेक्स्ट गेम होने जा रहा है 11 जून, और थर्ड मैच जो है, आखिरी गेम जो है 14 जून यानी इतवार को. लेकिन अभी वही मैं कह रहा था कि अभी जो है फुटबॉल का ही माहौल है, और फुटबॉल का माहौल से मुराद फुटबॉल वर्ल्ड कप. हर कहीं पर भी कतर फुटबॉल टीम को लेकर कतर फुटबॉल एसोसिएशन के ज़रिए जितने भी प्रमोशन किया जा सकता है वो काफ़ी नहीं लग रहा है, और वो लोग जितना भी देखिए मैच तो अमेरिका में है, अमेरिका में कतर की टीम की बेस है, वहाँ से फोटोग्राफ्स, वहाँ से वीडियोस हमें देखने को मिलता है, और रोज़ बाय रोज़ यही मैं हमें देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कतर फुटबॉल एसोसिएशन के हैंडल्स पर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिल रहा है.
और वहीं अगर कतर टीम की बात करूं तो 26 मेंबर टीम है और 26 मेंबर टीम में ऐसे कई फुटबॉलर्स हैं जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप ऑलरेडी खेल चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम अगर मैं लूं तो हसन अल हैदोस जो कप्तान थे, हसन अल हैदोस ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके थे 2 साल पहले, लेकिन पिछले साल खुलैन लोप्तगी जो कतर के हेड कोच हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया, QFA कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया कि हसन अल हैदोस को टीम में लाना बहुत ज़रूरी है और हसन अल हैदोस इस पर्सनल रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया एंड उन्होंने रिटायरमेंट तोड़कर वापस कतर टीम में मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि हसन अल हैदोस जैसे फिगर, जैसे प्लेयर हैं, आपको बता दूं कि कतर के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला खिलाड़ी हसन अल हैदोस है, ओवरऑल रिकॉर्ड है विथ हसन अल हैदोस। और हसन अल हैदोस के प्लेइंग पोजीशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है वो और आउट एंड आउट अटैकिंग मिडफील्डर भी नहीं है, थोड़ा सा बीच में खेलते हैं अटैकिंग मिडफील्डर और अप फ्रंट जो स्ट्राइकर्स हैं अल मोएज अली और अक्रम अफीफ के बीचों बीच, दोनों स्ट्राइकर और मिडफील्ड के बीच में। तो अक्रम और अल मोएज की ज़्यादातर गोल्स अगर होते हैं तो ये हसन अल हैदोस का कमाल होता है। तो दोस्तों हसन अल हैदोस एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन बट एज अ फिगर, एज एन आइडल फॉर लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स इन द कतर नेशनल टीम। और आने वाले मैच जो बेसिकली स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में है, हमें देखना होगा कि क्या कतर टीम स्विट्जरलैंड को रोक पाएगा। अच्छा, फ्रेंडली मैच हुआ था अभी इतवार को तो उस एल सेल्वेडर के अगेंस्ट में गोल्डेस ड्रॉ रहा, इसी से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, थोड़ा बहुत एतमाद जो है इंक्रीज्ड नजर आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि कतर टीम विल रियली दिस टाइम, बिकॉज आपके पास एक 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस के तौर पर है, तो वी ऑल होप फॉर द बेस्ट। एंड अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद जब आऊँगा तो मजीद इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक टू समर स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और आप ब्रेक से जाने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप यानी वर्ल्ड कप फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइटल्स जीतने वाली कंट्री यानी टीम के बारे में भी आप बता सकते हैं। कंट्री टीम एक ही है, आप उनके बारे में बता सकते हैं ऑन 666-2107 पर। और आगे बढ़ते हैं और ये बता दूं कि कतर में कुछ इवेंट्स होने जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस मंथ, और इस मंथ में वर्ल्ड कप है लेकिन वर्ल्ड कप बाहर है। कतर में एथलेटिक्स का एक बड़ा इवेंट जो है 19 जून को, वन डे इवेंट है ये और हर साल मुनक्किद होता है डायमंड लीग। और डायमंड लीग में दुनिया के तमाम टॉप एथलीट्स होते हैं और इसमें सारे इवेंट्स होते हैं, चाहे वो हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, 400 मीटर हो, हर्डल्स हो, कुछ भी हो इस डायमंड लीग में। डायमंड लीग बेसिकली एक सीरीज है और दोहा स्टॉपओवर है, तो दोहा इज़ वन ऑफ द शहर जहाँ पे डायमंड लीग मुनक्किद हो। और ये जो इवेंट है अक्सरियत में हमने देखा है शुरू से 2012 से मैं देखते आ रहा हूँ कि डायमंड लीग कतर स्पोर्ट्स क्लब के ही स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन इस साल इट विल बी हेल्ड एट दी खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। और बिकॉज खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम अभी ट्रैक है सो उसको यूज़ किया जाएगा। तो जिन लोगों को एथलेटिक्स से काफ़ी लगाव है वो जा सकते हैं। टिकट्स ऑनलाइन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, टिकट्स हाउ टू बुक द टिकट्स, सो उसमें आप लोग करके यू कैन ऑलवेज अटेंड। अच्छा दोस्तों, कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशंस ने जून के इस महीने में एस्पायर जोन है जहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी में है एस्पायर जोन, वहाँ पर ख्वातीन के लिए इंडो ट्रैक रेस सीरीज के नए एडिशन का ऐलान कर दिया है। ये मैं बार बार इस चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ, द रीज़न बीइंग कि वुमेन स्पोर्ट्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है कतर में फ्रॉम कतर ओलंपिक कमिटी एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ कतर। और इसका मकसद जो है वो ख्वातीन के खेलों और समाजी जो सरगर्मियों में शिरकत को फ़रोग देना है। जैसे मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ, पिछले शो में भी कहा था कि आपके घर पर अगर बच्ची हैं और अगर ख्वातीन हैं तो उनको, यानी वुमेन्स अगर आपके घर पे तो होंगी, बहन है, यू नो डॉटर है एंड आपकी मिसेज हैं, जो भी हैं, उनको थोड़ा सा पुश करिए। उनको पुश इसलिए करिए कि कतर गवर्नमेंट वांट्स द वीमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स, वीमेन एथलीट्स और स्पोर्ट्स, स्पेशली स्पोर्ट्स नॉट जस्ट फॉर कॉम्पिटिशन बट फॉर जस्ट पार्टिसिपेशन। और इसी वजह से कतर स्पोर्ट्स ऑल फेडरेशन ने एस्पायर जोन में ये वीमेन के लिए इंडोर ट्रैक रेस सीरीज का एक नया एडिशन जो है उसका ऐलान कर दिया है, सो दैट मोर पार्टिसिपेशन। आप लोग देखते होंगे कि हर साल जब कतर नेशनल स्पोर्ट्स के दौरान एक स्लोगन होता ही है कि वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन इनटू स्पोर्ट्स, इसीलिए कि यू नो दो यू नो मोर काइंड ऑफ एनकरेजिंग द गर्ल्स, द वुमेन और यूथ को ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ खींचना होता है, खींचने के लिए कतर स्पोर्ट्स ओलंपिक कमेटी के जितने भी उनके अंडर में इदारे हैं उनका यही मकसद है टू प्रमोट वुमेन इन स्पोर्ट्स। दोस्तों वुमेन की बात करते करते वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट भी शुरू होने जा रहा है, 12 जून से है और ये इंग्लैंड में खेला जाएगा 12 जून से जुलाई 5 तक ये इंग्लैंड में होगा और इसमें इंडियन टीम विल पार्टिसिपेट। और क्रिकेट में भी देखिए वुमेन पार्टिसिपेशन कितना ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश की वुमेन्स टीमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती आई हैं। तो एक तरह से पहले ये नहीं था, पहले आज से तकरीबन 30 साल पहले वुमेन इन क्रिकेट बहुत ज़्यादा, हाँ वुमेन क्रिकेट वॉज देयर सिंस लॉन्ग इन 70s में, वुमेन पार्टिसिपेशन हमेशा हमें देखने को मिला है, बट उस लिहाज से पहले मेंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी फ्रॉम द ICC पॉइंट ऑफ व्यू। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे न्यू सेटअप हैज़ बीन मेड एंड ICC में अब ये है कि वीमेन क्रिकेट को भी सेम इम्पोर्टेंस दी जाती है जैसे कि मेंस क्रिकेट को। और इसी वजह से T20 वर्ल्ड कप का भी आगाज़ हुआ, 50 ओवर्स गेम का भी आगाज़ हुआ एंड टेस्ट सीरीज़ के नो दोनों मुख्तलिफ कंट्रीज़ अगर अलग अलग मैचेस खेल भी रहे हों तो उसको भी ICC के अंडर में नोटिफाई किया जाता है, सो विच मीन्स देयर इज़ एन इम्पोर्टेंस गिवन टू द वुमेन्स क्रिकेट एज वेल। तो दोस्तों दोबारा मैं सवाल पर आ जाता हूँ। आज मेरा जो सवाल था कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम का नाम आपको बताना है और 666-2107 पर अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप अपना टाइप कर सकते हैं और मैं ज़रा फ़ोन को स्विच ऑन कर ही लेता हूं और देखता हूं कि किन किन लोगों ने किन किन आ, आ, आ,

अच्छा अच्छा, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है एकदम आखिरी इस पे है और दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट। एंड मुमताज़ आहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के पास है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेपाल के क्रिकेट के बारे में कुछ अपडेट दिया करो। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली विल पुट इन मोर न्यूज़ ऑन द नेपाल क्रिकेट। हम देते आ रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि नेपाल को हम कभी इग्नोर करते हैं। नेपाल के क्रिकेट के बारे में वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, इवन वर्ल्ड कप के टाइम में भी नेपाल क्रिकेट को हमने हाईलाइट किया है। नेपाल क्रिकेट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट, आई मीन अप ग्रोइंग अगर बोलूँ तो नेपाल की टीम इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। ये वर्ल्ड कप में कतर के बहुत सारी दुआएं हैं। आई लाइक अकरम अफीफ। मुमताज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज के लिए। अकरम अफीफ के अलावा बाकी टीम के मेंबर्स भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और एक और आया है मैसेज फ्रॉम आरिफ अंसारी। आरिफ अंसारी कहते हैं ब्राज़ील 5 times। बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। और शोएब अख्तर भी कह रहे हैं ब्राज़ील वन मोस्ट वर्ल्ड कप टाइटल्स, लेकिन आपने बताया नहीं कितने मरतबा। अच्छा, दूसरे मैसेज किसका है नाम आप लोग प्लीज़ लिखिएगा। खान लिखा हुआ है, लेकिन आपके डीपी में आप बहुत ही पोज तो अच्छा पोज है आपका, लेकिन आपने नाम नहीं लिखा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे। एनीवे, उमर अब्दुल्ला साहब लिख रहे हैं ब्राज़ील मोस्ट वर्ल्ड कप्स। उमर उबैदुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मैसेज आपने मैसेज किया है FM 107 के इस प्रोग्राम में और इस खास स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप जिन लोगों ने भी मैसेज किया, जिन लिसनर्स ने आपने मुझे सुनने के बाद या इस प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जी हाँ, ब्राज़ील इज़ द अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द फुटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री। और 5 मरतबा, आखिरी मरतबा ब्राज़ील के पास जो टाइटल, ब्राज़ील टीम ने जो टाइटल जीती थी, दैट वाज इन 2002 में, जब ये टूर्नामेंट साउथ कोरिया और जापान में मुनक़द किया गया था। आपको याद होगा उस टाइम में एक रोनाल्डो आया था, रोनाल्डो ऑफ ब्राज़ील, नॉट द रोनाल्डो ऑफ पोर्चुगल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अलग है, वो रोनाल्डो, रोनाल्डो नज़ारियो, तो वो रोनाल्डो उस वक्त बड़ा ही टॉप फॉर्म में, और ही स्कोर्ड इवन दी नो फाइनल में गोल किया था अगेंस्ट जर्मनी, 2-1 विक्ट्री फॉर ब्राज़ील, 2-1 विक्ट्री। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँ, ब्राज़ील बीट जर्मनी 2-1 or 2-0, क्योंकि मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, सो हो सकता है कि मैं यहाँ पर मिस्टेक हूँ। हाँ, 2-0, माफ़ कीजिएगा, 2-0। एंड आई रिमेंबर वॉचिंग दैट गेम, एंड रोनाल्डो की 2 goals थे, एंड रोनाल्डो उस वक्त नंबर 1 player माना जाते थे, एंड ही वॉज अ सुपर स्टार फॉर द ब्राज़ीलियन टीम। उसके बाद ब्राज़ील इज़ लुकिंग फॉर देयर 6th title, और इस बार के ब्राज़ील टीम के जो कोच हैं वो ब्राज़ीलियन नहीं है दोस्तों। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्राज़ील टीम में कोई बाहर का कोच आया है, और उनका नाम है कार्लोस अंचेलोटी, अंचेलोटी भी बोल सकते हैं, अंचेलोटी इटालियन है और रियल मद्रिद के कोच थे अभी जब ब्राज़ील ज्वाइन करने से पहले पिछले साल। तो कार्लोस अंचेलोटी, उनका ये कहना है कि ब्राज़ील विल विन द 6th World Cup। देखते हैं, नेमर जूनियर इंजरी पर हैं और उनका खेलना, पहला मैच में खेलना थोड़ा नामुमकिन है, लेकिन ब्राज़ीलियन टीम के पास काफ़ी ऐसे टॉप प्लेयर्स कहूँगा, डेफिनेटली ऑल आर टॉप प्लेयर्स। विनीसियस जूनियर, यू नो आई पर्सनली लाइक विनीसियस जूनियर, जिस तरह से वो यू नो गोल करते हैं, एग्रेशन मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है ब्राज़ीलियन टीम हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। और 2022 वर्ल्ड कप में भी हमने ब्राज़ील टीम को हर लोगों ने सपोर्ट किया। अच्छा, ब्राज़ील, मज़ेदार बात यह है कि ब्राज़ील टीम को दे आर द यूनिवर्सल फेवरेट ऑफ एवरी फुटबॉल लवर। ब्राज़ील का मतलब ही है कि फुटबॉल चैम्पियन, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे ऐसे टीमें हैं जो ब्राज़ील से भी हो सकता है कि बेटर खेल जाए। एंड आई डोंट नो, यू नो स्पेकुलेशंस ये है कि ब्राज़ील इस बार कुछ करके दिखाए। और ब्राज़ील के ग्रुप में बता दूं, ग्रुप सी में है मोरक्को है, हैती है और स्कॉटलैंड है। ग्रुप वाइज अगर देखें तो थोड़ा सा इजी लगता है, एंड मोरक्को डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टीम, बिकॉज 2022 के वर्ल्ड कप को थोड़ा सा अगर आप तसव्वुर करें तो मोरक्को इज नंबर 1 अगर अफ्रीकन टीम में इस पोजीशन पर आज बताऊँ तो मोरक्को इज डेफिनेटली द बेस्ट अफ्रीकन टीम टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप। और मोरक्को के बाद हैटी इज ओके, स्कॉटलैंड भी ओके है, तो ब्राज़ील के पास ये दोनों ओपोनेंट्स हैटी और स्कॉटलैंड को हराना तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन मोरक्को के साथ मैच थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड ब्राज़ील विल ओपन देयर एनकाउंटर द कैंपियन ऑफ द वर्ल्ड कप 2026 ऑन जून 14 यानी 14 जून को, फर्स्ट मैच ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को।

तो दोस्तों ये थी आज के इस समर स्पोर्ट्स के जो भी अपडेट्स और आने वाले मैचेस के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अगले इतवार को हम फिर हाजिर होंगे दुनिया भर और कतर की दिलचस्प स्पोर्ट्स न्यूज के साथ, खास तौर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप की कवरेज के साथ जो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में मुनक्किद हो रहा है। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और खेलों की दुनिया से जुड़े रहिए। एंड कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qm

0: FM 107. Time check.
1: Time check. इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:30, यानी कि वक्त हो चला है.
2: आप सुन रहे हैं Escape Room A for Amita के साथ, only on FM 107. दिल से दी.
1: हाँ जी, तो मेरी देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है, कैसे गुजर रहा है आज का दिन? हाँ, वैसे आई नो वो गर्मी ने अपना बिल्कुल रंग अब दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस गर्मी के रंग में रंगना नहीं है, ठीक है, इस रंग को एंजॉय करना है. सो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. वेलकम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है ऑन FM 107 पर. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. एस्केप रूम की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर आज कोई खासम खास सिचुएशन आपको मिलने वाली है जहाँ से आपको एस्केप करना है. सो आर यू रेडी कि आज सारे क्लूज, सारे पजल्स, सारी रिडल्स आप सॉल्व करके दिखा पाएंगे? आपको लगता है इतनी हिम्मत है आपके अंदर? अच्छा चलो, ये बता दो मुझको कि आज कौन सी सिचुएशन में आप फंसना चाहोगे ताकि फिर आराम से एस्केप कर सको. बताओ मुझे, आप समुंदर के अंदर कैद होना चाहोगे, म्यूजियम के अंदर कैद होना चाहोगे, या किसी पुराने महल के अंदर कैद होना चाहोगे, या फिर किसी बर्फ में कैद होना चाहोगे, या फिर अर्थ के ऊपर कैद होना चाहोगे, मतलब स्पेस में कैद होना चाहोगे, कहाँ कैद होना चाहते हो? आज जो आप चूज करोगे वही सिचुएशन आपको मिलने वाली है. सो 666-22-107, 666-22-107 इज आर नंबर. उस पर अपना नाम लिखो और बताओ कि अमिता आज हमें इस जगह पर कैद होना है, हम ये वाली सिचुएशन से एस्केप करना चाहते हैं. लेट्स सी कितने लोग कहाँ और किस सिचुएशन को वोट करते हैं. एंड जिस भी सिचुएशन को आप चूज करेंगे और सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे, डेफिनेटली उसी सिचुएशन को मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ. इट्स वेरी सिंपल. 666-22-107. सुनिधि चौहान आफ्टर लॉन्ग टाइम आ गई है. चले एंजॉय करें इनकी आवाज में ये बेहतरीन सा गाना और बने रहिए अपनी ए फॉर अमिता के साथ ऑन FM 107 पर. दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: Cricket hope.
3: And he's hooked that away.

0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
1: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
2: की। आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देखें।
3: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप। तो जनाब एस्केप रूम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि आज आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह की सिचुएशन में फंसना है। वेल, काफ़ी सारे मैंने ऑप्शंस दिए थे, तो कुछ लोगों ने बर्फ में फंसना पसंद किया क्योंकि सब कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है और कुछ यूनिक हुआ कि आज मुझे मैसेजेस आए कि अमिता हमको ना कुछ अलग जगह पे फंसना है, कुछ नया चैलेंज चाहिए। तो आप हमें कहीं स्पेस में, अर्थ के थोड़े ऊपर कहीं भी, मतलब हवा में कैद कर दो। चलिए, तो फिर आज हम आपको जो हमारी अर्थ है उससे 400 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हाँ, तो आपको ऑफिशियली हम आज कैद करेंगे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, जो कि मतलब थोड़ा सा ख़राब हो गया है, वहाँ मेल फंक्शनिंग हो गई है, ग्रेविटी फेल हो चुकी है और सितारे भी अब ब्लर्ड हो रहे हैं, विंडोज़ वगैरह सब वैसे ही टाइट है लेकिन अब ज़्यादा कुछ बाहर देख नहीं सकते हैं, और कंप्यूटर जो है इस मेन स्टेशन का वो हो गया है फ्रीज। उफ, ये बड़ी दुख की बात है कि कंप्यूटर बंद हो गए हैं, सारे के सारे कंप्यूटर बंद हो गए हैं। ओहो, अब क्या करेंगे हम? सिर्फ 60 मिनट है हमारे पास, 60 मिनट की ऑक्सीजन बची हमारे पास, और अगर सिस्टम रिबूट नहीं हुआ तो हम एकदम एक वॉइड, एक डार्क वॉइड की तरफ खींचते चले जाएंगे और धरती से बहुत दूर चले जाएंगे। सो ऑल राइट लिसनर्स, अब इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना दिमाग शांत करें और ध्यान से हर चीज़ को सुने, हर क्लू को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अब आप इस वक्त साइंस लैब में फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है, तैर रहे हवा में आप, चारों तरफ वायर्स ही वायर्स हैं और जीरो ग्रेविटी का शोर है। मैनुअल ओवरराइड कोड हमको चाहिए होगा, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले क्लू को सॉल्व करना है। और आपके लिए पहला क्लू ये रहा, मैं अंधेरे में छुपा एक ऐसा जायंट हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं अंधेरे में छुपा एक ऐसा जायंट हूं जो सारी रोशनी को निगल लेता है। मेरा कोई मुंह नहीं है लेकिन मेरा पुल बहुत ही मैसिव है। मेरे इवेंट होराइजन से तो यूनिवर्स की फास्टेस्ट थिंग यानी कि लाइट भी नहीं बच सकती, बताइए मैं कौन हूं। हमारा जो स्टेशन है स्पेस स्टेशन, उस पर ये मंडरा रहा है, ये फिनोमिनन मंडरा रहा है। आप बताएं कि ये क्या है, हमें अपनी ऑक्सीजन बचाते हुए इस क्लू को सॉल्व करना है। वैसे एक हिंट मैं आपको देना चाहूँगी, बात हो रही है स्पेस की, तो स्पेस में एक कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा जो कहते हैं ना डार्क, एक डार्क होल है जो हर चीज़ को अपनी तरफ एक वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच सकता है। थिंक, आप सबको इसका जवाब पता है, तो अपना जवाब लिखें अपने नाम के साथ 6622107 पर, 6622107, एंड लेट्स सी आप में से कितने लोग इस पहले पड़ाव को पार कर पाते हैं। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और इसके साथ थोड़ा म्यूजिक तो डेफिनेटली बनता है क्योंकि हमें अब सोचने के लिए कुछ तो बूस्ट चाहिए, है कि नहीं? स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखे।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज हम एक मेल फंक्शनिंग वाले स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। मतलब ये कि वहाँ पर सब कुछ ठप हो गया है, सारे कंप्यूटर सिस्टम सब फ्रीज हो चुके हैं और हमारी हालत ये है कि सिर्फ एक घंटे का वक्त है जो एक घंटा काफ़ी देर पहले शुरू हो चुका था और उतनी ही ऑक्सीजन हमारे पास बची है। अब हमें मैनुअल ओवरराइड कोड चाहिए, तो सबसे पहले क्लू को हमें सॉल्व करना था और पहला क्लू आपके लिए था कि मैं अंधेरे में छुपा एक ऐसा जायंट हूँ जो सारी रोशनी को निगल लेता है। मेरा कोई मुंह नहीं है लेकिन मेरा पुल बहुत ही मैसिव है। मेरे इवेंट होराइजन से तो यूनिवर्स की फास्टेस्ट थिंग यानी लाइट भी नहीं बच सकती, तो मैं क्या हूँ? अब ऑक्सीजन धीरे धीरे आपकी कम होते जा रही है लेकिन आपको जवाब देना ही देना है। तो हमें काफ़ी सारे जवाब आए जिसमें से कुछ हमारे लिसनर्स चांद का जिक्र कर रहे हैं, कुछ ने हमें मार्स तक लिख के कह दिया है, वाओ मैंने कोई प्लैनेट नहीं बोला था, इट्स जस्ट एन फिनोमिना। यहाँ पर किसी ने शक्तिमान का भी जिक्र कर दिया है और कुछ लोगों ने ब्लैक होल कहा है। क्या सही जवाब हो सकता है? ओके, सो द राइट आंसर इज ब्लैक होल। मैं तालियां उन सबके लिए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए। तो हमें सही जवाब देने वाले कुछ हमारे बड़े कमाल के लिसनर्स, कुछ हमारे रेगुलर लिसनर्स, जैद अकबर, रिहाब, फातिमा। और फातिमा यूसुफ ने अभी अभी ब्लैक होल लिखा, पहले उन्होंने कुछ और शायद जवाब दिया था। मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमको ब्लैक होल लिख के दिया है। मिस्टर सैयद ने भी ब्लैक होल लिखा है। सरफराज भाई ने भी हमें ब्लैक होल लिखकर कहा है कि भाई यही सही जवाब है, क्या बात है। तो आप सब ने फाइनली इस क्लू नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब जब आपने जैसे ही ये क्लू नंबर 1 सॉल्व किया तो आपने ऑर्बिट तो स्टेबलाइज कर लिया है बट मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी हमें बैकअप पार ढूंढनी है जो छुपी है एक सोलार सिस्टम के एक मैप के पीछे। देखिए वहाँ पर जहाँ आप हैं इस वक्त, आपके आसपास एक सोलार सिस्टम का मैप होगा। यस, आई एम वेरी सर्टन आपको मिल गया। यस यस, यही वाला। और जब ये मिला तो उसके पीछे देखिए आपके लिए क्लू नंबर 2 है, मैं अर्थ का लाल पड़ोसी हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं अर्थ का यानी धरती का लाल पड़ोसी हूँ। मेरे पास 2 चांद हैं जिन्हें डर और दहशत यानी फियर और टेरर कहा जाता है। और सुनिए, मैं पूरी गैलेक्सी के सबसे ऊंचे वॉल्केनोस का घर हूँ। बताएं मेरा नाम क्या हो रहा है, बताएं मेरा नाम क्या है, जल्दी बताओ जनाब, क्योंकि स्टेशंस की अब लाइट भी है ना वो धीरे धीरे डिम हो जाएंगी। समझ रहे हो आप, ये बहुत ही सीरियस माहौल बन चुका है। क्लू नंबर 2 हमें सॉल्व करना है। आपको फिर से आपके लिए मैं दोहरा देती हूँ कि मैं अर्थ का लाल पड़ोसी हूँ, मेरे पास 2 चांद हैं जिन्हें डर और दहशत यानी फियर एंड टेरर कहा जाता है और मैं पूरे गैलेक्सी के सबसे ऊंचे वॉल्केनोस का घर हूँ। कम ऑन, थिंक अबाउट इट, क्या है ये? अपना जवाब दें, नाम लिखें और भेजें 666-22107 पर, 666-22107। हम एक ऐसे स्पेस स्टेशन में कैद हो चुके हैं जहाँ का सारा सिस्टम ठप हो चुका है और ये दूसरा क्लू हमें एक और क्लू से पहले, मतलब एक स्टेप से पहले, ये हमारा दूसरा स्टेप है, काफ़ी नज़दीक स्टेप जो हमें इस स्टेशन से बाहर निकाल सकता है। ओके, थिंक अबाउट इट, आंसर सोचें, जवाब दें और अभी के लिए दलजीत दोसांझ जा गए भाई, उन्होंने कहा कि चलो अब मेरी आवाज़ की एनर्जी ले लो, है कि नहीं? स्टेडियम टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता। इस वक्त हमारे स्टूडियो में टाइम हुआ है, स्टूडियो की घड़ी में टाइम हुआ है दोपहर के 2:02। मेक अवेश
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: हाँ जनाब, तो आपको यही विश मांगनी थी ताकि आप जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल सकें। कहाँ से बाहर निकलना है, सिचुएशन है भाई। इस वक्त आप एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कैद हैं जहाँ पर जो पूरा सिस्टम है वो डप हो गया है। हाँ एग्जैक्टली, सारे कंप्यूटर्स जवाब दे चुके हैं और एक घंटे का हमको टाइम मिला था जिसमें से आधा घंटा तो जा चुका है। ठीक है, 3 क्लू सॉल्व करके हमें बाहर निकलना है। पहला क्लू आप सभी ने सॉल्व किया और जवाब था ब्लैक होल। दूसरा क्लू का जवाब अब हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके लिए क्लू था कि मैं अर्थ का लाल पड़ोसी हूँ, मेरे पास 2 चांद हैं जिन्हें डर और दहशत यानी फियर एंड टेरर कहा जाता है, और मैं पूरी गैलेक्सी के सबसे ऊंचे वॉल्केनोस का घर हूँ, तो मेरा नाम क्या है। तो हमें ज़्यादातर जवाब जुपिटर के मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा और साइंस पढ़ने की ज़रूरत है, है कि नहीं। और कुछ लोगों ने मार्स लिख के हमको दिया है कि भाई अमिता, मार्स इज़ द राइट आंसर। आइए ज़रा देखें किन्होंने सबसे पहले हमें ये जवाब दिए हैं। उनके नाम हैं जैद, अनवर, मोहम्मद यूसुफ, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे वन ऑफ दी रेगुलर लिस्टर। अफ़ान का भी मैसेज आया हुआ है हमारे पास, और फातिमा यूसुफ, मिस्टर सैयद, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है मिस्टर आरिफ अंसारी। तो ये सारे हमारे लिसनर्स ने जवाब दिया है मार्स, इट्स द राइट आंसर। क्या बात है, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जैसे ही आपने सही जवाब दिया, पावर वापस आ गई। उफ, अब एक थोड़ा सा सुकून, सिस्टम अब कर रहे हैं, मतलब अब सब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी हमको इंतज़ार करना है क्योंकि तीसरा क्लू सॉल्व करने के बाद ही हम इस मेलफंक्शन जो स्पेस स्टेशन था इससे बाहर निकल सकते हैं। अब एस्केप पॉड अभी भी लॉक्ड है, उफ, अब इसे खोलना है, और इसे कैसे खोल सकते हैं, एक फाइनल बायोमेट्रिक वॉइस स्कैन के ज़रिए। लेकिन उसे भी एक्टिवेट करने के लिए आपको उस गियर का नाम बताना होगा जो आपने अभी पहना हुआ है। यस, अभी आप स्पेस स्टेशन में हैं तो कौन सा गियर आपने पहना है, सोचिए। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। ये एस्केप पॉड अभी भी लॉक्ड है, हमें खोलना है एक फाइनल बायोमेट्रिक वॉइस स्कैन से, और ये एक्टिवेट तब होगा जब आप उस गियर का नाम बताएंगे। चलिए क्लू भी देती हूँ मैं आपको, मेरा कांच का चेहरा है और आंखें नहीं हैं, मैं अपनी पीठ पर एक टैंक में आपकी सांसें लेकर चलता हूँ, सितारों के इस जानलेवा खालीपन या यूं कहें फ्रीजिंग वैक्यूम के खिलाफ मैं ही आपकी एक लौती शील्ड हूँ, बताइए मैं क्या हूँ। कम ऑन गाइस, थिंक, स्पेस स्टेशन में कोई भी शख्स रहेगा तो वो क्या पहनेगा, थिंक अबाउट इट, उस गियर का नाम बताएं। 6622107 पर 6622107 एंड लेट मी नो द राइट आंसर, व्हाट डू यू थिंक। ये आखिरी मोड़ है और हमें ये एस्केप पॉड को एक्टिव करना है जो कि लॉक्ड है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दें 6622107 6622107 पर। और अभी श्रेया घोषाल और डिस्टिंक्ट क्या कह रहे हैं, अ ब्यूटीफुल ट्रैक, जालिमा, इंजॉय कीजिए। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी मेरी देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और इस वक्त एस्केप रूम के अंदर हम कैद है भाई। एस्केप रूम की आज बड़ी कमाल की सिचुएशन, हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसके 400 किलोमीटर ऊपर कैद हैं एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जहाँ पर सब कुछ ढप हो गया, सारा सिस्टम ढप हो गया। ठीक है, 3 क्लूज के ज़रिए ही हम निकल के बच सकते हैं, और इसीलिए अब हमें दिमाग और अपना दिल दोनों अपने काबू में करके बिल्कुल ध्यान से 3rd क्लू पर गौर फरमाना है। हालांकि हमारे कुछ लिसनर्स हैं, उन्होंने जवाब देने शुरू कर दिए हैं, कुछ ने ये भी कहना शुरू कर दिया, अमिता अच्छा खासा स्पेस में है, हमको नहीं आना नीचे, गर्मी बहुत है। और भाई साहब मैं कहना चाहती हूँ बस ये, मतलब 2:30 बजे तक ही उसमें हवा बची है, यानी कि ऑक्सीजन बची है। अगर आप जल्दी 3rd क्लू सॉल्व करके अपने आप को नहीं बचाते, देन फिर तो मुझे नहीं पता, एस्केप में ही, मतलब एस्केप रूम के इस क्या कहते हैं ना, स्पेस में ही घूमते रह जाओगे। चले जनाब, पहला क्लू का सही जवाब था ब्लैक होल, दूसरे क्लू का सही जवाब था मार्स, और तीसरा क्लू आपको सॉल्व करना है। हमारे कुछ लिसनर्स अभी हमें सुनना शुरू किए, उन्होंने बोला कि अमिता प्लीज़ हमें जल्दी से बता दो कि ये 3rd क्लू क्या था, हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो हियर इट इज, मेरा कांच का चेहरा है पर आंखें नहीं। ठीक है, मेरा कांच का चेहरा है पर आंखें नहीं, मैं अपनी पीठ पर एक टैंक में अपनी सांसें लेकर चलता हूँ। सितारों के इस जानलेवा खालीपन, या यूं कहे फ्रीजिंग वैक्यूम के खिलाफ, आपकी मैं एक लौती शील्ड हूं। बताएं मैं क्या हूं, दिस इज अ गियर जो कि आप स्पेस में पहनते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल आंसर, एंड अभी भी हमारे लिसनर्स मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं, सबके बड़े मज़े के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन कम ऑन मुझे सही जवाब चाहिए। थिंक अबाउट इट, आप स्पेस स्टेशन में कैद हैं तो वो कौन सा गियर है जो आपने पहना हुआ है, कम ऑन यू कैन डू इट। 666-22-107 इज आर नंबर, 666-22-107, इस पर जल्दी जल्दी अपने जवाब दीजिए अपने नाम के साथ। वक्त भागे जा रहा है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप डेंजर में फंस जाओगे, लेकिन हर डेंजर खराब नहीं होता। ये डेंजर गाना आपके नाम, स्टेडियम टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम का ये आखिरी पड़ाव चल रहा है जहां पर हम एक ऐसे स्पेस स्टेशन में कैद हो गए जहां का पूरा सिस्टम ढप हो गया और तीन क्लोज के जरिए हम वापस से जो अर्थ की या यूं कहे धरती की ताज़ी हवा महसूस कर सकते हैं। तो पहले क्लू का जवाब ब्लैक होल था, दूसरे का जवाब मार्स था, तीसरा क्लू मैंने आपको दिया कि मेरा कांच का चेहरा है पर आंखें नहीं, मैं अपनी पीठ पर एक टैंक में आपकी सांसें लेकर चलता हूँ, सितारों के इस फ्रीजिंग वैक्यूम के खिलाफ ही मैं आपकी एक लौती शील्ड हूँ, बताएं मैं क्या हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जवाब, लेकिन कौन है जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, आइए ज़रा उनका नाम ले लेते हैं। उनके नाम हैं जफार, जुनैरा, जयान, रिहाब, अकबर, जैद, मिस्टर सैयद भी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया हुआ है, और सरफराज भाई इनका भी, फातिमा यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ खान, इन सब ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। और जवाब क्या है? जवाब है स्पेस सूट। जोरदार तालियां भाई, तालियां। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। जैसे ही आपने सही जवाब दिया स्पेस सूट, एयरलॉक के खुलने की आवाज और आप सीधा अब जमीन महसूस कर सकते हैं। आप धरती पर बड़े ही सुकून के साथ लैंड कर चुके हैं। तो कैसा लग रहा है एकदम सुकून में आकर अब स्पेस से वापस जमीन में आकर? हाउ आर यू फीलिंग? चलिए इसी बात पर आज के लकी विनर का नाम भी बताते हैं। तो आप सभी ने लगातार हमारे साथ जुड़कर इस एस्केप रूम को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाया, हर एक क्लूज को सॉल्व करने की कोशिश की, और इसी बात पे जो आज की लकी विनर है उनका नाम है जुनैरा। भाई मुबारका, मुबारका, क्या बात है, क्या बात है। यही मजा आता है जब हमारे लिसनर्स जीत जाते हैं। भाई बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपके लिए जुनैरा, आपने बहुत ही कमाल के तरीके से हमारे साथ जुड़कर जवाब दिए, और यूं कहें तो हमारे जो लिसनर्स हैं जो नॉन स्टॉप हमारे साथ बने रहे उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और ये एस्केप रूम बेसिकली इट्स अ माइंड एक्सरसाइज, ये खासम खास शो इसीलिए आपके लिए लाया गया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं, काम होता है, ये होता है, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कई बार अपने दिमाग की एक्सरसाइज करना हम भूल जाते हैं, एंड दिस इज हाउ वी प्लान एस्केप रूम। वैसे आज स्पेस में तो आप टहल रहे थे, हाँ मज़ा तो आया होगा, लेकिन जो अगला डेस्टिनेशन होगा ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाला है, हाँ काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड भी हो सकता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम सीधा लंदन की उस ऐसी घोस्टली लाइब्रेरी में चलें जहां हर एक किताब की एक अपनी ज़िंदगी, एक अपनी कहानी हो। क्या लगता है, यहां जाना चाहिए या फिर कहीं और? जो भी आपके व्यूज़ हैं आप शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107। और इसी के साथ हमारे एस्केप रूम का एकदम आखिरी मुकाम चल रहा है, अब आपकी ए फॉर अमिता को जाना होगा, लेकिन जाने से पहले कहूँगी एफएम 107 के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं और अपनी आर जमीता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। तो जाते जाते कहना तो बनता है हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, और चलते चलते ये गाना तो सिर्फ आपके नाम। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। क्या हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी जिंदगी को सिंपल बनाती हैं और एनवायरमेंट को ज्यादा सस्टेनेबल बनाती हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं पेपरलेस लाइफस्टाइल की। कागज नहीं होना चाहिए। देखिए चलिए शुरू करते हैं बात को एक बड़ी रिलेटेबल एग्जांपल से। सोचिए आप बैंक या ऑफिस गए किसी काम के लिए, आपने वहां पे फॉर्म फिल करना है, आपको एक फाइल दी जाती है या एक पेपर दिया जाता है जिसमें 5 से 6 पेजेस होते हैं, आप साइन करते हैं, सबमिट करते हैं और काम हो जाता है। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो जो पेपर आपने साइन किए ना, वो पेपर्स या तो फाइल में बंद हो जाते हैं या किसी ड्रॉअर में चले

0: ले जाते या कभी कभी सीधा वेस्ट बिन में फुफ। और फिर सेम चीज हर ऑफिस, हर डॉक्यूमेंट और हर ट्रांजैक्शन के साथ रिपीट होती चली जाती है। आप थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं भाई। देखो पेपर हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मैं मानती हूँ। रिसिप्ट हो गई, बिल्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, नोट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब पेपर का अननेसेसरी यूज होता है। हर पेपर बनाने के लिए दरख्त काटे जाते हैं, पानी इस्तेमाल होता है और एनर्जी कंज्यूम होती ही होती है। यानी एक सिंपल प्रिंट या फोटोकॉपी के पीछे काफी नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं भाई। देखें अब इको स्विच यहाँ क्या है, इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। आइडिया बड़ा सिंपल है, आइडिया बहुत सिंपल है, सिंपल सा। जहाँ पॉसिबल हो पेपर की जगह डिजिटल ऑप्शंस यूज करें। इसे कहते हैं पेपरलेस लाइफस्टाइल। यानी जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स, नोट्स और कम्युनिकेशन को डिजिटल फॉर्म में मैनेज कर सके। अब बात करते हैं कि पेपरलेस लाइफस्टाइल कैसे हेल्प करता है। देखिए सबसे पहला फायदा वही वाली बात है, दरख्त लगाओ, दरख्त बचाओ। जितना कम पेपर यूज होता है उतने कम ट्रीज काटे जाते हैं जो एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा फायदा है वेस्ट रिडक्शन। देखिए पेपर वेस्ट लैंडफिल्स में जाता है और जगह ऑक्यूपाई करता है। पेपरलेस अप्रोच इस वेस्ट को रिड्यूस करती है। तीसरा फायदा है हमारा कन्वीनियंस ना। देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इजीली स्टोर, सर्च और शेयर किए जा सकते हैं, आपको फाइल्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। चौथा फायदा क्या है, एफिशिएंसी है भाई, काम फास्टर हो जाता है। इजीली ऑफिस और स्कूल्स में जहां डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है वहां पे काम बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से होता है। अच्छा अगर इसकी एक और रिलेटेबल एग्जांपल ली जाए ना, तो जरा सोचें आप स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस वर्कर हैं। आपके पास 10 डिफरेंट नोटबुक्स हैं और हर जगह नोट्स स्कैटर्ड हुए हैं। अब अगर वही नोट्स आप मोबाइल या लैपटॉप में ऑर्गेनाइज करें तो आपको सब कुछ एक क्लिक पर मिल जाता है। या फिर वो जो रिसिप्ट्स और बिल्स होते हैं ना, है ना, हाँ, यानी कि हर चीज फिजिकल फोल्डिंग में स्टोर करने के बजाय ईमेल्स या एप्स में सेव्ड हो। देखिए दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में जहाँ डिजिटल सिस्टम्स ऑलरेडी काफी एडवांस हैं, बैंक्स, स्कूल्स और ऑफिसेज ग्रेजुअली डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी ये लाइफस्टाइल सिर्फ फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट रियलिटी भी बन चुका है। अच्छा अगर कुछ टिप्स के बारे में बात करूं, प्रैक्टिकल टिप्स, तो भाई बिल्स को ईमेल्स पर रिसीव करें। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ये जो आपके मोबाइल बिल्स को आप पेपर की बजाय डिजिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि नोट्स ऐप यूज करें। शॉपिंग लिस्ट हो गई, आइडियाज या रिमाइंडर्स जो हो गए वो अपने मोबाइल में लिख लें कहीं, उसे आदत बनाएं। डॉक्यूमेंट स्कैन करें, इंपॉर्टेंट पेपर्स को स्कैन करके क्लाउड स्टोरेज में सेव करें। चौथी चीज है ऑनलाइन फॉर्म्स प्रेफर करें। जहां भी ऑप्शन हो फिजिकल फॉर्म्स के बजाय आप ऑनलाइन सबमिशंस यूज करें। प्रिंटिंग अवॉइड करें, सिर्फ जरूरत हो तब प्रिंट करें। और डबल साइडेड प्रिंटिंग यूज करें भाई, अगर प्रिंट करना ही है तो डबल साइडेड करो ना। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक सिंपल पेपर शीट बनाने के लिए वाटर और एनर्जी दोनों यूज होते हैं। अगर हम अननेसेसरी प्रिंटिंग कम कर देते हैं तो हम इनडायरेक्टली मल्टीपल रिसोर्सेज सेव कर रहे होते हैं। और ये सेविंग्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि लार्ज स्केल पर भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो साथियों जब आप पेपरलेस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आपके पास क्लटर कम होता है, स्पेस बेटर यूटिलाइज होती है और मेंटल लोड भी रिड्यूस होता है। डिजिटल सिस्टम्स आपको कंट्रोल और क्लैरिटी दोनों देते हैं। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, जहाँ पॉसिबल हो पेपर की जगह डिजिटल ऑप्शंस यूज करें। और भाई आज का चैलेंज भी है हमारे पास, आज से कम अज कम एक चीज चूज करें जो आप डिजिटल, जिसे कह सकें डिजिटल है, पेपर से शिफ्ट कर जाएं, जैसे नोट्स हो गए, बिल्स हो गए, रिमाइंडर्स हो गए। और अगर आप ऑलरेडी पेपरलेस हैं तो किसी और को इनकरेज करें कि वो भी आपके वाली हैबिट अपनाए। तो भाई साथियों पेपरलेस लाइफस्टाइल सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन है। जब हम कम पेपर यूज करते हैं तो हम सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बढ़ाते बल्कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हर डिजिटल चॉइस एक दरख्त को बचाने के बराबर है साथियों। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है सबर। सबर एक ऐसी खूबी है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। जिंदगी में हर इंसान को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो शख्स सबर करता है अल्लाह उसे पसंद करता है। सबर का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना और हिम्मत से वक्त गुजारना है। कभी कभी हम फौरन रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। हर तकलीफ के बाद आसानियां छुपी होती हैं। आज का अमल ये है कि जब भी कोई छोटी या बड़ी परेशानी आए, फौरन रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचें और दिल से दुआ करें। सबर करने वाला कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे महावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
2: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वाटर कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। पानी बचाना जिंदगी बचाना। पानी जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन दुनिया में फ्रेश वाटर लिमिटेड होता जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी का एक अहम गोल पानी का स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल यूज है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि पानी के बिना जिंदगी मुकम्मल ही नहीं है, ना एग्रीकल्चर और ना हमारा खुद का एग्जिस्टेंस। अगर आज हम पानी जाया करते हैं

0: की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज की हिफाजत ही का जिम्मेदारी बनेगी। तो आज इस जिम्मेदारी को समझें और भरपूर तरीके से निभाएं। देखिए, कतर का नेशनल विजन जो है 2030, वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी का एक शेयर्ड विजन है। जब गवर्नमेंट, बिजनेस और सिटीजंस एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, प्राइवेट सेक्टर जॉब और इनोवेशन लाते हैं, और सोसाइटी वैल्यूज और कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सपोर्ट इसी टीम वर्क की मिसाल है। शेयर्ड विजन ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है। हर स्टेक होल्डर को अपना रोल पता होता है, जिससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन कम हो जाता है। सो वन स्टेप टू 2030 ये दिखाता है कि जब सब एक डायरेक्शन में कदम उठाते हैं तो विजन सिर्फ लिखी हुई सोच नहीं रहता, बल्कि एक लिविंग रियलिटी बन जाता है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट्स। और आज का सफर बहुत ही खास है। पिछली बार हमने इनविजिबल ब्रेथ यानी हमारी फजा या यूं कहें हवा के बारे में बात की थी। हमने देखा कैसे AI लुसेल से अलवक्रा तक हमारी हवा को साफ रखने में मदद कर रहा है। लेकिन जनाब, आज हम थोड़ा सा ना गैर बदलने वाले हैं, कुछ अलग हट के बात करेंगे। आज बात सिर्फ सोलार पैनल्स की नहीं होगी, आज बात होगी ग्रीन फाइनेंस की। हम फिजिकल से फाइनेंशियल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक ग्रीन फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ विजन या ख्वाब काफी नहीं होते, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। वैसे आप जानते ही होंगे कि कतर का मुशरिफ डाउनटाउन दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफाइड सस्टेनेबल कम्युनिटी है। नहीं पता तो डेफिनेटली इट्स एन इन्फो फॉर यू। वहाँ 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अपनी बिजली खुद जनरेट करती हैं और पानी खुद रिसाइकल करती हैं। ये हमारे फाइनेंशियल पल्स का यूं कहें तो एक दिल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका बैंक अकाउंट नेचर की हिफाजत या प्रोटेक्शन कर सकता है। कतर अपना पैसा वहां लगा रहा है जहां उसका दिल है। सो यस, स्टे ट्यून्ड, बने रहे एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट और एफएम 107 पर, मैं हूं आपकी अमिता। तो जनाब, कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि अब कतर में कंपनीज को सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि अपनी नेकी भी दिखानी होगी। कतर स्टॉक एक्सचेंज ने अब ESG रिपोर्टिंग को लाजमी कर दिया है, यानी कि कंपलसरी कर दिया है। और ESG का मतलब क्या है? इट्स एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। जी हाँ, अब कंपनीज को PSA और स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि उनका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। अगर वो एनवायरमेंट का ख्याल नहीं रख रही है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उनसे किनारा कर लेंगे। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक कतर ने हाल ही में अपना पहला ग्रीन सुकूक यानी कि इस्लामिक बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसका मकसद है सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देना। सिंपल बात है, सस्टेनेबल बिजनेस ही अब असली बिजनेस है। तो आप समझ रहे हैं कतर ग्रीन बीट में कि आज का एपिसोड कितना कमाल का है। वैसे अभी तक हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कतर की इकोनॉमी कैसे

चल रही है. और अब आगे हम ये भी बात करेंगे कि कैसे ग्रीन मॉर्गेजेस और ईवी लोन्स आपके पॉकेट को और भी हरा भरा बनाएंगे. हाँ, तब तक क्या करना है, तब तक हमारे साथ बने रहना है और जानने के लिए बेताब रहना है कि आगे कदर ग्रीन बीट में क्या है. तो चलिए अब बात करते हैं आपके और हमारे बैंक्स की. वैसे जनाब, अगर अभी आपने ट्यून इन किया है एफएम 107, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आज बात कर रहे हैं ग्रीन मनी की. वैसे आप हर रोज हमारे दोहा की सड़कों पर जब निकलते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, जहां पर बैंक्स के शाइनी क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें आपको देखने में आती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बैंक सिर्फ आपका पैसा

0: घर की वैल्यू फ्यूचर में ज्यादा होगी, और जो इंसान प्लैनेट का ख्याल रख रहा है, बैंक उसका ख्याल क्यों ना रखेगा, डेफिनेटली उसका ख्याल रखेगा। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ होम तो यहाँ वहाँ मत देखें, हाँ लुक एट द ग्रीन रेटिंग, और ये आपके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रियाल्स को बचा सकेगा। तो बात हो रही है ग्रीन फाइनेंस की। अब बात करते हैं आपकी गाड़ियों की। हाँ जी, कतर की सड़कों पर बड़ी ही नामी गाड़ियां हमें दिखाई देती हैं, और बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब देखना हमारे लिए बड़ी आम बात हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे नामी बैंक्स ने स्पेशल ईवी लोन्स ऑफर करना शुरू कर दिया है। इन लोन्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जीरो प्रोसेसिंग फीस है, और आपको कोई एक्स्ट्रा फाइल चार्ज नहीं देना होता, और इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मल पेट्रोल कार्स के मुकाबले काफी कम होता है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 10% कार्स इलेक्ट्रिक हो जाएं, और बैंक्स इस मिशन में आपके पार्टनर भी बन रहे हैं। सो अगली बार जब कार शोरूम में जाएं तो ग्रीन लोन के बारे में जरूर पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइलेंट ड्राइव भी है और सेविंग्स भी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता, मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, इससे एनवायरमेंट को क्या फायदा होगा? यही है आज की खासम खास बात। पहले क्या आपने ब्लू कार्बन का नाम सुना है? कतर नेशनल विजन 2030 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ब्लू कार्बन। इसका हीरो है हमारा अपना अल थकीरा मैनग्रोव्स। जी, क्या आप जानते हैं कि ये मैनग्रोव के जंगल जो है ये नॉर्मल जंगल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कार्बन सोखने की ताकत रखते हैं। 10 टाइम्स फास्टर, कैन यू इमेजिन। जब आप एक ग्रीन लोन लेते हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली उन बैंक्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं जो इन मैनग्रोव्स की हिफाजत या यूं कहें कंजर्वेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका एक साइन कतर की मिट्टी और समंदर को बचाने में मदद करता है। तो ग्रीन बैंकिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगली बार जब आप बैंक जाएं, तो सिर्फ बैलेंस मत चेक कीजिए, ये पूछिए कि मेरा बैंक प्लैनेट के लिए क्या कर रहा है। सस्टेनेबल लिविंग महंगी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में सस्ती है।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट। वैसे अभी तक हमने बात की लोन्स की, हमने बात की बैंक्स की, अब चलिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं और खोलते हैं आपका ग्रीन वॉलेट। तो जनाब, जब हम बाजार जाते हैं, हमारी नजर सबसे पहले कहाँ जाती है? कभी सोचा है? प्राइस टैग पर, डेफिनेटली, कि ये एसी कितने का है, ये गाड़ी कितनी महंगी है। लेकिन एक स्मार्ट कंज्यूमर और एक ग्रीन कंज्यूमर में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ग्रीन कंज्यूमर सिर्फ प्राइस टैग नहीं देखते, वो देखते हैं TCO, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अब आप सोचेंगे, अमिता ये TCO क्या बला है? वेल, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं बताना चाहती हूँ। बड़ा सिंपल है कि TCO का मतलब है आज खरीदने से लेकर उस चीज के खत्म होने तक आपकी जेब से टोटल कितना पैसा निकलने वाला है। कभी कभी सस्ती चीज लॉन्ग टर्म में बड़ी महंगी पड़ जाती है। एक मिसाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। माना कि एक स्टैंडर्ड एसी हमें सस्ता मिल सकता है, और एक 5-स्टार एनर्जी रेटेड एसी थोड़ा महंगा मिलेगा। अब आपने सस्ता वाला ले लिया, मगर कभी सोचा कि बिजली का बिल कितना आएगा? और डेफिनेटली कतर की गर्मी में हमारे एसी जो हैं वो 24 घंटे चलते हैं। एक एनर्जी एफिशिएंट एसी या अप्लायंस आपका बिजली का बिल 30-40%, यानी कि 30-40% तक कम कर सकता है। अगर आप महीने के 200 रियाल भी बचा रहे हैं ना, तो समझिए साल के 2400 रियाल बच गए, और 5 साल में 12,000 रियाल। वही लॉजिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी होता है। पेट्रोल का खर्चा जीरो, मेंटेनेंस का खर्चा मिनिमल, तो अगले 5-10 साल में बचत ही बचत होती है। वही आपका असली मुनाफा है। ग्रीन प्रोडक्ट खरीदना खर्चा नहीं, मैं कहूंगी इट्स एन इन्वेस्टमेंट। वाला बाती है मेरी प्रो टिप। हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट कोई खर्चा नहीं, ये बेसिकली हमारा फ्यूचर कैश फ्लो का फाउंडेशन है। यस, तो जनाब, बैंकिंग की दुनिया में एक नया टर्म आया है ESG, यानी कि एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। बैंक अब सिर्फ ये नहीं देखते कि कोई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, बल्कि ये भी देखते हैं कि वो प्लैनेट का कितना ख्याल रख रही है। तो क्या करना है हमको? अगली बार जब आप अपने बैंक

जाएं तो सिर्फ स्टेटमेंट्स निकालने या चेक बुक लेने के लिए मत जाएं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था. थोड़ा वक्त निकालें, ब्रांच मैनेजर से मिलें और बैठें उनके साथ और पूछें उनसे कि सर मैडम मेरे सेविंग्स का क्या हो रहा है, क्या आपके पास इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं, क्या मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन वाटर पर काम कर रही हैं. हाँ, तो इन सब के जवाब आपको मिलेंगे. दुनिया बदल रही है और आज के बड़े इन्वेस्टर्स अब ग्रीन स्टॉक्स और ESG फंड्स ढूंढ रहे हैं. क्यों? क्योंकि फ्यूचर उनका है जो सस्टेनेबल है. जो कंपनी आज धुआं निकाल रही है वो कल बंद हो जाएगी, लेकिन जो कंपनी दुनिया बचाएगी वो लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा या यूं कहें प्रॉफिट देगी. स्मार्ट बनिए मैं तो कहूंगी, और ग्रीन बनिए. वैसे हम अपने शो के आखिरी पड़ाव पर हैं और एक सवाल जो आप सबके दिमाग में शायद तब से घूम रहा होगा जब से हमने अभी इस एपिसोड की शुरुआत की कि अमिता बैंक्स का इतना इंटरेस्ट क्यों है, वो इलेक्ट्रिक कार पर डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, सस्टेनेबल घरों पर सस्ता लोन क्यों दे रहे हैं. ठीक है, जवाब एक ही है, कतर नेशनल विजन 2030. जी जनाब, ये सिर्फ एक पोस्टर या स्लोगन नहीं है, ये एक रोड मैप है जिसको बार बार मैं आपको इस शो के जरिए याद दिलाती हूँ. हमारा जो मुल्क कतर है वो चाहता है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन. इसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए सिर्फ ऑयल और गैस पर निर्भर ना रहें. कतर एक ऐसी इकोनॉमी बना रहा है जो नॉलेज और सस्टेनेबिलिटी पर टिकी हुई है. द फोर पिलर्स, कतर नेशनल विजन 2030 के चार बड़े पिलर्स हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका और हमारा विकास. सोशल डेवलपमेंट, हमारा कल्चर और कम्युनिटी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सही तरीके से पैसा कमाना. एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, हमारी जमीन को बचाना. जब आप एक ग्रीन लोन लेते हैं तो आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं बनते, आप इस विजन के एक शेयर होल्डर बन जाते हैं. जब लसेल में सोलार पार्ट घर बनते हैं या मुशहरे में स्मार्ट कूलिंग लगती है तो कतर पूरी दुनिया को दिखाता है कि तरक्की और तबीयत यानी कि नेचर दोनों साथ चल सकते हैं. एंड यू आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल एग्जाम्पल. तो जनाब, सस्टेनेबिलिटी का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं. लोग सोचते हैं इसका मतलब है सिर्फ प्लास्टिक छोड़ना या पेड़ लगाना, वो जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का असली मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सदियों तक चलता रहे. आज हमने जो भी बातें की, चाहे वो अल्थकीरा के मैंग्रोव्स हो या ब्लू कार्बन की ताकत जो कार्बन को सोख लेती है या फिर आपका ग्रीन वॉलेट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं. यस, एक मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए आज से 20 साल बाद जब आपके बच्चे कॉर्निश पर वॉक कर रहे होंगे या अल्थकीरा में कायाकिंग कर रहे होंगे तो क्या वो हमें याद करेंगे? हाँ, हर एक रियाल जो आप ग्रीन जगह पर इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ आपकी बचत नहीं है, वो हमारी आने वाली नस्लों, आने वाली जनरेशंस के लिए एक अपर हैंड है, एक अपर गिफ्ट है. हम उन्हें सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि एक साफ हवा, एक ठंडा शहर और एक बेहतर जमीन देकर जाएंगे. वक्त आ गया है कि हम स्पेंडिंग से ऊपर उठकर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर के बारे में भी सोचें. तो जनाब, आज का एपिसोड हमारा कतर ग्रीन बीट का आपको कैसा लगा, जहां हमने बैंक्स की बातों से शुरुआत की और कतर के विजन तक का सफर तय किया. उम्मीद है कि आज के बाद जब आप अपने बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि ग्रीन अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी. और मैं हूँ आपकी अमिता, और याद रखिए कि आपका ये छोटा सा फैसला, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार लेने का हो या इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चुनने का हो, हमारे कतर को 2030 तक और उसके आगे भी चमकाएगा. पहले अपना ग्रीन वॉलेट आज से शुरू करें, इस ग्रीन बीट को अपने दिल में धड़कने दें, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो कोई नया शानदार टॉपिक होगा जिस पर हमारा डिटेल्ड डिस्कशन होगा. तो कतर ग्रीन बीट आपको कैसा लगता है, आप इस शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर. एंड ऑन दिस नोट मैं कहूंगी कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ जाएं, FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और वहीं पर आपको आरजे अमिता भी मिल जाएगी. वैसे अब वक्त आ गया है माइक को बंद करने का, लेकिन हमारी ग्रीन बीट तो अभी शुरू

0: हुई है। जाते जाते मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि कुछ होमवर्क भी देना चाहती हूँ। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग गाड़ी में होंगे, शायद कॉर्निश से गुजर रहे होंगे या लुसेल की तरफ जा रहे होंगे। आज जब आप घर पहुंचेंगे तो कुछ चीजों पर आपको काम करना है। यस, चेक योर ऐप। यस, अपने बैंकिंग ऐप को खोलिए और देखिए क्या वहाँ कोई ग्रीन बॉन्ड या सस्टेनेबल फंड का ऑप्शन है। सिर्फ देखिए, जानिए कि आपका बैंक प्लैनेट के लिए क्या कर रहा है। दूसरा काम, अपने पुराने एसी या फ्रिज की रेटिंग्स चेक करिए। हाँ, अगर वो बिजली ज्यादा खा रहे हैं तो याद रखिए अगला लोन ग्रीन होना चाहिए। हाँ, एंड टॉक टू योर किड्स, उन्हें बताइए कि कतर नेशनल विजन 2030 सिर्फ एक सरकारी टारगेट नहीं है बल्कि उनके लिए एक साफ और सुंदर कतर बनाने का वादा है। उन्हें बताइए कि जब हम इलेक्ट्रिक कार लेते हैं या सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो हम उनका कल सिक्योर कर रहे हैं। मैं अक्सर अल्थकीरा जाती हूँ और उन मैनग्रोव्स के बीच वहाँ जो खामोशी है, जो सुकून है, वो हमें याद दिलाता है कि कतर की असली दौलत सिर्फ ये तेल और गैस नहीं है। हमारी असली दौलत हमारा नेचर है और इस नेचर को बचाने की चाबी हमारे ग्रीन वॉलेट्स में छुपी हुई है। पर सस्टेनेबिलिटी का रास्ता महंगा नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी का रास्ता स्मार्ट होता है। आज जो आप बचा रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, वही कमाल करेगा। कल मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और ये कतर ग्रीन बीट का सफर कैसे खत्म हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमें 666-22107 पर शेयर करें। अगले एपिसोड में आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी, तो मुझे दीजिए इजाजत। कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान, इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107. Time check.
1: Okay, class. Everybody, pin drop silence. Okay, आपके प्रोफेसर एबसेंट है तो मैं आपका सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर. मेरा नाम, एक सेकेंड, नाम क्या है मेरा? दोहा वाला कबीर. प्लीज, ये क्या क्लास दे दी है मेरे को यार. प्रिंसिपल मैम को बुलाओ.

0: सब्स्टिट्यूट टीचर है हम भाई। तो फजील भाई सो अभी छुट्टी मना रहे हैं, तो तब तक 10 दिन तक आप मेरे साथ ही रहेंगे। ये बार बार मैं रिमाइंड कराता रहूंगा, कभी कोई गलती से मुझे कहते हैं हेलो फजील भाई कैसी हैं आप, तो ये गलती ना हो इसके लिए मैं पहले ही बार बार बताता रहूंगा कि कोई मिस्टेक की संभावना ना बचे। बाकी रिक्वेस्ट का आ रहे हैं तो आपको पता ही है, रिक्वेस्ट तो चलाएंगे आपकी, लेकिन आज जो है थीम हमने बहुत बढ़िया पकड़ी है। ये सारे के सारे लड़के खुश हो जाएंगे जितने भी 90s वाले हैं, लड़कियां भी खुश हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। सो ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स, आज हम भाई साहब बता दूं इमरान हाशमी के चलाएंगेगा गाने भाई बढ़िया करके, रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ओए होए होए होए, आज एक घंटे की ड्राइव आपको ऐसी लगेगी कभी खत्म ना हो, एक दो एग्जिट मिस कर दूं मैं, आज मुझे घर नहीं जाना। तो वो फील के लिए आपको फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। 666-22107 नंबर है, 666-22107। कुछ मैसेज पढ़ दूं सबसे पहले तो मैं। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई, मैं बढ़िया भाई, आप सुनाए क्या हाल है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका इंतजार था, थैंक यू सो मच। मेरा इंतजार घर वाले नहीं करते, आप कर रही हैं, आपकी मेहरबानी है। एम के भाई कहते हैं आर साउंड प्लीज, हैं केड़ा साउंड प्लीज, समझा नहीं भाई मैं। एक भाई कह रहे हैं गुड आफ्टरनून चॉकलेट भाई। ये कल वाला जोक फॉरवर्ड हुआ है क्या, वो सॉफ्टी भाई वाला। एक भाई कह रहा अस्सलाम वालेकुम कबीर सॉफ्टी, भाई वो जोक मेरे पे नहीं था यार, मुझे किलो पीट रहा भाई, क्या चक्कर क्या है। तो 666-22107 पे प्लीज बताइएगा कौन सा आपको गाना सुनना है। आज इमरान हाशमी की थीम हमने पकड़ ली है और आज वैसी गाने चलेंगे बढ़िया करके। तो आपको अगर इमरान हाशमी को ऐसा गाना याद आ रहा है जो आपके दिल में है और आप चाहते हैं कि बज जाए भाई एफएम 107 पे, तो तुरंत आपका नाम स्पेस देके गाना लिख के भेज दीजिएगा 666-22107 पे। एक मैसेज है, क्या हॉर्स की आवाज सुनोगे क्या, अच्छा लाओ निकालो 5 रियाल, फ्री में नहीं था भाई ये। 5 रियाल दो। लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ये अचानक से जो रिक्वेस्ट आती है लोगों की। फैसल भाई गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, बढ़िया। एक भाई कह रहा है आइसक्रीम वाले की आवाज निकाल, ये क्या चल रहा है बता बताइए, रिक्वेस्ट गानों की करनी है मेरी आवाजों की नहीं। चलो फिर भी निकाल देता हूँ गाना चलाने से पहले। तो वो जो आइसक्रीम वाले हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले में घूमते हैं, उनकी आवाज कुछ ऐसे ही ऐसी होती है, आइसक्रीम। बस ठीक है, आप जरा गाने बता दीजिए। एक मैसेज आया है आवारापन का, ठीक है, आवारापन 2 बाय द वे आने वाली है, बहुत करीब है, तो इंशाल्लाह वो भी आएगा, आवारापन का गाना भी आएगा। एक और भाई ने भेजा है मर्डर 2 का गाना, ठीक है। वैसे अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आई एम हमजा, स्टिल वेटिंग फॉर माय वाउचर, मिल जाएगा आपका वाउचर हमजा भाई, टेंशन फ्री हो जाओ यार, आ जाएगा, सब्र रखी, मैंने उस टाइम भी कहा था जब आप जीते भी थे, सो यू विल गेट इट, जस्ट हैव सम सब्र, इंशाल्लाह यू विल गेट इट। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, तो ये हकीकत ख्वाब तू, अच्छा वो तुम मिले वाला, तो ठीक है सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं एक कॉल से, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। आलू ले विंडी ले, बात भाई क्या हाल है।
1: पीछे साहब मुझे बताएं ना
0: जी,
1: फालसे कितने के मिलेंगे।
0: बेटे मैं कान खींचता हूँ आपको ले जाऊंगा ये मार्केट में, ठीक है, अगर मुझे कल फालसे नहीं मिले मैं कल जाऊंगा, ये फलसफा जो कल मुझे मिला है कल फालसों पे जाके खत्म होगा।
1: सर फालसे तो डिलीवर भी होके कर रहे हैं आपके, मैसेज नहीं किया।
0: वेरी नॉटी किड, मैं बेटे आपको जो है हाथ दिखाओ अपने, देना मेरा स्केल देना, ये बहुत
1: शैतान। ये ले सर।
0: बेटे डायरी में लिख के दूंगा मैं, ठीक है, पापा से साइन करा के लेके आना मेरे सामने, बदमाश नहीं
1: तो। पापा नहीं है तो दूसरे पापा से साइन कर लूं।
0: घर पे भाभी से साइन करा के लाइएगा आप, आपकी डायरी में लिख के दूंगा मैं, वेरी
1: हाथ से करा लू।
0: बिल्कुल डन है। वैसे आज मोड में बहुत बढ़िया। तो फवाद भाई कोई ऐसा गाना है इमरान हाशमी का जो आपके जहन में आ रहा है, पहले तो ये बताओ।
1: इमरान हाशमी सुनते ही मैं याद आया था अपने
0: आप। अच्छा अपने आप को याद करता था मैं, भाई हाशमी से कम हूँ क्या आपका, भाई एक जमाने में आग लाता था भाई। फिर भी कोई तो गाना बताओ, कोई दिल में होगा तो मैं नोट कर लेता हूँ, वो चलाता चला जाऊंगा। है गाना जो इमरान हाशमी का भी,
1: इमरान हाशमी के सारे गाने मोहब्बत

0: हैं तो हम तो वैसे दिल जले हैं।
1: ठीक है, दिल जले हो ना तो एक बढ़िया सा गाना चलाते हैं फवाद भाई के नाम का। ठीक है
0: सर, और सुनाइए सर, आप ठीक है?
1: बढ़िया फवाद भाई, आप सुनाइए भाई, कैसे चल रहा है सब? बढ़िया,
0: आपके सुनने वालों को प्यार, आपको
1: बहुत सारा प्यार मेरे भाई को।
0: वाउचर मिल जाएगा, वाउचर टाइम लेट मिलता है लेकिन मिल जाता है, मैं गारंटी देता
1: हूं। ये मेरा भाई फवाद भाई को जो भी चाहिए दिया जाए, टेबल नंबर 21 लगा इनके लिए खाना। फवाद भाई कोई भी कमी हो मेरे को कॉल करने का, ठीक है?
0: ठीक है
1: भाई, बहुत प्यार, ओके सर, ठीक है बच्चे, बाय, ओके अल्लाह हाफिज। तो एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, परसों की स्टोरी बहुत जबरदस्त थी, मैंने अपने बेटे को भी सुनाई, ही वाज सो एक्साइटेड, थैंक यू सो मच परवेज भाई, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू एंड काइंड ऑफ यू। तो पहला गाना, बाकी सारे गाने जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो भी चलेंगे, वो पहला गाना जो है ये मर्डर टू का गाना है, मर्डर टू का गाना। इफ यू रिमेंबर दिस ट्रैक योर चाइल्डहुड वॉज गुड, ये कहा जाता ना मीम में, इफ यू रिमेंबर दिस योर चाइल्डहुड वॉज अमेजिंग, तो इफ यू रिमेंबर दिस ट्रैक आपने बढ़िया जिंदगी जी है भाई। याद है गाना, जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उस वक्त बारिश हो रही थी, मुझे इतनी अच्छी मेमोरी है मेरी, और मैं बारिश में मूवी देखने के लिए गया था। दीवानगी देख रहे हैं, आपके भाई के पास सेम जैकेट भी है, सेम टू सेम। हर्ष सक्सेना, हालिद, हाँ कर लो याद, कोई नहीं दिख रहा भाई, कर लो, कर लो याद, कर लो। गुड इवनिंग।

0: मर्डर टू का ये गाना हाले दिल। भाई साहब गाड़ी और दिल की रफ्तार दोनों तेज हो गई होगी, यही तो खासियत है। हर्षित सक्सेना की आवाज। व्हाट एन आइकॉनिक मूवी दिस वाज। और क्या विलन था भाई साहब, अलाप लगाना होगा साथ में, लगा लो। अलाप लगा लिया साथ में, इमरान हाशमी के गानों के साथ है, आखिर में साथ में अलाप लगाना ही पड़ता है। सुर आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे। एक भाई बड़े हैरान हो रहे हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बात है भाई, 4 बजे आ गए, एम आई ड्रीमिंग और व्हाट। ना जी ना, ख्वाब नहीं है, हकीकत है। फवाद भाई कह रहे हैं गाड़ी की स्पीड अरे बहुत ज़्यादा नहीं हो गई। खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये इन्होंने मैसेज किया है, एक कॉल और आ रही है, पर अभी कॉल में थोड़ी देर में उठाता हूँ, पहले मैं ज़रा मैसेजेस पढ़ लूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक मैसेज ज़रा सी दिल में जगा तू, बीते लम्हे लुट गए। ओके ठीक है, एक एक करके गाने चलेंगे भाई, बहुत सारे। एक तो इमरान हाशमी का टॉपिक छेड़ के मैंने गलती कर दी लग रहा है। ये एक घंटा छोटा पड़ जाएगा भाई गाने चला चला के। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
0: पार्टी बढ़िया एकदम शानदार, आप सुनाए क्या हाल है?
1: सच में मेरी स्पीड बढ़ गई थी भाई गाने के।
0: ये है भाई, ये है
1: मजाक से हटके।
0: हाँ, जो लोग बालक रहे हैं ना इस मूवी के दौरान उनके साथ यही है।
1: नहीं सच में मैं कभी भी 100+ नहीं जाता हूँ।
0: हाँ।
1: लेकिन पता नहीं पुरानी यादें ताजा हो गई। ऑटोमेटिकली एक्सीलेटर पे पैर चला गया भाई।
0: देखो ऐसा है, सबके सब अपने चलान की पर्ची मेरे नाम की तो फाड़ना नहीं, साफ सीधी बात।
1: नहीं 120 वाले हाईवे पर हूँ।
0: अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे लगा जो जोश में नहीं सर मिलाड, इसी गलती है, ये रेडियो पे चला दिया गाना उसके चल से हो गया।
1: मर्डर टू की बात करी आप बोल रहे थे ना कि वो विलन, वाकई में यार उसकी बहुत कमाल की एक्टिंग थी।
0: क्या एक्टिंग थी भाई, नीरज पांडे नाम है भाई, डर लग गया था जब वो स्क्रीन पर आ रहा था। शुरू कर चुके थे तो अच्छी बात है, इट वाज अ हिट एट इवन दैट पॉइंट इन टाइम, तो अच्छी बात है ये। तो मेरा भाई
1: और बताइए,
0: कोई गाना है जहन में
1: किस तरह का, मतलब
0: किस तरह का? अरे इमरान हाशमी का, इमरान हाशमी का,
1: इमरान हाशमी के बहुत सारे गाने, मर्डर टू भी बहुत सारे थे, लिरिक्स समझ में नहीं आ रहा
0: यार। चलो कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई गायक हूँ लिरिक्स में आते लो, मैं चलाता हूँ अपनी मर्जी चलाता हूँ और आपके नाम पे चिपका दूंगा मैं, ठीक है? जिस तरह से आप चलान मेरे नाम पे चिपकाने वाले, ठीक है?
1: ठीक है भाई, चिपका देना।
0: ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखो अपना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो एक काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट आ चुकी है, एक एक करके चलाना शुरू करता हूँ मैं। एक पहले मैसेज पढ़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरा परसों छूट गई थी स्टोरी, नहीं सुना, प्लीज़ थैंक यू, आई विल सेंड मैसेज। दिल में दे जगह ये गाना बजाना, दिल में दे जगह, जरा सी, अच्छा जरा सी दिल में दे। गाने के नाम इधर कन्फ्यूजिंग कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, यहाँ से बढ़िया कल वाली स्टोरी जबरदस्ती। गैस नहीं हो पा रहा था कि बच्ची को क्या हुआ है, एंड में पता चला तो वाकई हिल गया। थैंक यू सो मच, मैं यही चाह रहा था वाकई हिल जाए आप। आज की कहानी भी वाकई मलिक भाई हिला के रख देगी भाई। एक मैं काम करता हूँ पहले, क्योंकि लोग ये बड़ा ही हाई डिमांड पे चल रहा है, सबसे पहले यही चला देता हूँ मैं, इसके बाद ही आपसे बात होगी भाई बढ़िया वाली, ठीक है? तो 90s वाले बच्चे यादों में खोने के लिए तैयार हो जाएं और प्लीज़ ड्राइव स्लोली। हाँ, ये गाना जोश दिलाने के लिए नहीं है, बस याद कराने के लिए। प्लीज़ काबू में करो जज्बात को विनोद। पर क्या क्या

यादाया सच्ची में बताना, मैं किसी को नहीं बताऊं। व्हाट्सएप 666-221-07 बताओ ना। अरे मुझे पता है। कोई गल नहीं, भाई को तो बता सकते हो, क्या दिक्कत है। 666-221-07 नंबर है। हाँ भाई आया याद, आ जाओ व्हाट्सएप पे। और वॉल्यूम तो बढ़ेगी अपने आप, यहाँ बैठे बैठे वर्चुअली वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता हूँ आपकी गाड़ी की अभी। एंड आई नो दैट, जरा सी दिल में दे जगह तो। हाय

बहुत सारे इमोशंस है एंड आई थिंक सबसे ज्यादा हेटेड पुलिस वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो जन्नत में ही है. आई एम सॉरी आई एम स्पॉइलिंग द होल मूवी फॉर यू जिन्होंने नहीं देखी है, बट कान बंद कर लो भाई. कहूँ रेडी 1 2 3 ओके. लास्ट में यार वो इमरान हाशमी नीचे रिंग उठाने के लिए जरा सा झुकते हैं गोली पड़ जाती है भाई. अच्छा मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, जिस मूवी में आखिरी में इमरान हाशमी को मार दिया जाता है उसके कैरेक्टर को, मूवी चल जाती है, लेकिन भाई दिल टूट गया यार. मैं पत्थर ढूंढ रहा था थिएटर में कि स्क्रीन पे देखे मारूं मैं, इतना गुस्सा. बट नॉनदलेस इफ यू हैवंट सीन जन्नत ब्रो दिक्कत है, देखनी चाहिए आपको. लोग क्योंकि वॉल्यूम अभी 40-40 पे चल रही है भाई, 40-40 आवारापन में भी. हाँ लास्ट में, बट आवारापन का लास्ट में वो लेजिट, चलो पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है. जन्नत में बंदा अंगूठी उठाने के लिए झुका था यार, दिल टूट गया मेरा. बट एनी वे अवारापन 2 इज ऑन द वे. आई होप अमान मलिक को म्यूजिक दिया गया तो म्यूजिक बढ़िया होना चाहिए. एक मैसेज सलाम कबीर भाई, पूरे दिन का काम करके थक जाते हैं और आपको सुन के फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जी वापस आ जाती है. जजाकल्ला मेरे भाई. मोहम्मद इस्लाम भाई का मैसेज है, भाई को बहुत सारा प्यार. क्या फालसे की फोटो भेजना बंद करो फवाद. फवाद बेटे मैं बता रहा हूँ, मैं घर आ जाऊँगा, सारे डब्बे उठा के ले जाऊँगा, बता रहा हूँ, छेड़ो नहीं मेरे को. रिफत भाई वालेकुम अस्सलाम. और क्योंकि रुकना नहीं चाहिए सिलसिला, आज मैं सोच के आया था कि आज रिक्वेस्ट आर में ऐसा होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहे और आप जो है एक नॉस्टैल्जिया में जीते रहें. लोग बड़े उर्दू में फैंसी फैंसी तरीके से बोलते हैं माजी में झांको, तो माजी में आज झांकते रहो. माजी से बाहर मैं आपको आने ही नहीं दूंगा, माजी में मजे करो. तो माजी में मजे कराने के लिए आज क्योंकि थीम इमरान हाशमी की, सो दिस वन इज फॉर ऑल दोज पीपल who have lived this song. Lived this का मतलब ये, उस टाइम में जब ये टीवी पर आता था और आपकी वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाती थी, बिकॉज उस जमाने में गाने के लिए वेट करना पड़ता था भाई, अपनी मर्जी का नहीं था, टीवी पर अपने आप वेट करना पड़ता था. अरे वॉल्यूम बड़ा हुआ क्या, हो गया क्या, आगे वो देखो रिमोट का है, रिमोट का वॉल्यूम बढ़ाओ. होता था नहीं होता था, इसके साथ तो जरूर होता था.

भाई साहब आज बात आया आपको मैं 4 से 5 के बीच में गाड़ी से उतरने नहीं दूंगा भाई साहब, आप ये समझ लीजिए 7 बजे से पहले आप गाड़ी से उतर नहीं पाएंगे, इतना कुछ है। आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड मैं 2 हवाला कभी हाजिर हूँ भाई साहब। कुछ मैसेजेस पढ़ दूं फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, डोंट वरी। एक मैसेज आया है भाई, कह रहे हैं झलक दिखला जाए, वो भी चलेगा भाई, डोंट वरी, ओरिजिनल वाला चलाएंगे। अजीज भाई कह रहे हैं माशाल्लाह द शो इज एब्सोल्युटली रॉकिंग एंड गोइंग अमेजिंगली वेल। अजीज भाई को बहुत सारा प्यार। अजीज भाई आप हमारे अजीज हैं, हमारे नहीं बुजुर्ग नहीं बोलोगा छुट जाएंगे। अजीज भाई शुक्रिया। अली भाई वालेकुम अस्सलाम। खादिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कह रहे हैं FM 107 को 100 times रेटिंग देता हूँ, थैंक यू। इतने कब इंडस्ट्रियल एरिया से खराफा पहुंच गया पता ही नहीं चला, यही तो बात है भाई। एक और मैसेज आया भाई का, मलिक वकास साहब भी मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने भी रिकॉर्डिंग भेजी है। एक भाई रिफत भाई कह रहा है प्रवा आज 4 बजे से शुरू मूड में लग रहे हो भाई, आज भाई आपका कति मूड में भाई, मौज करा देंगे आपको, टेंशन फ्री रहो आप, ठीक है। तो मैं वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो है ना आपकी गाड़ी में आज आपको एहसास होना चाहिए कि रेडियो किस चिड़िया का नाम है, आपको पता लगना चाहिए। इट कैन बी सो सिंपल, आर रिलेशनशिप कैन गो टू सो मैनी ईयर्स, क्योंकि बड़ा सिंपल है बातचीत में गाने गुनों में इतना गहरा रिश्ता हो जाता है पता भी नहीं लगता। एक भाई कह रहा कबीर भाई रॉक्स, भाई आप भी रॉक्स भाई, आपका नाम क्या, एक सेकंड नाम ले दूं मैं, अजहर हुसैनी भाई। हुसैनी भाई मास्क हटा देते, मतलब मास्क के साथ डीपी थोड़ा एस्थेटिक लुक के लिए, ऐसी पूछ रहा था मैं तो, इफ यू डोंट माइंड। बताओ जी कौन सा गाना है, भाई कह रहे हैं हमारा भी गाना लगा लगा देंगे भाई। सबसे पहले तो क्योंकि मेरे पास 3 रिक्वेस्ट हैं तो 3 back-to-back नहीं चलाऊंगा, बीच में बोलूंगा मैं, ऑफकोर्स बोलना मेरा काम है, उसी के पैसे ले रहा हूं। मगर जो 3 गाने मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं उनमें से नंबर 1 गाना रेडी है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, रेडी ओके, ऑन अ काउंट ऑफ 3 वॉल्यूम बढ़ जानी चाहिए, 3, 2, and 1 आवारापन 2 जब तक नहीं आती है थोड़ा सा याद कर लेते हैं। और मीन वाले आपको याद है नाम क्या था इमरान हाशमी का इस मूवी में, याद करो बिना इंटरनेट पे सर्च किए बताना पड़ेगा भाई, यही शर्त है। लौट करा भी बहुत कुछ है हमारे पास, साथ में गाना ना

0: मुस्तफा जाहिद के कमाल की आवाज और बड़ी उम्मीदें हैं मुझे हमारा पंटू से. बस प्लीज बॉलीवुड ये मेरे लिए बर्बाद मत करना प्लीज. अवारापन की सीडी डीवीडी जब आई थी हमने घिस दी थी भाई, घिस दी थी. मतलब जिसकी याद नहीं. अभी मैं बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ स्क्रिप्ट शुरुआत से आखिर तक इतनी ज्यादा रटी हुई है. पर बहुत कमाल के मैसेज हैं आज तो लोगों ने भाई साहब जो मैसेजेस किए हैं मजा आया मजा. मैं एक पढ़ के बताता हूँ आपको. एक मैसेज आया कबीर भाई क्या मॉल सेट कर दिया इमरान हाशमी के गाने से. यकीन करो रेस के रेस से पाँव नीचे नहीं जा रहा. पाँव रेस से भी दिमाग में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डेज और कार का आरपीएम 5 पे लिया. सॉन्ग्स कमाल माहौल सेट कर दिया. बहुत उम्दा उस्ताद कबीर. लुसेल कब एन खालिद पहुंच गया लुसेल से पता ही नहीं चला. ये मलिक भाई कह रहे हैं और एक भाई ने मैसेज किया परवेज भाई कह रहे हैं अरे ये क्या हो गया मैं कब आ गया यहाँ पे समझ में नहीं आया. मसाइद से अलवकरा बहुत जल्दी पहुंच गया. बहुत तेज साउंड की वजह से स्पीड का पता नहीं चल रहा. आज जितने भी लोग हैं ना ये सब मेरे नाम की पर्ची पढ़ने वाले बताऊं मैं. ये सब भाई कह रहे हैं जो भी हो इमरान हाशमी गाने मूवी कैसी भी हो लेकिन चलते बहुत है भाई. ये बात तो फैक्ट है. कॉल ले लेते हैं. अरे कॉल ही कट गई. मारी गलती से ना कटी भाई. वो अपने आप गिरी है. कभी आपको लग रहा हो मैंने कॉल काट दी ऐसा नहीं है. एक क्या मैसेज है ये मैं पढ़ भी नहीं सकता ऐसा मैसेज है. लेकिन लेते ईस्ट और वेस्ट कबीर प्रा इज द बेस्ट. थैंक यू भाई. पेप्सी कबीर भाई मैं आगे नहीं बोल सकता ना. ठीक है छोड़ो. एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई रॉक्स. थैंक यू सो मच भाई. बहुत सारा प्यार भाई को. जो आपने बोला वही गाना चलने वाला है अब नेक्स्ट बिकॉज रिक्वेस्ट आ चुकी थी. मैं ज़रा कॉल उठा लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: और भाई क्या मोहल्ले भाई के क्या मोहल्ले
1: अच्छा
0: भाई
1: हुआ,
0: के
1: उठा ली कॉल उठा ली अच्छा हुआ.
0: हाँ भाई मैं
1: तो, हाँ, सुपारी निकल गई थी
0: शाम में. बहस निकलना भाई मेरे से सवेरे सवेरे तो सहेलिया

0: करूंगा, शाम में दौड़ाता बहुत हूं मैं।
1: बेटा गर्मी देख रहे हो ना, तुम्हारा तंदूर बनाऊंगा रूफटॉप पे।
0: भाई बहुत तबीश हो रही है, बट डर गया ये वाली धमकी से, मैं जेन्युइनली डर गया।
1: और तुम होंगे
0: क्या?
1: तुम होंगे सिर्फ शार्ट में,
0: शार्ट।
1: सोच रहे हो तुम?
0: और क्या चल रहा है भाई, क्या हाल है?
1: उधर उधर सन बंद करवाऊंगा जहाँ पे तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं है।
0: एक एक गाना यहीं से फेंक के मारूंगा उस तरफ, तला भाई हिल जाएगी गाड़ी एकदम। ठीक है,
1: मतलब ये है कि आज तुम जो है ना हमारे मुर्शिद के गाने चला रहे हो, तो तुम्हें आज सौ खून माफ है।
0: आज आज मैं बिल्कुल
1: इस आदमी ने हमें सिखाया रोमांस कैसे करते हैं।
0: वाह, वो जो है ना, वो जो आज वाला सीन है, बस में चढ़ते ना कहते हैं टिकट दिखाओ, नहीं जी भाई जी स्टाफ है स्टाफ।
1: तो आज स्टाफ भाई हम
0: तो वैसे तला भाई अभी शाम में जाकर, सुबह तो इतनी बार आपसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन
1: अबे चल भाई चल काम कर अपना, शाम में तुम्हारे तुम्हारी तो दिहाड़ी लगी हमारे के साथ कसूर, शाम में आ जाएगा
0: क्या बस, सुबह भी आऊँ शाम में भी आऊँ, ड्यूटी ये कर रहा है मैं कर रहा हूँ
1: करा दिया, एक रुपए का फायदा नहीं मिल रहा, शाम में भी आ जाओ।
0: ये बात है, ये बात है पब्लिक, तला भाई जो है वापिस आ चुके हैं, अंडरटेकर जैसे उठता है ना उसमें से कास्केट में से।
1: पीछे गाना चलाओ मेरे लिए, जॉन सीना वाला
0: तला भाई भी शाम में, यू कांट सी मी माय टाइम इज नाउ,
1: ये वाली कहानी होगी
0: भाई। शुक्र मनाओ कि वो गाड़ी के बोनट पे किसी ने अंडे बनाने का वीडियो नहीं बनाया, मैं तो ऊपर वाले का बहुत शुक्र गुजार हूँ। ऐसे
1: तुम्हें तसव्वुर करते हुए ना रूफ टॉप पे कर रहा हूँ,
0: कर अच्छा
1: अंडे बना रहा हूँ,
0: वीडियो भेजो कभी, ऐसा साथ नहीं हो रहा है।
1: अब तुम्हारी वीडियो तुम्हें क्या भेजू मैं,
0: मुझे ऐसा साथ नहीं हो रहा ना, ऐसा साथ के लिए भेजो।
1: चलो प्राइवेट में भेजेंगे, प्राइवेट में।
0: अच्छा ठीक है, प्राइवेट में भेज दो। पता लगा
1: वरना वो
0: सुनो अभी,
1: वरना वो हमारे दूसरे वाले भाई भी देख लेंगे ना तो उनके मुंह में पानी आ जाएगा, वैसे ही खाने पीने में।
0: नहीं नहीं नहीं किसी और को नहीं छेड़ना, सब मासूम है।
1: क्या नाम था? एंड्रयू, नाम भूल गया मैं।
0: अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र।
1: हां नहीं पर चल जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, मसला नहीं
0: है। अभी सिलसिला जारी है, गाड़ी में हो अभी, घर पहुंच गए?
1: पहुंच गया भाई घर, अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चलो बढ़िया
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आज तुम जल्दी आ गए हो तो इसलिए तुम सुनने में आ गए।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं 4 बजे आऊंगा 10 दिन तक, ऐसा ही है।
1: क्यों भाई, अबे क्यों दिखाते हो तुम अम्मी का दिल, माँ की बद्दुआ जो तुम्हें,
0: जहाँ आपको लगेगा कि ये बंदा मुझे ना देगा वहां वहां पहुंच जाऊंगा मैं। कल को आपने सोचा मेरे चौराहे पे ना देगी,
1: वो देखो ना गाड़ी के पीछे माँ की दुआ,
0: माँ की दुआ
1: तू ले रहा, तू भाई ये बद्दुआ ले रहा, ये बद्दुआ होगा सारा ये।
0: भाई जब भी कोई छुट्टी बजाता है ना आपका भाई स्टेपनी की तरह काम करता है, तो अभी हमारे वजील भाई गए हैं, मैं स्टेपनी का काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो, तो ये चल रहा है,
1: स्पेयर व्हील चल रहा है,
0: स्पेयर व्हील चल रहा है भाई एकदम आपका भाई। ठीक है, ये सीन है, ठीक है। तलवार
1: वो वाली कहानी है, मैं हॉकी का बड़ा अच्छा प्लेयर था, मेरी एक टांग नकली है, लेकिन फजील भाई बहुत अच्छे,
0: मुझे हॉस्पिटल ले गए थे तो उनके शो कर रहा हूँ।
1: थैंक यू भाई, वो चलाते थे जरा मगर मगर कू का या मगर कू गाना था ना, वो
0: कौन सा,
1: वो जैकलिन फर्नांडिस पे था ना,
0: वही तो चलाया था स्टार्टिंग में मैंने, हाले दिल
1: अबे यार
0: तुझको सुना था
1: स्टार्टिंग में नहीं सुना मैंने,
0: चलो दूसरा चलाता हूं मगर कू का, कोई गल नहीं, दूसरा
1: थोड़ा दिन थोड़े टाइम पहले सुना मैंने,
0: कोई बात है दूसरा वाला चलाता हूँ।
1: वैसे यार तुम बात सुनो मेरी, ये अच्छे लोगों को मिलाया करो शो में, तुम इमरान हाशमी को ले आया बिना वजह मजबूर करके, तुमने
0: बचपना है मेरा, जज्बात है इमरान हाशमी,
1: मजे की बात है। चौथी कॉल उठाई है भाई तुमने मेरी आज, नोट कर रही हूँ ये, सब नोट कर रही हूँ। ये मैंने सुपारी निकाल दी थी अभी, मैंने फिर चबा लिया ना, मैंने
0: माफी माफी माफी माफी माफी, ठीक है।
1: हाँ मतलब शीशे वाली ब्रेकिंग मुझे पता
0: है,
1: ठीक है ना, समझ रहा भाई।
0: मैं बिल्कुल
1: आ जाऊंगा मैं छके फ्लोर पे।
0: नहीं नहीं नहीं भाई बिल्कुल गुस्सा नहीं, गुस्सा
1: और बताओ, और डिटेल बताओ लोगों को।
0: नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई,
1: चलो भाई,
0: ठीक है भाई, चलो अल्लाह हाफिज, चलाता हूं दूसरा,
1: देख रहा हूं देश, देख रहा हूं मेरी देश,
0: बिल्कुल भाई बिल्कुल,
1: चलो भाई अल्लाह
0: हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक मैसेज मेरे पास आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम टू सी यू अगेन, सज्जाद एन मुकर्रब, एक बार हॉर्स की बात सुना दो, 10 की पत्ती तैयार रखो, सुनो आप। लाओ 10 रियाल। एक मैसेज है, बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, बिल्कुल भाई, इसीलिए गाना जो भाई ने बोला था ओरिजिनल वाला चलाएंगे भाई, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल एकदम, रीमिक्स वीमिक्स नहीं भाई।

ओरिजिनल चलेगा भाई आज तो। जिसने ये पिक्चर देखी है भाई उसने उसने बेरा है, कितना बढ़िया थ्रिलर, इतनी बढ़िया थ्रिलर थी। इफ यू हैवंट नोटिस्ड आज आपका भाई फुल फॉर्म में है। अभी डीजे मोड चलेगा भाई, अगले घंटे आ जाएंगे आरजे मोड में। मैं जी आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड दोहा वाला कबीर।

0: जाना के दिखना जा हिमेश भाई की आवाज में अक्सर कहेगा ना। पौने पांच हो गए जी, पौने पांच हो गए, एक मिनट ऊपर हो लिया, 4:46 में जी दो हवाला कभी। हाँ जी, अरे एक कॉल आ रही है, रुको भाई कॉल उठा लेते पहले। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जनाब, की हाल चाल है जी तुहाडा?
0: हाँ जी एकदम बढ़िया। हाँ भाई क्या चल रहा है बाबा जी? बढ़िया
1: मस्त भाई, एकदम बढ़िया
0: भाई। बस भाई बढ़िया चल रहा है, तो माहौल सेट कर रहे हैं, आज वो वाले गाने चला रहे हैं, सब कुछ याद आ जाए सबको एकदम पास्ट में।
1: भाई आज आप आज आपने पता क्या किया है?
0: क्या भाई?
1: एक ना जख्म के ऊपर ना एक मेडिसिन लगाते थे हाइड्रोजन।
0: आज नमक का डेला लेके लगा दिया मैंने उस पर भाई, बढ़िया करके। आज
1: आपने नमक का डेला लेके लगा दिया, मगर काले वाला जो जमा होता है।
0: तो कौन कौन से जख्म कौन से गाने से याद आए? कोई स्पेशल गाना था इससे कोई बहुत ही गहरा जख्म?

0: सुकून देते हैं ना दिल
1: सेट
0: को।
1: सेट है भाई, सेट है, बिल्कुल सही बात है भाई। वो अलग ही डायलॉग है, वो वैसे आए ही नहीं, आए ही नहीं, वो सैयद कादरी भाई ने लिखे थे, और क्या डायलॉग लिखे थे, जबरदस्त, सच में
0: बहुत जबरदस्त डायलॉग। इवन कबीर भाई जब डायलॉग चलता है ना मूवी का, तो
1: हाँ,
0: उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक और धुन चलती है ना, जो
1: हाँ,
0: रोमांटिक सी
1: हाँ,
0: धुन,
1: हाँ,
0: हो वो सीधा दिल पे आके लगती
1: बस
0: है
1: भाई
0: भाई।
1: दुआ करो भाई, इस बार ऐसे ही आना चाहिए, सेट लग हो जाए मामला, बस ऐसे ही होना चाहिए, इस बार ही मौज आ जाए, लोग बोले यार क्या पिक्चर बना दिया यार, जस्टिफाई कर दिया। और हाँ एक और
0: मैंने भाई
1: मैसेज आया था
0: ट्रेलर
1: कि
0: तो
1: हमारी
0: देखा
1: बात
0: है।
1: करते करते हमारी एक बहन है आसर, उन्होंने मैसेज किया, वो कह रही है एक्सक्यूज मी जन्नत के डायलॉग्स भी कम नहीं है। बिल्कुल जन्नत जो आई
0: जन्नत
1: थी उसके भी डायलॉग, ओहो
0: पे
1: क्या सॉलिड
0: साउथ
1: मूवी है
0: अफ्रीका में जो
1: भाई,
0: मूवी बनी है ना भाई, ओए
1: होए
0: लास्ट वाला जो उसका रिंग वाला सीन है ना भाई,
1: भाई मैं बता रहा हूँ,
0: जिसमें
1: मेरा
0: उसको गोली लगती है भाई।
1: मन खट्टा हो गया था भाई देख के, मेरा मन गया ही मैं कुछ करना बैठू वो एक्चुअली में बहुत बहुत दर्दनाक सीन था, जो कि पता नहीं था ना ऐसा कुछ होने वाला है, पहली मरतबा जिन्होंने देखा था,
0: भाई
1: सो
0: एक्सपेक्ट
1: इसलिए
0: नहीं किया था ना किसी ने भी इसका जो
1: हाँ
0: क्लाइमेक्स है वो ऐसा होगा मूवी का।
1: हाँ वो एक्चुअली वो बड़ा उदास वाला सीन था, मगर कोई गाल नहीं। तो गाबा जी आपके लिए बहुत सारे गाने चलते रहेंगे, और अभी एक दो गाने और आ रहे हैं भाई, बढ़िया करके सुनो ठीक है भाई।
0: कबीर भाई एक बात और है
1: हाँ
0: लास्ट
1: भाई
0: में,
1: बता दो भाई।
0: इसको लोग कैसे भी बोलते थे आज से 15-20 साल पहले, भी बंदा अच्छा नहीं है, जो भी इंग्लिश में नाम लेते हैं वो तो मैं नहीं यूज करना चाहता, मगर अगर आज के कंपैरिजन से देखें ना तो उस टाइम ये बंदा बहुत बेस्ट था, जो
1: भाई
0: आजकल चल रहा है बिना सेंसर के
1: लोगों को ना बाद में समझ में आया इमरान हाशमी की एक्टिंग कैसी है, मैं इमरान हाशमी से पर्सनली मिला हूँ, 2 मरतबा मैंने इंटरव्यू भी
0: अच्छा।
1: लिया है, यस मेरी प्रोफाइल फोटो पे, बड़ा प्राउड फील करता हूँ बताते हुए। तो वो उनके साथ मैंने 18 किलोमीटर ट्रेवल किया है, सो आई नो दैट वो बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंदा है वो,
0: बहुत
1: और उतना
0: बढ़िया
1: ही बड़ा
0: बंदा है वो,
1: एक्टर है।
0: चैरिटेबल भी है कबीर भाई, वो
1: हाँ
0: चैरिटेबल बंदा भी
1: बहुत
0: है।
1: प्यारा बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है। सो क्या होता है ना कि लोग कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, डू नॉट मीट योर आइडल्स, जिनको आप ज्यादा पसंद करते हैं उनसे ना मिले तो बेहतर है, क्योंकि मिल जाते हैं तो फिर बुरा लगता है, मैं इसको क्यों फॉलो कर रहा था, बट इमरान हाशमी के साथ उल्टा है, सो व्हेन आई मेट हिम
0: भाई एक
1: तो पता
0: बात
1: लगा।
0: जी, सर्वर भाई
1: कोई
0: नाम आ
1: बात
0: जाता
1: नहीं,
0: है
1: हम
0: यार
1: सरवर
0: सर।
1: भाई मान लो, कोई दिक्कत
0: तो
1: नहीं।
0: कबीर भाई पता क्या है,
1: हाँ
0: अगर आप उसकी मूवी देखे ना
1: जी
0: लास्ट में उसकी मूवी में, हर एक मूवी में एक शिक्षा जरूर होती है।
1: हाँ हाँ
0: वो
1: बिल्कुल
0: शिक्षा ये होती है कि अगर आप आउट ऑफ ट्रैक जाओगे, अपनी फैमिली को छोड़ के आउट ऑफ ट्रैक जाओगे, तो वो चीज अच्छी नहीं है,
1: तो बैंड बाजेगा
0: तो
1: बिल्कुल
0: बैंड बजेगा ही बजेगा जी, बहुत
1: जी
0: अच्छी चीज है ये।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर गाबा जी थैंक यू सो मच, मैं 2 गाने बैक टू बैक चला रहा हूँ, जरूर सुनना ठीक है।
0: मेहरबानी जनाब, थैंक
1: ओके
0: यू
1: जी
0: सो
1: मेरा भाई,
0: मच।
1: थैंक यू सो मच। एक मैसेज है, कबीर ब्रो आई गॉट ट्यून इन विद यू ऑन एयर टुडे, डूइंग डोंट नो व्हाट्स द टॉपिक, बट टॉपिक कुछ नहीं है सईद भाई, आज बस गाने चल रहे हैं, इमरान हाशमी कह रहे हैं इमरान हाशमी से। देखो मेरी एक बड़ी अच्छी याद है, अवारापन जब रिलीज होने वाली थी तो मेरे पास एक शर्ट थी, एक टी शर्ट थी वाइट कलर की, और मैं उस टाइम में बच्चा ही था, तो मैं गया था थिएटर देखने के लिए, सिंगल थिएटर पुरानी दिल्ली में, एंड वहाँ पर जाके इमरान हाशमी इत्तफाकन वहाँ आने वाले थे, सो आई गॉट द सिग्नेचर ऑन माई टी शर्ट, आज भी मेरे पास टी शर्ट है, मैं वेट कर रहा हूँ अवारापन 2 आने का, आई विल पोस्ट इट, उसमें इमरान हाशमी का ऑटोग्राफ है बाकायदा। और वो टी शर्ट फिर कई सालों बाद जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, और इत्तफाकन मुझे कहा गया कि आप गाड़ी में बैठ जाइए, दूसरे इवेंट तक उन्हें जाना है, तो मैं साथ में गाड़ी में बैठ के उनका इंटरव्यू ले रहा था, इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग ड्राइव, 18 किलोमीटर की, उस टाइम मुझे पता लगा कि यार ये बंदा तो बहुत ही बढ़िया है, एंड मैंने उन्हें वो टी शर्ट दिखाई, इट वॉज़ लाइक अ बैक टू बैक कॉन्वर्सेशन, एंड वो याद आज भी भाई दिल में ताज़ा है, जाके मेरी प्रोफाइल पर देख लेना, उससे मेरी दाढ़ी कुछ ज़्यादा बड़ी है, मगर अच्छा फोटो आया था, इट वॉज़ रियली रियली फन, एंड दैट्स हाउ आई कैन वाउच ऑन दिस के बंदा बहुत बढ़िया और एक्टिंग तो बहुत ही कमाल की करता है। हो गया जी लेक्चर, अब आगे बढ़े चलो अब अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी भी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत सारी आ चुकी है, सो आई एम गोना प्ले दिस ट्रैक और उसके बाद एक और ट्रैक आ जाएगा ठीक है। वॉल्यूम आज गिरना थोड़ी देंगे भाई, गिरे को नहीं आज वॉल्यूम, एक भाई कह रहे हो भाई बच्चे की जान लोगेगा आज छोड़ेंगे नहीं भाई, आज तो डट के रहो, गाड़ी से उतरना ना देंगे, कलयुग जो लोग दूसरा गाना कह रहे हैं मैं समझ गया, वो उसके बाद ही है, उसी से एंड करेंगे ठीक है।

अगले लास्ट गाने के लिए तैयार हैं शो के? आर यू रेडी? ब्रेस योर सेल्फ, कमर पेटी बांध लीजिए। तो रिक्वेस्ट आर का द लास्ट सॉन्ग, बिकॉज हमारी थीम जो है वो है इमरान हाशमी। तो दिस इज द लास्ट ट्रैक ऑफ द शो। गाड़ी से भाई साहब उतर ना देंगे, ठीक है? इससे पहले अपने शो में एंट्री लूं मैं, व्हाई नॉट मेक यू मोर हैप्पी, हैप्पियर? क्यों भाई, आ गए मौज?

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: चलो भाई अपनी आ जाते हैं, 5:03 हो लिए। मजा आया आपको चार से पांच नहीं आया ये बताओ भाई, सीरियसली बताओ। बढ़िया, मतलब आपके लिए आज सेट कर दिया था पूरा माहौल कि आप चार से पांच ऐसा हो जाएगा, एकदम चार्ज अप हो जाए आप आगे आने वाले शो के लिए, है ना। चलो भाई अपनी आ जाते हैं म्यूजिक।

0: बहुत बढ़िया शबाशी दी आपने, थैंक यू सो मच. नाजिया बहन लिखा है कि आई वॉज फीलिंग सो लो, थॉट आई जस्ट ट्यून इन एफ एम 107 एंड आई फाउंड यू एंड दिस शो. थैंक यू सो मच बहन, दिन एकदम बढ़िया जाए आपका, सेट हो जाए. बाकी कहते नहीं, मेरी दिल से दुआ. एक भाई कहते हैं वेलकम बैक भाई, कीप रॉकिंग, मजा आ गया. थैंक यू सो मच भाई. एक भाई लिखा है भाई आज तो चस आ गई. अरे मेरा भाई हमजा भाई, थैंक यू सो मच. एक भाई लिखा अरे कहते हैं आप मेरे इतने बड़े फैन हैं, मुझे पता ही नहीं था. थैंक्स भाई, लव यू, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई. इमरान भाई थैंक यू. इनके बाद एक भाई ने मैसेज किया है, अच्छा आसरा बहन ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी वजह से मैं इवेंट पर लेट हुई तो माफ़ नहीं करूंगी, आज का ही दिन चुनना था. एक भाई कह रहे हैं गाड़ी कितनी घुमाऊं मैं, कहां कहां ले जाऊं, पुरानी याद ताज़े कर दी. थैंक यू सो मच भाई, यही यही आज मेरी चाल थी, सबके सब गाड़ी में रहे. प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम. तो शो 974 हैज़ बिगन. बहुत मज़े किए हमने, चार समझ बहुत मज़ा आया. एंड अब जो है कहानी की तरफ बढ़ूंगा मैं, लेकिन 5:30 बजे, उससे पहले बहुत कुछ है. सबसे पहले शाम के अधिकार हैं, सो दुआओं में याद रखिएगा. आपने ऑलरेडी इतनी दुआएं दे दी हैं एंड आई एम होपिंग कि और दुआएं उसमें कोई कमी नहीं आएगी, है ना. सो 11:02 के बाद वापस मुलाकात होगी. जाना आपने यानी बेस्ट जगह पर हो, और कितने सबूत दूँ भाई, है? दुआ मांगते रहिएगा, मिलते हैं 11 मिनट के बाद. स्टे ट्यून्ड.
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं. आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर.

भाई साहब आज जिन्होंने 4 से 5 का शो मिस कर दिया ना, बहुत कुछ मिस कर दिया आपने, इतनी मौज करे हमने, कसम से बता रहा हूँ, मजा आ गया आज तो। पर ऐसे ही रहेगा, थीम रखेंगे जब तक हम हैं, तब तक तो बढ़िया बढ़िया थीम चलेगी, टेंशन फ्री हो जाओ। मैसेज आया फरद भाई का, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत तौफीक साहब, वालेकुम अस्सलाम, कमालुद्दीन शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम, शाहिद साहब, वालेकुम अस्सलाम। फरद भाई कह रहे हैं भाई मेरी कार क्या है, डांस करो तो कबीर भाई के शो है, क्या बोल रहा हूँ, क्या बाजे मारे आए के बोल गए भाई। एक मैसेज हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम फलक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कह रहे हैं सलाम कबीर भाई सॉफ्टी। कल वाला भूला नहीं हूँ रोबी भाई, कल वाला बिल्कुल नहीं भूला हूँ मैं। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपकी, मैं अच्छा। करीम भाई ने वॉइस नोट भेजाया, वॉइस नोट, थैंक यू सो मच। अच्छा आज जो कहानी आएगी 5:30 बजे, आज की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कहानी मुझे लगता है कि मैंने एक मरतबा अटैम्प्ट की थी, मगर उस वक्त

0: डिटेल में नहीं सुना पाया था। अभी इसका इसकी बहुत सारी डिटेल्स और बहुत कुछ है, तो मैं ये कहानी जब सुनाऊंगा आपको तो काफ़ी मशहूर है, हो सकता है बहुत लोगों ने सुनी भी हो, मगर फिर भी मज़ा आने वाला है आपको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये और बहुत कमाल की स्टोरी है। शुरुआत में आपको जो है जो लगेगा और जो लगता रहेगा वो बीच बीच में चेंज होता रहेगा। सो दैट इज गोइंग टू कम एट 5:30 के आसपास। पता चला आप मेरे ही गला पकड़ लिए, 5:30 बज गए, कहानी कहाँ है? तो वैसा भी नहीं है, आसपास आ जाएगी कहानी। मगर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आज, हमने याद है लंबी लंबी कॉल्स की बात करी थी, कल मैं एक डेटा पढ़ रहा था और ये डेटा रेडिट पे मौजूद है, अगर आप भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लॉन्गेस्ट वीडियो कॉल्स का। यू नो व्हाट इज़ द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट वीडियो कॉल? ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, चलो ये मैं आखिरी में बता के रखता हूं। आप मुझे बताइए आपने सबसे लंबी वीडियो कॉल कितनी सुनी है या कितनी करी है, ये आपको अगर पता है तो मुझे बताइए, आई वुड लव टू नो। क्योंकि मैं आपको जब रिकॉर्ड बताऊंगा तो आपकी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे हैं निकल जाएंगे, हैं रहा क्या कह रहा भाई ये। तो आपने कितनी लंबी आज तक वीडियो कॉल करी है वो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको डेटा जब आपके सामने रखूंगा तो आप फिर अचंभित हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। सो डू लेट मी नो 666-22107 पर, 666-22107 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, 443-443-77 पर। एंड वो लोग होते हैं ना जो वीडियो कॉल पे अपना चेहरा सामने रखते हैं और दूसरे वाले का चेहरा जो छोटा कर देते अपने आप को ही ताड़ते रहते हैं पूरी वीडियो कॉल में, बाल तो सही लग रहे, सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, हाँ ठीक है बढ़िया, अपने आप को देखते देखते लोग वीडियो कॉल करते हैं। एक वो जनता होती है, दूसरी जनता होती है जो सामने वाले के फोटो को बड़ा रखते हैं एकदम मुंह पे और अपना छोटा सा चेहरा रखते हैं। तो ये दोनों किस्म के लोग हैं, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किसकी कॉल आ रही है। ऑब्वियसली अगर उनकी कॉल आ रही है तो बात फिर दूसरी कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे माशाल्लाह क्या बुलंद आवाज हो रही है मेरे भाई की, क्या खाया है आज?
1: अभी खाने लगा हूँ समोसे।
0: समोसे खाने लगा हूँ, कौन से समोसे चल रहे हैं?
1: ये आलू के समोसे हैं, पाकिस्तानी स्टाइल।
0: अरे क्या बात है, पाकिस्तानी स्टाइल। चटनी कौन सी है?
1: पुदीने की चटनी।
0: अच्छा पुदीने की चटनी है, चलो बढ़िया सेट है मामला आपका। और बताओ मेरे भाई, सबसे लंबी वीडियो कॉल कब करी है, कितनी करी है?
1: वीडियो कॉल वसूल होती है, लोग करते हैं पर मैं नहीं करता।
0: क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? अच्छी बात क्यों नहीं है यार, दो ही घर पे तो करते होगे, इसमें क्या बुरी बात है?
1: नहीं वो घर पे भी वो सिग्नल्स का मसला आ जाता है ना, मुख्तलिफ जगहों पे वीडियो कॉल्स नहीं हो पाती
0: है। ऐसा कहाँ पे दिक्कत आ रही है आजकल, तो बढ़िया टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। ये कौन सा एंटीना जो आपके लिए काम नहीं कर रहा?
1: हमारे पास है थोड़ा सा मसला उधर।
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आपके आसपास किसी को देखा आपने वीडियो कॉल करते हुए? बिल्कुल बढ़िया करके
1: लोग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं पर वो आवाज सही नहीं आ रही होती।
0: अरे रे रे रे रे, ये सही आवाज वाले वीडियो कॉल वाले तो ढूंढने पड़ेंगे आप मुझे, अगर ऐसा लगता है तो नहीं मिले आपको। कमाल की बात है
1: वैसे। नहीं, मुल्क के अंदर तो सही है, मुल्क के बाहर फिर वो होता है, सिग्नल्स का मसला आ जाता है।
0: अच्छा ये मुझे भाई बड़ी एक्सक्लूसिव परेशानी लग रही है आपकी, मैं बताऊं क्योंकि ये मैं
1: बस क्या करें।
0: अच्छा तो
1: कबीर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक हैं,
0: मैं बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बढ़िया चल रहा है मामला, वही हड्डी वही खाल है, शानदार अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं क्या हाल?
1: नहीं आपकी माशाल्लाह प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत मजा आता है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त स्टाइल है
0: आपकी,
1: स्टाइल आपका बहुत जबरदस्त है।
0: थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत है मेरे भाई, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और स्टोरियां जो आप लेके आते हैं वो भी पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं यार,
0: बस पढ़ाई चल रही
1: है, बड़ी जबरदस्त स्टोरियां होती है माशाल्लाह।
0: आज की तारीख में स्कूल जाने वाला पढ़ रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ भाई, बस यूँ समझ लीजिए आप, दो ही लोग जो ही किस्म की जनता पढ़ाई कर रही है, समझ रहे हैं आप?
1: हाँ, नहीं, नहीं,
0: तो आप अपने समोसे एंजॉय कीजिए बढ़िया करके। कितने समोसे ऑर्डर किया आपने?
1: नहीं ऑर्डर नहीं किए, घर पे ही बनवाए।
0: अच्छा घर पे बन, अरे भाई साहब अलग लग्जरी चल रही है। अच्छा फिर तो फिर आपसे बहस ही बहस करना बेकार है, ठीक है मजे लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, खाइए समोसे।
1: बहुत शुक्रिया आप भी आ जाएं।
0: आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आप तब तक मैं जब तक मैं आऊंगा तब तक तो आलू उसके अंदर उनका इंतकाल हो चुका होगा, तो आप खाइए आराम से, कोई टेंशन नहीं। सबसे लंबी वीडियो कॉल आपने आज तक कितनी करी है और आपकी कितनी कुव्वत है वीडियो कॉल करने की, या आपने किसी को लंबी वीडियो कॉल करते हुए देखा है? देन आई विल प्रेजेंट सम डेटा। एक कॉल आ गई है बेटा, एक सेकंड रुको। अस्सलाम वालेकुम, वेरी बैड ड्राइविंग। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जनाब क्या हाल
0: चाल है? अरे जयस भाई आ गए भाई को, गुड मॉर्निंग।
2: मॉर्निंग
0: सूरज आलिया और जालिया बीच में भाई ना आके खोल ली। आ जैसे भाई क्या चल रहा है?
2: कुछ नहीं, निकले घूमने के लिए। देखा भाई हंगामे लगा भाई,
0: कतर में एक ही बंदा सेट चल रहा है भाई, एक ही बंदा जी रहा है, बाकी तो वो ऐसे काम में लगे हैं। आप ही हैं भाई,
2: दुआएं चाहिए, सुकून की
0: कटवाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जैस भाई वीडियो कॉल के बारे में बताओ, लंबी वीडियो कॉल करिए कभी?
2: अरे बड़ी लंबी लगे, पूरी पूरी रात करी है भाई साहब।
0: अरे पूरी पूरी रात करी वीडियो कॉल चार्जिंग में लगा के
2: भाई? अरे कोरोना टाइम में ना सऊदी में था भाई साहब, पूरी पूरी रात लगा के चलती रह करी थी वीडियो कॉल, कोई काम धंधा तो था नहीं, पूरी पूरी रात चल करी थी।
0: बड़ा परेशान करते हैं लोगों को यार, अब तो हद हो गई इतनी लंबी वीडियो कॉल,
2: किसी को सोने ना देख रहे थे भाई साहब, परेशान पूरी पूरी रात करे करे थे, बड़ी लंबी लंबी बातें।
0: तो फिर तो वीडियो कॉल भी नींद आ जाती होगी?
2: नींद सुबह को जब सूरज निकला करा था तब आ करी थी भाई साहब।
0: भाई सलाम है, मैं दूर सबको सलूट कर रहा हूँ, कोई दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे पास तोपे वोपे ना भाई, ऐसी सलूट ले लो मेरा, नहीं तो सलामी बनती है आपको तो भाई, बहुत बढ़िया
2: भाई साहब
0: बहुत शानदार। आपको लगता है आपका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा होगा आसपास कुछ ऐसा है, किसी को जानते हैं
2: आप? हम क्या, हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे ज्यादा करू करू इंसान पड़े ना दुनिया के अंदर
0: बड़े भरोसे के साथ ये बोला है, ये अच्छी अच्छी बात लगी मुझे, इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, बंदे को पता है मैं ही नहीं हूँ अच्छा मैं आपको पता है सबसे लंबी वीडियो कॉल कितनी, कितने मिनट की है? डू यू हैव एनी आइडिया?
2: यार टाइम तो इतना देखा नहीं भाई, क्योंकि पहले कोरोना में था ना, तो बस देख रात को जो है ना ईशा के बाद में ना रूम में नमाज पढ़ के फारिग हो जाते थे, आपने थोड़ी बहुत देर बैठे खाए पिए, उसके बाद में जो है कि देख लिया कि हाँ अब टाइम हो गया।
0: अच्छा,
2: बंदा बंदी फ्री है वहाँ।
0: अच्छा, तो ईशा के बाद से फजर तक चल रहा है मामला?
2: हाँ बिल्कुल, सुबह तक जब तक सूरज निकलने का टाइम ना हो जाता था ना, तब
0: वाह बेटे शाबाश, बेल्ट का है, बेल्ट निकालो जरा, शाबाश तभी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप समझ में आया मेरे
2: अरे पढ़ाई आज तो और ज्यादा कांड हो गया यार भाई।
0: क्या हो गया?
2: अरे एक तो यार दो दो नुकसान हुए आज।
0: क्या बात हो गई भाई, क्या नुकसान हो गया?
2: नुकसान ये हुआ भाई साहब, स्टारबक्स पे रिवॉर्ड्स पड़े थे अपने पास कम से कम 1000 पॉइंट।
0: ठीक है, पड़े थे फिर?
2: और भाई साहब कल देखे हैं, कल थे कि हाँ वो रिवॉर्ड्स पड़े होंगे। हाँ। आज देख खा खोल के सारे नील।
0: कौन खा गया भाई?
2: पता नहीं भाई, अब फोन करा सेंटर को, वो कह रहा है कि सर आपकी रिक्वेस्ट हमने सबमिट कर ली है, देखते हैं क्या होता है रिवॉर्ड्स।
0: अरे नींद में तो ऑर्डर नहीं कर दिया आपने कुछ?
2: चाहिए
0: 15 नींद में आड़ा टेढ़ा ऑर्डर कर दिया भाई ने। मैंने फ्रैपेचिनो हाथ दूध डालना है इसमें, हाँ हाँ मैं चीनी भी लूंगा।
2: अरे दूसरा और दूसरा दूसरी एक और बताओ तुझे।
0: हाँ
2: हमारे छोटे वाले भाई ने हमें इंस्टाग्राम पे ना टैग करा स्टोरी में।
0: अच्छा ठीक है,
2: उन्होंने भाई साहब ने जैसे स्टोरी में टैग करा वैसे हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया
0: भाई। तारे वारे दिखाओ अपने
2: भाई। आज जो है ना तारे जो है ना आज गर्दिश में दिखाई दे रहा है
0: मेरा भाई। भाई सब मिलकर जैस भाई के लिए दुआ करें, एक लंबी वीडियो कॉल की जरूरत है जैस भाई, सब ठीक हो जाएगा।
2: अरे भाई अब पहले जैसी कैपेसिटी ना रही है
0: पहले जैसी कैपेसिटी ना, अब मैं सिर्फ खुद की सुन पाता हूँ, किसी की नहीं सुन पाता
2: अब तो जो है ना, अब तो ये है ना नींद के इतने बड़े चढ़ती हो गए हम।
0: हाँ
2: अगर बीवी बच्चों से बात करते हैं ना तो थोड़ी बहुत देर बात करी, उसके बाद में ना नींद सी आंखों में आने लगती है, कहते हैं चलो भाई थोड़ा बहुत काम है ना, काम निपटा लें बाद में फ्री होने के बाद में करेंगे। अब ये थोड़ी ना कहेंगे उनसे हम काम सोने जा रहे हैं, अगर पता चल गया ना एरिया के सोने जा रहा है भाई
0: अगले दिन ही वीजा लगेगा भाई, अगले दिन ही वीजा लगेगा भाई, पता लग गया तो
2: अरे हड़ताल हो जाएगी भाई साहब
0: ठीक है जस भाई, देखते हैं आपके मुकाबले कोई बंदा मिलता है नहीं मिलता, पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत प्यार भाई को।
2: अरे इंशाल्लाह मिलेंगे, देखो भाई हमसे भी ज्यादा करूंगा,
0: उम्मीद है भाई, ठीक है जस भाई, ओके भाई,
2: दुनिया का है मैं
0: ठीक है भाई, लाफिस लाफिस,
2: ओके भाई लाफ।
0: तो भाई ने बता दिया रातों रात चल रही है भाई वीडियो कॉल, एक और कॉल आ रही है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: नदीम भाई एकदम बढ़िया चल रहा है मेरे भाई, की क्या हाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: हाँ तो भाई बताइए।
3: अपना तो देखो लोग वो वीडियो कॉल करते हैं जिनका चेहरा अच्छा हो।
0: अरे
3: अपना चेहरा वीडियो कॉल में दिखाने वाला है नहीं।
0: अच्छा ऐसा? अरे ऐसे नहीं यार, अच्छा खासा हैंडसम बॉय हो आप, कैसी बात कर दी आपने।
3: अब मुश्किल से मेरे को लगता है मैक्सिमम भी अगर किया होगा ना, अगर घर पे ही बात की होगी तो आधा घंटा।
0: आधा घंटा ठीक है, बहुत कम है यार।
3: आधे घंटे से ऊपर कभी नहीं किया वीडियो कॉल।
0: मरे रे,
3: नॉर्मल कॉल भी अपनी उतनी, नॉर्मल कॉल तो उससे भी कम होती है, वो घर पे क्या वीडियो कॉल कर लो तो थोड़ा बच्चे बच्चों को दिखा दो इधर उधर। हाँ। तो आधा घंटा निकल आता।
0: हाँ तो ये तो फिर भी कम।
3: बाकी देखे तो ऐसे लोग है जो भाई चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं वीडियो कॉल के, वापस आएंगे तो बात करेंगे अभी बाहर जा रहे हैं।
0: तो देखा नहीं भाई को, ये ईशा के बाद से लग जाते हैं खाना खा के, जैसी खाना खा के टकार मारी सीधा कॉल।
3: ईशा की नमाज पढ़ ली है भाई ने और सूरज उठने तक के बात कर रहे तो फजर की तो गई।
0: हाँ तो वही सीन है ना के साथ वही चल रहा है, अंदाजा नहीं है वो कैसे कितने कमाल कमाल की जनता है हमारी माशाल्लाह। तो बहुत
3: मेरे को याद है वो जो एक बार अपना डिस्कशन चल रहा था तो लोग बोल रहे थे कि एक साथ एक बार कॉल चार चार घंटे साढ़े चार घंटे चल रही होगी।
0: साढ़े चार घंटे तो कुछ नहीं है भाई, एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा था वो 32 घंटे थे उसमें
3: भाई भाई इतना तो हाँ। इतनी बात तो मेरे को लगता है साल भर में भी ना करते हो
0: 32 घंटे की भाई पूरी फीचर फिल्म दिखा दी भाई ने, दो तीन तो ज्यादा बोल के पर नदीम भाई आधे घंटे को थोड़ा इंक्रीज कीजिए भाई, मजा नहीं आ रहा है, आधे घंटे तो बढ़ाना पड़ेगा। हैंडसम बॉय
3: हो भाई अगर, हाँ तो वो उम्र में होते तो अभी ट्राई करते, अभी तो किससे ही करेंगे।
0: अरे रे रे रे रे, अच्छा आप तो किससे करेंगे, सही बात है, अब तो निपट गए।
3: बेगम तो घर पे ही है बात करने के लिए, बाहर तो करना दिए फोन।
0: ओहो, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि आपका मुकाबले की कौन मिलता है। अभी तो आपका आधा घंटा, भाई का पूरे 13-14 घंटे, अब देखते हैं इसको कोई तोड़ पाता है।
3: आएंगे दिन दिन वाले भी आएंगे, अभी
0: देखते हैं कौन आता है। ठीक है नदीम भाई, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक भाई ने मैसेज किया नदीम भाई के बाद, कह रहे हैं मोर देन 4 आवर वीडियो कॉल पर वॉइस म्यूट था, म्यूट पे रख के बात करते हैं। तो फिल भाई वेरी गुड आइडिया, ये मानसिक तौर पे बहुत अच्छी आदत है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई।
0: अरे प्रिंस साहब क्या हाल है आपके?
4: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप सुनाएं आपके क्या हाल है? आप
0: बढ़िया
4: हमारे हाल भाई, बेहाल कर रखे हैं
0: एकदम बढ़िया चल रहा है भाई। क्यों बेहाल कैसे हो गए, हाल क्या बात हो गई भाई को, किसने परेशान किया भाई को?
4: भाई पहले तो ऐसा होता था कि चलो माशाल्लाह मॉर्निंग इज गुड, कोई अगर बोलता था गुड मॉर्निंग बोलता, हम बोलते थे हाँ भाई मॉर्निंग,
0: हाँ भाई मॉर्निंग है, कैसी बात कर दी
4: अब वो बात रही नहीं,
0: कोई नहीं गुड इवनिंग कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सुबह करवा दें प्रिंस भाई, आप बोलिए बस आप।
4: अरे ना भाई तुम्हारे भी तो काम होते ही होंगे ना सुबह में, हमारे लिए क्यों तकलीफ उठाते हो?
0: अरे रे रे रे रे
4: अच्छा अच्छा कवर करते हो माशाल्लाह,
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपको। तो प्रिंस भाई आपकी लंबी वीडियो कॉल कितनी चली होगी आज तक?
4: भाई ऐसा कुछ खास याद तो नहीं है, लेकिन चली होगी 1-8 घंटे 2 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम, मैक्सिमम 3-4 घंटे की चली होगी। वो भी होता क्या है यूजुअली ये जो क्या कहते हैं उसको पता नहीं आई मोर आई मोशन, जो उसमें जो वीडियो कॉल्स होती है ना वो सडनली बीच में कट जाती है।
0: अच्छा तो किश्तों में बात हुई है मतलब आपकी?
4: वो नेटवर्क हाँ भाई हुई तो है, जब नया नया वीडियो कॉल सिस्टम आया था तो फिर तो बस
0: धनिया बो दिया होगा आपने, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस फीचर को।
4: ऐसा था क्या नहीं, हमने तो नहीं, हमारे एक दोस्त साहब थे बहुत ही बढ़िया वाले, तो ना तो उनकी वीडियो कॉल रुकती थी ना तो उनकी ऑडियो कॉल रुकती थी, बस वो लगे ही रहते थे।
0: ऐसा एक रूममेट होना बहुत जरूरी है जो वीडियो कॉल पे लगा रहे, कुछ लोग होते ना नहीं जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, खाओ मेरे सामने खाओ।
4: तो ये कि वो बेचारा रूममेट नहीं था।
0: अच्छा।
4: वो तो बस हमारे एक करीबी मिलने वालों में से कोई एक थे। अच्छा। ऐसे ही मुलाकात हो गई थी उनसे, तो फिर बातचीत होती रहती थी, कभी बैठ गए ऐसे कभी, तो बस भाई लगे हैं जाके बैठे हैं दुकान में, कभी उम सईद में, और पता चला भाई कहाँ है, अरे भाई तो है ही नहीं, छोड़ के तो नहीं आ गए इसको, वहां पे उतरते बकाले पे, और एक दो बार ऐसा इतफाक हुआ कि उनको हम लोग भूल गए भाई।
0: अरे यार ये तो जुल्म है, ये तो भूल गए क्या होता है भाई, सामान थोड़ी है बेचारा।
4: अरे इससे बड़ा जुल्म तो ये है कि उसको पता भी नहीं है हम उसको भूल गए।
0: फिर तो सही है, फिर ये जुल्म लाजिम है भाई।
4: और हमसे पूछ रहा है बड़े जल्दी सामान खरीद चुके तुम लोग, आजकल ये मताम वाला बहुत जल्दी ऑर्डर बनाने लगा है। हाँ भाई हम क्या ही कहें तुमको।
0: नहीं सही है, आपका भी रिकॉर्ड समझ में आ गया मेरे, अभी एक भाई का रिकॉर्ड कायम है, एक भाई ने बोल दिया है 13 घंटे उनकी कॉल चली है, तो अभी ये रिकॉर्ड कायम रहेगा, देखते हैं कोई तोड़ पाता ही नहीं तोड़ पाता। प्रिंस भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
4: लेकिन जिस बंदे ने ये कॉल रिकॉर्ड बनाया है ना,
0: जी जी जी,
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए ही कॉल की हो।
0: ये मुझे भी लग रहा है सामने वाले की जिंदगी में धनिया बो दूंगा रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
4: मैं भी रिवील नहीं करना चाहता, आप रिवील करेंगे बड़ा मजा आएगा।
0: मैं रिवील ही करूंगा, बस मैं रिवील ही करने जा रहा हूँ, बस बताना ही जा रहा
4: हूँ। अरे बहुत ही बढ़िया, इतना लंबा।

0: हाँ भाई रिकॉर्ड टूटेगा भाई अभी।
1: मैंने मैंने यार ठीक है,
0: हाँ
1: हमने तो रिकॉर्ड के लिए कॉल कर ली,
0: हाँ
1: लेकिन जिसने रिसीव की उसका क्या हाल हुआ होगा?
0: हाँ वही ना, वो दोनों तरफ से दोनों खाना पीना लेके बैठे होंगे भाई जम के।
1: भाई खाना पीना लेके तो बैठे होंगे, लेकिन
0: हाँ
1: खाने के अलावा भी कुछ काम होते हैं।
0: हाँ वो भी है वो भी। देखिए प्रिंस भाई मिलोड
1: भाई
0: आई
1: भाई
0: ऑब्जेक्ट।
1: ओके, 12 आवर्स 24 आवर्स
0: हाँ
1: कोई बंदा एक जगह नहीं बैठ सकता। इट्स सिंपली थिंग इज मेकिंग अ रिकॉर्ड
0: हाँ
1: परपसली।
0: तो भाई टहल टहल के की होगी ना बात, ये भी तो समझो।
1: इतना भी टहल लो कहां तक जाओगे,
0: हाँ तो ठीक है फिर
1: वापस
0: लोग,
1: ऑफिस भी जाना ही होता है।
0: तो फिर लोगों को बताता हूँ मैं क्या सीन है, ठीक है। कहानी भी
1: जरूर
0: सुनेगा
1: बताता
0: भाई,
1: भाई,
0: बस टाइम आ गया बस कहानी का भी।
1: जरूर जरूर जरूर। अरे भाई हाँ खाने का टाइम हो गया है,
0: जी जी भाई
1: चलिए
0: कहानी का,
1: कहानी सुन के फिर आपके सवाल जवाब में फिर से वापस से इन्वॉल्व होते हैं।
0: डन डन मेरा
1: टेक गुड
0: भाई,
1: केयर ऑफ योरसेल्फ
0: यू
1: ब्रो,
0: टू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह,
1: सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फरहत मैंने बोला 32 घंटे, ओ माय गॉड चार्ज पे था क्या फोन भाई? चार्ज पे लगा के भाई कह रहे हैं 1 घंटे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ रिकॉर्ड कितने घंटे का है, तैयार है हम? दिल बात रख लो भाई, सबसे लंबी वीडियो कॉल जो आज तक हुई है ये हुई है 88 घंटे 53 मिनट 20 सेकंड। अंग्रेजी में बोलूं तो भाई साहब 88 आवर्स 53 मिनट्स और 20 सेकंड। एलेक्सिस और कैटलीन के बीच में 88 आवर्स, ठीक है। इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश ना करें, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, 88 आर्स। एक मैसेज है, ये सवाल मैरिड लोगों के लिए नहीं है, आशिक लोगों के लिए। अरे ऐसी कैसी बात कर दी भाई, बहुत सारे यहाँ से भी कॉल कर रहे होते हैं, हैं जैसे भाई जजिंग जजिंग, बट ये है सबसे लंबी कॉल, तो मैंने कहा इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेते हैं। 88 आवर्स भाई, अब आपकी इमेजिनेशन पर है 88 आवर्स कैसे कटे होंगे। बाकी मैं तो कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोमो और सीधा उसके बाद कहानी आने वाली है, सो गेट रेडी, क्योंकि आज की कहानी आपको मौज करा देगी, ठीक है भाई। एक प्रोमो के बाद मिल रहे हैं।
2: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और क्या अच्छा बहुत सारे मैसेज हैं, कोई गल नहीं, चलो जी कहानी शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी सारे मैसेज अभी पड़ जाएंगे, तो कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर्स, कहानी का मकसद किसी के जज्बात को क्षति पहुंचाना नहीं है, कहानी किसी किस्म के झंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। आज का किस्सा प्लीज़ मेरे साथ साथ सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मशहूर है, तो चांसेस आर कि आपने ये सुना हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ओके। बट फिर भी जिनके लिए फ्रेश है उनके लिए लेट्स बिगिन। सो मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए जरा वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और 20 साल पीछे चलते हैं। अप्रैल का महीना था, 26 तारीख और 2006, इट वॉज अ वेंसडे, वेंसडे का दिन था। इस वक्त काफी ब्राइट ब्यूटीफुल 18 साल की एक लड़की जिसका नाम था विटनी सेरिक, वो अपने कैंपस में थी, कॉलेज कैंपस में, और कैंपस को क्रॉस करते हुए लोगों को इधर उधर सबके बीच में से भीड़ भड़के में से निकलकर अपने लेक्चर की तरफ जा रही थी, लेक्चर हॉल की तरफ जहां उसकी क्लास थी दिस मॉर्निंग। विटनी सेरिक जो थी वो एक फ्रेशमैन थी और पढ़ती थी टेलर यूनिवर्सिटी में, जो कि आर्ट्स कॉलेज है इंडियाना USA में। और ये जो जगह थी जहां पे वो पढ़ रही थी, ये अपलैंड था, बेसिकली एक छोटा सा टाउन था दो बड़े शहरों के बीच में, इंडियानापोलिस और फोर्ट वेन, इन दोनों शहरों के बीच में ये अप टाउन था। विटनी जो थी वो सबको जब क्रॉस करते हुए अपने लेक्चर हॉल की तरफ जा रही थी, सडनली उसके दिमाग में एक बात खटक रही थी और बहुत ज्यादा, एक एंग्जाइटी डेवलप हो रही थी, उसे एहसास हो रहा था कि अरे पढ़ाई का ये साल अब खत्म होने वाला है, अब इस गर्मियों की छुट्टियां आएंगी और टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा, और जब छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो बाकी सबको उसे बाय बाय कहना पड़ेगा, छुट्टियों के बाद ही मुलाकात होगी। और बहुत से दोस्त बनाए थे विटनी ने, और उनमें से बहुत से सीनियर्स उसके

दोस्त थे जो अपर क्लासमैन थे. बेसिकली अर्ली ईयर्स में ही सीनियर्स बड़े पॉजिटिव होते हैं ये विटनी को पता लग गया था. तो विटनी ने सबसे दोस्ती कर ली थी. शी वॉज रियली चार्मिंग. तो बोनस भी था, इस बात का फायदा भी था कि सीनियर्स थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एडवाइस अच्छी देते हैं, तो उसकी सबसे दोस्ती भी हो गई थी. जब भी मौका मिलता था कोई ऐसा ग्रुप सेशन हो जहां सीनियर्स हो तो वो पहुंच जाती थी. अब वो जब भागती हुई अपने लेक्चर हॉल की तरफ जा रही थी, उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जो एक नोटिस बोर्ड होता है. तो कॉलेज का नोटिस बोर्ड उसके लेफ्ट हैंड साइड पे था. वहां पे लिखा हुआ था कि वॉलंटियर्स की जरूरत है, अगले दिन एक बैंक्वेट हॉल बनाया जाएगा जिसे स्कूल सजा रहा है नए प्रेसिडेंट को वेलकम करने के लिए, और इसके लिए चाहिए वॉलंटियर्स. और वो भागते भागते रुक गई. विटनी ने वहां पे बैठे हुए लोगों से पूछा कि इसके बारे में थोड़ा और बताइए. तो उसे पता लगा कि मेजॉरिटी जो लोग हैं यहां पर वॉलंटियरिंग के लिए पहुंचेंगे वो अपर क्लासमैन है, यानी सीनियर्स हैं. और ये सुनते ही विटनी ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने पेन लिया और अपना नाम उसमें दर्ज करा दिया. पर उसके बाद लेक्चर हॉल में गई, बाकी पूरा दिन नॉर्मल गुजरा, पढ़ाई, दोस्त, शाम, फिर वो देर में पहुंची अपने डोम रूम में और फिर जाके सो गई. इट वॉज अ वेरी नॉर्मल डे. फिर अगली सुबह शी गॉट अप अर्ली, बहुत एक्टिवली सुबह उठी और सबसे पहले तैयारी हुई, ब्रश किया और रेडी होने के लिए जा रही थी. एंड सामने उसकी वार्डरोब थी, टिपिकल लाइफ. तो वार्डरोब को देख के सोच रही थी क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं, बिकॉज ये बहुत बड़ा दिन होने वाला था उसके लिए. अब वो जा रही है वॉलंटियरिंग के लिए, वहां पे सीनियर्स होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, तो सबसे बेस्ट दिखना है. फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आई, उसने ड्रेस पहनी, शी गॉट रेडी. और जाने से पहले पहले भाई शीशे में देखना उसने शुरू किया अपने आप को, और अपने आप पे बड़ा प्राउड फील भी कर रही थी. बिकॉज एक तो वो कॉलेज में जब से आई है उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम. शी वॉज रियली रियली प्राउड. उसके नंबर्स अच्छे आते हैं, ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारे उसके दोस्त हैं, एंड शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल. तो उसने कहा यार बढ़िया चल रहा है सब. पर बात करते करते खुद से फिर विटनी ने घड़ी की तरफ देखा और वो लेट हो चुकी थी. उसने फौरन अपनी जैकेट उठाई, कंधे पे डाली और सीधा गई पार्किंग में. पार्किंग में एक मीटिंग स्पॉट बनाया गया था, वहां पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद थे यूनिवर्सिटी के, एंड वो एक वैन के अराउंड खड़े हुए थे. इसमें 7 टेलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, एक स्टाफ मेंबर था. विटनी किसी को नहीं जानती थी, पर बीइंग एक्टिव विटनी आके गई, अपना इंट्रो दिया, हाय दिस इज विटनी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. एंड वो सबसे आखिरी में आई थी, शी रियलाइज्ड, क्योंकि सब उसी का वेट कर रहे थे. और जैसे ही वो पहुंची सबके सब वैन में चढ़ने लगे. वैन में बैठे, सब तैयार हुए और नॉर्थ की तरफ बढ़े, फोर्ट वेन की तरफ, जहां एक बैंक्वेट हॉल को इन्हें तैयार करना था. ये जो रास्ता था ये दूरी 1 घंटे की दूरी थी. इस सफर में विटनी जो कि सबसे एक्टिव थी उन्होंने बात शुरू करी. शी वॉज जस्ट 18 years old. उसकी बात शुरू हुई एक 22 साल की लड़की से जो उसकी सीनियर थी, जिसका नाम था लॉरा वैन रेन. वो उसके बिल्कुल साइड में बैठी हुई थी. सो ऑन द राइट हैंड साइड बैठी थी विटनी, लेफ्ट हैंड साइड में बैठी थी लॉरा. दोनों एक दूसरे से एकदम अनजान थे, दूसरे के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, मगर बहुत दोनों में सिमिलैरिटीज थी. दोनों टॉल थी, ब्लॉन्ड हेयर थे, दोनों स्लिम थी, एंड दोनों अभी वैन में थी, बात करती हुई जा रही थी. एक दूसरे से जब बातचीत करी तो पता लगा कि दोनों की दोनों का जो टाउन है मिशिगन का वो भी आसपास ही है. इनफैक्ट जब लोग उन्हें देख रहे थे वैन में भी तो बोले क्या आप दोनों रिलेटेड हैं क्या, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी स्ट्राइक हो रही थी. विटनी को बातों में पता लग गया था कि लॉरा भी जो है वो मिशिगन में एक छोटे से टाउन में पली बड़ी हैं जिसका नाम था कैलेडोनिया, और वो खुद गेलॉर्ड में पड़ी थी मिशिगन में ही. तो दोनों के घर के बीच में कुछ ही घंटों का फासला था, तो आसपास ही रहती थी. खैर बातचीत चलती रही और इन बातों बातों में वैन इन्हें लेके पहुंची फोर्ट वेन शहर में. जैसी लोकेशन पे पहुंचे सारे वॉलंटियर्स इस वैन से उतरे और सामने बिल्डिंग में पहुंच गए जहां पर काम शुरू हुआ वॉलंटियरिंग का. बाकी टाइम इन्होंने टेबल सजाई, चेयर सजाए, क्रॉकरी रखी, सिल्वरवेयर्स, डेकोरेशंस, सब कुछ संभाला. और पूरे टाइम विटनी और लॉरा जो अभी भी मिली थी कुछ मिनटों पहले ही, दोनों में बहुत खास दोस्ती हो गई थी. ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से जानती हैं, और ताज़ी ताज़ी दोस्ती. तो बातचीत चलती जा रही थी काम करते हुए. काम करते करते करते करते शाम हो गई. शाम के 7 बज रहे थे, काम खत्म हुआ, सब वापस रेडी हुए और वॉलंटियर्स अब निकल चुके, वापस वैन में बैठ गए एंड वापस अपने कैंपस के लिए रवाना हुए. शुरुआती सफर में तो बातें जारी रहीं, फिर
बाकियों की तरह ये दोनों भी टायर्ड हो चुकी थी, लॉरा और विटनी, एंड एवरीबडी वॉज लाइक क्वाइट. कुछ सो रहे थे, कुछ खिड़की के बाहर देख रहे थे, बट इट वॉज कंप्लीट साइलेंस. 30 मिनट इन टू द ड्राइव, 30 मिनट बाद ही, आधा घंटा बीत चुका था ड्राइव में, दूरी थोड़ी सी बाकी थी, विटनी जो थी वो खिड़की से बाहर देखते देखते एकदम से टर्न हुई और उनकी नज़र लॉरा पे गई और शी स्माइल्ड. लॉरा ने भी उसी टाइम विटनी की तरफ देखा, मगर जैसे ही उसने विटनी की तरफ देखा, इत्तफाकन लॉरा ने ये भी देखा कि कुछ चमक जो है बहुत तेज वाइट ब्राइट लाइट विटनी के चेहरे पे पड़ रही है और वो ब्राइट लाइट बढ़ती चली जा रही है और कुछ ही देर में वो ब्राइट लाइट पूरे के पूरे वैन में भर चुकी थी. पूरा इंटीरियर वाज कंप्लीटली ब्लैंक विद द व्हाइट लाइट. और फिर एकदम से एक आवाज आई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नो, और फिर साइलेंस. जहां पे ये वैन थी, इट वाज हाईवे I-69. यहां से दर्जनों कॉल्स 911 को की गई थी. चंद मिनटों में वहां पे फर्स्ट रिस्पोंडर्स आए और जब आए तो दे वर काइंड ऑफ रेडी मेंटली, मगर फिर भी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थे. हाईवे के दोनों साइड में जब ये लोग पहुंचे तो टूटे हुए ग्लास, मेटल शीट्स एंड बहुत सारी बॉडीज. वो जो लाइट, ब्राइट लाइट बढ़ रही थी, वो हेडलाइट थी. वो हेडलाइट थी किसी गाड़ी की नहीं, 80,000 pound फुली लोडेड ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रक की, जिसको चलाने वाले का नाम था रॉबर्ट स्पेंसर. वो दरअसल आ किसी और रूट से रहा था, लेकिन चलाते चलाते उसे नींद आ गई, उसकी आंख लग गई. ट्रक जो था वो ऑफ रोड हुआ, एक गलत डायरेक्शन में गया और फिर पूरा घास से होता हुआ, घास फूस से उछलता कूदता हुआ उस रोड पर आया जहाँ पर यह वैन थी और साइड से पूरी तरह से टकराया, क्रश करता हुआ वैन को इतनी बुरी तरह कि वैन का जो साइड का पैनल था वो उखड़ गया एंड वैन हवा में स्पिन करती हुई फिर जमीन पे गिरी एंड स्टूडेंट्स जो उसके अंदर बैठे हुए थे दे वर थ्रोन आउट इनटू द ट्रैफिक. जो फर्स्ट रिस्पोंडर्स थे उन्होंने सर्वेइंग किया, रॉबर्ट को चेक किया. रॉबर्ट स्पेंसर जो कि ट्रक चला रहा था वो जिंदा था, पर 9 में से 5 स्टूडेंट्स दे कुड नॉट सर्वाइव. कुछ घंटों के बाद इन द अर्ली आवर्स, सुबह सुबह का वक्त था, बहुत अर्ली आवर्स थे, April 27th की तारीख, विटनी सेरिक की फैमिली जो इस बात से अनजान थी कि क्या हुआ है, वो मिशिगन में थे, उनके घर के फोन की घंटी बजी. माँ बाप ने फोन उठाया और फोन पे बंदा था ग्रैंड काउंटी कॉर्नर से. उन्होंने खबर दी कि वी आर रियली सॉरी, हम आपकी बेटी विटनी को नहीं बचा सके. और ऑलमोस्ट इसी टाइम साउथ की तरफ कैलेडोनिया में ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन, लॉरा के घर पे भी कॉल गई एंड उनके माँ बाप ने जब कॉल उठाई तो अगेन ग्रैंड काउंटी कॉर्नर वालों ने उन्हें बोला कि लॉरा की हालत बहुत बुरी है बट शी हैज सर्वाइव्ड, काफी क्रिटिकल कंडीशन में है. विटनी की बॉडी को गेलॉर्ड मिशिगन में ट्रांसफर किया गया, शी कुड नॉट सर्वाइव एंड उसका फ्यूनरल प्लान किया जा रहा था इन क्लोज्ड कैस्केट क्योंकि डैमेज हो चुकी थी बॉडी बहुत बुरी तरह से. दूसरी तरफ पार्क व्यू हॉस्पिटल में लॉरा वेनरिन की फैमिली पहुंची फॉरन इन फोर्ट वेन. जब वो पहुंचे तो उनके सामने उनकी बेटी हॉस्पिटल बेड पे ऊपर से नीचे तक पट्टियों में ढकी हुई, नेक ब्रेसेस लगे हुए थे और वो बिस्तर में थी. डॉक्टर्स ने कहा कि शी इज इन कोमा एंड हम नहीं बता सकते कि क्या होगा, वी हैव टू डू फ्यू टेस्ट ऑन हर. एंड दे वर श्योर कि किसी किस्म की ब्रेन इंजरी भी हुई है तो सफर जो है वो लंबा हो सकता है रिकवरी का. और फैमिली ने डिसाइड किया कि अपनी बेटी को वैसे नहीं छोड़ सकते तो उन्होंने कहा ठीक है, वी विल शिफ्ट हर. और ये लोग उसे शिफ्ट करके ले गए मिशिगन एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जिसका नाम था ग्रैंड रैपिड्स और जो कि स्पेशलाइज्ड सेंटर था ब्रेन इंजरी के लिए. ये अपनी बेटी लॉरा को शिफ्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ विटनी की फैमिली जो है अपनी बेटी को आखिरी अलविदा कह रहे थे. फिर तारीख आई 29 अप्रैल की, 3 दिन बाद इस किस्से के,
विटनी के परिवार वाले जो बहुत दुखी थे, उन्होंने विजिटेशन रखा था। बेसिकली एक रिचुअल होता है जहां पे बहुत सारे दोस्त

उनको एक अच्छी खबर मिली। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने ब्रेन स्कैन किया है और ये भी कहा कि चांसेस हैं कि ये उठ जाएगी, मगर कुछ टाइम फिक्स नहीं है कब किसकी आंख खुली, कब ये कोमा से भर आएगी, वी डू नॉट नो। आने वाले हफ्तों में शी रिमेन इन द कामेटोज सिचुएशन, मतलब कि वो कोमा में ही रही, पर उसकी बॉडी जो थी वो हील हो रही थी, रिकवरी जारी थी। फिर ट्यूसडे का दिन आया, इट वॉज मई की 16 तारीख, तो तकरीबन 20 दिन बीत चुके एक्सीडेंट को। लॉरा कोमा से उठी, अमेजिंगली उनका जो ब्रेन था वो फंक्शनिंग कर रहा था प्रॉपरली, एंड फैमिली वाले दे जस्ट कुड नॉट बिलीव, ये एक चमत्कार, दिस वाज द मिरेकल। अब वो अपनी लिम्स थोड़े से हिला पा रही थी एंड बेड पे बैठ पा रही थी, और जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं दिमाग के वो थोड़े बहुत चलने लगे थे। पर उसके बाद उन्होंने काफी वियर्ड एक चीज करी। मंडे मई की 22 तारीख लॉरा जो थी वो बेड पे बैठी हुई थी, उनके फिजिकल थेरेपिस्ट उनके लेफ्ट हैंड साइड में थे और राइट हैंड साइड पर उनकी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी। थेरेपिस्ट के पास एक पेंसिल थी, एक नोटपैड था, उन्होंने पेंसिल और नोटपैड लिखने के लिए दिया लॉरा को, और एक स्पेसिफिक चीज लिखने के लिए कही और कहा कि लिखो। वो स्पेसिफिक चीज ऐसी थी जो लॉरा काफी आसानी से लिख सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड लॉरा ने फिर लिखा और कहा, मुंडी नीचे हिला के, शी इज डन। थेरेपिस्ट ने देखा, उन्होंने नोटपैड को देखा, बोला ना ना ना दिस इज रॉन्ग, वापस लिखो, फिर से दिया, एंड फिर से सेम इनकरेक्ट चीज लिखी लॉरा ने। फैमिली और थेरेपिस्ट वाले ये समझ चुके थे कि ब्रेन में कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, कुछ एक्सक्लूसिव ऐसा हुआ है जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, काफी एक्सटेंसिव इंजरी है। मगर देर वॉज समथिंग मच बिगर जो इन लोगों को अभी तक पता नहीं था। तो वापस चलते हैं उस दिन जब ये एक्सीडेंट हुआ था, अप्रैल की 26 तारीख जब एक्सीडेंट हुआ, चंद मिनटों के बाद जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंचे वहां पर, पैरामेडिक्स पुलिस वाले क्रैश साइट पर एनालाइज करने के लिए कि कौन बच गया क्या कौन नहीं बचा, तो उन्हें लॉरा दिखी जिसकी हालत काफी खराब थी, तो जिंदा थी, तो उन्होंने रश करके उसे स्ट्रेचर पर रखा और एम्बुलेंस में भेज दिया। लॉरा जब हॉस्पिटल में पहुंची तो डॉक्टर्स ने उसका जो बैग था उसमें से, उसके पर्स में से उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकाला, आइडेंटिफाई किया और उसे पूरी तरह से रैप कर दिया पट्टियों में, बैंडेजेस में और कास्ट में। एक्सीडेंट ने उसका बुरा हाल कर दिया था, उसके दांत भी इधर से उधर हो चुके थे, शिफ्ट हो चुके थे। लॉरा की फैमिली डिडंट केयर, उन्हें बस इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी जिंदा है। मई की 22 तारीख को जब ये लिखने के लिए थेरेपिस्ट ने दिया था वो पेन और पेंसिल, तो कहा गया था कि अपना नाम लिखो। लॉरा के पास पेन और पेंसिल थी, उससे कहा गया नाम लिखने के लिए, तो उसने LAURA ना लिख के उसने लिखा WHITNEY, विटनी। कहा गया फिर से लिखो, उसने फिर से लिखा, एंड ये चीज बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो रिवील करने जा रही थी, क्योंकि जो लिखा वही सच था। शी वॉज नॉट लॉरा, शी वॉज 18 ईयर ओल्ड विटनी। एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। विटनी जब एक्सीडेंट में उसकी बॉडी मिली थी, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्डर्स, उसके साइड में जो पर्स गिरा हुआ था वो लॉरा का पर्स गिरा हुआ था, और जहां लॉरा गिरी हुई थी वहां पे विटनी का पर्स गिरा हुआ था। चूंकि दोनों आसपास बैठी थी, उनके बैग्स एक्सचेंज हो गए थे आफ्टर द क्रैश, एंड इस वियर्ड इत्तफाक के चलते उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल गलत ले ली गई। जब ये कंफर्म हो गया कि इतनी बड़ी गलती हो चुकी है, अब इसे संभाला कैसे जाए, क्योंकि सरक फैमिली, विटनी सरक की जो फैमिली थी वो ऑलरेडी, उन्हें बताया गया था उनकी बेटी जिंदा ही नहीं है, वो तो दफना चुके, 1400 लोगों को बुला चुके,

0: उन्हें कैसे कॉल करके कहा जाए कि भाई साहब ऐसा हो गया है, वो तो जिंदा है। उनके पास कॉल गई, इन्होंने कॉल करके बताया गया कि एक्सक्यूज मी, देयर इज दिस ह्यूज मिस्टेक, आपकी बेटी जिंदा है। सर एक फैमिली बहुत शॉक में थे। हाँ ऑब्वियसली खुशी थी कि उनकी बेटी जिंदा है, मगर इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रोसेस। वो ने भी नहीं पता लगा, क्योंकि जब उनके पास बॉडी आई थी जो कहा गया था कि आपकी बेटी है, वो क्लोज्ड कैस्केट में थी, तो उन्होंने देखा ही नहीं था। ये लोग पहुंचे फौरन हॉस्पिटल में और उनकी बेटी विटनी उस वक्त रो रही थी। ये मिरेकल था सैरिक फैमिली के लिए, उनकी बेटी जिंदा है। मगर एक बहुत बुरा सपना जो सच हो गया था वो था दूसरी फैमिली के लिए, लॉरा वैन रन की फैमिली, जिनको कहा गया था कि आपकी बेटी जिंदा है। उनको शक भी था कि उनकी बेटी के दांत ऐसे नहीं है, पर उन्होंने सोचा कि एक्सीडेंट में डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसा हो जाता है, लोग अक्सर वैसे नहीं दिखते जैसे दिखा करते थे, वैसे बातचीत नहीं करते ब्रेन इंजरी में जैसे किया करते थे, तो उन्होंने मान लिया। ऊपर से नीचे तक पट्टी में बंधी होने की वजह से उन्हें लगा कि उनकी बेटी है, इसलिए उन्होंने मेहनत करी, उसे लेकर आए, उसे ग्रैंड रैपिड में फैसिलिटी में भर्ती कराया। फिर उन्हीं से डॉक्टर्स ने कहा कि वी आर रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे दफना दी गई है दूर, वो आपकी बेटी है, ये तो विटनी है। दिस वॉज द बिगेस्ट शॉक जो इस फैमिली ने बहुत बहुत बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व किया। कुछ दिनों बाद लॉरा वेंड्रिन, जिनकी बॉडी को विटनी समझ के दफना दिया गया था, उनकी बॉडी को वापस निकाला गया, वापस लॉरा की फैमिली को दिया गया, जिन्होंने बाद में दफनाया। हुआ दरअसल ये दोनों लड़कियां जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती थी, कुछ देर की ही मुलाकात थी। इनके इस वियर्ड इत्तफाक, इस वियर्ड इंसिडेंट की वजह से इन दोनों की फैमिली आगे जाके बेस्ट फ्रेंड्स बने, एंड एक शेयर्ड ट्रॉमा था इन दोनों का। तो इन दोनों ही फैमिलीज ने को ऑथर करके, मतलब दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी जो मौजूद है। उस किताब का नाम है मिस्टेकन आइडेंटिटी, टू फैमिली वन सर्वाइवर, अनवेवरिंग होप, ये किताब का नाम है। मगर इस केस की वजह से एक और चीज हुई, इंडियानापोलिस इंडियाना सारे के सारे लॉज जो एक बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं उन्हें चेंज किया गया, प्रोसीजर्स को और भी सॉलिडिफाई किया गया, ताकि नेक्स्ट टाइम इतनी बड़ी गलती बिल्कुल ना हो। और बात रही रॉबर्ट स्पेंसर की, जो ये ट्रक लेके सो गया था और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, रॉबर्ट स्पेंसर को 4 साल की सजा सुनाई गई। एंड दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी सुनकर। आपको क्या कहना है, आई रियली वॉन्ट योर रिएक्शन। सो 666-22107 नंबर है, 666-22107। प्लीज मुझे बताइएगा, आई वुड लव टू नो कि इस किस्से पे आपका क्या कहना है। ओके मेरे पास अभी से कॉल आने लगी है, पर उठा लूंगा कॉल, चलो उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई, एकदम। बताइए भाई।
1: भाई आपकी कहानी लाइव सुना, आपने तो कोरोना की याद दिला दिया। भाई जिसको दिन जलाना था उसको दफनाया गया, जिसको दफनाना था उसको जलाया।
0: कैसी लगी भाई आपको कहानी, ये बताइए।
1: कहानी तो बहुत जबरदस्त लगी भाई। एक वो भी था, चलो आपने लास्ट में भी सोच रहा था कि ड्राइवर का क्या हुआ, लेकिन चलो 4 साल की सजा हुई।
0: नहीं पर ये
1: अगर जानबूझ के करता तो हो सकता ज्यादा होती, लेकिन हो सकता नींद में हो गई थी थोड़ा सा।
0: हाँ नींद में हो गई थी, इसलिए सजा उसकी कम थी, सजा उसकी इसलिए कम थी।
1: बट मैं सोचा था कि हो सकता है कि कभी कभी हो जाता है ना, आपने ब्रेन की भी कहानी सुनाई थी।
0: जी जी जी।
1: कि कोमा से निकलने के बाद ब्रेन कुछ और ही काम कर रहा, मालूम पड़ा उसकी आत्मा इसके अंदर घुस गई।
0: मुझे पता था कि जिस तरीके से मैंने इसको तैयार किया वैसा लगेगा लोगों को, मुझे पूरा यकीन था।
1: आपकी कहानी का कोई भरोसा नहीं रहता भाई।
0: मुझे पता था लोग ही समझेंगे, इसलिए मैंने उस तरीके से स्ट्रक्चर किया था इसे। कमाल भाई मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये कहानी सुनी।
1: आज अलार्म लगा के बैठा था भाई कि आज का आपसे बात करना है।
0: अरे मेरे भाई आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई। मैं वैसे भी आपको भेजता ही कहानी, बहुत अच्छा हुआ कि आपने लाइव सुना।
1: वो तो आती है भाई।
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई कमाल भाई, बहुत प्यार, बहुत प्यार। थैंक यू सो मच।
1: ब्रेक ले लीजिए।

0: डन मेरा भाई,
1: ओके
0: भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और एक और कॉल ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम
2: भाई। वालेकुम अस्सलाम हो रहा है
0: भाई, के क्या हाल है
2: भाई? एक नंबर,
0: थैंक यू भाई।
2: भाई तो भाई आज जो मेरे को ये सीरीज जो आपने कहानी सुनाई ना भाई, मेरे को एक चीज बोलता हूँ भाई, मैं एक मिस्टेक इंसान से इंसान की जिंदगी बदल भी सकता है और इंसान की जिंदगी खराब भी कर सकता है एकदम।
0: बेशक बेशक।
2: और ये कहानी ना भाई, मैंने एक ऐसी सेम मैंने एक सीरीज देखी थी, सीरीज नहीं शो देखा था मैंने, उसका नाम था 20/20।
0: अच्छा ओके।
2: ये इस कहानी सेम डिट्टू उसके ऊपर गई है पूरी।
0: हाँ ओके, हो सकता है क्योंकि ये काफी काफी फेमस है स्टोरी।
2: ये कहानी मैं बता रहा हूँ भाई, ये कहानी लगता है लोगों को बहुत पसंद नहीं आई रहेगी, मगर जो लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से रीड करेंगे ना, पब्लिक की आंखें खुल जाएगी। आपने तो बताया आधे आधे में, कमे तो ये कहानी मैंने देखा हो ऐसा लगा सेम सेम है। ये मैंने बहुत एक दो साल पहले देखा था मैंने।
0: हाँ, ये कहानी काफी मशहूर है। इनफैक्ट मुझे पता नहीं इस पे सीरीज है कि नहीं, मुझे किताब पता है इसकी। वो किताब
2: ड्रामा बना है, बहुत से ड्रामा बने भाई।
0: अच्छा।
2: इसके ऊपर नहीं बने, कोई मूवी भी नहीं बनी इसके ऊपर।
0: हाँ हाँ हाँ।
2: किताब लिखी गई है, वो भी दोनों फैमिली ने मिलकर लिखी है।
0: हाँ, वो किताब का ही मैंने ऑडियो सुन के इसको तैयार किया था, वो किताब ऑडियो बुक के तौर पे मौजूद थी। तो इसलिए
2: वो मरी कौन? लौरा।
0: हाँ।
2: बताया किसने? विटनी।
0: जेस,
2: विटनी जेस। नहीं मरी, विटनी कोमा में।
0: हाँ, विटनी कोमा में।
2: बाद में मालूम पड़ता है, कह रहे भाई वो तो लौरा चल दी।
0: यही भाई, यही कहानी का सार था।
2: एक मिस्टेक ना भाई, एक मिस्टेक इंसान से बहुत मतलब एक चीज समझ में आई दुनिया में, मतलब मिस्टेक कुछ भी कर सकती है।
0: भारी मिस्टेक भाई, छोटी मोटी नहीं थी, बहुत भारी मिस्टेक है।
2: और बाद में देखो ना भाई क्या है, मतलब वो फैमिली जिसकी बच्ची मरी है वो, और जिसकी बच्ची कोमा में थी, कोमा में से उड़ गई, वो उसने बता दी कि मैं विटनी हूँ, मैं लौरा नहीं हूँ, मगर बाद में दोनों फैमिली फ्रेंड हो गई।
0: तो
2: और दोनों एक दूसरे को नहीं जानती थी।
0: yes,
2: अनजान थे एक दूसरे
0: से। ये चीजें ऐसी काम करती
2: हैं। बहुत प्यारी कहानी भाई, मैं तो सच्ची में, मेरे साथ गाड़ी मेरी कितने की स्पीड में तुम बताओ भाई, 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ एकदम पहली लाइन से।
0: ठीक है, बढ़िया भाई,
2: भाई कहानी में दम है भाई।
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपकी मोहब्बत आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई को।
2: भाई तो फिर कल की कहानी कुछ ऐसी सुना दो भाई, जो प्लेन में बैठ के सुनते जाऊं।
0: अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, कल की कहानी एकदम सॉलिड है भाई, कल जहाज में उड़ाएंगे तुमको, टेंशन मत लो। ठीक है, डन है भाई, कल जहाज वाली लेके आता है।
2: ओके भाई, मैं तुमको इसकी फोटो भेजता
0: हूँ। डन डन डन।
2: ओके भाई, देखो।
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ भाई। तो एक छोटी सा ब्रेक।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी आलिया, FM 107 पर मैं दुआ वाला कबीर एंड कुछ मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास कहानी को लेकर, तो अगर आपने कहानी सुनी है तो बताइएगा। जैस भाई कह रहे हैं आसिफ भाई ने तो आपको ही सुना दी कहानी। हाँ ये तो है आसिफ भाई, अब मुझे सुना के चलेगा नहीं। अरे सुनो, तुमको नहीं बता, हम बताते हैं क्या हुआ था, सुनो तो सही। तो एक बार की बात। ये बढ़िया था भाई गुरु, ये बढ़िया था। चमकते रहो यूं जुगनू की तरह, इसके बाद मिलेंगे।

अरे सुनो तो मैं बताऊं क्या होता है। तो एक बार क्या था, एक जुगनू था, ठीक है, बहुत चमक रहा था, बहुत चमक रहा था, अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहा था। मैंने दबक लिया उसको, मैंने कहा इधर

हाँ भाई जुगनू, बहुत चमक रहे हो आज, क्या बात है।

0: दी दा दी दे दी तार दे दी तार दे दी। एक वैसे काफ़ी दमदार स्टोरी थी भाई। यार भाई मैं तो अब तक सदमे में हूँ। ये भाई ऐसी कहानी सुनाते हम, आग लग जानी चाहिए। हुसैन भाई अवेज साहब कह रहे हैं ब्यूटीफुली नरेटेड परफेक्ट थैंक यू। श्याम साहब थैंक यू सो मच। एक मैसेज है कबीर भाई इमोशनल कर देता, लाइफ इज शॉर्ट। हाँ जी भाई लाइफ इज कति शॉर्ट। एक और मैसेज आया है फराज भाई कह रहे हैं लॉरा एंड विटनी भी लाइक, जो चाचाए वही भतीजाए और जो भतीजाए वही चाचाए, वो चाचा को यही नहीं एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत सैड थी बट उस फैमिली के लिए हैप्पी जिनकी बेटी जिंदा थी। आप अली आकिब खान साहब यही तो भाई बात ऐसी है कि कहाँ खुश राजा कहाँ दुखी समझ में नहीं आता। एक मैसेज है दीदार करना है भाई को करा दो भाई को, मैं कोई वो मेकअप करी हुई दुल्हन दिख रहा हूँ तुम्हें हैं बताऊँ भी आसिफ जहाज से उतरवा लूंगा बता रहा हूँ। एक मैसेज है आग की बात कर रहा हूँ भाई 48 किलोमीटर ज़्यादा निकल गया हूँ यार भाई 48 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है भाई। गुड मॉर्निंग बोलो हाँ भाई गुड जरूर करेंगे साहब। इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आपने मेरे को गुड आफ्टरनून बोला तो मैं आपको भी गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। कितना ब्राइट दिन है माशाल्लाह। अमन जमाल भाई ने मैसेज किया है वॉइस नोट बजा वॉइस नोट वेरी वॉइस ऑफ यू। एक मैसेज मसायमीर सिटी में आ गया हूँ यार। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। एक भाई लिखा है भाई जिंदगी में कितने दुख तकलीफ़ें हैं। अब आप देखिए दुख तकलीफ़ों की बात करें ऐसा लग रहा है कि आप बोलेंगे अगर मैं जुगनू होता तो मेरी लाइट नहीं जलती एक मैसेज ओ कबीर साहब कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई,
0: क्या हाल है अमन भाई के?
1: जी मैं ठीक हूँ, जस्ट गाड़ी में बैठा था, मैंने आपकी स्टोरी मिस कर दी।
0: अरे रे रे रे रे रे रे भाई इसका मुखालिफ लगता है।
1: थी है? साईफाई थी?
0: साईफाई नहीं थी भाई, थ्रिलर स्टोरी थी, थ्रिलर एकदम।
1: ओह माय गॉड, थ्रिलर मुझे भेजने का है, मुझे मिस नहीं करने का।
0: बिल्कुल भेजूंगा भाई, बिल्कुल भेजूंगा, आपके मौज आ जाएंगे। कहानी जो आपने आज मिस करी लाइव सुनते तो ओए होए होए होए रोंगटे खड़े हो जाते, आप स्टेडियम उखाड़ लेते गाड़ी की, ऐसी कहानी थी भाई।
1: ओह माय गॉड वो तो खतरनाक है ना, स्टेरिंग उखाड़ने वाली बात इधर कतर में वो भी
0: भाई नहीं खड़ी हुई गाड़ी की मतलब मेरा मतलब वो है ज्यादा जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है अपने को और बताइए।
1: कभी कभी मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, मतलब गाड़ी चलाते चलाते जब आपकी स्टोरी सुनता हूँ, जब आप कभी कभी ट्विस्ट करते हैं ना गाड़ी स्टोरी में तो कभी कभी मैं शॉक हो जाता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल रखता हूँ ड्राइविंग पे पूरा
0: बस भाई यही मैं कंट्रोल ही सिखा रहा हूँ लोगों को यहाँ पे ट्विस्ट डाल डाल के आखिर में कि लोग अचंभित हो जाएं ये क्या हो गया। बट मैं भेजूंगा अमन भाई, अब जरूर जरूर सुनिएगा मेरे भाई।
1: और आपका आज आपका टास्क क्या था, पहले स्टोरी से पहले क्या पूछा था आपने? दो तीन
0: भाई मैंने पूछा था कि सबसे लंबी वीडियो कॉल का पूछा था मैंने, क्योंकि रिकॉर्ड एक बनाया है दो लोगों ने, 88 आवर्स का रिकॉर्ड है उनका, तो मैंने
1: कहा अच्छा मेरा तो 12 घंटे का बस,
0: 12 घंटे का 88 का 89 करिए आप 90 तक तो पहुंच जाएंगे अमन भाई, क्या दिक्कत है?
1: वो 88 आवर्स उन्होंने कंटीन्यूअसली किया था?
0: जी भाई कंटीन्यूअसली एक साथ है मेरा भाई नब्बे घंटे तोड़ने की कोशिश कीजिए आप, क्यों नहीं अमन भाई कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं।
1: नहीं नहीं मैं ठीक ठाक हूँ, मैं मतलब दिमागी मेरी हालत ठीक है, मैं 88 तक नहीं पहुंच सकता
0: ठीक है फिर तो ठीक है, यही सुन के खुशी हुई।
1: थैंक यू
0: सो मच मेरे भाई,
1: थैंक यू सो मच,
0: ख्याल रखिए मेरे भाई, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, हैव अ नाइस डे,
0: यू टू मेरे भाई, थैंक यू। वैसे भाई क्या चलान डालो कैसे नहीं सुनी स्टोरी, मैं बिल्कुल मुखालफत देना पड़ेगा ना अमन भाई ने, बिना मुखालफे के थोड़ी दे दूंगा ना स्टोरी में। एक वैसे शाम क्या सलाम ब्रो, कहानी अच्छी थी बट फील सैड, नवेद भाई लिखते हैं स्टोरी सेंड कर देना। बिल्कुल भाई एक मैसेज है कल कबीर सॉफ्टी थे आज कबीर जुगनू है कबीर भाई ऐसे जुगने हैं बत्ती जल नहीं रही है। नसीम भाई कह रहे हैं हेलो खुजी, हेलो भाई साहब क्या हाल है, क्या लिखा है आसिफ भाई क्या कह गए? एक वॉइस नोट और आया मेरे पास आप देखो अभी सारे शुरू हो गए, कबीर जुगनू ऐसा है। हाँ कल वाला सॉफ्टी वाला भी सही था, अच्छा किस्सा सुनाया था रोमी भाई ने, तो तमाम जुगनुओं को मेरा सलाम और कहानी कैसी लगी बताइएगा 666-2107 पे। बाकी कतर से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो तो आएंगी, बट इफ़ यू हैव लव्ड इट तो मुझ तक पता होनी चाहिए। ये कह रहे हैं इंडियन स्टोरी कब आएगी, लाके दो मुझे इंडियन स्टोरी कब आएगी, मैं पकौड़े तल लाऊँ यहाँ पे कि भाई साहब आप कल से समोसे मत भेजिए, चौमिन की दुकान लगाइए, मज़ा सा नहीं आ रहा, इसमें आलू बड़े कम हैं, पपड़ी भी अच्छी नहीं है, कल से चौमिन भेजिए आप इंडियन स्टोरी भाई वो मिली नहीं है मुझे ढंग की ना, जिसमें मिर्च मसाला हो, मिलेगी तो पक्का मिल नहीं रही है, कैसे बताऊं मैं आपको मेरी जान। तनवीर भाई आप तो समझदार हैं माशाल्लाह। एक मैसेज है दो प्लेट मेरे लिए, वाह अभी से दुकान खोली नहीं, रिक्वेस्ट आ गई दो प्लेट।

0: लगाना जो मिल, छोटा ये दो प्लेट लगा ला, ये कौन है ये? हुसैन भाई इनके लिए दो प्लेट लगा दो, आप पुरानी उधारी है इनकी, जाने मत देना।
1: तो एक और मैसेज है नजर साहब का, उन्होंने मैसेज किया है, दैट वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट, आई बिलीव इन माइथोलॉजी एंड माय परसेप्शन इज दे वर सिस्टर्स इन अनदर डायमेंशन, हाउ कुड अ मदर नॉट रिकॉग्नाइज हर ओन चाइल्ड, इजंट दैट कंसर्निंग, एंड टू अननोन फैमिलीज बिकेम वन बाय द कॉस्ट ऑफ लॉरास लाइफ, इन माय परसेप्शन आई नो आई एम वियर्ड एज वेल, इन माय परसेप्शन आई एम वियर्ड एज वेल, काइको व्हाई डू यू थिंक यू वियर्ड, let's talk about it, okay? एक मैसेज है कबीर भाई, चाट मसाला वाला गुरु ही अच्छा है, अब देखो डिमांड मत करो, ठीक है? ये मैंने कोई ठेला लगा रखा है यहाँ पे, सब चाउमीन मांग रहे हैं, दो प्लेट मेरे लिए, दो प्लेट मेरे लिए, हद हो गई यार। 666-22107 नंबर है, आ जाओ जी, बढ़िया करके गाने चाल लेंगे भाई, और ट्रैफिक का हाल भी बता देना, बोहिमिया बोहिमिया के स्टाइल में, you know? मैं घर दे बार देखी चिपकली वही भैया वॉल्यूम बढ़ा के
2: उच्चा मुट्टे यार दा पूरा शहर जान कुड़ी उत्तों भार दा काली कजले दी अखां विच तारे

भाई सलाम दुआ से पहले बड़े कमाल के मैसेज आ रहे हैं। ऐश भाई ने सीधा मुझे लिख दिया है, कह रहे हैं गर्मी हो रही है पानी पियो एंड कीप डूइंग स्पोर्ट्स। पाजी मैं एक पुरानी कहावत आपको बताऊंगा, जाट को ना आप बहका सकते हो, समझा नहीं सकते। है जी, आई होप इट क्लियर एवरीथिंग।

क्या डायलॉग तो सिर्फ एक ही बंदा समझा, वेरी गुड वेरी गुड हुसैन भाई, मैं आपका फैन हो गया जी, बहुत सारा प्यार भाई को, कह रहे मौत को छूते वापस। हुसैन भाई, भाई बेस्ट फ्रेंड वाला टैग, ठीक है जी, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच हुसैन भाई। अजन का मैसेज आया है 90 आवर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली स्टोरी, क्या नहीं नहीं भाई वो तो मैंने सवाल पूछा था, रिकॉर्ड वाली कहानी नहीं थी। एक मैसेज आया है, यूसुफ भाई कह रहे थे कबीर वो दो जो वीडियो कॉल में रिकॉर्ड बनाए दोनों फ्रेंड्स हैं। हाँ जी, बहुत गहरे फ्रेंड हैं, इतने गहरे फ्रेंड हैं कि इनके चर्चे बहुत अखबारों में छपे हुए भाई। भरत भाई कह रहे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और दो प्लेट मोमो लगाने के लिए हमें ये मैसेज किया है हमारे भाई अफजल उस्मानी ने। अफजल भाई कैसे हैं आप मेरे भाई, सब बढ़िया चल रहा है। और एक भाई ने मैसेज किया है, बहुत मोहब्बत से मैसेज किया है, तो मैं वैसे ही रिप्लाई कर देता हूँ। अजमल भाई कह रहे हैं कि मैं आपसे फजील भाई से नाजिया से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और उन्हें लगता है कि मेरा स्टाइल उन्हें अच्छा लगता है। वो सबसे मिल चुके हैं, मुझसे नहीं मिले हैं। बैटमैन को कभी आपने मिलते हुए देखा? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मिलूंगा इंशाल्लाह, कभी भी मुलाकात हो सकती है भाई, मैं नॉर्मली बाहर निकलता रहूँ, ये मेरी परेशानी, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। आसिफ भाई कह रहे हैं भाई 12 घंटे फ़ोन पर वीडियो कॉल पर बात करने से अच्छा है अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लो। अगर लगवा दिया ना किसी ने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, आसिफ भाई भागते दौड़ते फिरोगे भाई। ये आड़ी टेढ़ी दुआएं तो मांग लेते लोग। और अगर ये विश पूरी हो गई, सबसे पहले इन्हीं को चुभेगी। एक मैसेज है, बस भाई मोमोज की क्रेविंग आ रहे भाई भाई भाई भाई। अफजल उस्मानी भाई मैं बताऊँ, मुझे भी मोमोज की क्रेविंग, आज भाई जाके मोमो खावे जाऊंगा भाई। एक मैसेज, भाई आ जाओ शाम में 9 बजे। ये बुलाने बुलाने का सीन नहीं है इमरान भाई, वहाँ पे जहाँ जिस दुकान का आपने जिक्र किया है वहाँ पे गोलगप्पे बहुत बढ़िया भाई, वो वाले क्या कहते हैं उसको, सूजी के। एक मैसेज है, ए आए हैं कबीर भाई, किसी को कैसे मिलेंगे बताओ। फरहत भाई समझते नहीं है ये लोग, फरहत भाई सही तो कह रहे हैं, मैं AI हूँ भाई। हाँ, मेरे को रखा, प्रॉम्प्ट दिया गया है, मुझे प्रॉम्प्ट दिया गया, प्रॉम्प्ट में लिखा गया योर नेम इज दुहा वाला कबीर, डू इवनिंग शो, रस्टी वॉइस, डू इट। तो चल रहा है ये प्रॉम्प्ट है। बताओ फरहत भाई, समझ नहीं रहे लोग। एक मैसेज है, कौन सी शॉप, अच्छा बता देता हूँ, अफजल उस्मानी भाई यहाँ पे जाके आप ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे भाई, ठीक है, बाकी सब चीज़ें मैं ट्राई करना, ये ट्राई करना सूजी वाले, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है भाई, मौज आ जाएगी आपको। एक मैसेज है, भाई बढ़िया मोमो कहाँ मिलते हैं? अब ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, मेरे घर पे बनते हैं भाई मोमो, तो मैं घर वाले खाता हूँ भाई, अब बाहर का मैं कह नहीं सकता। हाई कहते हुए क्या चौड़े में बताया मैंने। एक मैसेज, कबीर भाई मोमो खाने हैं, ट्राई करो, ठीक है, मैं ये मैसेज ज़रा फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि हमारे एक भाई हैं वो कह रहे हैं कहाँ मिलेंगे बताओ, तो मैं ये फॉरवर्ड कर देता हूँ हमारे तौकीर भट्ट साहब को। तौकीर भट्ट साहब ये लीजिए आप, पढ़िए, एक सेकंड रुकिए, मैं भेज रहा हूँ। अरे अरे अरे अरे, गलत मैसेज कॉपी हो गया, आई एम रियली सॉरी। मैं टाइप ही कर देता हूँ, ओके। हाँ, अफजल उस्मानी भाई क्या कह रहे हैं, फूड इन्फ्लुएंसर बन गए हैं आप इस टाइम तो? नहीं नहीं नहीं भाई, मुझे इन्फ्लुएंसर का नाम मतलब भाई, तोबा तोबा तोबा, इन्फ्लुएंसर देखे हैं आपने? मतलब मैं किसी के अगेंस्ट कहना नहीं चाहता, अल्लाह ताला उनके घर को चलाए, लेकिन ये कौन सी इन्फ्लुएंसरशिप है भाई? हमारे कतर के देसी इन्फ्लुएंसर को देखा आपने? आलू ले भिंडी ले आलू ले, वो चल रहा है। किसी भी दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, ले लो आज गाइस, यहाँ पे मिल रहा है आपको 30 रियाल का आटा चक्की का। एक मैसेज, हाँ भाई ऐसे सब घर में मिल जाता है, बाहर नहीं निकलते, क्या करें आप, देखिए लग्जरी, नेकी कमाई मैंने दरिया में डाली, दरिया में से छलका मेरे ऊपर पानी और ये नतीजा है। एक मैसेज है, सब भाइयों से गुजारिश है, संतुलन ख़राब ना करें कबीर भाई का, प्लीज़। काबू में रहें, काबू में। अच्छा, कुछ दिन हैं जो आज के दिन मार्क्ड किए गए, ज़्यादा दिन नहीं तो बता देता हूँ, आज के दिन है कॉल योर डॉक्टर डे। आपको फैमिली डॉक्टर्स याद है, बड़े कमाल के होते हैं, बड़ी कमाल की एक कैटेगरी है फैमिली डॉक्टर्स की। दूसरा है आज डोनाल्ड डक डे। मैं पता, मैं सही बता रहा हूँ, आई एम फीलिंग सैड। एक ज़माने में मैं डोनाल्ड डक की आवाज़ निकाल लेता था, आज मुझे प्रैक्टिस करके आना चाहिए था, मैं निकाल लेता सही में। खैर, आज डोनाल्ड डक डे है। भाई बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था मेरे पास डोनाल्ड डक का, बढ़िया वाला। और आज है गार्डन वीक, जिन्हें गार्डनिंग का शौक है उनके लिए। फरहत भाई थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया है, हिडन प्लेस।

0: बोल बोल के खाते हैं हाँ?
1: क्या
0: कहाँ मिलेंगे? ओके मैं बता ही देता हूँ. नहीं भाई इन्फ्लुएंसर मत बनाओ मेरे को, मैं ऐसी ठीक हूँ. थैंक यू सो मच. मुझे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही खुश हूँ भाई मैं. बोल बोल हाँ ये बिल्कुल एक कौन है भाई ये? सेम इमरान भाई कह रहे हैं इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, हिडन प्लेस. आज आपको कतर के एक हिडन प्लेस ले चलता हूँ, वहाँ बोल बोल के खा लेते. हर जगह हिडन प्लेस है, हर जगह हिडन प्लेस है. तो या अगर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है मेरे पास आ जाना, डीमोटिवेट करके भेजूंगा. मजाक कर रहा हूँ. बनना है तो सही दिशा में ले जाऊंगा आपको मैं. प्लीज देखा देखी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक जनता भी इन्फ्लुएंसर वाली, तो उनसे जरा बच के रहे ठीक है. बाकी मेजान का वक्त हो रहा है, कुछ देर में आपसे मुलाकात होगी. तो 666-221-07 पर मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा. एंड एक और मैसेज आया है कि कबीर भाई के अंदर दिल्ली वाले को मत छेड़ो. बिल्कुल मत छेड़ो भाई. मुझे खुद डर लग जाता है. अच्छा तो मिलते हैं अजान के बाद ठीक है. स्टे ट्यून्ड.

0: करना चाहिए। मुखलिस लोगों का रूठना वक्ती तौर पर होता है और बुरे लोग सिर्फ एक गलती की देर है, वो भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। याद रखिए कि इंसान की जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं वो हमेशा सदा नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये नेमत के तौर पर भी आती हैं, ताकि इंसान अपने इर्द गिर्द जो रिश्तों नाम की मखलूक रहती है उसे आजमा सके।
1: पैगाम ऑन FM 107।

0: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107। दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए
3: आज ही रابطہ करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

फिर भी उस लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है. वो है एक तो स्टीवन बेन और एक है विशाल मिश्रा. Assalamualaikum. मैं जरा ट्रैफिक कॉल बता दूं. सबसे पहले भाई साहब अल कॉर्निश की तरफ अगर आप जा रहे हैं मस्जिद सुल्तान स्ट्रीट से तो आपको ट्रैफिक मिलेगा. इनफैक्ट अगर आप मूव कर रहे हैं इधर दफना स्ट्रीट से होते हुए तो आपको इंटरसेक्शन की तरफ अच्छा खासा जाम मिलने की पूरी पूरी आशंका है. यहां से मरखिया स्ट्रीट से कनेक्ट करेंगे तो कॉर्निश की तरफ आपको ट्रैफिक मिलेगा. अगर आप जो है भाई साहब ये कौन सी जगह है बीरिंग रोड से सलवा रोड की तरफ आ रहे हैं तो ट्रैफिक मिलेगा. इब्न सीना स्ट्रीट से कनेक्ट होंगे. अगर आप उधर से आते हुए सलवा रोड की तरफ आना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया जाम हाँ वेलकम कर रहा है. एंड सबसे ज्यादा तो आपको जाम मिलेगा वो अभी सीरिंग रोड की तरफ मिलेगा. सीरिंग रोड पे चारों ओर से सिर्फ ये रौदतुल खैल स्ट्रीट की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो ठीक ठाक है. वरना अगर आप ये मुंतजा पार्क के आमने सामने से जाएंगे तो आपको हौली हौली जाना पड़ेगा. स्पेशली मंसूरा स्ट्रीट पर जब आप कनेक्ट होंगे रौदतुल खैल से तो आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है. तो ये एक मामला हो लिया. और भाई साहब किधर है ओके ये भी देख लिया. कहीं और जाम है मैं देख लूँ. बाकी तो इंटरसेक्शन पर नॉर्मल है. ऐसा कुछ थबड़ा थबड़ी का माहौल अभी किधर भी नहीं है. पर आपको कहीं ट्रैफिक मिल रहा हो तो मुझे बताइएगा 666-22107 पर 666-22107 पर. बाकी विलाजी मॉल के सामने अलवाब स्ट्रीट के पास ट्रैफिक मिलेगा. थोड़ा सा बिजी एरिया चल रहा है इधर तो यहाँ पे भी प्लीज़ ड्राइव सेफली. एंड रुसैन तो क्लियर नज़र आ रहा है. इधर तो कहीं पर ट्रैफिक नहीं है. ओनाइजा की तरफ आ जाते हैं. तो ओनाइजा की तरफ अगर आप हैं तो ओनाइजा उमर मुख्तार स्ट्रीट से अगर होते हुए आप ओनाइजा स्ट्रीट से कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ इंटरसेक्शन पर ट्रैफिक है. अल इस्तकलाल स्ट्रीट से अल मरखिया स्ट्रीट की तरफ आते हुए तो आपको ट्रैफिक मिलेगा. बाकी तो ठीक ठाक चल रहा है भाई. देखूँ जरा मैसेज में. अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो. माया बढ़िया भाई आप सुनाओ कैसे हैं. तो ट्रैफिक का लीजिए सलमान भाई का मैसेज भी आ चुका तो आप मुझे बता सकते हैं कहीं पर ट्रैफिक हो. और अभी हम बात करेंगे उनकी जो हम करते हैं हर रोज़ वो है रिकमेंडेशंस. तो अगर आपको जैसी सीरीज़ कुछ आपके पल्ले पड़ गया कुछ अच्छा सा देख लिया आपने किसी OTT प्लेटफॉर्म पे या फिर आपने कोई ऐसी मूवी देख ली तो मुझे बताइएगा. या मेरा कोई रिकमेंडेशन देख डाला है आपने तो मुझे बताइएगा. पहली बात तो मुझे हैरानी हो रही है हॉन्टेड 3D का ट्रेलर कब आया भाई. सुनने में आ रहा है रिलीज हो रही है. मैंने तो ट्रेलर भी नहीं देखा कब हुआ ये. बात करेंगे इस बारे में आपसे कुछ देर में. जाना नहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत क्या कहते हैं उसको ले मैं भूल गया वर्ड छोड़ो. याद आएगा तो बताता हूँ. वो पंच खराब हो जाएगा ना अगर मैंने अभी कुछ और बोला तो. ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए आशिकी. ये थे ना भाई साहब का म्यूजिक अमृत सिंह के साथ में

पार्टी बहुत बढ़िया चीज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, रिकमेंडेशन जो मेरे पास आई है, और मैं आज रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आपको शॉर्ट मूवीज की, ताकि आपके पास भी हो सकता है कि टाइम कम हो तो आप इन मूवीज को निपटा सकते हैं और आपको पसंद भी आएंगी। सो लेट्स बिगिन। किथे गया जी मेरा म्यूजिक? बल्लू बेटा, बल्लू बेटा बटन दबाओ म्यूजिक का। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो शॉर्ट मूवीज का सिलसिला ऐसा होता है ना, कुछ शॉर्ट मूवीज 5 मिनट की भी होती हैं, 6 मिनट की भी होती हैं, 13 मिनट की भी होती हैं। तो फीचर फिल्म्स तो खैर हो सकता है कि टाइम ना हो, वो हमने बहुत सारी बता दी है, बट राइट नाउ आई एम गोना टेल यू कि कहां आप जाके शॉर्ट मूवीज देख सकते हैं। सबसे पहले कुछ शॉर्ट मूवीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखनी ही देखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक शॉर्ट मूवी मैं सजेस्ट करता हूं, उसका नाम है लाइट्स आउट। अब इसी नाम की मूवी भी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। इसी सेम नाम की एक मूवी भी आ चुकी है लाइट्स आउट, वो भी देखिए, वो भी बहुत कमाल की है, और इसी नाम से एक शॉर्ट मूवी है लाइट्स आउट, तो ये भी आपको देखनी चाहिए। देख लिया आपने। अगली मूवी आपको बता रहा हूँ शॉर्ट मूवी, ये भी बहुत छोटी मूवी है लेकिन बहुत कमाल की है। मूवी का नाम है द स्माइलिंग मैन, हंसता हुआ इंसान आदमी। तो द स्माइलिंग मैन, ओके, ये जरूर देखें। एंड एक तीसरी सजेशन मैं आपके साथ, ज्यादा नहीं दूंगा, 3 सजेशन अभी के लिए, जब आप देख लेंगे तो बताइएगा। तीसरा सजेशन है अदर साइड ऑफ द बॉक्स, अदर साइड ऑफ द बॉक्स, ये 3 रिकमेंडेशन है। और अगर आपको पूरा का पूरा चैनल चाहिए तो ये चैनल मौजूद है, इसका नाम है ऑल्टर, ALTER, ठीक है, ALTER, बहुत कमाल का चैनल है। इस पे 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट की मूवीज होती हैं, बड़ी कमाल की होती हैं। इनकी खास बात यह है कि छोटी होने के बावजूद इनमें बहुत कुछ होता है, तो कई मूवीज ऐसी होंगी आप बोलेंगे अरे ये हुआ क्या, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, उसमें बहुत सारे लोग आपको बता देंगे क्या हुआ एग्जैक्टली। उसमें राइटर्स भी, जो डायरेक्टर्स भी होते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में होते हैं, वो भी बता रहे होते हैं कि मैंने ये मूवी क्यों लिखी, मेरा आइडिया क्या था और एंड में क्या हुआ, अगर ना समझ में आए, बाकी आपकी समझ में आ जाएगा आई एम प्रीटी श्योर। और इस पर बहुत सारी शॉर्ट मूवीज हैं। आपके जहन में कोई शॉर्ट मूवी हो जो आप बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा, एंड शेयर करते रहा करें। ये शॉर्ट मूवीज़ बड़े काम की हैं, इनफैक्ट इनमें से कुछ शॉर्ट मूवीज़ ऐसी हैं जो आप बच्चों को भी दिखा सकते हैं, और कुछ शॉर्ट मूवीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं, एज एन एडल्ट यू शुड वॉच इट। जैसे मैंने एक मूवी बताई ना, ये जो मूवी है, एक कौन सी मूवी का नाम था, एक सेकंड याद करना, हाँ, नेबर्स विंडो, द नेबर्स विंडो। इनके हिसाब से नहीं देखिए, नेबर्स विंडो बहुत कमाल की शॉर्ट मूवी है। ये उस थीम के बारे में बात करती है जो देखा देखी में करते हैं ना हम लोग, देखा देखी में एक दूसरे से, एक दूसरे को देखते हैं, एंड सरफेस लेवल पे सब कुछ बढ़िया लगता है। सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट डाल दिया, आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत सारे कमाल के इन्फ्लुएंसर हैं जो कुछ भी बोलते हैं, तो वैसे ही सीन है। तो उस पे ये मूवी है, एक मैसेज आया है आसिफ भाई, कह रहे हैं भाई द स्माइल मूवी है ना, ये मूवी मत बताओ पब्लिक को, बहुत डेंजर है। अरे द स्माइल मूवी नहीं, द स्माइलिंग मैन शॉर्ट मूवी बता रहा हूँ। द स्माइल तो ठीक है, द स्माइल और स्माइल टू तो लोगों ने देख भी लिए, बट जो शॉर्ट मूवी है मैं वो बता रहा हूँ, छोटी मूवी है, इसका नाम है द स्माइलिंग मैन, एंड यू शुड वॉच इट, बहुत बहुत कमाल की है। वो जो स्माइल वाला टॉपिक है वो काफ़ी अलग है, तो दोज़ हू हैवंट सीन इट आप दस सकते हो, मैंने दसो मैं बताऊंगा आपको, कोई गाल नहीं पाजी। 666-22107 नंबर है, इस गाने के उस पार मिलते हैं, जाना नहीं पल पल मेरा, क्योंकि इसके बाद ही एग्जिट लेनी है ना। हाँ, डीजे NYK एंड वन ऑफ माय फेवरेट रीमिक्सेस, अक्सर रीमिक्सेस इतने अच्छे बनते नहीं है, पर ये बाई कमाल का है, कमाल का। चल घर चले, 6:46. Good evening.

ये यूसुफ भाई और मेरा फेवरेट गाना है, यूसुफ भाई भी कह रहे हैं बहुत दिनों बाद चला है, आखिरी में चलता है हमेशा ही, बट अमेजिंग ट्रैक भाई, डीजे एनवाई की डिड अ ग्रेट जॉब ऑन दिस वन। मैं दो हवाला कभी रफी मुनस पर ये सिंह की आवाज चल कर चले, एंड इट्स रियली टाइम टू गो होम, मतलब मेरे लिए जिनके शिफ्टें पूरी हो गई हैं भाई, 8:51 में दो हवाला कभी रफी मुनस पे, एंड क्या जी जाने का वक्त हो गया है, पर मैं आपको कहानी भेज दूंगा, बेफिक्र हो जाए, कुछ देर में आपके पास मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, धड़ाधड़ मैसेजेस आएंगे कहानी के, सो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी कल छुट्टी पे जा रहे हैं, भेजा है मुझे आसिफ भाई ने, कह रहे हैं 2 महीने आपको मिस करूंगा, भाई मैं भी आपको मिस करूंगा, थैंक यू सो मच फॉर बींग सो काइंड एंड स्वीट टू मी, थैंक यू सो मच। बाकी जी ऐसा है शाम आए क्या मैसेज है भाई, भाई शाम बना दी भाई, थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई को, ये मैसेज किया है मोहम्मद अशफाक भाई ने, थैंक यू भाई, कल भी बनाएंगे भाई, शाम तो हर शाम बनाएंगे, कोई टेंशन थोड़ी मेरे भाई। बाकी आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, मुझे बहुत मज़ा आया 4 बजे से अभी तक, वक्त का सच में पता नहीं लगता, अंदाजे नहीं होता, और ये काम बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि आप लोग इतना साथ देते हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत मोहब्बत। 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन और आपसे मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे एक नए किस्से के साथ और बहुत सारी बातों के साथ, ठीक है, बट फॉर नाउ दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी है। मा सलामा।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। क्या हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी जिंदगी को सिंपल बनाती हैं और एनवायरनमेंट को ज्यादा सस्टेनेबल बनाती हैं। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं पेपरलेस लाइफस्टाइल की। कागज नहीं होना चाहिए। देखिए चलिए शुरू करते हैं बात को एक बड़ी रिलेटेबल एग्जाम्पल से। सोचिए आप बैंक या ऑफिस गए किसी काम के लिए, आपने वहां पे फॉर्म फिल करना है। आपको एक फाइल दी जाती है या एक पेपर दिया जाता है जिसमें 5 से 6 पेजेस होते हैं। आप साइन करते हैं, सबमिट करते हैं और काम हो जाता है। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो जो पेपर आपने साइन किए ना, वो पेपर्स या तो फाइल में बंद हो जाते हैं या किसी ड्रॉअर में चले जाते हैं या कभी कभी सीधा वेस्ट बिन में फुफ। और फिर सेम चीज हर ऑफिस, हर डॉक्यूमेंट और हर ट्रांजैक्शन के साथ रिपीट होती चली जाती है। आप थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं भाई। देखो पेपर हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मैं मानती हूँ। रिसिप्ट हो गई, बिल्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, नोट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब पेपर का अननेसेसरी यूज होता है। हर पेपर बनाने के लिए दरख्त काटे जाते हैं, पानी इस्तेमाल होता है और एनर्जी कंज्यूम होती ही होती है। यानी एक सिंपल प्रिंट या फोटोकॉपी के पीछे काफी नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं भाई। देखिए अब इको स्विच यहाँ क्या है, इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। आइडिया बहुत सिंपल है। जहाँ पॉसिबल हो पेपर की जगह डिजिटल ऑप्शंस यूज करें। इसे कहते हैं पेपरलेस लाइफस्टाइल। यानी जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स, नोट्स और कम्युनिकेशन को डिजिटल फॉर्म में मैनेज कर सके। अब बात करते हैं कि पेपरलेस लाइफस्टाइल कैसे हेल्प करता है। देखिए सबसे पहला फायदा वही वाली बात है, दरख्त लगाओ, दरख्त बचाओ। जितना कम पेपर यूज होता है उतने कम ट्रीज काटे जाते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा फायदा है वेस्ट रिडक्शन। देखिए पेपर वेस्ट लैंडफिल्स में जाता है और जगह ऑक्यूपाई करता है। पेपरलेस अप्रोच इस वेस्ट को रिड्यूस करती है। तीसरा फायदा है हमारा कन्वीनियंस ना। देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इजीली स्टोर, सर्च और शेयर किए जा सकते हैं। आपको फाइल्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। चौथा फायदा क्या है, एफिशिएंसी है भाई, काम फास्टर हो जाता है। इजीली ऑफिस और स्कूल्स में जहां डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है वहां पे काम बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से होता है। अच्छा अगर इसकी एक और रिलेटेबल एग्जांपल ली जाए ना, तो जरा सोचें आप स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस वर्कर हैं। आपके पास 10 डिफरेंट नोटबुक्स हैं और हर जगह नोट्स स्कैटर्ड हुए हैं। अब अगर वही नोट्स आप मोबाइल या लैपटॉप में ऑर्गेनाइज करें तो आपको सब कुछ एक क्लिक पर मिल जाता है। या फिर वो जो रिसिप्ट्स और बिल्स होते हैं ना, है ना, हाँ, यानी कि हर चीज फिजिकल फोल्डिंग में स्टोर करने के बजाय ईमेल्स या एप्स में सेव्ड हो। देखिए दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में जहाँ डिजिटल सिस्टम्स ऑलरेडी काफी एडवांस हैं, बैंक्स, स्कूल्स और ऑफिसेज ग्रेजुअली डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी ये लाइफस्टाइल सिर्फ फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट रियलिटी भी बन चुका है। अच्छा अगर कुछ टिप्स के बारे में बात करूं, प्रैक्टिकल टिप्स, तो भाई बिल्स को ईमेल्स पर रिसीव करें। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ये जो आपके मोबाइल बिल्स को आप पेपर की बजाय डिजिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि नोट्स ऐप यूज करें। शॉपिंग लिस्ट हो गई, आइडियाज या रिमाइंडर्स जो हो गए वो अपने मोबाइल में लिख लें कहीं, उसे आदत बनाएं। डॉक्यूमेंट स्कैन करें, इंपॉर्टेंट पेपर्स को स्कैन करके क्लाउड स्टोरेज में सेव करें। चौथी चीज है ऑनलाइन फॉर्म्स प्रेफर करें। जहां भी ऑप्शन हो फिजिकल फॉर्म्स के बजाय आप ऑनलाइन सबमिशंस यूज करें। प्रिंटिंग अवॉइड करें, सिर्फ जरूरत हो तब प्रिंट करें। और डबल साइडेड प्रिंटिंग यूज करें भाई, अगर प्रिंट करना ही है तो डबल साइडेड करो ना। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक सिंपल पेपर शीट बनाने के लिए वाटर और एनर्जी दोनों यूज होते हैं। अगर हम अननेसेसरी प्रिंटिंग कम कर देते हैं तो हम इनडायरेक्टली मल्टीपल रिसोर्सेज सेव कर रहे होते हैं। और ये सेविंग्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि लार्ज स्केल पर भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो साथियों जब आप पेपरलेस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। आपके पास क्लटर कम होता है, स्पेस बेटर यूटिलाइज होती है और मेंटल लोड भी रिड्यूस होता है। डिजिटल सिस्टम्स आपको कंट्रोल और क्लैरिटी दोनों देते हैं। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, जहां पॉसिबल हो पेपर की जगह डिजिटल ऑप्शंस यूज करें। और भाई आज का चैलेंज भी है हमारे पास, आज से कम अज कम एक चीज चूज करें जो आप डिजिटल, जिसे कह सकें डिजिटल है, पेपर से शिफ्ट

कर जाए, जैसे नोट्स हो गए, बिल्स हो गए, रिमाइंडर्स हो गए। और अगर आप ऑलरेडी पेपरलेस हैं तो किसी और को इनकरेज करें कि वो भी आपके वाली हैबिट अपनाए। तो भाई साथियों, पेपरलेस लाइफस्टाइल सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन है। जब हम कम पेपर यूज करते हैं तो हम सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बढ़ाते बल्कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हर डिजिटल चॉइस एक दरख्त को बचाने के बराबर है साथियों। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वाटर कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन. पानी बचाना जिंदगी बचाना. पानी जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन दुनिया में फ्रेश वाटर लिमिटेड होता जा रहा है. सस्टेनेबिलिटी का एक अहम गोल पानी का स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल यूज है. इसकी इम्पोर्टेंस

0: इसलिए भी बढ़ जाती है कि पानी के बिना जिंदगी मुकम्मल ही नहीं है, ना एग्रीकल्चर और ना हमारा खुद का एग्जिस्टेंस। अगर आज हम पानी जाया करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन सीवियर शॉर्टेज का सामना करेंगी। इस टॉपिक की रेलेवेंस आज और बढ़ जाती है जब क्लाइमेट चेंज की वजह से रेन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। गल्फ जैसे रीजन्स में पानी की अहमियत और भी ज्यादा है। ऐसे में आपका और हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये बनता है कि जो टैप्स हैं उनमें पानी जाया ना करें, उन्हें बंद रखें। जितनी जरूरत है बस उतना ही इस्तेमाल करें, अननेसेसरी वेस्ट ना करें और इफिशेंट अप्लायंसेस यूज करें। अवेयरनेस फैलाएं, बढ़ाएं। पानी बचाना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज की हिफाजत ही कल को बेहतर कर सकेगा। आज की हिफाजत ही कल की जिम्मेदारी बनेगी, तो आज इस जिम्मेदारी को समझें और भरपूर तरीके से निभाएं। देखिए, कतर का नेशनल विजन जो है 2030, वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी का एक शेयर्ड विजन है। जब गवर्नमेंट, बिजनेस और सिटीजंस एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, प्राइवेट सेक्टर जॉब और इनोवेशन लाते हैं और सोसाइटी वैल्यूज और कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सपोर्ट इसी टीम वर्क की मिसाल है। शेयर्ड विजन ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है। हर स्टेक होल्डर को अपना रोल पता होता है जिससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन कम हो जाता है। सो वन स्टेप टू 2030 ये दिखाता है कि जब सब एक डायरेक्शन में कदम उठाते हैं तो विजन सिर्फ लिखी हुई सोच नहीं रहता बल्कि एक लिविंग रियलिटी बन जाता है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर एक बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकेंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कराम, आज हम एक ऐसी सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई मरतबा हम इस अमल को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर यही मामूली सा अमल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो जाए तो वह इबादत बन जाता है और उसमें बरकत पैदा हो जाती है। आज का मौजू है खाने के मसनून आदाब। जैसे कि आप सब जानते हैं, खाना सिर्फ जिस्म की ज़रूरत पूरी करने का नाम नहीं, बल्कि ये खाना अल्लाह की नेमत भी है और नेमत का अदब भी होना चाहिए। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आगाज से लेकर इख्तिताम तक ऐसे आदाब सिखाए हैं जो जिस्मानी सेहत, रूहानी तरबियत और माशरती मोहब्बत तीनों का जरिया बनते हैं। पहली सुन्नत है मिलकर खाना खाना। इस सुन्नत को आज हमने हमारी समाजी जिंदगी में नज़रअंदाज करके रखा है। आज की मसरूफ जिंदगी में एक मसला ये भी पैदा हो गया है कि घर के अफराद एक ही घर में रहते हैं लेकिन अक्सर अलग अलग खाना खाते हैं। कोई मोबाइल के साथ खा रहा है, कोई टीवी के सामने, कोई अपने कमरे में और कोई दफ्तर में। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इज्तिमाईयत और मोहब्बत सिखाई है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिलकर खाना खाओ और अलग अलग न खाओ, क्योंकि बरकत इज्तिमा में है। ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है। ये हदीस हमें बताती है कि बरकत सिर्फ खाने की मकदार में नहीं होती बल्कि उस मोहब्बत और इज्तिमाईयत में भी होती है जो एक दस्तरखान पर बैठने से पैदा होती है। घर के अफराद जब इकट्ठे खाते हैं तो दिल करीब हो जाते हैं, गुफ्तगू होती है, मोहब्बत बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं, जबकि ये अपनी औलाद की तरबियत का एक बेहतरीन मौका भी फराहम करता है। खाने की सबसे अहम सुन्नतों में से एक है बिस्मिल्लाह कहना। खाना शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना दरअसल उस नेमत के असल मालिक को याद करना है। ये एक मुख्तसर सा जुमला है लेकिन उसके ज़रिए शैतान खाने में शरीक नहीं हो सकता और खाने में बरकत पैदा होती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर खाने के आगाज़ पर बिस्मिल्लाह ज़रूर कहें। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, फ्रॉड की दुनिया तेजी से बदल रही है और आज हम किस फ्रॉड के बारे में बात करेंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग पावर्ड पासवर्ड और वॉलेट क्रैकिंग। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, थोड़ा नए जनरेशन का फ्रॉड लग रहा है ना। चलिए बात करते हैं। जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, साइबर क्रिमिनल्स ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया है। 2026 में ऐसे एडवांस्ड टूल आ गए हैं जो पुराने क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को चंद सेकंड में तोड़ देते हैं। इस फ्रॉड में हैकर्स बड़े स्केल पर लोगों के डिजिटल बैंकिंग अकाउंट्स, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स और पर्सनल क्लाउड्स को टारगेट कर रहे हैं। पुराने साइबर डिफेंस सिस्टम और ट्रेडिशनल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो SMS पर डिपेंड करते हैं, इस क्वांटम स्पीड अटैक के सामने फेल हो जाते हैं। यूजर्स को पता भी नहीं चलता और उनका पूरा सिक्योर डेटा और डिजिटल एसेट एक झटके में चोरी हो जाते हैं। इस नए खतरे से निपटने के लिए अब लोगों को क्वांटम रेजिस्टेंस इंक्रिप्शन और पासकीज का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। अगर आप अभी भी वही पुराने न्यूमेरिक पासवर्ड चला रहे हैं तो आपका अकाउंट इस मॉडर्न क्वांटम फ्रॉड का शिकार बहुत आसानी से बन सकता है। हैकर्स इन क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज करके ब्रूट फोर्स अटैक्स को इतना फास्ट बना देते हैं कि ट्रेडिशनल फायरवॉल्स इन्हें डिटेक्ट तक नहीं कर पाते। ये कंप्यूटेशनल पावर बैंकिंग नेटवर्क के इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को डायरेक्टली ब्रेक कर रही है, जिससे ऑटोमेटिक फंड्स ड्रेन होने का खतरा हर वक्त बना रहता है। लेकिन FM 107 पे आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं, इन स्कैमर से बन सकते हैं। लेकिन FM 107 पे आपको मिलेगा इनसे या इन स्कैमर से बचने का तरीका। सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, क्वांटम अटैक से बचने के लिए आपको अपने पुराने सिक्योरिटी सिस्टम्स को पूरी तरह बदलना होगा। सबसे पहले कन्वेंशनल न्यूमेरिक और अल्फाबेट बेस्ड पासवर्ड को छोड़कर पासकीज का इस्तेमाल शुरू करें, जो बायोमेट्रिक वैलिडेशन जैसे कि फिंगरप्रिंट्स या फेस आईडी पर काम करती है और इन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स आसानी से क्रैक नहीं कर सकते। अपने हर एक फाइनेंशियल और पर्सनल अकाउंट पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करें, लेकिन याद रखें कि SMS बेस्ड OTP के बजाय ऑथेंटिकेटर एप्स जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज का यूज करें। SMS स्पूफिंग और क्वांटम इंटरसेप्शन से ये ऑथेंटिकेटर एप्स काफी हद तक सुरक्षित

0: जिससे ऑनलाइन क्रैकिंग का खतरा जीरो हो जाता है। तो दोस्तों ये था नए जमाने के क्वांटम कंप्यूटिंग पावर्ड पासवर्ड और वॉलेट क्रैकिंग के इस फ्रॉड से बचने का तरीका। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए जमाने के नए तरीके के फ्रॉड के बारे में बात करते हुए और उसके सॉल्यूशन को जानते हुए।
1: स्कैम अलर्ट अलर्ट
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, मैं हूँ फौजी शफीक। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है कुव्वत मुदाफित या इम्यून सिस्टम। ये

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कतर स्पोर्ट्स लेजेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे कतर के मशहूर फुटबॉलर अकरम आफीफ के बारे में। अकरम आफीफ कतर के सबसे कामयाब फुटबॉलर्स में से एक हैं जिन्होंने एशियन फुटबॉल में अपना नाम रोशन किया। दोहा में पैदा होने वाले आफीफ ने अपने करियर का आगाज एस्पर अकेडमी से किया और बाद में यूरोप के क्लब के साथ भी खेलने का मौका मिला। वो इस वक्त असद और कतर नेशनल टीम के अहम खिलाड़ी हैं। अकरम आफीफ ने 2019 एशियन गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस दी जहां कतर ने पहली मर्तबा एशियन कप जीता। टूर्नामेंट में उन्होंने रिकॉर्ड एसिस दिए और एएफसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया। 2023 एएफसी एशियन कप में भी अकरम आफीफ ने जबरदस्त खेल दिखाया और फाइनल में हैट्रिक करके कतर को दूसरी मर्तबा चैंपियन बनाया। आफीफ को एशिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से शुमार किया जाता है। उन्होंने कई मर्तबा कतर स्टार्स लीग का टाइटल जीता और लीग के टॉप स्कोरर और बेस्ट प्लेयर अवार्ड्स भी अपने नाम किए। उनकी स्पीड, ड्रिबलिंग और क्रिएटिविटी ने उन्हें कतर फुटबॉल का आइकन बना दिया है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आप सबका एक बिल्कुल नए और दिल से जुड़े हुए प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां हम हर रोज की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे बड़ी प्यारी कहानियों में बदल देते हैं। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में छुपी यादें, और कभी रोड या मेट्रो के सफर की पहली एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। भाई हर शख्स के पास एक कहानी होती है और एक एहसास, एक याद जो उसके अपनी वर्चुअल डायरी का एक हिस्सा होती है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और यही वो यादें हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं। भाई एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी करीब लाती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम दोहा डायरीज, जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले में समीन हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, और आज के जो हमारे मेहमान हैं दोहा की प्रोफेशनल और सोशल हलकों में कॉरपोरेट सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर काफी दिनों से मवसलात कतर में एक तवील अरसे से अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से बात करें, एजुकेशन की अगर बात करें तो आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल किया, और वहीं आपकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में है। मजीद ये कि मार्केटिंग के साथ और बिजनेस एनालिस्ट का कीमती तजुर्बा रखते हुए इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में एक मजबूत पहचान बनाई है। सोशल और कम्युनिटी हलकों और अदबी महफिलों में एक मशहूर और मारूफ नाम। ख्वातीनो हजरात, आज के प्रोग्राम में हम मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो अपनी सलाहियतों के साथ अपनी शख्सियत से भी लोगों को मुतासर करते आ रहे हैं, जिनका नुमाया और काबिले एहतराम नाम है ख्वाजा निजामुद्दीन जुनेद, जिनको दोहा में जुनेद निजाम के नाम से जाना जाता है और आपने वाकई सुना होगा। आइए अब उनके हुजूर चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और उनका हाल चाल भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद निजाम साहब।
2: अल्लाह व बरकातहू।
1: अहलन व सहलन सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए और अपने कीमती वक्त में।
2: मैं भी ममनून और मशकूर हूँ आपकी और 107 की टीम का जो मुझे आपने इनवाइट किया है, और इट्स प्लेजर टू बी विथ यू ऑल।
1: अहलन वसहलन, वेलकम सर। और मैं दोस्तों को बता दूं, हमारे जितने सामाईन इस वक्त हमारे साथ हैं, कि ये बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड मामला है यहाँ पर। जो आप जिस तरीके से जुनेद निजाम को जानते हैं, वो आज आप बिल्कुल जैसे कि ड्राइंग रूम में बैठ के और बातें सुन रहे होते हैं चाय पे, उस तरीके से आप जुनेद निजाम को देखेंगे, जहां हम इस प्रोग्राम में दोहा के हवाले से, इनकी दोहा की जिंदगी के हवाले से बातचीत करेंगे इंशाल्लाह ताला, और किस तरीके इन्होंने मजीद कामयाबी हासिल करी और दोहा इनके लिए क्या है, इन सारी चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए बातचीत करेंगे। तो अब सवाल जवाब से शुरू करूं निजाम साहब, तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को तीन अल्फाज में डिस्क्राइब करें तो वो क्या?
2: सवाल है आपका माशाल्लाह। वैसे तो हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है, मैं कहूंगा अगर तीन लफ्ज में अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तो मैं कहूंगा कि पॉजिटिविटी, मेहनती, और मैं दोस्ती और भाईचारगी में बहुत वो रखता हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत अहमियत रखती
1: हूँ
2: पॉजिटिविटी, मेहनत और
1: इस बात की गवाही मैं भी देता हूँ अलीजान साहब। अच्छा तो ये बताइए कि दोहा में आपके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट दिन कैसे होता है या कैसे शुरू होता है? आज का दिन इंशाल्लाह आपके लिए परफेक्ट होगा।
2: हाँ, मेरे लिए तो बहुत परफेक्ट है कि मैं आपके साथ हूँ और माशाल्लाह हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने पसंदीदा उर्दू चैनल 107 जिसको हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। तो आप का जो सवाल है रिलेटेड टू परफेक्ट दिन क्या होता है, मेरे हिसाब से परफेक्ट दिन वो है किसी का भी, यानी मेरा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सुबह की शुरुआत हम्द और सना से करें और शुक्र गुजारी के साथ आप स्टार्ट कर लें और सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि हमको और एक दिन दिया है आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए और अपने आप को यानी आगे ले चलना है। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट दिन वो है जिसमें आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करते हैं और उसको प्लान एंड प्रोग्रेस, आपके डेली रूटीन को आपने कैसे प्लान करना है व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस और कैसा आपको क्या मीटिंग्स है, ये स्केड्यूलिंग तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है।
1: सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छे। चलिए एक बात और थोड़ी पर्सनल करता हूँ कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें, और जब मैंने आपसे कहना चाहिए जिद करी तो आप कैसे मान गए, क्या क्या कोई वजह थी?
2: पहले तो ये मतलब ये प्लेटफॉर्म्स पर मैं मतलब मुझे उतना मतलब यानी ओपनली यानी आना उतना वो नहीं है, मगर आपको मालूम है कि यानी नॉर्मल डे टू डे में आई एम वेरी फ्रेंडली एंड कम्युनिकेटिव पर्सन, पर मुझे जो लगा है आने की एक वजह खास ये है, मुझे लगता है हर इंसान में कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है जो वो जाहिर नहीं होती है या जाहिर होने में टाइम लगता है। अगर मेरी कहानी और मेरी जर्नी एक शख्स को भी हिम्मत, उम्मीद और मोटिवेट दे सकती है तो मेरे लिए ये बहुत खुशी का बायस होगा।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चलिए जुनेद निजाम साहब, अब हमारे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ रुख करते हैं जहां कुछ ओरिजिन स्टोरी के हवाले से मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा। तो उसमें सबसे पहले ये कि आप
2: बड़ा भारी सवाल है तो बिल्कुल यानी हम सब यानी जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम और सब हम इसीलिए आते हैं कि हम अपना बेहतर मुस्तकबिल की तरफ एक प्रोफेशनल ग्रोथ, और मेरा ये था कि साथ में नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में मैं दोहा आया था, बस अपने यानी फैमिली को मैं कैसे सपोर्ट कर सकूं, और अल्लाह का शुक्र है कि ये यहाँ बहुत कुछ सीखने और हासिल करने का मौका मिला
1: मुझे। भाई हमारी दोहा है ही जगह, हमारा कतर है ही ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कि सबके लिए सब कुछ, मैं तो हमेशा ये ही कहता हूँ। तो जब आप पहली बार यहाँ आए आपके जहन में क्या
2: थी? अगर मैं कहूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे हाँ कोई नहीं, बात बता रहा हूँ आपको बिल्कुल अपना दिल खोल कर।
1: मैं जी बिल्कुल, वही हमारे प्रोग्राम का असली मसला यही से शुरू होता
2: है। बस मेरा ये था मोटिव कि भाई मुझे मेहनत करना है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और कुछ नया सीखना है मुझे और अपनी फैमिली के लिए बेहतर जिंदगी का हम और इसमें यानी बनाऊंगा, बल्कि मुझे ये था कि मतलब कुछ ना कुछ मुझे अपने को हासिल करना है, और उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ब्लैंक था, पर वो बोलते हैं कि मतलब स्टेप बाय स्टेप होते होते अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह इस मुकाम पे पहुंचा हूं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अगर एक और सवाल करूं मैं तो एयरपोर्ट के हवाले से मेरा सवाल है अगला, तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखे और कामयाबी दे। तो ये तो नहीं था जब आप आए हैं, आप एक तवील अरसे से यहाँ मुकीम हैं, तो पहले तो दोहा एयरपोर्ट होगा गालबन, है ना, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बजाय, क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है तो दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही हम लोग आते जाते थे। तो जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकले तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था, मतलब एकदम आप कतर में जैसे?
2: आप यकीन मानिए मुझे दोहा बहुत मुनज्जम, साफ और एकदम क्लीन एंड
1: साफ, क्लीन क्या बात है, क्या बात है, यही हमारे दोहा की खासियत है वाकई जी।
2: हाँ, और साथ में एकदम से मॉडर्न शहर, बिल्कुल. और आई थिंक मैं आया था जब लैंड किया था तो शायद 9:30-10 बजे का कुछ टाइम था.
1: अच्छा, सुबह का.
2: बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि यानी मतलब हर कोई, यानी आप देख सकते हैं कि ऑफिस आवर्स वगैरह स्टार्ट हो चुका था मतलब. और उमूमन हमारे कंट्रीज में या तो बहुत ट्रैफिक होती है या नहीं तो सर आप ऑफिस के दिखते हैं. यहाँ ट्रैफिक एकदम स्मूथ, साथ में सब लोग अपने कामों पे जा रहे हैं. मैं देख रहा हूँ कि टैक्सीज बसेस तो बिल्कुल एक अलग.
1: और आज तक ऐसा ही माहौल है दूसरी जगहों से जब भी लोग आते हैं तो उनका कहना यही है कि भाई माशाल्लाह मॉडर्नाइजेशन के साथ.
2: और एक चीज में जो देखा वो डिसिप्लिन दिखा मुझे. बिल्कुल ट्रैफिक फ्लो में देख लीजिए आप, ड्राइविंग स्टाइल में देख लीजिए, मैं बस रास्ता देखता रहा.
1: सही. तो क्या ऐसा कुछ था जो आपके लिए बिल्कुल नया या सरप्राइजिंग था, मतलब ये जो आपने बात अर्ज करी है अभी,
2: और जो
1: उसके अलावा भी
2: मुझे लगा राइट फ्रॉम लैंडिंग और मैं अपने होटल तक पहुंचने तक और अपने रूम तक पहुंचने तक मुझे एक चीज बड़ी दिलचस्प लगी. ये मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट लगा मुझे, कोई एक नेशनलिटी नहीं, मल्टी नेशनल.
1: वाह, क्या सच्ची बात हो रही है. दोहा के हवाले से क्या सच्ची बात
2: कर रहे हो और आप पूरा अपना लगेज आगे बढ़ते जा रहे हो, हर हर नेशनलिटी आपको मिले. मैं समझता हूँ 10-15 नेशनलिटीज में स्टार्टिंग से एंड तक मैं देख चुका था. मतलब आप देख के भी हम अपीयरेंस भी बोल सकते हैं कि एशियन है उसमें, अफ्रीकन है.
1: और इतनी पुरानी बात हो रही है माशाल्लाह, जब से आज तक यही सिलसिला कायम है. अच्छा, तो अब ये भी बताएं जुनैद निजाम साहब के पहले दिन या पहले हफ्ते में सबसे मुश्किल कोई चीज आपको सामने आई है, लगी.
2: बस अगर मैं कहूँ पहली चीज जो मैं कभी अपनी फैमिली को छोड़ कर नहीं आता, क्योंकि अमूमन जो भी पहली आते हैं यहाँ तो फैमिली तो वहीं रहती है, हम नहीं आते ना एक बार, हर की यही कहानी होती है. तो वो जो फैमिली के बिना जो टाइम था, आई एम स्टार्टिंग जो पहला हफ्ता आप जो बोल सकते हैं, वो बहुत यानी टफ था. और ऐसा लग रहा था कि मैं वापस जाऊं या फिर मुझे फिर रोक रही थी मेरे टारगेट.
1: यही हमारे प्रोग्राम दोहा डायरीज की खासियत है, आई कैन रिलेट. और इस वक्त जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि सब रिलेट कर रहे होंगे आपकी इन बातों से. और देखिए सभी के साथ ऐसा है और माशाल्लाह आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और दोहा आपको सीढ़ी चढ़ा.
2: और मैं उसमें एक और चीज ऐड करूं ताकि आपके लिसनर्स के लिए एक हिम्मत, जो नए हमारे लोग जो आ रहे और जो
1: बिल्कुल
2: बच्चे और जो लोग यहाँ अपना मुस्तकबिल ढूंढने के लिए आते हैं, देखिए फर्स्ट आप जब आएंगे तो आपको जब बहुत मेहनत करनी है और सबर करना है मेन चीज. आपकी फैमिली दूर रहेगी आपसे, यानी मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ. मैं कभी जिंदगी में यानी फूड हमको कोई परेशानी नहीं थी, लॉन्ड्री घर में माशाल्लाह, तो आई वाज अ स्पून फीडिंग किड बोल सकते हैं आप. मगर मुझे हर चीज स्टेप बाय स्टेप, आज मैं कहीं भी दुनिया के कोने में मुझे छोड़ दीजिए मैं रह लूंगा
1: अल्हम्दुलिल्लाह. ये दोहा सिखाता है एक्चुअली, आई कैन टोटली रिलेट विद यू. क्या बात है भाई. तो ये बताएं कि आपका पहला वर्क प्लेस एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर अब हम काम के हवाले से बात करें तो.
2: जी बहुत, यानी मैं तो कहूंगा कि इतने सपोर्टिव मेरे पूरे करियर में, अभी तो माशाल्लाह 17-18 साल 20 साल का करियर मेरा
1: माशाल्लाह,
2: उसके अंदर मुझे ऐसी टीम, ऐसे मोहब्बत वाले और यानी सीनियर्स भी ऐसे कि आपको सिखा रहे हैं और हर हर चीज में आपको मेंटर कर रहे हैं और आपको नई चीज लर्निंग का अपॉर्चुनिटीज दे भी रहे हैं और फिर उसको आगे आपको माशाल्लाह उसको अपॉर्चुनिटीज देना भी बहुत बड़ी बात है. और मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स और कलीग्स मिले हैं. और
1: क्या इसका मैं अल्लाह ताला उनको हमेशा
2: शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह.

0: आते भाई। तो चलिए अब कुछ सवाल स्किप करके आगे बढ़ते हैं और अब हम जाते हैं अपनी मेमोरी बिल्डिंग की तरफ। आपके लिए दोहा का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी कुछ सवालात, क्योंकि प्रोग्राम हम आखिरी हलके में जा रहे हैं प्रोग्राम के, तो ये जवाब आपसे मैं लेना पसंद करूंगा। तो आपके लिए दोहा का मतलब क्या है?
1: अगर मैं खुले लफ्जों में कहूँ दोहा मेरे लिए क्या है, दोहा मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और दूसरा घर है।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। वर्क प्लेस या मॉल में कोई ऐसा मोमेंट जो आज भी याद हो?
1: या मुझे मतलब बहुत स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि कभी देखिए पार्किंग्स की टेंशन होती थी, कहीं अपने को जाना है, और कभी यानी मॉल्स में अगर आप कहीं जा रहे हो तो थोड़ी सी मतलब अपने को
0: क्या बात है
1: स्ट्रगल करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आप नए ड्राइवर हो, नई का, तो उसकी वजह से अपने को थोड़ा और यहाँ का एनवायरमेंट में फिट होना,
0: सही,
1: तो
0: सही,
1: मुझे
0: सही।
1: कुछ चीजें क्योंकि देखिए कल्चरल डिफरेंसेस तो है, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कल्चर में पूरे ढा गए हैं।
0: क्या और बात है,
1: तो हमारे ये है इतना
0: खूबसूरत, बिल्कुल सही है, इतना खूबसूरत के अक्वायर करने का, एक्सेप्ट करने का दिल करता है। सही।
1: और एक चीज कहूँ, पेशेंस बहुत मैं देख रहा हूँ अभी जो लोग आ रहे हैं, थोड़ी पेशेंस की कमी हो रही है, उन लोग को चाहिए कि पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीज में।
0: भाई ये सभी नए लोगों के लिए कि पेशेंस बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बना, बिल्कुल अनफिल्टर्ड?
1: बिल्कुल, कुछ मेंटर जो स्टार्टिंग में मुझे बहुत सपोर्ट किए थे, और बहुत अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मेरी सोच और कैरियर को पॉजिटिव डायरेक्शन दी माशाल्लाह, और मेरे मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, कोवर्कर्स, और तकरीबन मेरी जो कम्युनिटी के जो दोस्त अहबाब थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
0: क्या बात है भाई। आपकी डेली लाइफ का सबसे फेवरेट रूटीन क्या है दोहा में, सबसे एक एक बताइएगा चूज करके, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मेरे खुद के हैं।
1: मैं बताऊं कि मुझे फर्स्ट मॉर्निंग होते ही सुबह की कॉफी होनी पड़ती है, और मैं जब अपनी कॉफी लेके बैठता हूँ सुकून से, तो वो मुझे बहुत बहुत सटल करती है एकदम, बहुत,
0: और चार्ज भी करती है, और चार्ज भी करती है,
1: वो जरूरी है।
0: क्या बात है भाई। अगर आप अपनी जिंदगी को एक डायरी एंट्री बनाएं तो उसका टाइटल क्या होगा?
1: ओहो, मैं एक टाइटल बोल सकता हूँ कि हम एक जिंदगी में, यानी अगर एक नाम देना चाह रहे हैं डायरी एंट्री में, तो तीन मीम बोलूंगा, मीम एम यानी
0: अच्छा
1: उर्दू में,
0: अच्छा बहुत अच्छा है, क्या है वो?
1: मेहनत, मशक्कत, मुस्कुराहट का सफर।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने,
1: तीन मीम जिंदगी के,
0: मेहनत, मुस्कुराहट,
1: मशक्कत,
0: अच्छा
1: नहीं, मेहनत, मशक्कत और मुस्कुराहट का सफर।
0: क्या बात है, मेहनत, मशक्कत और मुस्कुराहट का सफर, क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह। चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फन से रिलेटेड बात भी आपसे करना चाहता हूं मैं, थोड़ा लाइट कहना चाहिए क्वेश्चन करके। क्या आपके साथ कभी कोई फनी इंसिडेंट हुए दोहा में जो यादगार रह गए हो, बड़ी हंसी आई और आज भी हंसी आती हो याद करके? एक्चुअली
1: बिल्कुल जी हाँ, शुरू में यानी कुछ प्लेसेस या जगहों के नाम प्रोनाउंस करने में बहुत तलफुज करने में यानी मुश्किल होती थी, तो उसके लिए यानी कोई दोस्त को मैं कहीं कह रहा है तो मैं कुछ हाँ, तो वो थोड़ा दोस्त वगैरह मजाक उड़ाते थे, कुछ याद रख के अभी भी पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा करते थे,
0: अभी सही
1: तो
0: बोल पा रहे हैं या नहीं?
1: हाँ बिल्कुल, अभी तो पूरा।
0: अच्छा, अगर अभी की बात करें, और आप तो माशाल्लाह मशगूल होते ही हैं मेट्रो वगैरह से, अगर मैं बात करूं तो उसकी कोई यादगार स्टोरी ऐसी जो बन गई हो या याद रहे हमेशा के लिए, मेट्रो से, मेट्रो लाइन से कोई ली हो, गलत चढ़ गए हो, या शुरू शुरू में जो प्रैक्टिस होती है, कुछ इस तरीके का शेयर करना चाहते हैं?
1: हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं बताऊं मेट्रो का फर्स्ट डे था, तो मुझे इन्विटेशन आया था कि यानी फर्स्ट डे मेट्रो का था, तो मुझे, मैं समझता हूँ 10-11 बजे उसकी ओपनिंग थी, तो हम लोग, मैं और एक मेरे दोस्त थे, तो वो इनविटेशन आया था, तो हम लोग गए वहाँ, और साहब बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, और हमको ये था कि बस हम ये, एक तो ड्राइवरलेस है वो, तो हमको डर भी लग रहा है,
0: चला कौन रहा है,
1: चला कौन रहा है, और ये डर है कि कहीं मतलब, और फीलिंग ये आ रही सामने ठहरने का, जो मौका मिला हमको वहाँ पर थोड़ी देर के बाद, भीड़ बहुत थी, तो ऐसा लग रहा था कि हम ही चला रहे हैं, डर हो रहा है। और बहुत मजा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस,
0: क्या कहने भाई, बहुत खूब, बहुत खूब,
1: यानी इनोवेशन का एक नया नमूना कहूंगा मैं, और माशाल्लाह।

0: और उसमें मजीद रूट्स बढ़ रहे
1: हैं। और माशाल्लाह अब हमारे कतर में बहुत आम बात हो गई है इनोवेशन से मुतालिक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला और तरक्की दे। अब एक बहुत खूबसूरत और जरूरी सवाल मैं समझता हूँ जो हम सब एक दूसरे से करती हैं, क्या कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपकी हेल्प की हो जो आपको याद रह गई जब आपको जरूरत पड़ी हो, जो हमारे कतर में बहुत आम है। और मैं अगर हम कतरियों की भी बात करूं तो बहुत ही यूजुअली जो सब शेयर करते हैं कि भाई गाड़ी खराब हो गई थी तो वो एकदम से वो जो कहते हैं वायर लेके आए और गाड़ी स्टार्ट करी, पानी से मुतालिक जिस तरीके से हेल्प करते हैं एक दूसरे की गर्मियों में, तो इस तरीके कुछ मोमेंट आपके साथ हुआ हो?
0: आप यकीन जानिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा है हमेशा, यानी आप ये कम्युनिटी ऐसी है, मैं बोलूंगा मैं कोई झूठ नहीं बता रहा हूँ, एक हमदर्दी बहुत है यहाँ के स्पेशली लोकल्स में। आप यानी हम बोलेंगे कि एक ही सफ में ठहर गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा,
1: ना कोई बंदा।
0: आप देखिए आप इतनी सिंपलिसिटी, कहीं आपकी गाड़ी कहीं रुक रही, आपको वहां कोई ना कोई एक दो मिनट में रुक जाएगा साहब, कोई आप कहीं अकेले ठहरे हुए कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ एक नहीं चार लोग रुक जाएंगे आपके लिए। और हम उमूमन ये देखते हैं यहाँ बहुत ज्यादा ये हेल्पिंग नेचर। आप देखिए बड़ों का अदब मैं देख रहा हूँ साहब, कहीं हम जाते हैं कहीं हमारे साथ बड़े रहते हैं, जो रेस्पेक्ट द लेवल ऑफ रेस्पेक्ट ये लोग देते हैं हमारी कम्युनिटी में जो अरब से यहाँ पर, माशाल्लाह साहब बड़ों का अदब और बच्चों से प्यार और मुस्कुराहट से मिलना,
1: क्या बात।
0: आप मॉल्स में जा रहे हैं बच्चों को ईदियां मिल रही हैं, पिछले दो हफ्ते की बात बता रहा हूँ मैं, माशाल्लाह। मतलब आप देखिए हमारे पुराने जमानों में कल्चर होता था कि बड़े बच्चों, वो चीज यहाँ है सुन्नतों को लेकर एक की हेल्प करना और बहुत हेल्पिंग नेचर।
1: मैं बहुत खूब,
0: एक इंसिडेंस तो नहीं है ये, डे टू डे लाइफ में रिपीटेड इंसिडेंस होते हैं, मैं लिस्ट कहूंगा तो आप
1: लंबी हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट का आखिरी सवाल ये कि अगर आप अपने दोहा के सफर को एक फनी टाइटल दें तो क्या होगा?
0: अगर मैं फनी टाइटल दूं उसका तो देखिए आपको भी ये चीज का एहसास होगा कि करक यहाँ बहुत मायने रखती है। तो करक चाय,
1: क्या बात,
0: दो चीज मुझे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, करक चाय और गूगल मैप्स। करक चाय और
1: मैप्स, मैप्स की बात, करक चाय और मैप्स, क्या बात है भाई। चलिए साहब अब आखिरी हमारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इमोशनल क्लोजिंग क्वेश्चन भी आपसे कर लेता हूँ। अगर आप दोहा को एक खत लिखें तो उसमें क्या लिखना चाहेंगे? आपको शौक रहा ही होगा, खैर मैं समझता हूँ कि खत ही एक जरिया भी थे दोहा से एक दूसरे को कनेक्ट करने का, जब वो लोग यहाँ आ जाते हैं तो इसका कुछ जवाब देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल जरूर, मैं अगर खत लिखूं दोहा को तो मतलब ऐसा हो सकता है टाइटल उसका, डियर दोहा शुक्रिया के तुमने मुझे सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि तजुर्बा, दोस्त, यानी इतने प्यारे लोग और जिंदगी के नए नए तजुर्बे और बहुत से खूबसूरत सबक दिया है, यानी दोहा ने मुझे दिया
1: वो
0: सबक। और जिंदगी यानी इतनी हसीन है और इतनी बेहतर और बेहतरीन हो सकती है मुझे यहाँ आके। देखिए हम आए थे यहाँ, लड़कपन था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम आए हैं और हमने एक फेस देखा है, तो मैंने दोहा से बहुत सीखा है। तो दोहा खतर एक ऐसी प्लेस है, मैं बताऊंगा कि एक बार यहाँ कोई आ जाए, एक बार आ जाए तो यहाँ का हो जाता है भाई,
1: क्या बात, क्या
0: एक बार यहाँ का हो जाए। हम यकीन मानिए आप सरवर साहब, मैं यहाँ आया था प्लान करके, हर एक का प्लान होता है कि मैं 3 साल रहूंगा यहाँ पर और इसके बाद मैं मेरा कुछ मूव कर लूंगा यहाँ से, यानी आज देखिए वैसे 3-3 साल के 3-4 सेट चले गए।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। तो जुनैद निजाम साहब, आज के नए लोगों को जो दोहा आ रहे हैं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक लैंड है अपॉर्चुनिटीज के लिए और प्रॉस्पेरिटी और पीस है यहाँ पर, तो आपके लिए ये बहुत एक ऐसा यानी दुनिया में नुमाया नाम है दोहा, यकीन मानिए आप जब तक यहाँ नहीं आता उसको एहसास नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ मैं दोहा को अल्लाह यानी इस कंट्री पर मे अल्लाह ब्लेस दिस कंट्री एंड विद मोर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस और भाईचारा और इंसानियत का एक नमूना कहूंगा मैं इसको, तो नए लोगों के लिए ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है सर।
1: क्या बात है भाई। जुनैद निजाम साहब क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में कि दोहा ने आपको ज्यादा

0: बदला या आपने दोहा को, अगर मैं इस तरीके से सवाल को रखूं?
1: साहब दोहा, दोहा ने मुझे बहुत बदला सर। मैं तो उस काबिल नहीं कि दोहा को बदल पाऊं, मगर दोहा ने मुझे बहुत सिखाया है और मैंने बहुत सीखा है यहाँ पर, और यकीन मानिए दोहा ने मुझे बहुत बदला, यानी आई कैन से लाइक 365 डिग्री बदल दिया मुझे व्हाट आई यूज्ड टू बी बैक इन 2008 and 2010 हमारे कॉलेज के लाइफ में वन ऑन। तो अब मैं, मेरे पुराने दोस्त अगर मुझे मिलेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे कि और पॉजिटिविटी के साथ माशाल्लाह बहुत, यानी मैं खुद फील करता हूँ और बहुत बदला है दुआ ने और हमको बहुत दिया है अल्लाह का फजल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह का।
0: अल्लाह का शुक्र है भाई। बहरहाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद निजाम साहब, आप मेरे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बड़ी ही सुकून की जगह में आप इस वक्त माशाल्लाह पीछे चिड़िया चहचहा रही हैं, आप कॉफी लेके मेरे साथ हैं मुझे लग रहा है इस वक्त।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहा कि कहीं बंद रूम में बैठूं, मैं मतलब नेचर का मजा लेते हुए आपको मैं आपके साथ में।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जुनैद निजाम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी जिंदगी का जो कतर का सफर है उसको हमारे साथ बड़ी खूबसूरती से शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: शुक्रिया सरवर मिर्जा साहब, और आपका और आपकी पूरी टीम का मैं ममनून और मशकून हूँ। हमेशा मैं आपके शो सुनता हूँ बड़ी दिलचस्पी से, जब भी मुझे टाइम मिल जाता है।
0: वेलकम सर,
1: और खास करके आपके जो शोज है, और आप तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग एक नए नए शोज और लाते हैं, मतलब हमारी जिंदगी में बहुत एक पार्ट ऑफ द लाइफ है आप लोग हमारे, और उर्दू को लेके चलते हैं वो बहुत बड़ी चीज है, और आप लोग की मेहनत काबिले सताइश है आप सब।
0: थैंक यू सर,
1: और शुक्रिया मुझे आपने मधु किया इस शो में, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: प्लेजर सर, प्लेजर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप सबसे भी बस इतना ही कहना है कि जिंदगी का हर सफर बहुत खास है, हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर नहीं लिखता, कहानी आप भी लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए, सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आर यू रेडी?
0: फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
5: टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं. अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरा

0: शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, एफएम 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम उस दुश्मन के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसे हम भूल जाते हैं। कुरान मजीद जब इंसान के दुश्मनों का जिक्र करता है तो सिर्फ उन दुश्मनों की बात नहीं करता जो हमें दिखाई देते हैं, बल्कि उस दुश्मन की तरफ भी मुतवज्जह करता है जो नजर तो नहीं आता लेकिन हमारी जिंदगी के हर गोशे में मुदाखलत करने की कोशिश करता है। आज की नशिस्त में हम अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर करेंगे, इन शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदूहु अदुवा। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। सामने किराम, इंसान फितरी तौर पर अपने दुश्मन को पहचानता है। अगर कोई कौम, कोई ग्रोह या कोई शख्स बार बार हमें नुकसान पहुंचाए तो हम उसके बारे में मुहतात हो जाते हैं, हम उसकी बातों पर आसानी से यकीन नहीं करते, उसकी चालों से बचने की कोशिश करते हैं और हर वक्त होशियार रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि जब दुनिया का हर इंसान अपने जाहिरी दुश्मन से खबरदार रहता है तो फिर हम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी शैतान के बारे में इतने गाफिल क्यों हो जाते हैं? कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि शैतान दुश्मन है, बल्कि हुक्म देता है कि दुश्मन को दुश्मन ही समझो, दुश्मन को दोस्त मत समझना। यानी सिर्फ मालूमात की सतह पर ही नहीं बल्कि अमली रवैया भी जरूरी है। जिस फौज को मालूम हो कि दुश्मन सरहद पर खड़ा है लेकिन वो बेफिक्री से सो जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? बिल्कुल यही मामला हमारी जिंदगी का भी है। शैतान कोई आम दुश्मन नहीं, वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से इंसान का दुश्मन रहा है। उसने अल्लाह ताला के सामने ये कहा था, मैं ज़रूर तेरे बंदों को तेरे सीधे रास्ते से बहकाने की कोशिश करूँगा। ये दुश्मन न थकता है, न छुट्टी लेता है, न रिटायर होता है। सामिन किराम, कुरान हमें बताता है कि शैतान मुख्तलिफ रास्तों से इंसान के करीब आता है। कभी गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करता है, कभी नेकी को मुश्किल बना देता है, कभी दिल में वसवसे डालता है और कभी मायूसी पैदा करता है, और कभी इंसान को इस कदर मसरूफ कर देता है कि वो अल्लाह को याद ही नहीं करता। अब जरा हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें, क्या कभी ऐसा हुआ कि इबादत का वक्त आया और अचानक सुस्ती महसूस होने लगी? क्या कभी कुरान खोलने का इरादा किया और फौरन कोई और मसरूफियत याद आ गई? क्या कभी मामूली बात पर घर में झगड़ा पैदा हो गया? क्या कभी कोई गुनाह बहुत छोटा और मामूली महसूस होने लगा? ये सब वो रास्ते हैं जिनसे शैतान इंसान के करीब आने की कोशिश करता है। सामिन किराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के खतरे को उस कदर अहम समझा कि एक मरतबा रात के वक्त अपनी ज़ौजा मोहतरमा सफ़िया रज़ी अल्लाहु अन्हा के साथ जा रहे थे। इत्तेफाकन दो सहाबा इकराम वहीं से गुजर रहे थे, जैसे ही उन्होंने आपको देखा तो जल्द ही जल्द गुजरने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, ठहरो, ये सफ़िया बिनते हुए

हम कहते हैं कि उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। अगर कोई सियासी, माशी या सामाजिक बहरान पैदा हो जाए तो हम समझते हैं कि उसके मंसूबा साज भी वही हैं। ये सोच इस हद तक बढ़ जाती है कि इंसान अपने इर्द गिर्द की हर चीज को शक की निगाह से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि वो हर वक्त निगरानी में है, हर वक्त किसी साजिश का शिकार है और हर मुसीबत के पीछे एक ही हाथ मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई दुनिया की हर बुराई के पीछे सिर्फ एक ही फरीक है? हकीकत तो ये है सामने कराम कि दुनिया में शर और फसाद के मराकज बहुत हैं, जुल्म करने वाले भी बहुत हैं, फितना फैलाने वाले भी और इंसानियत के दुश्मन भी। मुमकिन है बाज कुवतें इनमें नुमाया किरदार अदा करती हों, लेकिन वो शर का वाहिद सर चश्मा नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम हर बुराई को एक ही तरफ मंसूब कर देते हैं? उसकी वजह यह है कि इंसान अपने दुश्मन के बारे में हसास होता है। एक छोटा बच्चा भी जिसे ये मालूम हो जाए कि फलां शख्स उसका दुश्मन है, वो उससे मोहतात रहता है। फितरत सलीमा यही तकाजा करती है कि इंसान अपने दुश्मन के बारे में बेदार रहे। आखिर कोई अकलमंद शख्स बिच्छू से शहद की तवक्को तो नहीं रखता। सामने कराम, ये तमाम गुफ्तगु दरअसल किसी सियासी या जमीनी दुश्मन के बारे में नहीं है। दरअसल इस गुफ्तगु में हम आपकी तवज्जो शैतान की तरफ दिलाना चाहते हैं। अब चूंकि शैतान हमारी नजरों से ओझल है और हमारा जदीद दौर उन हकायक से दूर होता जा रहा है जो तजुर्बा गाहों में नापे या तोले नहीं जा सकते, लेकिन समझने वाली जात एक है जरूर। अल्लाह तो जरूर जानता है, और जब अल्लाह जानता है तो फिर किसी और के जानने ये जानने से क्या फर्क पड़ता है? कुरान हमें कहता है, हम इस्लाह करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करते। गौर कीजिए, अल्लाह ने यहाँ इस्लाह करने वालों का जिक्र किया है, यानी हर इंसान अपने दायरे में मुसलह बन सकता है। अपने घर में इस्लाह करें, अपने बच्चों में अच्छे अकदार पैदा करें, अपने दोस्तों को खैर की तरफ बुलाएं, अपने माहौल में अच्छाई फैलाएं। शायद दुनिया इसको मामूली समझे, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये अजीम अमल है। कुरान हमें मजीद एक और हैरत अंगेज हकीकत बताता है कि अल्लाह के रास्ते में लगने वाली प्यास, थकन, भूख और हत्ता के उठाया जाने वाला हर कदम भी महफूज किया जाता है। छोटी छोटी तकलीफें भी जिन्हें शायद खुद इंसान भूल जाए, अल्लाह के यहाँ लिखी जा रही होती हैं। आप किसी नेकी के लिए घर से निकलते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, वक्त निकालते हैं, अपनी राहत कुर्बान करते हैं। शायद आपको लगे कि ये तो मामूली बात है, कौन देख रहा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये मामूली नहीं। अल्लाह हर लम्हे को शुमार कर रहा है, हर कदम को महफूज कर रहा है, हर नियत को जानता है, और इसी का ऐलान उसने इस आयत के जरिए किया है, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाय नहीं करता। तो सामिन किराम, तक्वा इख्तियार कीजिए, सबर इख्तियार कीजिए, इखलास के साथ नेकी करते रहे, नतायज के बारे में बेचैन न हो, क्योंकि मोमिन का काम बीज बोना है, फल देना अल्लाह का काम है। इसीलिए मिसाल के तौर पर मैंने बिच्छू का जिक्र किया है जो दिखाई देता है और जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। याद रखिए, आपका दुश्मन कभी झूठी मजलूमियत का लिबादा ओढ़ सकता है, लेकिन वो फिर भी आपका दुश्मन ही रहता है। वो जमीन भर में अमन, रवादारी, बकाए बाहमी और शहरी हुकूक के खूबसूरत नारे बुलंद कर सकता है, लेकिन इससे उसकी हकीकत नहीं बदलती। वो ये दावा भी कर सकता है कि उसे आप और आपके खानदान की खुशहाली और भलाई के सिवा कुछ मतलूब नहीं, मगर उसके बावजूद वो आपका दुश्मन ही रहता है।

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे कतर के मशहूर फुटबॉलर अकरम आफीफ के बारे में। अकरम आफीफ कतर के सबसे कामयाब फुटबॉलर्स में से एक हैं जिन्होंने एशियन फुटबॉल में अपना नाम रोशन किया। दोहा में पैदा होने वाले आफीफ ने अपने करियर का आगाज अस्पर अकेडमी से किया और बाद में यूरोप के क्लब के साथ भी खेलने का मौका मिला। वो इस वक्त असद और कतर नेशनल टीम के अहम खिलाड़ी हैं। अकरम आफीफ ने 2019 एएफसी एशियन गेम्स में शानदार परफॉर्मेंस दी जहां कतर ने पहली मर्तबा एशियन कप जीता। टूर्नामेंट में उन्होंने रिकॉर्ड एसिस दिए और एएफसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया। 2023 एएफसी एशियन कप में भी अकरम आफीफ ने जबरदस्त खेल दिखाया और फाइनल में हैट्रिक करके कतर को दूसरी मर्तबा चैंपियन बनाया। आफीफ को एशिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से शुमार किया जाता है। उन्होंने कई मर्तबा कतर स्टार्स लीग का टाइटल जीता और लीग के टॉप स्कोरर और बेस्ट प्लेयर अवार्ड्स भी अपने नाम किए। उनकी स्पीड, ड्रिबलिंग और क्रिएटिविटी ने उन्हें कतर फुटबॉल का आइकन बना दिया है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत।

होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, मैं हूँ फौजी शफीक। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है कुव्वत मुदाफ़त या इम्यून सिस्टम। ये हमारे जिस्म का कुदरती दिफाई निज़ाम है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों, वायरसेस और इन्फेक्शन से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। बहुत से अफराद ये सवाल करते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बना सकते हैं। लकीली इसके लिए चंद बहुत ही सादा मगर मौसर आदात अपनाना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। सेहतमंद इम्यून सिस्टम की बुनियाद मुतवाजन ग़िज़ा है। रोज़ाना अपनी खुराक में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और अनाज और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल कीजिए। खसूसन माल्टे, किन्नू, लीमू, अमरूद और बेरीज जैसे फल विटामिन सी फ्राहम करते हैं जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम की कारकर्दगी में बेहतर किरदार अदा करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसके अलावा कैरेट्स, शिमला मिर्च और ब्रोकली भी जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करते हैं। पानी जिस्म के हर निज़ाम के लिए ज़रूरी है। मुनासिब मकदार में पानी पीने से जिस्म से फाजिल मादे खारिज होते हैं और जो हमारे सेल्स हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। याद रखिए कि बाज़ औक़ात थकन और कमज़ोरी की वजह सिर्फ पानी की कमी भी हो सकती है। रोज़ाना की वॉक, हल्की एक्सरसाइज या किसी भी किस्म की जिस्मानी सरगर्मी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और इस तरह हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी कारकर्दगी को सहारा देती है। ज़रूरी नहीं कि मुश्किल एक्सरसाइज करें, रोज़ाना 30 मिनट की तेज़ जो वॉक है वो भी मुफीद साबित होती है। इम्यूनिटी के लिए चंद ग़िज़ाई अज्ज़ा ख़ास अहमियत रखते हैं जिनमें विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, आयरन और प्रोटीन शामिल हैं। ताहम याद रखिए कि सप्लीमेंट या विटामिन्स की जो टैबलेट हैं सिर्फ ज़रूरत और फिर डॉक्टर के मशवरे के तहत इस्तेमाल करनी चाहिए। बैलेंस डाइट अमूमन इन ग़िज़ाई अज्ज़ा का बेहतरीन ज़रिया है। मुसलसल ज़हनी दबाव ना सिर्फ ज़हनी सेहत बल्कि जिस्मानी दिफाही निज़ाम पर भी मनफी असर डाल सकता है। दुआ, ज़िक्र, एक्सरसाइज, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना और जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लेना ज़हनी सुकून और बेहतर सेहत में मददगार साबित होता है। मजबूत कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी किसी एक ग़िज़ा या जादुई नुस्खे से हासिल नहीं होती बल्कि सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, मुतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब नींद, बाकायदा एक्सरसाइज और ज़हनी सुकून का मजमूआ है। आज ही अपनी रोज़मर्रा आदात का जायज़ा लीजिए और सेहतमंद इंतखाब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।

या तो फाइल में बंद हो जाते हैं या किसी ड्रॉअर में चले जाते हैं या कभी कभी सीधा वेस्ट बिन में फुफ। और फिर सेम चीज हर ऑफिस, हर डॉक्यूमेंट और हर ट्रांजेक्शन के साथ रिपीट होती चली जाती है। आप थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं भाई। देखो पेपर हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मैं मानती हूँ। रिसिप्ट हो गई, बिल्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, नोट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब पेपर का अननेसेसरी यूज होता है। हर पेपर बनाने के लिए दरख्त काटे जाते हैं, पानी इस्तेमाल होता है और एनर्जी कंज्यूम होती ही होती है। यानी एक सिंपल प्रिंट या फोटोकॉपी के पीछे काफी नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं भाई। देखिए अब इको स्विच यहाँ क्या है, इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। आइडिया बड़ा सिंपल है, आइडिया बहुत सिंपल है, सिंपल सा। जहाँ पॉसिबल हो पेपर की जगह डिजिटल ऑप्शंस यूज करें। इसे कहते हैं पेपरलेस लाइफस्टाइल। यानी जहाँ आप डॉक्यूमेंट्स, नोट्स और कम्युनिकेशन को डिजिटल फॉर्म में मैनेज कर सके। अब बात करते हैं कि पेपरलेस लाइफस्टाइल कैसे हेल्प करता है। देखिए सबसे पहला फायदा वही वाली बात है, दरख्त लगाओ, दरख्त बचाओ। जितना कम पेपर यूज होता है उतने कम ट्रीज काटे जाते हैं जो एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा फायदा है वेस्ट रिडक्शन। देखिए पेपर वेस्ट लैंडफिल्स में जाता है और जगह ऑक्यूपाई करता है, पेपरलेस अप्रोच इस वेस्ट को रिड्यूस करती है। तीसरा फायदा है हमारा कन्वीनियंस ना। देखिए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इजीली स्टोर, सर्च और शेयर किए जा सकते हैं, आपको फाइल्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती। चौथा फायदा क्या है, एफिशिएंसी है भाई, काम फास्टर हो जाता है। इजीली ऑफिस और स्कूल्स में जहां डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है वहां पे काम बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से होता है। अच्छा अगर इसकी एक और रिलेटेबल एग्जांपल ली जाए ना, तो जरा सोचें आप स्टूडेंट हैं या आप ऑफिस वर्कर हैं, आपके पास 10 डिफरेंट नोटबुक्स हैं और हर जगह नोट्स स्कैटर्ड हुए हैं। अब अगर वही नोट्स आप मोबाइल या लैपटॉप में ऑर्गेनाइज करें तो आपको सब कुछ एक क्लिक पर मिल जाता है। या फिर वो जो रिसिप्ट्स और बिल्स होते हैं ना, है ना, हाँ, यानी कि हर चीज फिजिकल फोल्डिंग में स्टोर करने के बजाय ईमेल्स या एप्स में सेव्ड हो। देखिए दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में जहाँ डिजिटल सिस्टम्स ऑलरेडी काफी एडवांस हैं, बैंक्स, स्कूल्स और ऑफिसेज ग्रेजुअली डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी ये लाइफस्टाइल सिर्फ फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट रियलिटी भी बन चुका है। अच्छा अगर कुछ टिप्स के बारे में बात करूं, प्रैक्टिकल टिप्स, तो भाई बिल्स को ईमेल्स पर रिसीव करें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ये जो आपके मोबाइल बिल्स को आप पेपर की बजाय डिजिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि नोट्स ऐप यूज करें, शॉपिंग लिस्ट हो गई, आइडियाज या रिमाइंडर्स जो हो गए वो अपने मोबाइल में लिख लें कहीं, उसे आदत बनाएं। डॉक्यूमेंट स्कैन करें, इंपॉर्टेंट पेपर्स को स्कैन करके क्लाउड स्टोरेज में सेव करें। चौथी चीज है ऑनलाइन फॉर्म्स प्रेफर करें, जहां भी ऑप्शन हो फिजिकल फॉर्म्स के बजाय आप ऑनलाइन सबमिशंस यूज करें। प्रिंटिंग अवॉइड करें, सिर्फ जरूरत हो तब प्रिंट करें और डबल साइडेड प्रिंटिंग यूज करें भाई, अगर प्रिंट करना ही है तो डबल साइडेड करो ना। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक सिंपल पेपर शीट बनाने के लिए वाटर और एनर्जी दोनों यूज होते हैं। अगर हम अननेसेसरी प्रिंटिंग कम कर देते हैं तो हम इनडायरेक्टली मल्टीपल रिसोर्सेज सेव कर रहे होते हैं और ये सेविंग्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि लार्ज स्केल पर भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो साथियों जब आप पेपरलेस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपके पास क्लटर कम होता है, स्पेस बेटर यूटिलाइज होती है और मेंटल लोड भी रिड्यूस होता है। डिजिटल सिस्टम्स आपको कंट्रोल और क्लैरिटी दोनों देते हैं। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, जहाँ पॉसिबल हो पेपर की जगह डिजिटल ऑप्शंस यूज करें। और भाई आज का चैलेंज भी है हमारे पास, आज से कम अज कम एक चीज चूज करें जो आप डिजिटल, जिसे कह सकें डिजिटल है, पेपर से शिफ्ट कर जाएं, जैसे नोट्स हो गए, बिल्स हो गए, रिमाइंडर्स हो गए। और अगर आप ऑलरेडी पेपरलेस हैं तो किसी और को इनकरेज करें कि वो भी आपके वाली हैबिट अपनाए। तो भाई साथियों पेपरलेस लाइफस्टाइल सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन है। जब हम कम पेपर यूज करते हैं तो हम सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बढ़ाते बल्कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हर डिजिटल चॉइस एक दरख्त को बचाने के बराबर है साथियों। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है सबर। सबर एक ऐसी खूबी है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। जिंदगी में हर इंसान को आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो शख्स सबर करता है अल्लाह उसे पसंद करता है। सबर का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना और हिम्मत से वक्त गुजारना है। कभी कभी हम फौरन रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। हर तकलीफ के बाद आसानियां छुपी होती हैं। आज का अमल ये है कि जब भी कोई छोटी या बड़ी परेशानी आए, फौरन रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचें और दिल से दुआ करें। सबर करने वाला कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है।

0: का मैसेज आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बरा का FM 107 पर. मैं हूं आरजे मावश. कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
3: आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं वाटर कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन. पानी बचाना जिंदगी बचाना. पानी जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन दुनिया में फ्रेश वाटर लिमिटेड होता जा रहा है. सस्टेनेबिलिटी का एक अहम गोल पानी का स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल यूज है. इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि पानी के बिना जिंदगी मुकम्मल ही नहीं है, ना एग्रीकल्चर और ना हमारा खुद का एग्जिस्टेंस. अगर आज हम पानी जाया करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन सीवियर शॉर्टेज का सामना करेंगी. इस टॉपिक की रेलेवेंस आज और बढ़ जाती है जब क्लाइमेट चेंज की वजह से रेन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं. गल्फ जैसे रीजन्स में पानी की अहमियत और भी ज्यादा है. ऐसे में आपका और हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये बनता है कि जो टैप्स हैं उनमें पानी जाया ना करें, उन्हें बंद रखें. जितनी जरूरत है बस उतना ही इस्तेमाल करें, अननेसेसरी वेस्ट ना करें और इफिशेंट अप्लायंसेस यूज करें. अवेयरनेस फैलाएं, बढ़ाएं. पानी बचाना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज की हिफाजत ही कल को बेहतर कर सकेगा. आज की हिफाजत ही कल की जिम्मेदारी बनेगी. तो आज इस जिम्मेदारी को समझें और भरपूर तरीके से निभाएं. देखिए, कतर का नेशनल विजन जो है 2030, वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी का एक शेयर्ड विजन है. जब गवर्नमेंट, बिजनेस और सिटीजंस एक ही गोल के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, प्राइवेट सेक्टर जॉब और इनोवेशन लाते हैं और सोसाइटी वैल्यूज और कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सपोर्ट इसी टीम वर्क की मिसाल है. शेयर्ड विजन ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है. हर स्टेक होल्डर को अपना रोल पता होता है, जिससे डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन कम हो जाता है. सो वन स्टेप टू 2030 ये दिखाता है कि जब सब एक डायरेक्शन में कदम उठाते हैं तो विजन सिर्फ लिखी हुई सोच नहीं रहता, बल्कि एक लिविंग रियलिटी बन जाता है. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
2: One step to 2030.

यार ये कंप्यूटर बड़ा स्लो हो गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। वेल, इस प्रोग्राम में आज मैं बात करने वाला हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो गया है। ये स्कैम हो सकता है आम तौर पर मोबाइल वालों के साथ ना होता हो सकता है कि आपके पास डायरेक्ट कॉल ना आती हो, लेकिन ये एक अलग तरीका है। जिनके पास सिस्टम है, जो सिस्टम में काम करते हैं, जो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, ये स्कैम उनके साथ होता है और ये बहुत बड़े लेवल पे स्कैम चल रहे हैं। स्कैम अलर्ट। हम सबको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ऑब्वियसली जो भी उसमें प्रॉब्लम है, अगर धीमा चल रहा है, डिवाइस का कोई इशू है, और ये सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस को सिक्योर करता है, लेकिन स्कैमर्स इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको और जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उनको ट्रिक कर लें, ताकि कुछ पैसे और पर्सनल इंफॉर्मेशन हथियाया जा सके। इमेजिन आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, और फिर आपको बिल्कुल से एक पॉपअप अपीयर होता है आपके कंप्यूटर पे कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है और ये अर्जेंटली आपको अपडेट करना होगा। आपको ये कन्विंसिंग लगता है, ऑफिशियल लगता है, क्योंकि उसमें कंपनी का लोगो होता है और इवन काउंटडाउन टाइमर भी होता है, ताकि आपको ज्यादा सोचने का वक्त न दे। कई केसेस में ये पॉपअप असली नहीं होते, रियल कंपनी के नहीं होते, और ये एक स्कैमर होता है जो आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है। एंड वंस यू क्लिक, आप ऑलरेडी फेक वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं और एक ये मलिशियस डाउनलोड आपको दिखाता है, जिसे आप डाउनलोड करते हैं और ये आपके डिवाइस को इन्फेक्ट करता है वायरस से, रैंसमवेयर से।

लेकिन जहां आपने क्लिक करा आपकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी वो अपने पास रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके डिजिटल अरेस्ट का स्कैम भी कर सकते हैं आपके साथ। तो ऐसे में कभी भी किसी को कंप्यूटर एक्सेस मत दें। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वीडियोस होती हैं, फोटोज होती हैं, जो कि आपकी पर्सनल है, बहुत ज्यादा पर्सनल है। कैसे बचना है इसके बारे में कर लेते हैं बात। तो कैसे बचना है, हाउ टू बी सेफ, अपने आप को कैसे सेफ रखें, कंप्यूटर को कैसे बचा के रखें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे बचा के रखें। हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऐप को अप टू डेट रखें, लेकिन मेक श्योर कि वो अप टू डेट जो आप रख रहे हैं, जो एंटीवायरस डाल रहे हैं, वो ऑफिशियल चैनल से हो। यूज रिलायबल एंटीवायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए। एक अच्छा एंटीवायरस आपको फेक अपडेट्स से बचा सकता है, और इवन अगर आप क्लिक भी करेंगे तो भी उस पर काम नहीं करेगा, फेक क्लिक पर काम नहीं करेगा, फेक पॉपअप पर काम नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू थिंक कि आप स्कैम हो भी गए हैं तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें, इंटरनेट बिल्कुल से हटाएं और एक फुल वायरस स्कैन करें अपने सिस्टम में। बेटर कि आप सेफ रहें। स्कैमर्स एक बहुत अच्छी ट्रिक अपनाते हैं जिसमें मोस्टली फंस जाते हैं लोग, और वो है कि वो आपको जल्दी क्विकली एक्ट करने के लिए कहते हैं विदाउट थिंकिंग। आप जल्दी और गलत फैसला लेते हैं, इस बात का इस्तेमाल किया जाता है। तो गलत फैसला बिल्कुल नहीं लेना है और कंपनी लेजिटिमेट होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी जल्द ही एक नए और खतरनाक स्कैम के साथ जिसमें हम आपको करेंगे अपडेट। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ। छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्टेन द फ्यूचर। ये एक नया शो है जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ न्यू आइडियाज, सॉल्यूशंस और इंस्पिरेशन हर हफ्ते, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपनी खूबसूरत जमीन को। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में।
0: टॉपिक ऑफ द डे,
1: द प्लास्टिक प्रॉब्लम। किस तरह से ये प्लास्टिक कन्वीनियंस से हमारे लिए तबाही बन चुका है। प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि हम अक्सर इसके असरात पर सोचते भी नहीं। प्लास्टिक बैग, खाने की पैकिंग और वो तमाम मसनूआत जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो इतनी बड़ी सहूलत बन गई है, कैसे एक आलमी बहरान में बदल गया? और सबसे अहम सवाल ये है कि हम इस बहरान का हल कैसे निकाल सकते हैं। आज के शो में हम तफसील से जानेंगे कि प्लास्टिक पोल्यूशन इतना बड़ा मसला कैसे बन गया कि हम अब मजीद इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ शॉकिंग फैक्ट्स और स्टैट्स जो आपको दोबारा सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे, जो आप रोजाना अपनी जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, क्या आप जानते हैं कि हर साल 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक हमारे ओशंस में दाखिल हो रहा है, और ये इक्विवेलेंट है गार्बेज ट्रक ऑफ प्लास्टिक के, जिसको डंप किया जाता है ओशियन में हर एक मिनट। इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा तबाहकुन है हमारी मैरीन लाइफ के लिए, इकोसिस्टम के लिए और इवन ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। लेकिन फिक्र ना करें, हम सिर्फ मसला नहीं देखेंगे बल्कि हल भी देंगे। मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना कर प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकते हैं, चाहे वो रीयूजेबल बैग का इस्तेमाल हो या फिर माहौलियाती तौर पे दोस्ताना मुतबल। हम सबसे छोटे कदमों से फर्क ला सकते हैं। इस शो में हमारे कुछ बहुत ही खास सेगमेंट्स हैं, ग्रीन फ्लैश, जिसमें हम आपसे लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी न्यूज शेयर करेंगे पूरी दुनिया से। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन और दीगर जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनसे लड़ा जा रहा है। इको लिविंग टिप्स देंगे, ये कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस होंगी कि किस तरह से हम एक ग्रीनर लाइफ की तरफ जा सकते हैं, कि छोटे छोटे से और सादा से चेंजेस जिसके थ्रू हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो सकता है। इसके साथ ही हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है जहाँ पे हम सुनेंगे कुछ एक्टिविस्ट चेंज मेकर्स की आवाज, जो दुनिया भर में कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने के लिए। और हाँ, हमें आपसे भी बात करनी है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें @FM107Qatar, और अपने ख्यालात और सवालात व्हाट्सएप पर हमारे नंबर 6622107 पर भेजें। हम आपके मैसेजेस अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। तो याद रखिए, चेंज स्टार्ट होता है छोटे छोटे से स्टेप से, और ये स्मॉल स्टेप ही बिग इम्पैक्ट की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। तो चलिए आज का शो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त जाए किए, और अपने प्लैनेट को क्लीनर, ग्रीनर और एक बेटर प्लेस बनाते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए।
0: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: जब से प्लास्टिक हमारी लाइफ का हिस्सा बना है, ये चीज हमारे लिए काफी कन्वीनियंट है। हमारी घर से लेकर ऑफिस तक, शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्टोरेंट्स तक, प्लास्टिक हर जगह है। हम सोचने की कोशिश भी नहीं करते कि हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो हर चीज में शामिल है, चाहे वो हमारे डेली आइटम्स हो या मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का हिस्सा। इसकी मकबूलियत उस वक्त बढ़ी जब ये काफी कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव साबित हुआ। प्लास्टिक का इस्तेमाल 20th सेंचुरी के आखिर तक इतना कॉमन हो गया कि आज के दौर में हम इसे अपने हर एरिया में यूज करते हैं। प्लास्टिक की हिस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1907 में लियो बैकलैंड ने बैकलाइट बनाया था, जो पहला सिंथेटिक प्लास्टिक था। उस वक्त से लेकर आज तक प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन काफी तेजी से बढ़ा है। इनिशियली प्लास्टिक को एक रेवोल्यूशनरी मटेरियल समझा गया, जो हर चीज को बेहतरीन बना सकता था, जैसे पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। लेकिन टाइम के साथ इसके ज्यादा इस्तेमाल ने नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करना शुरू कर दी। प्लास्टिक का यूज हर फील्ड में बढ़ता गया, फ्रॉम फूड पैकेजिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रॉम टॉयज टू फर्नीचर, प्लास्टिक हर जगह है। आज की दुनिया में हम ऑलमोस्ट हर चीज प्लास्टिक में देखते हैं, चाहे वो बॉटल्स हों, बैग्स, पैकेजिंग, टॉयज हों, हर चीज के साथ प्लास्टिक का कनेक्शन मस्ट हो गया है। प्लास्टिक की मकबूलियत काफी तेज रफ्तारी से हुई, जो कि इसकी कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी की वजह से था। जब प्लास्टिक ने मार्केट में एंट्री की थी, तो लोगों ने इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मटेरियल समझा था। आज के वक्त में प्लास्टिक का यूज किसी भी प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिवली बनाने के लिए होता है। प्लास्टिक के इस्तेमाल ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को काफी रिड्यूस किया है, जिससे कई चीजों की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई है। बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे फूड पैकेजिंग, कंज्यूमर गुड्स और हेल्थ केयर ने प्लास्टिक को अपना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, फूड पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज प्रोडक्ट को सेफली स्टोर करने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। प्लास्टिक कंटेनर्स, बॉटल्स और फूड रैपर्स ने कंसेप्शन और स्टोरेज को काफी इफिशियंट बनाया है। इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस में भी प्लास्टिक का यूज होता है, जो कि स्टरलाइज्ड और रीयूजेबल होता है। जब पहली बार प्लास्टिक की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो लोग इसको एक इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक मटेरियल समझते थे। इनिशियल स्टेजेस में प्लास्टिक को बाद में रिप्लेस करने की कोई सोच नहीं थी। प्लास्टिक की प्रोडक्शन का ग्रोथ बहुत तेज हुआ और 20th सेंचुरी के दौरान इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मटेरियल्स इन द वर्ल्ड। प्लास्टिक का प्रोडक्शन मेनली पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल के जरिए होता है, जो एनवायरनमेंट पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। 1900s के दौरान प्लास्टिक का यूज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एज अ चीप और वर्सटाइल मटेरियल पॉपुलर हुआ। लेकिन 21st सेंचुरी तक आते आते हमने देखा कि प्लास्टिक वेस्ट के इम्पैक्ट काफी सीरियस हो गए हैं। प्लास्टिक का कंजप्शन बहुत बढ़ गया था, लेकिन इसकी वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम उतनी जल्दी इवॉल्व नहीं कर पाई। आज के वक्त में प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल हिस्सा बन गया है। हर चीज में प्लास्टिक होता है, टॉयज, पैकेजिंग, फर्नीचर और एवरीडे आइटम्स जैसे बैग्स, स्ट्रॉस और बॉटल्स। हर कॉर्नर में, हर जगह में प्लास्टिक का होना जरूरी है, जो कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। कहीं पर भी हम सोच नहीं पाते कि हम किस चीज में प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, लेकिन वो हर चीज में छुपा होता है। इस वाइड स्प्रेड यूज ने एक नया इशू क्रिएट किया है, प्लास्टिक वेस्ट। हर जगह प्लास्टिक का वेस्ट मिलता है, लैंडफिल्स हो, ओशियंस हो या रिवर्स। हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी तेजी से इंक्रीज किया है, लेकिन इसके डिस्पोजल और रिसाइकलिंग के मेथड उतने इफेक्टिव नहीं हो पाए हैं। इन सभी फैक्टर्स ने प्लास्टिक की प्रॉब्लम को इतना सीरियस बना दिया है कि आज हम इसके एनवायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट पर बात कर रहे हैं। प्लास्टिक की मकबूलियत का मेन रीजन उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और वर्सटाइलिटी थी। जब प्लास्टिक मार्केट में आया, तो उसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होना शुरू हो गया। कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से प्लास्टिक ने जल्द ही अपना प्लेस सिक्योर किया, क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का कॉस्ट काफी कम हो गया। प्लास्टिक का यूज इनिशियली कन्वीनियंस के लिए भी होता था। फॉर एग्जाम्पल, फूड पैकेजिंग में प्लास्टिक की एंट्री से प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो गई थी। प्लास्टिक का यूज मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मेडिकल सप्लाईज लाइक सिरिंजेस, आईवी बैग्स और सर्जिकल टूल्स प्लास्टिक के ही बनाए जा रहे थे। इससे इन्फेक्शन रिस्क भी कम हुए, क्योंकि प्लास्टिक को इजीली स्टरलाइज किया जा सकता था। प्लास्टिक ने मैन्युफैक्चरिंग को सिंप्लीफाई किया था। इसके फ्लेक्सिबल और लाइट वेट नेचर की वजह से इसे इजीली मोल्ड किया जा सकता था और डिफरेंट शेप्स में और साइज में प्रोड्यूस भी किया जा सकता था। ये प्लास्टिक की मेन स्ट्रेंथ थी। प्लास्टिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव था। जहां दूसरे मटेरियल्स जैसे ग्लास और मेटल एक्सपेंसिव थे, प्लास्टिक ने एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया। पैकेजिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक की कॉस्ट इफेक्टिवनेस ने काफी इम्पैक्ट डाला। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक बॉटल्स और कंटेनर्स ने ग्लास और मेटल के अल्टरनेटिव्स को रिप्लेस किया। ये मटेरियल्स लाइट वेट और ड्यूरेबल होते हैं, जो शॉपिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक का यूज बहुत कॉमन हो गया है। प्लास्टिक का यूज हर चीज में हो सकता था, फ्रॉम फर्नीचर टू इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टू मेडिकल डिवाइसेस। प्लास्टिक ने इन सब इंडस्ट्रीज को इनोवेटिव बनाया और प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल बनाया। डेली आइटम्स में भी प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा होता है, फ्रॉम प्लास्टिक कटलरी टू बैग्स, फ्रॉम टॉयज टू किचनवेयर। प्लास्टिक ने हर चीज को इजी और अफोर्डेबल बना दिया। कन्वीनियंस के नाम पर प्लास्टिक ने जिंदगी को इतना सिंप्लीफाई कर दिया था कि लोग उस पर रिलाय करने लगे। लेकिन ये कन्वीनियंस एक टाइम के बाद एक प्रॉब्लम बन गई। प्लास्टिक का यूज आज की मॉडर्न कन्वीनियंसेस में बहुत कॉमन है। फूड पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल सप्लाईज, सब में प्लास्टिक का रोल एसेंशियल है। प्लास्टिक ने फूड पैकेजिंग को सिक्योर और सेफ बनाया और हमारे प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया। फॉर इंस्टेंस, प्लास्टिक पैकेजिंग ने प्रोडक्ट्स को कॉन्टेमिनेशन से बचाया और उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर दी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लास्टिक का यूज और भी ज्यादा हुआ। गैजेट्स जैसे फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल उनके डिजाइन को इन्हेंस करता है। प्लास्टिक के लाइट वेट नेचर की वजह से डिवाइसेस पोर्टेबल और इजी टू हैंडल हो जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफर बनाया, क्योंकि प्लास्टिक ने इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को मिनिमाइज किया। मेडिकल इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक रेवोल्यूशन लेकर आया। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, सर्जिकल ग्लव्स और आईवी बैग्स ने हॉस्पिटल्स में हाइजीन स्टैंडर्ड को बेहतर किया। प्लास्टिक का यूज मेडिकल डिवाइसेस को स्टरलाइज करने और पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्लास्टिक की कन्वीनियंस ने एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया। लोग समझने लगे कि प्लास्टिक का यूज तमाम चीजों में करना कन्वीनियंट और सेफ है, लेकिन ये ओवर रिलायंस का सबब बन गया। प्लास्टिक ने इनिशियली कन्वीनियंस प्रोवाइड की थी, लेकिन ओवर द टाइम हमने प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा कर दिया है कि अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स सामने आने लगे हैं। जब प्लास्टिक का यूज इतना कॉमन हो गया, तो लोग इसे रिप्लेस करने के लिए अल्टरनेटिव मटेरियल्स या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं सोच पाए। जैसे हम प्लास्टिक को डिस्कार्ड करते हैं, वही प्लास्टिक का वेस्ट एनवायरनमेंट में जमा हो जाता है। ये ओवर रिलायंस हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन गया है। प्लास्टिक ने हमारी कन्वीनियंस को तो बढ़ाया, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचाया। प्लास्टिक की कन्वीनियंस के साथ एक हिडन कॉस्ट भी होती है, जो हमने बहुत देर तक इग्नोर की। जब हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो हम एनवायरनमेंट पर बर्डन डालते हैं। प्लास्टिक का ब्रेकडाउन होने में बहुत टाइम लगता है, और जब ये लैंडफिल्स और ओशियंस में जाता है, तो ये वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को डैमेज करता है। प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन प्रोसेस काफी स्लो होता है, ये इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, और जब प्लास्टिक वेस्ट एनवायरनमेंट में जमा हो जाता है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए एक क्राइसिस बन जाता है। ये वेस्ट मैरीन लाइफ को डायरेक्टली थ्रेट देता है, क्योंकि प्लास्टिक पार्टिकल्स एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए जो कन्वीनियंस हम प्लास्टिक से एक्सपेक्ट करते हैं, वो अल्टीमेटली एक कॉस्ट अफेयर बन जाता है, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न के फॉर्म में सामने आता है। अब आपसे मैं कुछ नंबर्स शेयर करती हूँ. अकॉर्डिंग टू अ 2023 रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, हर साल दुनिया भर में 430 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है और इसमें से ऑलमोस्ट 60% सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब एक बार यूज करो और फेंक दो. लेकिन ये प्लास्टिक कहाँ जाता है? लैंडफिल्स में, रिवर्स में, ओशियंस में और कभी कभी तो हमारी खाने की प्लेट तक में, माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में. लेट्स पेंट अ पिक्चर. आप जब बाजार जाते हैं, एक प्लास्टिक बैग में फ्रूट्स या ग्रॉसरीज लाते हैं, वो बैग शायद एक घंटे के लिए यूजफुल है, लेकिन डीकम्पोज होने में इसे 500 से 1000 साल लग सकते हैं. और जब ये डीकम्पोज होता है तो ये छोटे छोटे पीसेस माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाता है जो फिश, बर्ड्स और इवन ह्यूमंस के बॉडीज में एंटर हो जाता है. अब सवाल ये है कि वाई इज सस्टेनेबिलिटी सो इम्पॉर्टेंट? प्लास्टिक पोल्यूशन ने ना सिर्फ एनवायरनमेंट को हार्म किया

0: अब टाइम है हमारे ग्रीन फ्लैश सेगमेंट का, जहां हम आपको दुनिया भर की सस्टेनेबिलिटी न्यूज से अपडेट करते हैं। Here are this week's top 3 stories, जो हमारे प्लैनेट के लिए बहुत इंस्पायरिंग हैं।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: पहली खबर आती है इंडोनेशिया से। 2025 में इंडोनेशिया ने अपने रिवर्स और कोस्टल एरियाज से 1 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किया है। ये स्टेप लोकल कम्युनिटीज और वॉलंटियर्स की कोलैबोरेशन का नतीजा है, और इसी तरह हम कम्युनिटी ड्राइव एंड क्लीन अप एफर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी खबर है यूरोप से। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक नया लॉ पास किया है, तो 2030 तक सारे प्लास्टिक पैकेजिंग को रिसाइकलेबल या कंपोस्टेबल बनाने का टारगेट रखता है। ये इनिशिएटिव सिंगल यूज प्लास्टिक्स को फेज आउट करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तीसरी और आखिरी खबर है केन्या से, जहां एक एनजीओ ने प्लास्टिक बॉटल्स को यूज करके अफोर्डेबल हाउसेस बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट केन्या में लो इनकम फैमिलीज के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ये एक यूनिक और इनोवेटिव अप्रोच है प्लास्टिक वेस्ट को अपसाइकिल करने की। ये थी हमारी ग्रीन फ्लैश अपडेट। आपको कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, हमें जरूर बताइएगा। और इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया @FM107 कतर पे, या फिर हमें व्हाट्सएप पे अपना फीडबैक दे सकते हैं 666-22-107। तो जरूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है।
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ, ओनली ऑन FM107, दिल से देसी।
0: अब हम बात करते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग इनोवेशन के बारे में, प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साइंटिस्ट ने प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स डेवलप किए हैं, जो पैड प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्रोसेस बहुत फास्ट और इको फ्रेंडली है। इमेजिन अ फ्यूचर वेयर प्लास्टिक वेस्ट को इंस्टेंटली रिसाइकलिंग किया जा सके। चलिए अब टाइम है हमारी इको लिविंग टिप्स का, जहां हम आपको सिंपल और इफेक्टिव आइडियाज देते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: हर बार शॉपिंग पर जाते वक्त अपना रीयूजेबल क्लोथ बैग साथ ले जाएं। प्लास्टिक बैग्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स। स्ट्रॉज और डिस्पोजेबल कटलरी को अवॉइड करें। अपने किचन में रीयूजेबल कटलरी रख कर ये हैबिट अपनी लाइफ में शामिल करें। मुख्तलिफ कंट्रीज में कई लोकल रीसाइक्लिंग प्रोग्राम्स हैं। अपने एरिया के रीसाइक्लिंग बिन्स और प्रोग्राम्स को सपोर्ट करें। अपनी डेली ग्रोसरीज को प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग में खरीदें। ग्लास या पेपर प्रोडक्ट्स का यूज करें।
1: Voices of the planet.
2: What can the average person do to reduce the use of plastic bags?
3: Well, I think, you know, every time I go into a grocery store and they're about to stick my purchases into that plastic bag, I say, no, I have my own bag, and they put it in my bag. And I always say, you know, this is saving one bag of plastic from getting out and polluting the environment.
2: Thank you.
0: Listeners, हमारे टेक अवे चैलेंज का वक्त आ गया है।
1: वीकली चैलेंज।
0: इस हफ्ते का चैलेंज है गो प्लास्टिक फ्री फॉर अ वीक। इस वीक ट्राई करें कि आप प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स या स्ट्रॉस को अवॉइड करेंगे, इसके बदले रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स का यूज करेंगे। अगले हफ्ते हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज, द क्लॉक इज टिकिंग। Stay tuned and keep making a difference for the future. Thank you for listening to Sustain the Future. Main hoon Mavish, signing off with Green Vibes. Khuda Hafiz, phir milenge.
1: Sustain the Future.
4: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se desi.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Are you ready? Friday 9 p.m. लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

इंसान थुड़दिला पैदा किया गया है। जब उस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक मुकर्रर हक है, जो रोजे जजा को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के आजाब से डरते हैं, क्योंकि उनके रब का आजाब ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई बेखौफ हो, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बजुज अपनी बीवियों या अपनी ममलूका औरतों के, जिनसे महफूज न रखने में उन पर कोई मलामत नहीं। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही हद से तजावुज करने वाले हैं, जो अपनी अमानतों की हिफाजत और अपने अहद का पास करते हैं, जो अपनी गवाहियों में रास बाजी पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। ये लोग इज्जत के साथ जन्नत के बागों में रहेंगे। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि ये मुनकरीन दाएं और बाएं से ग्रोह दर ग्रोह तुम्हारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं? क्या इनमें से हर एक ये लालच रखता है कि वो नेमत भरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? हरगिज नहीं। हमने जिस चीज से इनको पैदा किया है उसे ये खुद जानते हैं। बस नहीं, मैं कसम खाता हूं मशरिकों और मगरिबों के मालिक की, हम इस पर कादिर हैं कि इनकी जगह इनसे बेहतर लोग ले आएं, और कोई हमसे बाजी ले जाने वाला नहीं है। लिहाजा इन्हें अपनी बेहुदा बातों और अपने खेल में पड़ा रहने दो, यहां तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, जब ये अपनी कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़े जा रहे होंगे जैसे अपने बुतों के अस्थानों की तरफ दौड़ रहे हों। इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्लत इन पर छा रही होगी। वो दिन है जिसका इनसे वादा किया जा रहा है।